0: डेफिनेशन में जंतर मंतर पर पहुंचे। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
1: दिल्ली में जंतर मंतर पर बीते 3 हफ्तों से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दक्षिण भारतीय एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत ने वांगचुक से मुलाकात की और प्रदर्शन के प्रति अपना समर्थन जताया। वायरल वीडियो में एक मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पास प्रकाश राज और एक्टर रजनीकांत की तरह दिखने वाले एक शख्स बैठे दिखते हैं। वीडियो में प्रकाश कह रहे हैं कि मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसे मिलते हैं, वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है, वो एक्ट ऑफ आर्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है।
2: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है, वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है, वो एक्ट ऑफ आर्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है।
1: वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा कि प्रकाश राज रजनीकांत पहुंचे जंतर मंतर पर। वहीं कुछ लोग एआई की मदद से भी प्रकाश राज और रजनीकांत के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचने के मैसेज के साथ पोस्टर बनाकर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। देखिए, इसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। वीडियो में एक मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पास प्रकाश राज और एक्टर रजनीकांत की तरह दिखने वाला एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए काफी जरूरी हो गया था, लिहाजा फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, इसे परखा और ध्यान से देखने पर यह समझ में आया कि मंच पर प्रकाश राज के बगल में जो शख्स बैठे हैं उनका चेहरा दूर से तो रजनीकांत जैसा नजर आता है, लेकिन जब इसे काफी क्लोज से देखा गया तो ये साफ हुआ कि ये रजनीकांत नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि प्रकाश राज कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर जरूर पहुंचे थे, लेकिन ये खबर हमें कहीं नहीं देखने को मिली कि सुपरस्टार रजनीकांत भी प्रकाश राज के साथ जंतर मंतर पहुंचे थे। क्योंकि अगर रजनीकांत यहां पहुंचते तो ये अपने आप में काफी बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर सुर्खियों में होती, हर जगह इसकी चर्चा हुई होती, लेकिन हमें इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों कसौटी पर कसा। तो देखिए कौन से वो सवाल है यहाँ पर। पहला सवाल आपको बताते हैं, पहला सवाल ये है कि मंच पर एक्टर प्रकाश राज के साथ बैठे शख्स की पहचान आखिर क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
2: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और इसका सच और झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर 11 जुलाई 2026 को पोस्ट किया गया सीजेपी के प्रदर्शन का एक वीडियो मिला। ये वायरल वीडियो से अलग है, लेकिन इसमें वायरल वीडियो वाले सभी लोग दिख रहे हैं। इसमें प्रकाश राज का जिक्र तो किया गया है, लेकिन रजनीकांत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक YouTube चैनल पर 11 जुलाई 2026 को सीजेपी के अनशन के बारे में वीडियो न्यूज अपलोड की गई थी। इसमें प्रकाश राज के साथ केरल के पूर्व वित्त मंत्री डीएम थॉमस इसाक को देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में प्रकाश राज के साथ थॉमस इसाक ही है। कोलाज में वायरल वीडियो और इस वीडियो न्यूज में इसाक ही दिख रहे हैं।
2: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है।
1: एक अंग्रेजी पेपर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी सीजेपी के अनशन में पहुंचे इसाक और प्रकाश राज की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। 11 जुलाई 2026 को की गई इस पोस्ट के अनुसार प्रकाश राज दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के साथ हड़ताल में शामिल हुए। इसाक और त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हो रहे आंदोलन का समर्थन किया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के एक्स हैंडल से भी 11 जुलाई 2026 को उस दिन के अनशन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्रकाश राज और थॉमस इसाक को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया गया। हमें एक्टर रजनीकांत के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जाकर समर्थन जताने से संबंधित कोई खबर नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज के साथ पहुंचने वाला शख्स थॉमस आइजैक है, न कि रजनीकांत। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है, वो एक्टिंग है।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये घटना मुंबई की है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जान की बाजी लगाकर कूदता है और एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। कई सोशल मीडिया यूजर्स डिलीवरी बॉय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसे रियल हीरो और सुपरमैन बता रहे हैं। वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, इसको इंसान नहीं फरिश्ता कह सकते हैं। मुंबई से एक डिलीवरी बॉय का ऐसा कारनामा सामने आया है कि यकीन नहीं होता। पहली नजर में देखने पर तो लगा था बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद मारा गया, लेकिन अगले पल लगा उसने अपने साथ साथ बच्चे की भी जान बचा ली। कई यूजर्स इस वीडियो को मुंबई का बताकर भी शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जान की बाजी लगाकर कूदता है और एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। यूजर्स डिलीवरी बॉय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो मुंबई का है। तो देखिए, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसे मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में हमने वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानने की कोशिश की। फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को देखा और इसे गौर से परखा, और इस दौरान हमें वीडियो में कई खामियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, इस पर डाउट हुआ। वीडियो का बैकग्राउंड असामान्य रूप से काफी धुंधला लगता है और सड़क पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार वास्तविक नहीं लग रही है। सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों की नंबर प्लेट पूरी तरीके से ब्लर्ड है और बाइक सवारों के चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब डिलीवरी बॉय बच्चे को लेकर सड़क पर गिरता है तो बच्चे के शरीर का एक हिस्सा ट्रक के पहिए के बेहद करीब आ जाता है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपको दिखाते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा होता तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई, और दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें किसी भी विश्वसनीय समाचार वेबसाइट पर ऐसी किसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जहाँ इस वीडियो को मुंबई का बताया गया हो। पड़ताल के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर 12 जुलाई 2026 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। हालांकि वीडियो के कैप्शन में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जब हमने इस अकाउंट को खंगाला तो पाया कि इस अकाउंट पर इसी तरह के कई AI जनरेटेड वीडियो अपलोड किए गए हैं। ऐसे में हमें इस वीडियो को लेकर भी शक हुआ। जेहन में ये सवाल आया कि वायरल हो रहा वीडियो भी AI निर्मित हो सकता है, लिहाजा हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। टूल ने अपने विश्लेषण में 96.1% स्कोर के साथ वायरल वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय के वायरल वीडियो को हमने AI डिटेक्शन वेबसाइट डीप फेकोमीटर पर भी जांचा। इस टूल के 3 डिटेक्टर्स ने उच्च संभावना के साथ वायरल वीडियो को AI जनरेटेड बताया। इजिट AI ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को संभावित AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय का ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए, इसी के साथ फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: इफ यू आर सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, NBC स्पोर्ट्स रेडियो इज द प्लेस फॉर यू। Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: तो चलिए, अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।
0: माँ बेटे का एक बेहद प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खाना खिलाते समय बच्ची अपनी माँ को उसी अंदाज में जवाब देती है जैसे उसकी माँ उसके साथ करती है। मासूम बातचीत और दोनों की हंसी ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटी बच्ची अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाती हुई नजर आती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बच्ची बड़े प्यार से चम्मच में खाना लेकर माँ के मुंह तक ले जाती है और माँ भी मुस्कुराते हुए खाना खाती रहती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऐसा होता है जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ता है। दरअसल बच्ची जैसे ही दूसरा चम्मच लेकर माँ को खिलाने लगती है, माँ उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। माँ कहती है कि अभी उसके मुँह में पहले वाला निवाला है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। लेकिन बच्ची रुकने के बजाय ऐसा जवाब देती है जो पूरे वीडियो की जान बन जाता है।
4: जब मेरे माउथ में कुछ होता था, मुझे जल्दी जल्दी खिलाओ।
0: बच्ची मासूमियत से कहती है, नहीं, जब मेरे मुंह में खाना होता है तब आप जल्दी जल्दी खिलाते हो। उसकी ये बात सुनते ही माँ अपनी हंसी नहीं रोक पाती। शायद उसी पल माँ को एहसास होता है कि बेटी ने बड़े प्यारे तरीके से उसकी ही आदत उसे याद दिला दी है।
4: कुछ होता था, मुझे जल्दी जल्दी खिलाओ।
0: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को अपना बचपन याद दिला दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने घर के बाहर खुले आंगन में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कबाड़, प्लास्टिक की टोकरियां और लोहे के एक स्टैंड की मदद से अपने लिए एक अनोखा झूला तैयार किया है। कोई उस झूले में बैठकर घूमने का आनंद ले रहा है तो कोई अपने दोस्त को धक्का देकर मस्ती करता नजर आ रहा है। बच्चों के चेहरे पर दिख रही मुस्कान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस पल को कितना एंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए ये साधारण सा झूला किसी बड़े मनोरंजन पार्क से कम नहीं है। कई बार ऐसा नजारा भी देखने को मिल जाता है जिनके बारे में हम आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। ज्यादा उम्र होने के बाद लोग सही से उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं सकते और वजन नहीं उठा सकते। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र को महज एक नंबर मानते हैं और बुढ़ापे में भी कहर बरपाते हैं। इस वीडियो में भी एक दादाजी ने कुछ ऐसा ही दम दिखाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह दादाजी जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका अंदाज देखकर लोग दंग रह गए।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के सफर के दौरान बीएसएफ के जवानों ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे कोच में बैठे लोग भावुक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई बीएसएफ जवान ट्रेन के एक कोच में सफर कर रहे हैं। सफर के दौरान अचानक कुछ जवान गिटार निकालते हैं और फिर सभी मिलकर फिल्म का एक मशहूर गाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता है, पूरा डिब्बा देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। जवानों की आवाज और गिटार की मधुर धुन ने पूरे माहौल को बेहद शांत, भावुक और सुकून भरा बना दिया है।

0: उज्बेकिस्तान के युवा कलाकारों ने बॉलीवुड का मशहूर गाना गाकर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल वीडियो को देख लोग इन कलाकारों की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में खास बात यह है कि वो इस गाने को अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गा बजा रहे हैं। उनकी मधुर आवाज और संगीत का अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: दुनिया में सबसे बड़ी इंसानियत वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी उम्मीद के किसी भी जुबान की प्यास बुझा दे।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक महिला ने प्यास से परेशान एक लंगूर की मदद करके हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंगूर काफी देर से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक नल मौजूद है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। बंदर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो काफी देर से प्यासा है और किसी तरह पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहाँ मौजूद एक महिला की नज़र उस लंगूर पर पड़ती है। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाती है। महिला को देखकर लंगूर भी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करता। महिला तुरंत नल खोल देती है और इस तरह पानी बहने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ की मदद से बंदर को आराम से पानी पीने देती है। वीडियो में सबसे खास बात ये है कि लंगूर पूरे समय बिल्कुल शांत रहता है। वो आराम से पानी पीता है और महिला पर पूरा भरोसा करता हुआ नजर आता है। वही महिला भी पूरे धैर्य और प्यार के साथ उसकी मदद करती है। दोनों के बीच का ये भरोसा और अपनापन लोगों को काफी भावुक कर रहा है। इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं के एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने थोड़ी सी मस्ती करने की सोची। उन्होंने एक विग पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था और आखिर केयरटेकर करने क्या वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विग को हवा में उछाल दिया और अचानक उसका चमचमाता हुआ गंजा सिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देख मैंगलेन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू हुआ कैसे। वो इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो ये प्रैंक किया उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
2: बिकू कब तरह बोले ना बताते आप बस सा मुताक़िद तब लाओ गिफ्टा खलिफ जो वसर वीडियो आशा बन लाए क्या लबी ना यार।
0: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में एक समझदार डॉल्फिन अपनी शानदार समझ, फुर्ती और ट्रेनिंग का ऐसा नजारा पेश करती है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत एक बड़े स्विमिंग पूल से होती है जहां एक डॉल्फिन आराम से तैरती हुई अपने ट्रेनर के पास पहुंचती है। ट्रेनर के हाथ में एक छोटी बास्केटबॉल होती है। वो बड़े प्यार और धैर्य के साथ डॉल्फिन को गेंद देता है और उससे कुछ इशारों और शब्दों में बात करता हुआ दिखाई देता है। वीडियो देखने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे डॉल्फिन को समझा रहा हो कि आगे उसे क्या करना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेनर की बात सुनने के बाद डॉल्फिन भी अपनी खास आवाज निकालती है। उसकी प्रतिक्रिया देख ऐसा लगता है मानो वो अपने ट्रेनर की बात समझ गई हो। और अब उसे पूरा करने के लिए तैयार हो। यही पल वीडियो को और भी खास बना देता है क्योंकि इंसानों और जानवरों के बीच इस तरह की समझ हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। इसके बाद डॉल्फिन गेंद को अपने मुंह में पकड़ लेती है और बिना किसी जल्दबाजी के पूल के दूसरे छोर की तरफ तैरने लगती है। वहाँ पानी के ऊपर एक बास्केटबॉल रिंग लगी होती है। जैसे ही वो रिंग के करीब पहुंचती है वो अचानक पानी से ऊपर की ओर शानदार छलांग लगाती है। उसकी टाइमिंग और संतुलन इतना बेहतरीन होता है कि गेंद बिल्कुल सही निशाने पर जाकर सीधे बास्केटबॉल में गिरती है, सीधे बास्केट में गिरती है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, इसे सुनने को मिल जाओ। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ।
4: गर्मी जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो राहत की हर कोशिश किसी वरदान से कम नहीं होती। चीन में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं।
5: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहाँ 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन पानी के फुहारे फैल जाती हैं, जो पल भर में गर्मी में कूल कूल एहसास कराती हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हेफेई के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली पर रखे ठंडे फल परोसे जा रहे हैं। बंदर बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ खेलते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के लिए ठंडे पानी की फुहार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जानवरों को ताजे फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वो इस भीषण गर्मी का सामना आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर चाहे ऐतिहासिक गलियों में घूमते सैलानी हो या फिर पिंजरे के भीतर मजे लेते ये बेजुबान, गर्मी से निपटने के इन अनोखे और ठंडे ठंडे तरीकों ने सबका दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दुनिया में खुशियां बांटना भी एक खूबसूरत सेवा है। मैक्सिको सिटी की सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं, जहां पर हर साल जोकर यानी कि क्लाउन अपनी कला के साथ श्रद्धा जताने सड़कों पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हंसी बांटने वाले कलाकार अपने विश्वास और परंपरा को निभाने के लिए हजारों की संख्या में एक साथ जुटते हैं।
5: चेहरे पर चटक लाल रंग, बड़ी सी मुस्कान, दिल में श्रद्धा और कदमों में विश्वास, ये कोई सर्कस का मंच नहीं बल्कि आस्था का रंगमंच है। रंग बिरंगे कपड़ों में मैक्सिको सिटी की सड़कों पर जब एक साथ सैकड़ों क्लाउन उतरे तो हर तरफ खुशी, उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम दिखाई दिया। हर साल की तरह इस बार भी वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की सालाना यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली। रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे क्लाउन वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की प्रतिमा और तस्वीरें लेकर मैक्सिको के सबसे बड़े धार्मिक स्थल ग्वाडालूपे बेसिलिका पहुंचे। कलाकारों की इस अनोखी यात्रा में किसी ने करतब दिखाए, किसी ने गेंदों से जुगलबंदी की, तो किसी ने अपनी मासूम अदाओं से बच्चों और बड़ों दोनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। माहौल ऐसा था जहां मनोरंजन और श्रद्धा एक साथ नजर आई।
6: El motivo de la peregrinación es porque se fundó el Club Payasos Mexicanos de Circo en 1979. En el primer año del aniversario se propuso festejarlo con una peregrinación, dando gracias por los favores recibidos durante el año.
5: चर्च की चौखट पर पहुंचते ही पवित्र जल से जब इन मुस्कुराते चेहरों पर आशीर्वाद की बूंदें पड़ी तो इनका विश्वास और मजबूत हुआ, क्योंकि कला जब आस्था से जुड़ जाती है तो हर मुस्कान इबादत बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी

लंका की यात्रा में हनुमान जी ने चार खोजे। कितनी खोजे की? बोलो बोलो। लंका यात्रा में हनुमान जी को जो सबसे ज्यादा प्राप्ति हुई वो चार चीजों की बड़ी अद्भुत प्राप्ति हुई। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में पहले नंबर पर शांति पाते। क्या पाते? जोर से बोलो। लंका प्रवेश करने के पहले समुद्र के किनारे हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे आंखें बंद करके। तो किसी ने कहा आंख क्यों बंद की है? हनुमान जी बोले शांति यही मिलेगी। समुद्र की लहरों का शोर है और शोर में शांति चाहिए तो आंख बंद करो। एक दो महात्मा स्कूल में गए, महात्माओं का स्कूल में क्या काम, फिर भी चले गए। स्कूल के बच्चे तो बच्चे ही होते हैं तो बच्चे शोर मचाने लगे, हो अब बच्चे चुप ना हो गए तो क्या करें। एक महात्मा बोले बच्चों शोर तो मचाओ पर आंख बंद करके मचाओ। अच्छा बच्चे तो बच्चे, हम लोग भी शोर आंख बंद करके नहीं मचा सकते। आंख बंद करके शोर ज्यादा नहीं मचा सकते। एक आदमी ओ लगेगा जरा देखें प्रभाव पड़ रहा कि नहीं। जिसके लिए शोर मचा रहे वो देख रहा। कई लोग ऐसा ध्यान करते हैं, हमने ऐसा देखा है। कई लोगों की पूजा पाठ ऐसे ही होती है, घर में रिश्तेदार आ जाए, मेहमान आवे तो वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुं भूत पिशाच निकट आवे महावीर। हमने ऐसा हमारी कथाओं में हमने देखा, जैसे उनकी तरफ कैमरा जाए और टीवी लगी हो तो जो आदमी पहले बैठा रहे और जैसे ही कैमरा कैमरा श्री राम जय, ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात मीराबाई हूं। हाँ, हाँ, और पुरुष तो लगने लगते मानो प्रहलाद जी इनके अंदर ही घुस गए। आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान मुद्रा में भजन कीर्तन करने लगते तो ध्यान। अच्छा शोर भयंकर हो और शोर में शांति चाहिए तो ये उपाय है। हनुमान जी ने लंका की यात्रा में चार बातें पाई, चार सफलताएं पाई। पहली सफलता शांति पाई। क्या पाई? बोलो बोलो बोलो। पर शांति कहां? लंका जाने के पूर्व में समुद्र के किनारे नेत्र बंद करके ध्यान मुद्रा। अच्छा सब अपने अपने बल को बता रहे। जब लंका आप पढ़ेंगे अरे किष्किंधा कांड को, तो किष्किंधा कांड में आया है सब अपने अपने बल को बता रहे। अंगद जी कह रहे अंग

अंगद जी बोले हम लंका चले तो जाएंगे पर लौटने में बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो किसी ने कहा अंगद जी से कि क्या गड़बड़, बोले हो सकता कहीं गुफा मिल जाए, गुफा हमारे दादा परदादा से श्रापित है। बोले क्यों श्रापित है, बोले हमारे पिताजी की मौत गुफाई के चक्कर में।

जब जवानी थी तब हमारा जोश देखते, बोले कितना, बोले एक घड़ी में जब बलि भगवान को भगवान वरदान दे रहे थे और विराट रूप धारण किया था तब पृथ्वी की हमने 7 परिक्रमा कर ली थी, अब बुढ़ापा आ गया, अब नहीं जा सकते तो कौन जाए। सब बोल रहे, हनुमान जी नहीं बोले, हनुमान जी बैठे सब शोर कर रहे और ये शांति में बैठे। तो किसी ने हनुमान जी को धक्का दे के कहा कि सब कह रहे तुम भी तो बताओ। हनुमान जी बोले कि हमारा खुद का बल हो तो हम बताएं। इन लोगों का अपना खुद का बल है तो बता रहे, हमारा खुद का बल नहीं है। बोले किसका बल है?

हमारा बल नहीं है, किसका बल है? राम जी का। तो राम जी भी तो तुम्हारे पास। बोले हमारे पास नहीं, हम तो मकान। मकान मालिक का बल। और सच भी यही है, मकान का कोई मकान की ताकत नहीं होती, मकान मालिक की ताकत। मकान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर मकान मालिक ताकतवर ना हो तो मकान कोई साधारण। अच्छा देखो, हम लोग इन मकानों में चाहे जो कोई घुस जाएगा, पर राष्ट्रपति के मकान में बिना परमिशन के घुस सकता क्या? नहीं घुस सकते, वहां परमिशन लगती। प्रधानमंत्री का मकान हो तो बड़ा पावरफुल। क्यों? क्योंकि मकान की महिमा नहीं है, मकान में रहने वाले की महिमा। तो हनुमान जी बोले देखो लोग हमारी महिमा गा रहे, हमारी नहीं है। हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान हमारे, हम मकान है, हमारा जो मकान मालिक है उसकी महिमा। बोले मकान मालिक कौन है? बोलो बोलो बोलो। जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धरी। हमारे हृदय में राम जी बैठे। और विभीषण को सीना चीर करके दिखाया, देखो ये है मकान मालिक, हम मकान है, ये मकान मालिक, उनका बल है। तो हनुमान जी बोले कि हम नहीं जा सकते, अपना बल नहीं बता सकते। यहां पर एक बात और बड़ी अद्भुत है। आहा, सबने अपना अपना बल बताया, हनुमान जी ने नहीं बताया। मतलब वो कहावत सत्य हो गई कि कई बार जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। जिनके पास जो होता वो बोलते कम है, कर देते, और जिनके पास आधा होता वो बोलते जाने, कर नहीं पाते। और जो लंबी लंबी फेंके समझ जाना सीतारा। कुछ लोग हमें मिलते हैं वो कहते हैं हम झूठ बोलते ही नहीं। हम देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, झूठ तो हमें पसंद ही नहीं। हमें मनी मन लगने लगता कि मान लो इन्हें सत्य पसंद नहीं। अरे भाई जब तुम्हें झूठ पसंद नहीं है तो कहने की आवश्यकता क्या? उस पर चलो, आचरण पर। लोग अपने आप कहेंगे कि इन्हें झूठ पसंद है, तुम्हें कहने की क्या आवश्यकता है? लोग कहें कि हमें इन्हें झूठ पसंद नहीं, आप खुद कहो कि हमें झूठ पसंद है, हमें। ये तो प्रचार हो गया। इसका मतलब प्रचार मिलावट है, सोने जैसी कोई ना कोई खोट है। तो हनुमान जी बोले हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं, हमारा कोई बल नहीं, भगवान का बल है। और देखो सबने अपना अपना बल बताया, हनुमान जी ने बल नहीं बताया, पर सब नहीं जा पाए हनुमान जी के। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है बल बताया जाए, जताया जाए, करके दिखाया जाए। तो लंका की यात्रा में हनुमान जी ने पहले नंबर पर शांति पाई। क्या पाया? बोलो बोलो बोलो। दूसरा हनुमान जी ने क्या पाया? दूसरा पाया जैसे ही आगे बढ़े तो सुरसा नाम एहन की माता, सुरसा नाम की माता जी जब आई तो तुरंत हनुमान जी से बोली आज सुरनमोहिन दीन आहारा सुनत कहे, आज सुरनमोहिन दीन आहारा, आज हमको देवताओं ने आहार दिया है, भोजन दिया। हनुमान जी बोले किसका? सुरसा बोली आपका। हनुमान जी बोले हम समोसा हैं क्या जो हमको खाओगी? नहीं नहीं, देवताओं ने कहा कि इस बानर को खा लो तो हम खाने आए हैं। हनुमान जी महाराज ने लीला की, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने रूप दिखा करके डबल शरीर किया, सुरसा ने भी अपना शरीर किया, सत जोजन तही आनंद कीना, तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे बन गए, और हनुमान जी छोटे बनकर के मुख में भी गए, बदन पैठ पुनि बाहर आबा। हनुमान जी अंदर गए बाहर आए, बदन पैठ पुनि बाहर आबा। मागा बिता, हनुमान जी विदा मांगने में, माता हमने पेट में भी चले गए बाहर भी आ गए, आज्ञा दे। यहीं पर हनुमान जी ने दूसरी उपलब्धि पाई, पूछो क्या?

ये भगवान हनुमान जी की दूसरी उपलब्धि सुंदरकांड में लंका यात्रा में हनुमान जी की है। पहले शांति पाई, फिर शक्ति पाई। क्या पाया? बोलो बोलो बोलो बोलो। क्योंकि जो किसी को प्रणाम करता, आशीर्वाद देता, तो अभिवादन शीलस्य चतुरस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मनुस्मृति में लिखा कि जो प्रणाम करता है उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। बोले क्या? बोले स्वभाव बस कोई प्रणाम कर, आयु विद्या यश बल, ये चत्वारी तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं। आहा हा, हनुमान जी ने प्रणाम किया तो सरसा माता ने आशीर्वाद दिया, तो पहले शांति पाई अब शक्ति पाई, और तीसरा क्या पाया? बोलो बोलो बोलो। जैसे ही हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने लंका में सब कुछ देखा। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जहते अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सो। हनुमान जी मंदिरों में गए, घर घर गए, एक घर नहीं छोड़ा हनुमान जी, सर्वत्र गए, पर कहीं जानकी माता नहीं मिली। अंत तो गत्वा रामर के मंदिर में गए। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। बड़ा विचित्र महल है, लगता है ये रामर का घर है, यहां जानकी माता होंगी। और कितना अद्भुत संकेत है सुंदरकांड का, हनुमान जी के सुंदरकांड के संदेश का। जकार्ता के पागलो, हनुमान जी लंका की यात्रा में स्वर्ण की नगरी में, जहां एकदम गोल्डन हाउस 2 BHK 3 BHK 4 BHK है, उन 2, 3, 4 BHK गोल्डन हाउस में हनुमान जी गोल्ड में नहीं फंसे, हनुमान जी चमचमाती दुनिया में नहीं फंसे, हनुमान जी माया की नगरी में भी भक्ति की खोज कर रहे। और कितना अच्छा संकेत है कि हम लोग भले ही संसार में रहें पर खोज भक्ति की करें। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आहा, हनुमान जी महाराज जैसे रावण के भवन में गए तो हनुमान जी, आहा, हनुमान अंक में हनुमान जी के बारे में वहां वर्णन मिला। एक पुस्तक है हनुमान अंक, और एक और पुस्तक है श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की, उन्होंने यहां का वर्णन लिखा रावण के महल का। क्या अद्भुत वर्णन लिखा, क्या रूपक खींचा। आहा, सुदर्शन सिंह चक्र कहते हैं कि हनुमान जी जब रावण के महल में पहुंचे तो दशानन की दशा को देख रहे, दशानन की दशा को देख रहे, दुर्दशा है दशानन की दशा, बड़ी दुर्दशा है। क्या रूपक खींचा? बोले क्या दुर्दशा? बोले चहुं दिस स्त्रियां हैं, चारों तरफ रावण के बिस्तर पर स्त्रियां लेटी हैं, किसी के आधे वस्त्र नहीं, किसी के पूर्ण वस्त्र नहीं, कोई पान की पीक खाए हुए पड़ी है, कोई मद में मस्त है, कोई गाली बक रही है, कोई गिर रही, कोई झूम रही, कोई गिटार बजा रही, और कोई पान खिला रही, कोई रावण के सिरहाने पड़ी, कोई रावण के सिरों को मल रही, और कोई रावण के तलवों को मल रही, कोई रावण को भोजन का नाश्ता हाथ में लिए ही पड़ी, मानो अभी अभी रावण यह विचित्र विचित्र स्थितियों से थक करके लेट गया हो। ऐसी स्थिति में, दुर्दशा में दशा को हनुमान जी ने देखा। पर उस पूरे महल के अंदर, उस पूरे कक्ष में, जब रावण के कक्ष में हनुमान जी देखते हैं ऊपर बैठकर, कहीं जानकी जी नहीं दिखाई पड़ रहे। सुंदर स्त्रियों को देखकर एक पल के लिए लगा ये माता है। और एक ही घटना हुई वहां पर, क्या? एक बड़ी सुंदर स्त्री देखी, जो दिखने में बड़ी सुंदर थी, बाल घुंघराले थे, लटक रहे थे, विचित्र स्थिति में जरूर पड़ी थी, पर सबसे सुंदर वही स्त्री थी और रावण के वही बगल में लेटी हुई थी। उस स्त्री को देखकर हनुमान जी को लगा यही माता जानकी है, लेकिन तुरंत याद आया यदि ये मां जानकी है तो इस दशा में नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती इस दशा में, नहीं, हमारी माँ जानकी तो अब अति मर्यादित है, इस दशा में नहीं हो सकती, फिर कौन है? तब तक ध्यान आया हनुमान जी को, ज्ञानी नामा गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम वीर बजरंग बली को, अरे लगता है ये मंदोदरी है, फिर हमारी माँ कहाँ है? अंत तो गत्वा पूरे महल में छाना। सुदर्शन सिंह चक्र लिखते हैं हनुमान जी को जब माता जानकी नहीं दिखाई पड़ी तो अंत तो गत्वा, हनुमान जी ने कभी देखा तो था नहीं, पर हाव भाव से ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती, हाव भाव से ही पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब माता जानकी जी नहीं दिखाई पड़ी, उन स्त्रियों में सुंदर स्त्रियां भी भ्रम की स्थिति में है कि ये नहीं हो सकती, क्योंकि रूप तो सुंदर है पर चरित्र ठीक नहीं, और ऐसी हमारी माँ नहीं हो सकती। तो अंत तो गत्वा हनुमान जी ने सोचा माता जानकी मिली नहीं, और हम ब्रह्मचारी
और ब्रह्मचारी को स्त्री का दर्शन ऐसी स्थिति में करना अपराध है, और हमने आज तक ऐसी दर्शन स्त्रियों के किए नहीं, आज हमने अपराध कर लिया। हनुमान जी ने वहीं पर तलवार रावण की खड़क को उठाया और मरने के लिए तैयार हुए। पहली बार हनुमान जी मरने के लिए आतुर हुए, और जैसी खड़क को उठाया मरना चाहा हनुमान जी, मरते मरते सोचा एक काम किया जाए, एक बार और खोज लिया जाए, शायद पता लग जाए, यहां तो मिली नहीं, एक बार और चक्र लगा लिया जाए। तलवार रावण की उठा ली, अंत तो गत्वा वरना हम ये मुंह राम जी को तो नहीं दिखाएंगे, चाहे जो हो पाए हो जाए, हम प्राण यही त्याग देंगे, वापस जीवित नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने एक पूरा चक्र पुनः लगाया, और पूरा चक्र जब श्री हनुमान जी ने लंका का लगाया तो लंका में विभीषण जी अंगली यात्रा में हनुमान जी को मिले, और ये तीसरी उपलब्धि हनुमान जी को सुंदरकांड में प्राप्त हुई। पहले शांति मिली, फिर शक्ति मिली, और इसके बाद में भक्त मिला विभीषण, और चौथा भक्त के मिलते ही भक्ति मिल गई। भक्ति कौन है? बोलो बोलो बोलो। जानकी माता भक्ति कौन है? जोर से बोलो। मां जानकी भक्ति है, और रावण चतुर है। रावण को पता था कि भक्ति को लाए बिना भगवान नहीं आ सकते, इसलिए वो भक्ति को लाए। रावण विद्वान तो था ही, साधारण थोड़ी था, विद्वान तो था ही। चलत दसानन डोलत अवधी, चार वेद छह शास्त्र का ज्ञाता रावण, इसलिए जानता था भगवान को बुलाएंगे तो वो आएंगे नहीं, अकेले भगवान नहीं आएंगे। बोले क्या किया जाए? बोले भक्ति को ही बुला लो, भगवान खोजते खोजते आएंगे। और यही बात जनक जी के साथ हुई। जनक जी से जब कहा तो भगवान चाहते कि भक्ति, जनक जी ने कहा हमारे घर पर भगवान का अवतार ना हो, भक्ति का अवतार। महाराज जनक माता जानकी के पिता बोले हमारे घर भगवान का अवतार नहीं, भक्ति का अवतार होना चाहिए। किसी ने जनक से पूछा क्यों? जनक राज जी बोले यदि भक्ति का अवतार होगा तो भगवान बर बन के हमारे घर आएंगे। यदि भक्ति का अवतार हमारे घर पर होगा तो भगवान वर बनकर हमारे घर आएंगे, और हमको नहीं जाना पड़ेगा, उल्टे दूल्हा बनकर के आएंगे, क्योंकि जहां भक्ति होगी वहां भगवान होंगे। तो इसलिए महाराज जनक ने भक्ति को चुना, रावण ने भी भक्ति का हरण किया, भगवान उनके घर गए। हनुमान जी महाराज की ये चौथी उपलब्धि है, पहली शांति, दूसरी शक्ति, तीसरा भक्त, और चौथी भक्ति। और ये चारों उपलब्धि के कारण हनुमान जी स्वयं भगवान हो गए। इसलिए चारों युग परिताप, हमें लगता है ये चार उपलब्धि के कारण हनुमान जी चारों युगों में पूजे जाते, तब तो गोस्वामी जी ने लिखा।

हमसे तो भगवान करवा रहा, भगवान हमसे कथा करवा रहा, भगवान हमसे प्रवचन करवा रहा, हम नहीं कर रहे। जहां हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, अब तो बहुत लाखों लोग हर शनिवार मंगलवार जाते हैं, 300 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। हमारे यहां हर 10 में 12 में व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, आदिवासी क्षेत्र है, लोगों को कैंसर होता है, एक रोगी से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। वो लोग इतने सामर्थ्यवान तो होते नहीं, मुंबई तक का किराया नहीं होता कि हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, मजदूरी करने वाले लोग होते। तो जिस दिन हमने उनकी पीड़ा 2016 में देखी, एक घटना हुई थी हमारे साथ, एक पति पत्नी, पति को कैंसर था, पत्नी आई, वो नली पकड़े हुए थी, एक छोटी बच्ची फटी हुई शर्ट पहने और कुछ खाती हुई आई। उसको हमने पूछा क्या हुआ, बोले कैंसर हुआ। तो हमने कहा डॉक्टरों को दिखाओ, बोले डॉक्टरों ने मना कर दिया और दिल्ली जाने को पैसा नहीं। तो हमने कहा हम क्या करें, बोले हमने सुना कि आप भभूति देते, चमत्कार करते, कुछ दिन की आशीर्वाद दे दो कि इनकी थोड़ी आयु बढ़ जाए ताकि ये मजदूरी फिर से करने लगे, पेट पाल सके, जब तक बच्ची बड़ी नहीं हुई तब तक जिंदा रहे। ये बात हमारे दिल को छू गई। उनकी किस्मत कह लें या क्या कह लें, एक दो साल तो वो जी पाए लेकिन हम उसे बचा ना पाए। कोई कोई 50 साल की उम्र थी दोनों की, पति पत्नी की, आदिवासी समाज से थी, मजदूरी करते थे, एक दो साल तो भगवान ने कृपा की पर वो जी ना पाए। और पति की याद में पत्नी ने भी प्राण त्याग दिया, छोटी बच्ची 6 साल की। उस बच्ची को जब हमने देखा, जो खाना दे दे वो खाना खा ले, बस लोगों से एक ही बात पूछते, हमारे पापा देखे क्या, हमारे पापा देखे क्या। एक दिन अचानक वो हमको दिख गई और हम जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, उस बच्ची बार बार आने के लिए दौड़ रही थी हमारी तरफ, बहुत सिक्योरिटी पुलिस लगी हुई थी, उनके बीच से वो निकलने की कोशिश कर रही थी। तो एक सिक्योरिटी वाले ने धक्का दिया तो वो पीछे हो गई, हम उसको पहचान गए, हम इशारा किए इसको लेके आओ। हमारे पास बिस्कुट खाए रही थी वो, फिर अब वो कह रही थी बाबा बाबा आपके पास हमारे पापा आए थे, उनको देखा क्या। उस बात ने हमारे दिल को भर कर लिया और उसी दिन हमने प्रण लिया कि अब कथा करने से जो भी दक्षिणा मिलेगी हम कैंसर अस्पताल बनाएंगे। किसी का जीवन बचा। देखो भोजन हम किसी को देंगे तो वो 24 घंटा शरीर पर रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे तो वो 6 घंटा शरीर में रहेगा, किसी को कपड़ा दान में देंगे तो वो 1 साल तक शरीर में रहेगा, पर किसी को शिक्षा या जीवन जीने की आरोग्यता दे दे वो जीवन भर उसके साथ रहेगा। तो जिस क्षेत्र में हमें, उस क्षेत्र में भला हमारे गांव में आसपास ऐसा कोई सोच ही नहीं पाता कि हम लोग कभी दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा देखो, इंडोनेशिया आकर हनुमान कथा सुनी। ये बात बता के हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, हम ना तो तुमसे डोनेशन लेने आए ना कोई सहयोग लेने आए हैं, ये मन में मत रखना। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप भारतवासी, भारत से प्यार करना मत भूलना और यहां रहना। विचार भले ही तुम्हारे इंडोनेशिया के हों पर संस्कार भारत के रखना।

0: क्या आपके बच्चे को शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं? क्या बच्चा प्रतियोगिताओं में सफल नहीं हो पा रहा है? माता पिता कौन से करें उपाय बच्चे का जीवन संवर जाए, बच्चे को उन्नति मिले? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: तुमको हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Schwarber to right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run,
2: and that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: हाईटेक हो रहे पैदल सेना के जंगबाज, जमीनी युद्ध के लिए मिल रहे मॉडर्न ब्रह्मास्त्र, इंडियन इन्फेंट्री का कायाकल्प। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे, गुंडीचा मंदिर में आज होंगे विराजमान, 7 दिनों तक महाप्रभु करेंगे विश्राम। अंतरिक्ष में भारत लगाएगा एक और बड़ी छलांग, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 11:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। आज संभल के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 550 करोड़ रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात, 300 करोड़ में बनेगा 68 तीर्थों का 24 कोसी परिक्रमा मार्ग। आने वाले दिनों में मौसम के जोर पकड़ने की उम्मीद, दिल्ली में आज और कल बारिश का येलो अलर्ट, ओडिशा छत्तीसगढ़ और केरला में भारी बारिश का अनुमान। रोहित शर्मा की वनडे क्रिकेट से संन्यास की अटकलों पर बीसीसीआई ने लगाया विराम, कहा लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला मैच रोहित के वनडे करियर का आखिरी मैच नहीं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: स्पेस सेक्टर में भारत की एक और ऐतिहासिक छलांग की तैयारी, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आज भरेगा उड़ान। मिशन आगमन के तहत लॉन्च होगा स्काई रूट का विक्रम 1 रॉकेट, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 की लॉन्चिंग। कार्बन कॉम्पोजिट से बना लॉन्च व्हीकल 1 विक्रम 1 रॉकेट, 3D प्रिंटेड डिजाइन, हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल, रॉकेट बूस्टर से लैस है विक्रम 1। कई भारतीय और विदेशी टेक्नोलॉजी पेलोड भी जाएंगे अंतरिक्ष, साल 2022 के विक्रम एस के बाद स्काई रूट की सबसे बड़ी उड़ान। विक्रम 1 की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम पोस्टकार्ड भी जाएगा अंतरिक्ष, 18 कैरेट सोने से बने सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म रॉकेट कलाकृति भी भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री ने किया हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। जालंधर में पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात, 5 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। जालंधर कैंट स्टेशन से प्रधानमंत्री ने नई रेल सेवाओं को दिखाई हरी झंडी, करटोली पंजाब अंबाला और जालंधर वाराणसी के बीच ट्रेन रवाना की। जींद के एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ के विकास कार्यों का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण, रैली को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग और धुएं का पता लगाने वाले लगाए गए कई सुरक्षा सिस्टम, आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ये ट्रेन ऊपर लगी बिजली की लाइनों से पावर नहीं लेती। जींद सोनीपत रूट पर 11 स्टेशन पर रुकेगी हाइड्रोजन ट्रेन, करीब 2 घंटे का होगा जींद सोनीपत का सफर। 75 किलोमीटर प्रति घंटे है हाइड्रोजन ट्रेन की रफ्तार, जबकि इसका डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन में लगे हैं 10 डिब्बे, करीब 2600 यात्री कर सकेंगे सफर, दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन में शुमार हुई। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, देश भर के 75 रेलवे स्टेशन की बदली सूरत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया पुनर्विकास। भारत और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर सकारात्मक चर्चा, 2030 की शुरुआत में E10 श्रृंखला की हाई स्पीड ट्रेन उपलब्ध कराएगा जापान। तेजी से चल रहा है इस परियोजना का निर्माण कार्य, 2027 में परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा इसका पहला खंड। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार पाली के सोमेसर स्टेशन का शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। करीब 12.5 करोड़ की लागत से पूरी की गई है सोमेसर स्टेशन की परियोजना, 1453 वर्ग मीटर में फैला है स्टेशन परिसर। पूरी तरह बदली गुजरात के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण गोधरा जंक्शन की सूरत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ स्टेशन का कायाकल्प। करीब 6 करोड़ की लागत से हुआ स्टेशन की रीडेवलपमेंट का काम, तो वहीं यात्रियों के सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम से किया पुनर्विकास, फतेहपुर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झारखंड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, नए रंग रूप में नजर आया स्टेशन। हैदराबाद में हाईटेक सिटी अमृत भारत रेलवे स्टेशन का हुआ उद्घाटन, रामचंद्र राव ने समारोह में हिस्सा लिया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में आया रिकॉर्ड उछाल। लगातार दूसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ोतरी, 675 अरब डॉलर के पार पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। भारत के गोल्ड रिजर्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, रखी आधारशिला। टू व्हीलर से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों पर भी अब लगेगा ₹100 एंट्री टैक्स। बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले टू व्हीलर पर लागू होगा नया फैसला। बिहार की गया में बोरवेल में फंसे 3 साल के बच्चे का सफल रेस्क्यू करने वाली एनडीआरएफ टीम को मिली वाहवाही, जवानों को किया जाएगा सम्मानित। देहरादून में अग्निवीर संवाद कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं से बातचीत। सीएम ने युवाओं के साथ खिंचवाई सेल्फी, बोले उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सैनिक उनके परिवारों का सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का शामली का दौरा, करीब 618 करोड़ की 90 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता का जिक्र किया, बोले साथ मिलकर प्रदेश को विकास की ऊंचाई तक ले जाएंगे। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई, मऊ से कोलकाता के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 22 जुलाई से 24 सितंबर तक मिलेगी सुविधा। देशभर में घोषित हुए नीट यूजी परीक्षा परिणामों में पंजाब की मानसा जिले की बेटी भाविका ने किया शानदार प्रदर्शन, ऑल इंडिया 56वीं रैंक हासिल की। शानदार सफलता के बाद भाविका को बधाई देने वालों का लगा तांता, परिवार ने उपलब्धि पर जताया गर्व। नीट यूजी परीक्षा परिणामों के बाद जयपुर में भी खुशी का माहौल, उपलक्ष गोयल ने ऑल इंडिया 3री रैंक हासिल की तो वहीं खुश हुए परिजन। नागपुर के सौम्य धनराज बडोले ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 77 हासिल की, सौम्या के घर खुशी की लहर। नीट परीक्षा में 676 अंक लाकर झारखंड टॉपर बने ज्ञानेंद्र गर्व, सफलता पर परिवार गदगद, कहा परिवार का बढ़ाया मान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल रात गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन पहुंचे, अपनी बहन पुष्पा चौधरी से मुलाकात कर हालचाल जाना। सीएम योगी आदित्यनाथ आज संबल को देंगे 550 करोड़ रुपए की सौगात, कल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। संबल का धार्मिक और ऐतिहासिक गौरव दोबारा स्थापित करने की कोशिश, 300 करोड़ से बनेगा 68 तीर्थों का 24 कोसी परिक्रमा मार्ग। यूपी सरकार की नीतियों से लेदर एक्सपोर्ट को नई उड़ान, निर्यात निवेश और रोजगार बढ़ा, कानपुर रीजन में 7,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट। बच्चों में मोबाइल देखने की लत छुड़ाने के लिए प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में शुरू हुआ इलाज, हर महीने आ रहे हैं औसतन 8 मामले। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। अचानक आई बाढ़ से लाहौल स्पीति में उफान पर तांदी उदयपुर मार्ग पर रंगबे नाला, तेज बहाव के साथ बहता आया मलबा। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर छोड़ी के निकट टूटकर सड़क पर आया पहाड़ का हिस्सा, सुरक्षा कर्मी तैनात, यात्रियों को सुरक्षित पार भेज रहे हैं जवान। हिमाचल में मॉनसून जल्द पकड़ेगा रफ्तार, मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गोवा में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है, एहतियातन तौर पर प्रशासन अलर्ट। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे, गुंडीचा मंदिर में आज होंगे विराजमान। रथ यात्रा के दूसरे दिन तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे, भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान माना जाता है गुंडीचा मंदिर। 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे, इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे, इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में आस्था के साथ मानवीय संवेदनाओं की भी दिखी तस्वीर, मानव श्रृंखला बनाकर एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान को 11,000 किलो आमों का भोग किया गया अर्पित।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: हाईटेक हो रहे पैदल सेना के जंगबाज, जमीनी युद्ध के लिए मिल रहे मॉडर्न ब्रह्मास्त्र, इंडियन इन्फेंट्री का कायाकल्प। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
11: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
11: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: Oh, parakh kar parosna, hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि माता पिता ऐसे कौन से उपाय करें जिससे उनके बच्चों की उन्नति हो सके। हम आज आपको ये बता रहे हैं कि माता पिता के उपाय करने से, माता पिता के प्रयास करने से संतान को सफलता कैसे मिल सकती है। पहला प्रश्न यही है कि अगर माता पिता उपाय करें तो संतान को लाभ क्यों होगा, कैसे होगा। देखिए, माता पिता के ग्रह संतान से सीधे जुड़े हुए होते हैं, साथ ही साथ माता पिता की भावना भी संतान से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर माता पिता संतान के लिए उपाय करें, उसके लिए प्रार्थना करें, तो इससे संतान को तुरंत लाभ मिलता है। और माता पिता अगर प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, उपाय करें, तो संतान के जीवन में आ रही बाधाएं तुरंत दूर हो जाती हैं। यानी माता पिता की भावनाओं की वजह से, माता पिता के मंत्रों और प्रार्थनाओं की वजह से संतान का जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर आपका बच्चा नर्सरी से लेकर के पांचवी कक्षा के बीच में है, पांचवी क्लास के बीच में है, तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को रोज सवेरे तुलसी के दो पत्ते खिलाइएगा, रोज सुबह और शाम जब समय मिले बच्चों के साथ बैठकर, अपने बगल में बच्चे को बैठाकर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। यानी अगर आपके छोटे बच्चे के मन में, उसके दिमाग में गायत्री मंत्र पड़ेगा, तो शुरुआत से ही आपका बच्चा सही रास्ते पर चलने लगेगा। अगर आपका बच्चा छठवीं से लेकर के दसवीं क्लास में है, तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइएगा, बच्चा फास्ट फूड कम से कम खाएगा, और बच्चे को एक आदत डलवाइए कि किसी भी तरीके से वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करे। और माता पिता हर शनिवार की शाम को घर में सुंदर कांड का पाठ करें, बच्चे को भी उसमें बैठाएं, और बच्चे की उन्नति की प्रार्थना अगर माता पिता करेंगे तो बच्चे के उन्नति की संभावना बन जाएगी। अगर आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, 12वीं की पढ़ाई कर ली है और अब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके उन्नति के लिए माता पिता क्या करेंगे, माता पिता में से कोई भी रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और प्रयास करें कि आपका बच्चा भी सूर्य को जल अर्पित करे।
बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाकर हर शनिवार को अनाज का या खाने पीने की चीजों का दान करवाएं, और माता पिता में से कोई भी अपने बच्चे के लिए रोज सवेरे ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करें, बच्चे को लाभ होगा। अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाने की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग के लिए प्रयास कर रहा है, तो माता पिता क्या उपाय करें कि बच्चे को सफलता मिले? अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो बच्चे को एक लोहे का छल्ला धारण करवाइएगा। शनिवार को पीपल के नीचे माता पिता में से कोई भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, और माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करेंगे, साथ में बच्चा मेहनत करेगा तो इंजीनियरिंग में सफलता मिल जाएगी। अगर आपका बच्चा मेडिकल क्षेत्र की तैयारी कर रहा है, मेडिकल में जाना चाहता है, और आपके बच्चे को सफलता मिले इसके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? बच्चे को सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में एक चांदी का छल्ला धारण करवाइएगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार को माता पिता में से कोई भी चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे, और माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और अपनी संतान की सफलता की प्रार्थना करेंगे। आपके संतान को मेडिकल के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपका बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी की, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? बच्चे को सोने या तांबे का एक छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करवाएंगे। नियमित रूप से माता पिता में से कोई भी रोली मिला करके सूर्य को अर्घ देंगे, जल चढ़ाएंगे, और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और अपने बच्चे की सफलता की प्रार्थना करिएगा। तो अगर आपका बच्चा मेहनत करे और माता पिता ये उपाय करें, तो बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं,
तो एक लोटा जल लें, उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कि अगर किसी टूटे हुए रिश्ते को, संबंध को फिर से जोड़ना है तो क्या करेंगे? एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए, इसमें 1 रुपए का सिक्का, चुटकी भर चावल और गुलाब का इत्र रखिए। सामान रखते समय उस व्यक्ति का नाम लेते रहिए जिससे आपको संबंध फिर से जोड़ना हो। रुमाल को बांध करके पूजा स्थान पर रख दें। 3 से 6 महीनों के अंदर आपके संबंध जुड़ जाएंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं? क्या बच्चा प्रतियोगिताओं में सफल नहीं हो पा रहा है? माता पिता कौन से करें उपाय बच्चे का जीवन समर जाए, बच्चे को उन्नति मिले? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे प्रेजेंटेड बाय
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे। गुंडीचा मंदिर में आज होंगे विराजमान, 7 दिनों तक महाप्रभु करेंगे विश्राम। अंतरिक्ष में भारत लगाएगा एक और बड़ी छलांग, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 11:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। आज संभल के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 550 करोड़ रुपए की योजनाओं के देंगे सौगात, 300 करोड़ में बनेगा 68 तीर्थों का 24 कोसी परिक्रमा मार्ग। आने वाले दिनों में मॉनसून के जोर पकड़ने की उम्मीद, दिल्ली में आज और कल बारिश का येलो अलर्ट, ओडिशा छत्तीसगढ़ केरला में भारी बारिश का अनुमान। रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से संन्यास की अटकलों पर बीसीसीआई ने लगाया विराम, कहा लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला मैच रोहित के वनडे करियर का आखिरी मैच नहीं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संतान की सफलता के बारे में। हर कोई माँ बाप चाहता है कि उनकी संतान जो है वो सफल हो, अपने जीवन में आगे बढ़े, तो इसके लिए माता पिता को उनकी संतान के लिए कैसे उपाय करने चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं तो एक लोटा जल लें, उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।
4: और आइए अब जान लेते हैं 18 जुलाई 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 6 बजे तक चंद्र

0: माता पिता उपाय करें तो संतान को लाभ क्यों होगा, कैसे होगा? देखिए, माता पिता के ग्रह संतान से सीधे जुड़े हुए होते हैं, साथ ही साथ माता पिता की भावना भी संतान से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर माता पिता संतान के लिए उपाय करें, उसके लिए प्रार्थना करें, तो इससे संतान को तुरंत लाभ मिलता है। और माता पिता अगर प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, उपाय करें, तो संतान के जीवन में आ रही बाधाएं तुरंत दूर हो जाती हैं। यानी माता पिता की भावनाओं की वजह से, माता पिता के मंत्रों और प्रार्थनाओं की वजह से संतान का जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है।
1: और चलिए जानते हैं, जो बच्चे नर्सरी से पांचवी के बीच में हैं, उनके माता पिता क्या उपाय करें ताकि उनका भविष्य जो है, उन बच्चों की जो जीवन में सफलता है वो जल्दी से आए।
0: देखिए, अगर आपका बच्चा नर्सरी से लेकर के पांचवी कक्षा के बीच में है, पांचवी क्लास के बीच में है, तो माता पिता क्या करेंगे? बच्चे को रोज सवेरे तुलसी के दो पत्ते खिलाइएगा, रोज सुबह और शाम जब समय मिले बच्चों के साथ बैठकर, अपने बगल में बच्चे को बैठाकर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। यानी अगर आपके छोटे बच्चे के मन में, उसके दिमाग में गायत्री मंत्र पड़ेगा, तो शुरुआत से ही आपका बच्चा सही रास्ते पर चलने लगेगा।
1: और अब जानते हैं कि जो बच्चे छठवीं से दसवीं कक्षा में हैं, उनके माता पिता क्या उपाय करें?
0: अगर आपका बच्चा छठवीं से लेकर के दसवीं क्लास में है, तो माता पिता क्या करेंगे? बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइएगा, बच्चा फास्ट फूड कम से कम खाएगा, और बच्चे को एक आदत डलवाइए कि किसी भी तरीके से वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करे। और माता पिता हर शनिवार की शाम को घर में सुंदर कांड का पाठ करें, बच्चे को भी उसमें बैठाएं, और बच्चे की उन्नति की प्रार्थना अगर माता पिता करेंगे तो बच्चे के उन्नति की संभावना बन जाएगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, वाद विवाद से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतान को लेकर परेशान ना हो, परिवार में अशांति से बचाव करें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो स्कूल के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया, आप जानते हैं कि जो बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं उनके माता पिता ऐसा क्या करें ताकि उनके बच्चों को जीवन में सफलता मिले।
0: अगर आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, 12वीं की पढ़ाई कर ली है और अब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके उन्नति के लिए माता पिता क्या करेंगे? माता पिता में से कोई भी रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और प्रयास करें कि आपका बच्चा भी सूर्य को जल अर्पित करे। बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाकर हर शनिवार को अनाज का या खाने पीने की चीजों का दान करवाएं और माता पिता में से कोई भी अपने बच्चे के लिए रोज सवेरे ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करें, बच्चे को लाभ होगा।
1: और जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके माता पिता कैसा उपाय करें, क्या उपाय करें ताकि उनके बच्चे अपने करियर में सफल हों?
0: अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाने की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग के लिए प्रयास कर रहा है, तो माता पिता क्या उपाय करें कि बच्चे को सफलता मिले? अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो बच्चे को एक लोहे का छल्ला धारण करवाइएगा। शनिवार को पीपल के नीचे माता पिता में से कोई भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करेंगे, साथ में बच्चा मेहनत करेगा तो इंजीनियरिंग में सफलता मिल जाएगी।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज के सवालों के बारे में और पंडित जी द्वारा उनके दिए जाने वाले जवाबों के बारे में। तो चलिए जानते हैं, पहला सवाल पंडित जी आज का किसका लेते हैं
0: जी। आज का पहला प्रश्न पलक वाजपेयी ने हमें लिखा है, ग्वालियर से लिखती हैं। 30 जुलाई 2004 का जन्म है, 5:02 शाम को ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं काफी समय से नौकरी की तैयारी कर रही हूं, किस तरह का मेरा करियर होगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। पलक आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और धनु राशि की, महादशा मंगल की और अंतर दशा केतु की चल रही है। आप बिल्कुल सरकारी नौकरी की तैयारी करिए और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करती हैं तो शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। साल 2028 में इसके बेहतर संकेत दिखाई दे रहे हैं। करियर में सफलता पाने के लिए एक माणिक्य धारण करिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं
0: जी। अगला प्रश्न रमेश चंद्र जी ने देहरादून से लिखा है, अपनी पुत्री के लिए लिख रहे हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 5 सितंबर 2002, 4:25 शाम को देहरादून उत्तराखंड, ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने एमए किया है साइकोलॉजी में, आगे उसका करियर किस दिशा में जाएगा, कैसा जीवन रहेगा। रमेश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मकर लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। अगर आपकी बेटी प्रयास करें, तैयारी करें तो प्रशासनिक सेवा में जा सकती हैं, शिक्षा या रिसर्च के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकती हैं, ये संभावना उनके लिए बन रही है। इस कुंडली में विवाह के मामले में सावधानी रखनी चाहिए और जब भी विवाह किया जाए सोच समझ करके कुंडली मिला करके करना चाहिए। इनके बेहतर करियर के लिए एक इनको ओपल बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और इनको कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: तो इंजीनियरिंग के बारे में तो हमने जान लिया, अब जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके माता पिता क्या उपाय करें ताकि उनके बच्चे जो हैं वो मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ते रहें।
0: अगर आपका बच्चा मेडिकल क्षेत्र की तैयारी कर रहा है, मेडिकल में जाना चाहता है और आपके बच्चे को सफलता मिले, इसके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? बच्चे को सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में एक चांदी का छल्ला धारण करवाइएगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार को माता पिता में से कोई भी चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे और माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और अपनी संतान की सफलता की प्रार्थना करेंगे। आपके संतान को मेडिकल के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी।
1: और जो बच्चे प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके माँ बाप ऐसा क्या उपाय करें ताकि उनको अपने जीवन में सफलता मिले?
0: अगर आपका बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी की, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? बच्चे को सोने या तांबे का एक छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करवाएंगे। नियमित रूप से माता पिता में से कोई भी रोली मिला करके सूर्य को अर्घ देंगे, जल चढ़ाएंगे और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और अपने बच्चे की सफलता की प्रार्थना करिएगा। तो अगर आपका बच्चा मेहनत करे और माता पिता ये उपाय करें तो बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी।
1: और चलिए वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कॉरपोरेट के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जो कॉरपोरेट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके माँ बाप उनके लिए ऐसा क्या उपाय करें ताकि उन्हें अपने जीवन में सफलता हासिल हो।
0: अगर आपका बच्चा कॉरपोरेट सेक्टर की तैयारी कर रहा है, मैनेजमेंट की, बैंकिंग की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, तो माता पिता क्या करेंगे? बच्चे को रोज सवेरे घर से निकलने के पहले सौंफ खाने की आदत डलवाइएगा। माता पिता में से कोई भी नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा यानी दूब अर्पित करेंगे और रोज सुबह ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और अपने बच्चे के उन्नति की प्रार्थना करें। आपके बच्चे को सफलता मिलेगी।
1: और जो बच्चे रक्षा क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उनके माँ बाप उनके लिए क्या करें, क्या उपाय करें ताकि उन्हें अपने फील्ड में जो है वो हमेशा सफलता ही मिले।
0: अगर आपका बच्चा रक्षा क्षेत्र की, डिफेंस के सेक्टर की तैयारी कर रहा है तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, चाहे माँ चढ़ाएं चाहे पिता चढ़ाएं। और इसके बाद सुबह के समय ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप करेंगे और अपने बच्चे के सफलता की प्रार्थना करेंगे। अगर आपका बच्चा मेहनत कर रहा है और माता पिता ये उपाय करते हैं तो बच्चे को रक्षा क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा प्रश्न जो है वो पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न मुकेश कुमार सिन्हा ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 5 जून 1989 का जन्म है। 1:10 मध्य रात्रि को खड़गपुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरे विवाह के 2 साल बीत गए हैं और अब तक संतान की संभावना नहीं बनी है, तो संतान के योग कब तक बनेंगे। मुकेश जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा शनि की और अंतर दशा भी शनि की चल रही है। देखिए, संतान के योग फिलहाल बने हुए हैं और अभी से लेकर के अगले साल के फरवरी तक अगर प्रयत्न किया जाए तो आपकी पत्नी गर्भ धारण कर लेंगी, उसकी संभावना दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा करके पहन लीजिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके धारण करें और आप और आपकी पत्नी रोज सुबह भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करें 108 बार। मंत्र होगा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का निरंतर अगर जप किया जाए तो लाभ होगा।
1: गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानेंगे पंडित जी से ही आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न निहाल सोहरा ने हमें लिखा है, नीमच मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 21 नवंबर 2007 का जन्म है, 9:55 प्रातः नीमच मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं, आगे अपने पिता के साथ मिल करके व्यापार करना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। निहाल आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मीन राशि की, महादशा केतु की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। आपकी कुंडली शुद्ध रूप से व्यवसाय वाली है और व्यवसाय के क्षेत्र में ही आपको ज्यादा सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। जून 2027 के बाद आप व्यापार आरंभ कर पाएंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: 18 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप पूजा करें, उपासना करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर आप बिना सही मुहूर्त के कोई काम करते हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे। देखिए, सही मुहूर्त जो है वो उस समय के सही ग्रहों का सही प्रयोग है। सही मुहूर्त में काम करने से काम के अच्छी तरह से होने की संभावना बन जाती है। बिना सही मुहूर्त के अगर आप काम करते हैं तो लंबे समय तक उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी।
1: और गुड लक में अब जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जानते हैं 18 जुलाई 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा, रोजगार की स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 18 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और गुडलक में जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है कर्क। इनको बुध और शुक्र ग्रह का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में भावनात्मक समस्याओं से बचे रहेंगे।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है?
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर किसी टूटे हुए रिश्ते को, संबंध को फिर से जोड़ना है तो क्या करेंगे। एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए, इसमें 1 रुपए का सिक्का, चुटकी भर चावल और गुलाब का इत्र रखिए। सामान रखते समय उस व्यक्ति का नाम लेते रहिए जिससे आपको संबंध फिर से जोड़ना हो। रुमाल को बांध करके पूजा स्थान पर रख दें, 3 से 6 महीनों के अंदर आपके संबंध जुड़ जाएंगे।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: क्या आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: हाईटेक हो रहे पैदल सेना के जंगबाज, जमीनी युद्ध के लिए मिल रहे मॉडर्न ब्रह्मास्त्र, इंडियन इन्फेंट्री का कायाकल्प। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के साथ अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते हैं। कोई नकदी दान करता है तो कोई सोना चांदी और कीमती आभूषण चढ़ाता है। यहां चढ़ावे में आई हर चीज का न सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाता है बल्कि उसकी गुणवत्ता की भी जाँच की जाती है।
12: उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त यहां दिल खोलकर सोना चांदी नकदी और बहुमूल्य आभूषण दान करते हैं। हाल ही में कुछ मंदिरों में चढ़ावे और दान की राशि को लेकर सामने आए विवादों के बीच महाकाल मंदिर की सुरक्षा और दान व्यवस्था एक आदर्श मिसाल बनकर उभरी है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि यहां आने वाले चढ़ावे की एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच की जाती है।
13: बाबा महाकाल की सेवा में जो सेवार्थी लगे हुए हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ 3 लोगों की समितियां भी है। स्वर्ण का समाज के पारखी जोरिया है, वो पूरा जांच करने के बाद ही और प्रत्येक चढ़ावे की राशि का पूर्णता पारदर्शिता के साथ में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जांच होती है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद पूरी सृष्टि के ऊपर तो है, उज्जैन वासियों के ऊपर भी है और उसी के कारण प्रतिदिन मेरे बाबा के दर्शन करने लगभग 2.25 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। उज्जैन के निवासी उनकी सेवा के लिए, उज्जैन के सेवक उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ में आने पाई का पूर्णता व्यवस्थित हिसाब होता है।
12: मंदिर समिति के अनुसार चढ़ावे में मिले सोने और चांदी के आभूषणों की जांच के लिए सुनारों की 3 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम है। ये टीम सोने चांदी की शुद्धता, गुणवत्ता और कैरेट की बारीकी से जांच करती है। जांच पूरी होने के बाद उसका लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। दानदाता को मंदिर समिति की ओर से रसीद भी जारी की जाती है जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।
14: देखिए मैं 2020-21 से मैं यहाँ मूल्यांकन समिति में काम कर रहा हूँ और मुझे ये देखने में आया है कि कोई छोटी मोटी धातु कभी कोई गलती से कोई चढ़ा जाता है वही आती है, लेकिन जो बड़े मुकुट होते हैं, कुंडल होते हैं, तो वो तो सब असली पाए जाते हैं और जो नकली होते हैं वो या तो कोई ऐसे फ्रॉड जेलर्स के यहाँ से परचेसिंग कर लेता है श्रद्धालु तो आ जाती है, या फिर अन्य कोई खोया पाया विभाग से जो प्राप्त होती है, जैसे किसी का गुम हो जाता है, कोई नकली पायल पहन के आया, कोई नकली सामग्री रहती है, तो इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है नकली का। वहां पर जितने भी धातु आती है लगभग असली ही आती है।
12: मंदिर में दान से जुड़ी हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। आभूषणों की जांच के दौरान मंदिर समिति के प्रभारी, संबंधित कर्मचारी और डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी मौजूद रहते हैं। जांच पूरी होने के बाद दान की चीजों को मंदिर के सुरक्षित खजाने यानी स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया जाता है। साथ ही उसका पूरा विवरण कंप्यूटर और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। दान व्यवस्था को और आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही मंदिर में हाईटेक मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन की मदद से सोने और चांदी के असली या नकली होने की तुरंत पहचान की जा सकेगी। इसके बावजूद सुनारों की विशेषज्ञ टीम पहले की तरह जांच का कार्य जारी रखेगी।
15: स्वर्ण और जो रजत के आभूषण हैं, उनका ऑन द स्पॉट जो है वो हम उसको वेरीफाई कर सके, उसमें शुद्धता का परसेंट ऑन द स्पॉट नाप चुके। इसके लिए हम जो है अभी वर्तमान में जो बहुत ही अच्छी कैरेटोमीटर जिसको मशीन बोलते हैं वो लेकर आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो शोरूम वगैरह है सुनार इसका प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम तत्कालिक रूप से जो है वो सोने चांदी का टंच पता कर सकते हैं कि जो दान में दी गई सामग्री है वो खरी है कि खोटी है।
12: हाल के दिनों में कुछ मंदिरों में दान को लेकर सामने आए विवादों के बीच महाकाल मंदिर प्रशासन यह आश्वस्त करता है कि यहाँ पारदर्शिता और सुरक्षा के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। भक्तों की आस्था और उनके द्वारा दिए गए दान का यहाँ पूरा सम्मान किया जाता है और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
16: क्या आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
17: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
18: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
19: अच्छी और

0: सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: हाईटेक हो रहे पैदल सेना के जंगबाज, जमीनी युद्ध के लिए मिल रहे मॉडर्न ब्रह्मास्त्र, इंडियन इन्फेंट्री का कायाकल्प। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा का आज तीसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान, भक्तों ने किए दर्शन पूजन। अंतरिक्ष में भारत लगाएगा एक और बड़ी छलांग, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 11:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। पूर्व अंडर-17 विश्व चैंपियन नेहा सांगवान के नाम कुश्ती में एक और बड़ी उपलब्धि, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में जीता गोल्ड मेडल, 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जीता खिताब। द्रास में सेना ने चलाया टाइगर हिल अभियान, सैन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के

प्रधानमंत्री ने किया हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। जालंधर में पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात, 5,470 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। जालंधर कैंट स्टेशन से प्रधानमंत्री ने नई रेल सेवाओं को दिखाई हरी झंडी, करटोली पंजाब अंबाला और जालंधर वाराणसी के बीच ट्रेन रवाना की। जींद के एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ के विकास कार्यों का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण, रैली को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग और धुएं का पता लगाने वाले लगाए गए हैं कई सुरक्षा सिस्टम। आम इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की तरह ये ट्रेन ऊपर लगी बिजली की लाइनों से पावर नहीं लेती। जींद सोनीपत रूट पर 11 स्टेशन्स पर रुकेगी हाइड्रोजन ट्रेन, करीब 2 घंटे का होगा जींद से सोनीपत का सफर। 75 किलोमीटर प्रति घंटे हाइड्रोजन ट्रेन की रफ्तार, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन में लगे हैं 10 डिब्बे, करीब 2600 यात्री कर सकेंगे सफर, दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन में हुई शुमार। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, देश भर के 75 रेलवे स्टेशन की बदली सूरत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया पुनर्विकास। भारत और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर सकारात्मक चर्चा, 2030 की शुरुआत में E10 श्रृंखला की हाई स्पीड ट्रेन उपलब्ध कराएगा जापान। तेजी से चल रहा है इस परियोजना का निर्माण कार्य, 2027 में परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा इसका पहला खंड। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार पारी के सोमेसर स्टेशन का शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। करीब 12.5 करोड़ की लागत से पूरी की गई है सोमेसर स्टेशन की परियोजना, 1453 वर्ग मीटर में फैला है स्टेशन परिसर। पूरी तरह बदली गुजरात के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण गोधरा जंक्शन की सूरत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ कायाकल्प। करीब 6 करोड़ की लागत से हुआ है स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम, यात्रियों के सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट भी शामिल। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम ने पुनर्विकसित फतेहपुर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झारखंड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, नए रंग रूप में नजर आया स्टेशन। हैदराबाद में हाईटेक सिटी अमृत भारत रेलवे स्टेशन का हुआ उद्घाटन, रामचंद्र राव ने समारोह में हिस्सा लिया। जगन्नाथ धाम में आस्था का उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के दिव्य दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जयघोष से गूंज रही है पूरी नगरी, भक्तों का विश्वास है प्रभु के दर्शन मात्र से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे गुंडीचा मंदिर में, आज होंगे विराजमान। रथ यात्रा के दूसरे दिन तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे, भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान माना जाता है गुंडीचा मंदिर। 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे, इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा, दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए

0: शानदार खबर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आया रिकॉर्ड उछाल। लगातार दूसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ोतरी, 675 अरब डॉलर के पार पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार, भारत की गोल्ड रिजर्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, रखी आधारशिला। टू व्हीलर से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों पर भी अब लगेगा 100 रुपए एंट्री टैक्स, बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले टू व्हीलर पर लागू होगा नया फैसला। बिहार की गया में बोरवेल में फंसे 3 साल के बच्चे का सफल रेस्क्यू करने वाली एनडीआरएफ टीम को वाहवाही मिली, जवानों को किया जाएगा सम्मानित। देहरादून में अग्निवीर संवाद कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं से बातचीत की। सीएम ने युवाओं के साथ खिंचवाई सेल्फी, बोले उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सैनिकों उनके परिवारों का सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का शामली का दौरा, करीब 618 करोड़ की 90 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता का जिक्र किया, बोले साथ मिलकर प्रदेश को विकास की ऊंचाई तक ले जाएंगे। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, मऊ से कोलकाता के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 22 जुलाई से 24 सितंबर तक मिलेगी सुविधा। देश भर में घोषित हुए नीट यूजी परीक्षा परिणामों में पंजाब के मनसा जिले की बेटी भाविका ने शानदार प्रदर्शन किया, ऑल इंडिया 56वीं रैंक हासिल की। शानदार सफलता के बाद भाविका को बधाई देने वालों का तांता लगा, परिवार ने उपलब्धि पर जताया गर्व। नीट यूजी परीक्षा परिणामों के बाद जयपुर में भी खुशी का माहौल, उपलक्ष्य गोयल ने ऑल इंडिया 3री रैंक हासिल की। नागपुर के सौम्य धनराज बड़ोले ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 77 हासिल की, सौम्या के घर खुशी की लहर। नीट परीक्षा में 676 अंक लाकर झारखंड टॉपर बने ज्ञानेंद्र गर्व, सफलता पर परिवार गदगद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल रात गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन पहुंचे, अपनी बहन पुष्पा चौधरी से मुलाकात कर हालचाल जाना। सीएम योगी आज संभल को देंगे 550 करोड़ रुपए की सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। संभल का धार्मिक और ऐतिहासिक गौरव दोबारा स्थापित करने की कोशिश, 300 करोड़ से बनेगा 68 तीर्थों का 24 कोसी परिक्रमा मार्ग। यूपी सरकार की नीतियों से लेदर एक्सपोर्ट को नई उड़ान, निर्यात निवेश और रोजगार बढ़ा, कानपुर रीजन से 7000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट। बच्चों में मोबाइल देखने की लत छुड़ाने के लिए प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में शुरू हुआ इलाज, हर महीने आ रहे हैं औसतन 8 मामले। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद हुआ जल भराव, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ प्रभावित। अचानक आई बाढ़ से लाहौल स्पीति में उफान पर तांदी, उदयपुर मार्ग पर रंगबे नाला, तेज बहाव के साथ बहता हुआ दिखा मलबा। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर छोड़ी के निकट टूटकर सड़क पर आया पहाड़ का हिस्सा, सुरक्षा कर्मी तैनात, यात्रियों को सुरक्षित आर पार भेज रहे हैं जवान। हिमाचल में मॉनसून जल्द पकड़ेगा रफ्तार, मौसम विभाग ने भारी बारिश का जताया अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। गोवा में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा, एहतियातन तौर पर प्रशासन अलर्ट। पंढरपुर में भगवान विठल को भक्तों की अनोखी भेंट, भगवान के चरणों में अर्पित की सोने की पादुकाएं। करीब 57 लाख बताई जा रही है स्वर्ण पादुकाओं की अनुमानित कीमत, दान के दौरान भक्त ने अपना नाम गोपनीय रखने की रखी है शर्त। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे भक्तों ने बनाया एक और रिकॉर्ड, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, 19 अप्रैल से शुरू हुई थी पवित्र चार धाम यात्रा। मॉनसून का दौर शुरू होने के बावजूद बद्रीनाथ यात्रा की रफ्तार बरकरार, पल पल बदलते मौसम के बीच भी आस्था भारी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा मार्ग का जायजा लिया, श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर जोर दिया। कांवड़ मेले को सुरक्षित और सुगम बनाने को लेकर हरिद्वार में इंटरस्टेट बैठक, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अधिकारियों के अलावा आईटीबीपी, एसएसबी, एनडीआरएफ के आला अधिकारी हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 83 लोगों का अनोखा संयुक्त परिवार, 6 पीढ़ियां साथ रहती हैं। परिवार में 43 पंजीकृत मतदाता, 20 बेटे और बहुएं शामिल, परिवार की कहानी, आपसी एकता है सबसे बड़ी दौलत। खेती से लेकर कारोबार तक हर काम मिलकर करता है परिवार, आज भी परंपराओं के साथ जी रहा है परिवार। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, ओकुहारा ने दिया वॉकओवर, अब चाइना के चेन युफेई से खेलेंगी मैच। जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी सिंधु, इससे पहले 2011 में साइना नेहवाल ने जापान ओपन के सेमीफाइनल में किया था प्रवेश। इंग्लैंड के खिलाफ 65 रन की पारी खेलकर विराट ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, भारत की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बने विराट कोहली। फीफा इस बार देखा इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि, फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन को मिलेंगे 5,000 करोड़, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले हर देश को मिलेंगे करीब 120 करोड़। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ दी जाएगी चैंपियनशिप रिंग, जिसकी एक तरफ बनी होगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। इमरान हाशमी के फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज, आवारापन 2 से पहले 31 जुलाई को फिल्म आवारापन फिर से होगी रिलीज। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर रिलीज, 7 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी फिल्म। मराठी सिनेमा में कदम रख रही हैं एक्ट्रेस अदा शर्मा, सच्ची घटनाओं पर आधारित अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर चर्चा में हैं अदा। कैटरीना कैफ के 43वें बर्थडे पर विक्की कौशल ने किए खास इंतजाम, प्यार भरे अंदाज में कैटरीना को किया बर्थडे विश, फोटो हुई वायरल। पैनोरमा स्टूडियोज और सिनेपोलिस इंडिया ने दिल्ली यूपी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की, धमाल 4 और बेबी डू डाई डू के साथ सहयोग की शुरुआत। यूरोप की गर्मी से राहत का अनोखा जुगाड़, क्रोएशिया के ट्रोगिर के पास अंडर वाटर म्यूजियम में डुबकी लगाकर पर्यटक गर्मी से बच रहे हैं। समंदर में बना दुनिया का अनोखा धार्मिक म्यूजियम, यहां 52 मूर्तियों और दुनिया का एकलौता अंडर वाटर वे ऑफ द क्रॉस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिना स्कूबा टैंक भी कर सकते हैं सैर, पानी में तैरने वाले मास्क और सांस लेने वाली ट्यूब के सहारे नए और गैर तैराक पर्यटक भी समंदर के नीचे का देख सकते हैं नजारा। 7 मीटर ऊंची यीशु मसीह की प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, समुद्र में 8 से 9 मीटर की गहराई पर स्थापित विशाल प्रतिमा देखने के लिए दुनिया भर से पहुंच रहे हैं लोग। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और जंगलों की आग के बीच क्रोएशिया का अंडरवाटर म्यूजियम लोगों के लिए राहत की जगह बन चुका है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: क्या आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: College has been out of reach for too many for too long. WGU changes that. We're an online nonprofit university made for anyone overlooked by traditional colleges. This is education without limits. Learn more at wgu.edu.
4: Tune In's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: ब्रिटेन के विप्सनेट जू में एक या दो नहीं बल्कि 7 नन्हे चीता शावकों का जन्म हुआ है और इनकी मासूम अटखेलियां और मां के साथ इनका प्यार हर किसी का दिल जीत रहा है। वैसे वाइल्ड लाइफ की दुनिया के लिए इन शावकों का जन्म बहुत बड़ी उम्मीद है। ये शावक नॉर्दर्न चीता प्रजाति के हैं जो बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। पूरी दुनिया में अब सिर्फ 6,500 चीते ही बचे हुए हैं।

माँ के कदमों से कदम मिलाते, कभी उछलते कभी दौड़ते, तो कभी माँ से लिपटकर दुलार करते इन नन्हे मेहमानों ने पहली बार दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नजारा ब्रिटेन के विप्सनेट जू का है, जहां 18 मई को अमीरा नाम की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया, तो वहीं 23 मई को जारा ने 3 शावकों को जन्म दिया। अब ये सातों शावक अपनी मां के साथ खुले बाड़े में मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। कभी मां की पीठ पर चढ़ने की कोशिश, कभी भाई बहनों के साथ दौड़ लगाने की होड़, इन मासूम तस्वीरों के पीछे एक बड़ी उम्मीद भी छिपी है। दरअसल ये शावक नॉर्दर्न चीता प्रजाति के हैं, जो बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। पूरी दुनिया में इनकी संख्या करीब 6,500 रह गई है। ऐसे में इन शावकों का जन्म संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

0: विप्सनेट जू का संचालन करने वाली संस्था अफ्रीकी देश जाम्बिया में चीता संरक्षण पर भी काम कर रही है। करीब 3 दशक बाद वहां चीतों को फिर से जंगल में बसाने की तैयारी चल रही है ताकि जंगलों में इनकी रफ्तार और दहाड़ एक बार फिर लौट सके। फिलहाल अपनी माँ के साथ ये नन्हे शावक अपनी आजादी और बचपन का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ क्यूट तस्वीरें नहीं है, ये वन्य जीव संरक्षण की एक बड़ी खुशखबरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: दुनिया में खुशियां बांटना भी एक खूबसूरत सेवा है। मेक्सिको सिटी की सड़कें इस बात की गवाह बनी जहां हर साल जोकर यानी क्लाउन अपनी कला के साथ श्रद्धा जताने सड़कों पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हंसी बांटने वाले कलाकार अपने विश्वास और परंपरा को निभाने के लिए हजारों की संख्या में एक साथ जुटते हैं। देखिए रिपोर्ट।
0: चेहरे पर चटक लाल रंग, बड़ी सी मुस्कान, दिल में श्रद्धा और कदमों में विश्वास, ये कोई सर्कस का मंच नहीं बल्कि आस्था का रंगमंच है। रंग बिरंगे कपड़ों में मैक्सिको सिटी की सड़कों पर जब एक साथ सैकड़ों क्लाउन उतरे तो हर तरफ खुशी, उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम दिखाई दिया। हर साल की तरह इस बार भी वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की सालाना यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली। रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे क्लाउन वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की प्रतिमा और तस्वीरें लेकर मेक्सिको के सबसे बड़े धार्मिक स्थल ग्वाडालूपे बेसिलिका पहुंचे। कलाकारों की इस अनोखी यात्रा में किसी ने करतब दिखाए, किसी ने गेंदों से जुगलबंदी की, तो किसी ने अपनी मासूम अदाओं से बच्चों और बड़ों दोनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। माहौल ऐसा था जहाँ मनोरंजन और श्रद्धा एक साथ नजर आई।
2: El motivo de la peregrinación es porque se fundó el Club Payasos Mexicanos de Circo en 1979. En el primer año del aniversario se propuso festejarlo con una peregrinación, dando gracias por los favores recibidos durante el año.
0: चर्च की चौखट पर पहुंचते ही पवित्र जल से जब इन मुस्कुराते चेहरों पर आशीर्वाद की बूंदें पड़ी तो इनका विश्वास और मजबूत हुआ, क्योंकि कला जब आस्था से जुड़ जाती है तो हर मुस्कान इबादत बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: हाईटेक हो रहे पैदल सेना के जंगबाज, जमीनी युद्ध के लिए मिल रहे मॉडर्न ब्रह्मास्त्र, इंडियन इन्फेंट्री का कायाकल्प, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा का आज तीसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान, भक्तों ने किए दर्शन पूजन। अंतरिक्ष में भारत लगाएगा एक और बड़ी छलांग, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भरेगा उड़ान। पूर्व अंडर 17 विश्व चैंपियन नेहा सांगवान के नाम कुश्ती में एक और बड़ी उपलब्धि, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में जीता गोल्ड मेडल, 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जीता खिताब। द्रास में सेना ने चलाया टाइगर हिल अभियान, सैन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया अभियान, लामिचन व्यू पॉइंट पर फहराया गया तिरंगा। पिच ब्लैक में दिखेगी भारतीय सेना के राफेल की ताकत, ऑस्ट्रेलिया में 20 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगा अभ्यास, युद्ध जैसे हालातों में फ्लाइंग का मिलेगा मौका।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर है और इस फ्यूचर की तरफ एक और कदम भारत ने बढ़ा लिया है। भारत में क्लीन एनर्जी से चलने वाली पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी है। बीते सालों में भारतीय रेलवे ने सिर्फ कनेक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाया बल्कि रफ्तार, सुविधाओं और तकनीक के मामले में अपनी ट्रेन्स को भी नया स्वरूप दिया है और इसी कड़ी में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन नमो ग्रीन एक्सप्रेस को पटरी पर उतारा गया है। जैसे अब तक डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन आप देखते रहे हैं, अब ये ट्रेन हाइड्रोजन की ताकत से ट्रैक पर दौड़ेगी और खास बात यह भी है कि यह ट्रेन मेड इन इंडिया है। पीएम मोदी ने कल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अभी हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच यह ट्रेन चलाई जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसी है भारत की पहली ग्रीन एक्सप्रेस।

1853 और तारीख थी 16 अप्रैल। बॉम्बे से 14 कोच और 400 पैसेंजर्स के साथ भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम इंजन्स ने उस ट्रेन को खींचा था। उस ट्रेन ने लगभग 57 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी में एक युग का सफर तय किया था। और देखिए, आज वक्त का पहिया उस रेल के सफर को कहां तक ले आया है। बीते 175 सालों में भारत की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन दोनों का रंग रूप हमारी सोच की सरहदों से काफी आगे निकल गया है। 20वीं शताब्दी का सूरज उगने के साथ हमारी रेल की कहानी में कई अलग अलग माइलस्टोन्स आए हैं, लेकिन आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन यात्रियों की सेवा के लिए रवाना हो गयी। ये भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रेन है। ये ट्रेन डीजल या कोयले से नहीं चलती और इसे लगातार ओवरहेड बिजली लाइन से भी ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं। ट्रेन में लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाते हैं, जिसकी ताकत से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती है।

0: नमो ग्रीन ट्रेन 10 डिब्बों वाली ट्रेन है। इसमें 8 यात्री डिब्बे और 2 इंजन वाली पावर कार। इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, डीसी एयर कंडीशनिंग और आरामदायक सीटें हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर वाला महाशक्तिशाली इंजन लगा है, जिसके चलते इसे दुनिया की सबसे ताकतवर ग्रीन ट्रेन भी कहा जा रहा है।
1: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: भारत की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा की जींद और सोनीपत के बीच चलाया जा रहा है। ये ट्रेन रोज सुबह 7:40 पर जींद जंक्शन से रवाना होगी और सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा होगा। सोनीपत से ये ट्रेन सुबह 10:40 पर वापस जींद के लिए रवाना होगी।
2: एशिया की सबसे पहली ट्रायल ट्रेन है बेसिकली, जिसके ट्रायल भी हुए हैं और सक्सेसफुली भी है। अगर ट्रायल तो कई कंट्रियां कर रही है, लेकिन सक्सेसफुली 2-4 टोटल, आज ये पांचवी वर्ल्ड की 5वीं कंट्री है जो सक्सेसफुली मूव करेगी।
0: इस ट्रेन को ग्रीन ट्रेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके चलने से धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इससे मुख्य रूप से भाप और गर्मी निकलती है। हाइड्रोजन इसका ईंधन है और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन पावर जनरेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चलिए आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन किस तकनीक से चलती है। यूँ समझिए कि ट्रेन के भीतर ही उसे चलाने वाला पावर प्लांट लगा है। इस पावर प्लांट को चलाने में 4 मुख्य पार्ट्स अलग अलग भूमिका निभाते हैं। पहला है हाइड्रोजन टैंक, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इस टैंक तक हाइड्रोजन पहुंचाने के लिए जींद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट बनाया गया है। दूसरा पार्ट है फ्यूल सेल डिवाइस, जहां केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तीसरा पार्ट है बैटरी, जहां पैदा की गई बिजली स्टोर होती है। और चौथी है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसकी ताकत से ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। अब आते हैं ट्रेन को चलाने की प्रक्रिया पर। के लिए सबसे पहले ट्रेन के हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक में हाई प्रेशर से ग्रीन हाइड्रोजन भरी जाती है। इसके बाद ये हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर से फ्यूल सेल में भेजी जाती है, जबकि दूसरी ओर से ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करती है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन से पानी, भाप और बिजली पैदा होती है। इस प्रक्रिया में पैदा हुई बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है, भाप वातावरण में निकल जाती है और पानी नीचे की ओर से निकल जाता है। फिर बैटरी से चार्ज लेकर इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन को रफ्तार दे देती है।
3: हाइड्रोजन जो है वो सीधा बिजली पैदा करता है। एक जो उसको एक टेक्नोलॉजी का है जिसको कहते हैं फ्यूल सेल, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूल सेल जो होता है एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, उसमें एक तरफ से हाइड्रोजन डालते हैं और दूसरी तरफ से हवा डालते हैं, मतलब ऑक्सीजन बेसिकली। जो दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है, उसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप जानते हैं, पानी बनता है और साथ में कुछ बिजली पैदा होती है। और ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन या फ्यूल सेल को आप एक के ऊपर एक रखते जाएं तो वोल्टेज ऐड होता रहता है, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज। अगर उनको पैरेलल में लगाए तो करंट बढ़ता है, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर ऐसे बढ़ता है। तो जो फ्यूल सेल स्टैक डिजाइन किया जाता है तो देखना पड़ता है कि कितनी पावर चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, पावर बेसिकली। तो उससे सीधा बिजली पैदा होती है, डीसी बिजली, डीसी इलेक्ट्रिसिटी। और उसको फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके उसको उसमें हेर फेर करके फिर आप ट्रैक्शन मोटर में बिजली भेजते हैं, तो इससे गाड़ी चलती है।
0: इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे चलाने की पूरी प्रक्रिया में कोई धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी और रूप में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। यानी इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी। डीजल ट्रेनों की तुलना में ये जीरो एमिशन यानी शून्य उत्सर्जन वाली है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। यानी ये ट्रेन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। इस ट्रेन को चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है, जबकि टाटा एडवांस सिस्टम्स ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। यानी ये ट्रेन मेक इन इंडिया मिशन का एक और कमाल है।
1: भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।
0: क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होती है, इसलिए नमो ग्रीन ट्रेन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें फायर अलार्म, आग बुझाने के लिए आपातकालीन व्यवस्था और हाइड्रोजन गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। अगर हाइड्रोजन रिसाव होता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है और सुरक्षा उपाय सक्रिय हो जाते हैं। इस शानदार हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन की रफ्तार से ग्रीन ट्रेन्स को पटरी पर दौड़ा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। तभी तो इसे इंडियन रेल का ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। जींद से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जब पहली नमो ग्रीन ट्रेन जींद से रवाना हुई तो इसमें पहली बार सफर करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रेल में तो जाने कितनी बार बैठे, लेकिन ये मौका खास था, यादगार था। देखिए,
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
6: आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से जो सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात है। और इसका जो है क्रेडिट जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है।
7: और पहले का स्टेशन और आज के स्टेशन में कितना अंतर है। ये प्लेटफार्म हमारे जो लो लेवल के हुआ करते थे, चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, अब ये हमारे हाई लेवल रेल मतलब डिब्बे के बराबर के वो बन गए हैं प्लेटफार्म, तो हमें बहुत सहूलियत दी है। ये स्टेशन की हालात देख रहे हैं, कितने शेड लग गए, कितना FOB बना है, बहुत चौड़ा 12 मीटर का FOB बना है, एक्सकलेटर लगा है, लिफ्ट लगी है, तो सभी को इतनी सहूलियत दे दी हमारे जींद को प्रधानमंत्री का, हम धन्यवाद करते हैं।
8: जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रांगेस्ट ट्रेन है, इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है, इसका डिजाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई, हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है।
9: आई वुड लाइक टू से दैट इट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव दैट बिकॉज इट इज द ओनली ट्रेन दैट रिलीजेस वाटर वेपर्स बाय टेकिंग हाइड्रोजन गैस एंड दिस इनिशिएटिव इज टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन।
4: डेटा ये बताता है कि भारतीय रेल नेटवर्क के 99% रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और ऐसे में क्या हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? स्पीड, मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट के मामले क्या ये पहले से मौजूद ट्रेनों से बेहतर है? आखिर क्यों हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेल नेटवर्क के लिए जरूरी थी? इन तमाम सवालों का जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
10: न डीजल, न कोयला, न बाहर से कोई बिजली, इस ट्रेन को चलने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बना देता है, वैसे ही ये तकनीक हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और पटरी पर ट्रेन को सरपट दौड़ाएगी। और न केवल दौड़ाएगी बल्कि दूसरी तकनीक से चलने वाले इंजन की तुलना में ज्यादा दूर तक दौड़ाएगी। वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेन को तैयार करने वाली टीम के चीफ इंजीनियर के मुताबिक डीजल और दूसरे फ्यूल की तुलना में हाइड्रोजन की उतनी ही मात्रा ज्यादा पावर सप्लाई कर सकती है।
3: हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो है, जो उसका जो हीट होता है जलने पर जो पैदा होती है, वो काफी हाई होती है, काफी ऊंचा होता है। तो मैं जैसे कंपेयर करूं डीजल से, मान लीजिए तो डीजल से जितनी बिजली पैदा होगी या जितनी दूर ट्रेन जाएगी, वैसी ट्रेन हाइड्रोजन से उसकी दुगनी जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एनर्जी ऑफ कम्बशन ज्यादा होती है।
10: भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया है। अब अगला कदम इसके ऑपरेशन को किफायती बनाना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करना दूसरे माध्यमों की तुलना में महंगा है। सारी दुनिया में इसकी कीमत को कम करने पर काम किया जा रहा है, नए प्रयास हो रहे हैं।
3: देखिए, जो दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो काम हो रहा है, वो एक होली ग्रेल बना रखा है कि हमें $1 प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन अगर बनना शुरू हो जाए तो ये एक वायबल एनर्जी का सोर्स है या एनर्जी स्टोरेज का सोर्स है। तो अभी तो $1 प्रति किलोग्राम तो बहुत दूर है।
10: के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जब भारतीय ट्रेन नेटवर्क का 99% से ज्यादा रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो ऐसे में तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऑपरेशनल खर्च वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि इसकी मुख्य रूप से दो वजह हैं। पहली है दुनिया के सामने मेक इन इंडिया और भारत की टेक्निकल एक्सपर्टीज का डेमो। दुनिया में अभी केवल 3-4 देशों के पास ही हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की क्षमता है और वहाँ भी ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में भारत की हाइड्रोजन तकनीक और क्षमता पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
3: प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, वो सस्ते महंगे के लिए नहीं किया, वो तो टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन था कि भारत भी वो कर सकता है जो जर्मनी ने और जापान ने और चाइना ने किया है। तो इसके तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने ऐसा टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी ट्रेन बनाई। छोटे मोटे मॉडल तो बहुत लोग बना चुके हैं।
10: साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिन रूट्स पर बिजली की लाइन खींचना मुश्किल है, वहाँ ये ट्रेन कामयाब होगी। यही वजह है कि जींद और सोनीपत रूट की पहली ट्रेन केवल एक डेमो है। सरकार की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत देश के अलग अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूट्स पर
4: दरअसल दुनिया इस समय तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ईंधन की चर्चा लंबे वक्त से हो रही है। जब फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है तो उससे ऊर्जा बनती है और वेस्ट के रूप में केवल भाप यानी पानी निकलता है, और यही वजह है कि इसे भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है, और यही वजह है कि कई देश इस पर काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें हाइड्रोजन तकनीक अपनाने वाले देशों में जापान सबसे आगे है। यहाँ हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं और सरकार इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए लगातार निवेश भी कर रही है। कई शहरों में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बसें भी सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बन चुकी हैं। तो वहीं दक्षिण कोरिया की बात करें तो हाइड्रोजन ने अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति का इसे अपना हिस्सा बना लिया है। हाइड्रोजन बसें, ट्रक और निजी वाहन बड़ी संख्या में यहां उपयोग में लाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हाइड्रोजन वाहनों और फ्यूलिंग स्टेशंस को बड़ा नेटवर्क तैयार करना है ताकि परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। वहीं जर्मनी की बात की जाए तो इसी तरह जर्मनी में भी हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन्स परिचालन में हैं। ये ट्रेन्स बिना डीजल के लंबी दूरी तय करती हैं और केवल पानी छोड़ती हैं। जिन रेल मार्गों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन रही हैं। आपको बता दें चाइना में अब हाइड्रोजन तकनीक पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई शहरों में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और भारी ट्रक संचालित किए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षेत्रों में भी हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल अब बढ़ता जा रहा है। वहीं उधर अमेरिका में भी हाइड्रोजन तकनीक का इस्तेमाल परिवहन के साथ साथ बिजली उत्पादन और उद्योगों में भी किया जा रहा है। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में हाइड्रोजन कारों के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। वहीं फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश हाइड्रोजन बसें चला रहे हैं। यूरोपीय संघ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। लक्ष्य है कि भारी उद्योग, जहाजरानी, रेल और विमानन जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन की जगह स्वच्छ हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। और अब भारत की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन क्रांति की दिशा में तेजी से भारत ने कदम बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है लेकिन यह पहला कदम नहीं है। इससे पहले देश में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों के परीक्षण हो चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड तकनीक में भारत कहाँ तक आगे बढ़ा है।

0: हरियाणा के जींद से पानीपत के बीच इस नीली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ ही हिंदुस्तान में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में नया इतिहास रचा गया है। फिलहाल भले ही केवल एक सेक्शन पर ये ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका विस्तार होने के पूरे आसार है। और केवल रेल सेवा में ही नहीं, बल्कि सफर के दूसरे साधनों में भी हाइड्रोजन के भरपूर इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ रही हैं। चाहे बस हो या ट्रक या फिर वाटर टैक्सी ही क्यों ना हो, हर तरह से सफर को सुगम बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने जा रहा है, क्योंकि भारत में इसकी तैयारी तो पहले से ही हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाने की भी पहल की जा चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इसी साल 2026 में 15 मई से सेंट्रल विस्टा एरिया में हाइड्रोजन फ्यूल आधारित शटल बस सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच इस बस सेवा को इसीलिए शुरू किया गया ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी और पेट्रोल डीजल CNG की बचत होगी और राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। इससे पहले पुणे की कंपनी ने 2021 में हाइड्रोजन से चलने वाली बस का विकल्प पेश किया था। न पेट्रोल की जरूरत, न डीजल डलवाने का टेंशन, केवल हवा और हाइड्रोजन की जरूरत, और चल पड़ेगी ये बस। इस खास तरह की बस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर काम करने वाली एक लैब सेटियंट लैब्स ने तैयार किया। बताया जा रहा है कि भारत में लॉन्च की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। इसी तर्ज पर दिसंबर 2025 में वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी को भी हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि जिस हाइड्रोजन ईंधन से अब ट्रेन चल रही है उसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या और ये किस तरह से काम करता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से बैटरी काम करती है, ठीक उसी तरह फ्यूल सेल भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और हवा की ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया होती है। इस क्रिया से सीधे बिजली बनती है जो ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। यानी फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा को इस्तेमाल करके बस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाता है। इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी बाहर आता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और बड़ा फायदा रिफ्यूलिंग में है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से देखें तो बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में इसे रिफ्यूल करना आसान है, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में रिफ्यूल हो जाता है, जबकि बैटरी वाली बसों को चार्ज करने में घंटों लगते हैं। असल में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने और इस्तेमाल होने में पॉल्यूशन कम होता है, इसीलिए इसे लो कार्बन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है, जिससे वातावरण को बेहतर करने में मदद मिलेगी और पेट्रोल डीजल की तुलना में लागत भी घटेगी और तो और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में भी मदद मिलेगी। आगे का वक्त पेट्रोल डीजल रहित वाहनों का है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लोकप्रियता तो तेजी से रफ्तार पकड़ ही रही है। ऐसे में अब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें, ट्रक और वाटर टैक्सी भी बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रही हैं। फिलहाल ये ट्रांसपोर्ट की वो तस्वीर है जो न केवल उम्मीद जगा रही है, बल्कि सुनहरे भविष्य की कहानी भी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से.
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
7: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स. सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन.
8: पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा का आज तीसरा दिन. भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान, भक्तों ने किए दर्शन पूजन. अंतरिक्ष में भारत लगाएगा एक और बड़ी छलांग. देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 11:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भरेगा उड़ान. जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची भारतीय शटलर पीवी सिंधु. चाइना की वर्ल्ड नंबर 4 चेन युफेई को 7 बाद दी मात, 2 बाद खेलने जा रही हैं वर्ल्ड टूर इवेंट का फाइनल. पूर्व अंडर 17 विश्व चैंपियन नेहा सांगवान के नाम कुश्ती में एक और उपलब्धि. बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में जीता गोल्ड मेडल, 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जीता खिताब. द्रास में सेना ने चलाया टाइगर हिल अभियान, सैन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया अभियान. लामेचन व्यू पॉइंट पर फहराया गया तिरंगा. पिच ब्लैक में दिखेगी भारतीय सेना की राफेल की ताकत. ऑस्ट्रेलिया में 20 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगा अभ्यास. युद्ध जैसे हालातों में फ्लाइंग का मिलेगा मौका.

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि माता पिता ऐसे कौन से उपाय करें जिससे उनके बच्चों की उन्नति हो सके। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जुलाई 2026, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 6 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 11:59 तक राहु काल का समय, प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको ये बता रहे हैं कि माता पिता के उपाय करने से, माता पिता के प्रयास करने से संतान को सफलता कैसे मिल सकती है। पहला प्रश्न यही है कि अगर माता पिता उपाय करें तो संतान को लाभ क्यों होगा, कैसे होगा। देखिए, माता पिता के ग्रह संतान से सीधे जुड़े हुए होते हैं, साथ ही साथ माता पिता की भावना भी संतान से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर माता पिता संतान के लिए उपाय करें, उसके लिए प्रार्थना करें, तो इससे संतान को तुरंत लाभ मिलता है। और माता पिता अगर प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, उपाय करें, तो संतान के जीवन में आ रही बाधाएं तुरंत दूर हो जाती हैं। यानी माता पिता की भावनाओं की वजह से, माता पिता के मंत्रों और प्रार्थनाओं की वजह से संतान का जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर आपका बच्चा नर्सरी से लेकर के 5वीं कक्षा के बीच में है, 5वीं क्लास के बीच में है, तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को रोज सवेरे तुलसी के 2 पत्ते खिलाइएगा, रोज सुबह और शाम जब समय मिले बच्चों के साथ बैठकर अपने

का सही रास्ते पर चलने लगेगा। अगर आपका बच्चा छठवीं से लेकर के दसवीं क्लास में है तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइएगा, बच्चा फास्ट फूड कम से कम खाएगा और बच्चे को एक आदत डलवाइए कि किसी भी तरीके से वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करे और माता पिता हर शनिवार की शाम को घर में सुंदर कांड का पाठ करें, बच्चे को भी उसमें बैठाएं और बच्चे की उन्नति की प्रार्थना अगर माता पिता करेंगे तो बच्चे के उन्नति की संभावना बन जाएगी। मेष राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, वाद विवाद से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतान को लेकर परेशान ना हो, परिवार में अशांति से बचाव करें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, बारहवीं की पढ़ाई कर ली है और अब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो उसके उन्नति के लिए माता पिता क्या करेंगे, माता पिता में से कोई भी रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और प्रयास करें कि आपका बच्चा भी सूर्य को जल अर्पित करे। बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाकर हर शनिवार को अनाज का या खाने पीने की चीजों का दान करवाएं और माता पिता में से कोई भी अपने बच्चे के लिए रोज सवेरे ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करें, बच्चे को लाभ होगा। अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाने की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग के लिए प्रयास कर रहा है तो माता पिता क्या उपाय करें कि बच्चे को सफलता मिले। अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो बच्चे को एक लोहे का छल्ला धारण करवाइएगा, शनिवार को पीपल

0: नीचे माता पिता में से कोई भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करेंगे, साथ में बच्चा मेहनत करेगा तो इंजीनियरिंग में सफलता मिल जाएगी। सिंह राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपका बच्चा मेडिकल क्षेत्र की तैयारी कर रहा है, मेडिकल में जाना चाहता है और आपके बच्चे को सफलता मिले, इसके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? बच्चे को सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में एक चांदी का छल्ला धारण करवाइएगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार को माता पिता में से कोई भी चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे और माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और अपनी संतान की सफलता की प्रार्थना करेंगे। आपके संतान को मेडिकल के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपका बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी की, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? बच्चे को सोने या तांबे का एक छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करवाएंगे। नियमित रूप से माता पिता में से कोई भी रोली मिला करके सूर्य को अर्घ देंगे, जल चढ़ाएंगे और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और अपने बच्चे की सफलता की प्रार्थना करिएगा। तो अगर आपका बच्चा मेहनत करे और माता पिता ये उपाय करें तो बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं तो एक लोटा जल लें, उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कि अगर किसी टूटे हुए रिश्ते को, संबंध को फिर से जोड़ना है तो क्या करेंगे, एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए, इसमें 1 रुपए का सिक्का, चुटकी भर चावल और गुलाब का इत्र रखिए। सामान रखते समय उस व्यक्ति का नाम लेते रहिए जिससे आपको संबंध फिर से जोड़ना हो। रुमाल को बांध करके पूजा स्थान पर रख दें, 3 से 6 महीनों के अंदर आपके संबंध जुड़ जाएंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। क्यों आपके विवाह होने में विलंब हो रहा है? क्यों विवाह की उम्र हो जाने के बावजूद शादी नहीं हो पा रही है? कौन से कारण हैं जो विवाह में विलंब करवाते हैं और शीघ्र विवाह के कौन से होंगे उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: हाईटेक हो रहे पैदल सेना के जंगबाज, जमीनी युद्ध के लिए मिल रहे मॉडर्न ब्रह्मास्त्र, इंडियन इन्फेंट्री का कायाकल्प, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: लंका की यात्रा में हनुमान जी ने 4 खोजी, कितनी खोजें की बोलो बोलो। लंका यात्रा में हनुमान जी को जो सबसे ज्यादा प्राप्ति हुई वो चार चीजों की बड़ी अद्भुत प्राप्ति हुई। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में पहले नंबर पर शांति पाते, क्या पाते जोर से बोलो। लंका प्रवेश करने के पहले समुद्र के किनारे हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे आंखें बंद करके, तो किसी ने कहा आंख क्यों बंद की है, हनुमान जी बोले शांति यही मिलेगी। समुद्र की लहरों का शोर है और शोर में शांति चाहिए तो आंख बंद करो। एक दो महात्मा स्कूल में गए, महात्माओं का स्कूल में क्या काम, फिर भी चले गए। स्कूल के बच्चे तो बच्चे ही होते हैं तो बच्चे शोर मचाने लगे, हो अब बच्चे चुप ना हो गए तो क्या करें। एक महात्मा बोले, बच्चों शोर तो मचाओ पर आंख बंद करके मचाओ। अच्छा बच्चे तो बच्चे, हम लोग भी शोर आंख बंद करके नहीं मचा सकते, आंख बंद करके शोर ज्यादा नहीं मचा सकते। एक आदमी ओ फिर लगेगा जरा देखें प्रभाव पड़ रहा कि नहीं। जिसके लिए शोर मचा रहे वो देख रहा। कई लोग ऐसा ध्यान करते हैं, हमने ऐसा देखा है, कई लोगों की पूजा पाठ ऐसे ही होती है, घर में रिश्तेदार आ जाए, मेहमान आवे तो वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस भूत पिशाच आवे महावीर। हमने ऐसा हमारी कथाओं में हमने देखा, जैसे उनकी तरफ कैमरा जाए और टीवी लगी हो तो जो आदमी पहले बैठा रहे और जैसे ही कैमरा श्री राम जी, ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात मीराबाई हूं। हाँ, और पुरुष तो लगने लगते मानो प्रहलाद जी इनके अंदर ही घुस गए। आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान मुद्रा में भजन कीर्तन करने लगते तो ध्यान। अच्छा शोर भयंकर हो और शोर में शांति चाहिए तो ये उपाय है। हनुमान जी ने लंका की यात्रा में चार बातें पाई, चार सफलताएं पाई। पहली सफलता शांति पाई। क्या पाई, बोलो बोलो बोलो। पर शांति कहां, लंका जाने के पूर्व में समुद्र के किनारे नेत्र बंद करके ध्यान मुद्रा। अच्छा सब अपने अपने बल को बता रहे, जब लंका आप पढ़ेंगे अरे किष्किंधा कांड को, तो किष्किंधा कांड में आया है, सब अपने अपने बल को बता रहे। अंगद जी कह रहे अंगद

रंगत जी बोले हम लंका चले तो जाएंगे पर लौटने में बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो किसी ने कहा अंगद जी से कि क्या गड़बड़, बोले हो सकता कहीं गुफा मिल जाए, गुफा हमारे दादा परदादा से श्रापित है। बोले क्यों श्रापित है, बोले हमारे पिताजी की मौत गुफाई के चक्कर में। अंगद जिनके बेटा है बाली, बाली की मौत तो गुफाई के ही चक्कर में हुई। तो बोले चाचा ताऊ पिता सबको गुफा श्रापित है, इसलिए हम जाने में तो ठीक है, आने में दिक्कत है, यदि अकेले चले गए कहीं फंस गए गुफा में फिर लपड़ा। इसलिए अंगद जी कहते अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। अब सब अपना अपना बल बताने लगे। तो किसी ने जामवंत जी से कहा मुखिया तुम हो, आप बूढ़े हो, आप क्यों नहीं चले जाए, हम लोगों को ज्ञान दे रहे कि जाओ जाओ जाओ, तुम ही चले जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। जामवंत जी

जब जवानी थी तब हमारा जोश देखते, बोले कितना, बोले एक घड़ी में जब बलि भगवान को भगवान वरदान दे रहे थे और विराट रूप धारण किया था तब पृथ्वी की हमने 7 परिक्रमा कर ली थी, अब बुढ़ापा आ गया, अब नहीं जा सकते तो कौन जाए। सब बोल गए, हनुमान जी नहीं बोले, हनुमान जी बैठे सब शोर कर रहे और ये शांति में बैठे। तो किसी ने हनुमान जी को धक्का देके कहा कि सब कह रहे तुम भी तो बताओ। हनुमान जी बोले कि हमारा खुद का बल हो तो हम बताएं, इन लोगों का अपना खुद का बल है तो बता रहे, हमारा खुद का बल नहीं है। बोले किसका बल?

हमारा बल नहीं है, किसका बल है? राम जी का। तो राम जी भी तो तुम्हारे पास। बोले हमारे पास नहीं, हम तो मकान। मकान मालिक का बल। और सच भी है ये, मकान का कोई मकान की ताकत नहीं होती, मकान मालिक की ताकत। मकान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर मकान मालिक ताकतवर ना हो तो मकान कोई साधारण। अच्छा देखो, हम लोग इन मकानों में चाहे भी कोई घुस जाएगा, पर राष्ट्रपति के मकान में बिना परमिशन के घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकते, वहां परमिशन लगती। प्रधानमंत्री का मकान हो तो बड़ा पावरफुल। क्यों? क्योंकि मकान की महिमा नहीं है, मकान में रहने वाले की महिमा। तो हनुमान जी बोले देखो लोग हमारी महिमा गा रहे, हमारी नहीं है। हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान में हमारे, हम मकान है, हमारा जो मकान मालिक है उसकी महिमा। बोले मकान मालिक कौन है? बोलो बोलो बोलो। जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धरी। हमारे हृदय में राम जी बैठे। और विभीषण को सीना चीर करके दिखाया, देखो ये है मकान मालिक। हम मकान है, ये मकान मालिक, उनका बल है। तो हनुमान जी बोले कि हम नहीं जा सकते, अपना बल नहीं बता सकते। यहां पर एक बात और बड़ी अद्भुत है। आहा, सबने अपना अपना बल बताया, हनुमान जी ने नहीं बताया। मतलब वो कहावत सत्य हो गई कि कई बार जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। जिनके पास जो होता वो बोलते कम है, कर देते, और जिनके पास आधा होता वो बोलते ज्यादा, कर नहीं पाते। और जो लंबी लंबी फेंके समझ जाना सीताराम। कुछ लोग हमें मिलते हैं वो कहते हैं हम झूठ बोलते ही नहीं। हम देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, झूठ तो हमें पसंद ही नहीं। हमें मन ही मन लगने लगता कि मान लो इन्हें सत्य पसंद नहीं। अरे भाई जब तुम्हें झूठ पसंद नहीं है तो कहने की आवश्यकता क्या? उस पर चलो, आचरण पर। लोग अपने आप कहेंगे कि इन्हें झूठ पसंद है, तुम्हें कहने की क्या आवश्यकता है? लोग कहें कि हमें इन्हें झूठ पसंद नहीं, आप खुद कहो कि हमें झूठ पसंद है। ये तो प्रचार हो गया। इसका मतलब प्रचार मिलावट है, सोने जैसी कोई ना कोई खोट है। तो हनुमान जी बोले हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं, हमारा कोई बल नहीं, भगवान का बल है। और देखो सबने अपना अपना बल बताया, हनुमान जी ने बल नहीं बताया, पर सब नहीं जा पाए हनुमान जी के। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है बल बताया जाए, जताया जाए, करके दिखाया जाए। तो लंका की यात्रा में हनुमान जी ने पहले नंबर पर शांति पाई। क्या पाया? बोलो बोलो बोलो। दूसरा हनुमान जी ने क्या पाया? दूसरा पाया जैसे ही आगे बढ़े तो सुरसा नाम एहन की माता, सुरसा नाम की माता जी जब आई तो तुरंत हनुमान जी से बोली आज स्वर्णमय दीन आहारा सुनत कहे, आज स्वर्णमय दीन आहारा, आज हमको देवताओं ने आहार दिया है, भोजन दिया। हनुमान जी बोले किसका? सुरसा बोली आपका। हनुमान जी बोले हम समोसा हैं क्या जो हमको खाओगी? नहीं नहीं, देवताओं ने कहा कि इस बानर को खा लो तो हम खाने आए हैं। हनुमान जी महाराज ने लीला की, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने रूप दिखा करके डबल शरीर किया, सुरसा ने भी अपना शरीर किया, सत जोजन तही आनंद कीना, तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे बन गए, और हनुमान जी छोटे बनकर के मुख में भी गए, बदन पैठ पुनि बाहर आबा। हनुमान जी अंदर गए बाहर आए, बदन पैठ पुनि बाहर आबा। मागा बिदा, हनुमान जी विदा मांगने लगे, माता हमने पेट में भी चले गए बाहर भी आ गए, आज्ञा दे। यहीं पर हनुमान जी ने दूसरी उपलब्धि पाई। पूछो क्या? सुरसा माता ने आशीर्वाद

ये भगवान हनुमान जी की दूसरी उपलब्धि सुंदरकांड में लंका यात्रा में हनुमान जी की है। पहले शांति पाई फिर शक्ति पाई। क्या पाया? बोलो बोलो बोलो बोलो। क्योंकि जो किसी को प्रणाम करता आशीर्वाद देता तो अभिवादन शीलस्य चतुष्टयस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मनुस्मृति में लिखा कि जो प्रणाम करता है उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। बोले क्या? बोले स्वभाव बस कोई प्रणाम कर आयु विद्या यश बल, ये चतुरी तस्य वर्धन्ते चार चीजें बढ़ती हैं। आहा हा, हनुमान जी ने प्रणाम किया तो सरसा माता ने आशीर्वाद दिया तो पहले शांति पाई अब शक्ति पाई, और तीसरा क्या पाया? बोलो बोलो बोलो। जैसे ही हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने लंका में सब कुछ देखा। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जहते अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सो। हनुमान जी मंदिरों में गए, घर घर गए, एक घर नहीं छोड़ा हनुमान जी, सर्वत्र गए पर कहीं जानकी माता नहीं मिली। अंत तो गत्वा रामर के मंदिर में गए। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। बड़ा विचित्र महल है, लगता है ये रामर का घर है, यहां जानकी माता होंगी। और कितना अद्भुत संकेत है सुंदरकांड का, हनुमान जी के सुंदरकांड के संदेश का। जकार्ता के पागलो, हनुमान जी लंका की यात्रा में स्वर्ण की नगरी में जहां एकदम गोल्डन हाउस 2 BHK 3 BHK 4 BHK है, उन 2, 3, 4 BHK गोल्डन हाउस में हनुमान जी गोल्ड में नहीं फंसे, हनुमान जी चमचमाती दुनिया में नहीं फंसे, हनुमान जी माया की नगरी में भी भक्ति की खोज कर रहे हैं। और कितना अच्छा संकेत है कि हम लोग भले ही संसार में रहें पर खोज भक्ति की करें। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आहा, हनुमान जी महाराज जैसे रावण के भवन में गए तो हनुमान जी, आहा, हनुमान अंक में हनुमान जी के बारे में वहां वर्णन मिला। एक पुस्तक है हनुमान अंक और एक और पुस्तक है श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की, उन्होंने यहां का वर्णन लिखा रामर के महल का। क्या अद्भुत वर्णन लिखा, क्या रूपक खिंचा। आहा, सुदर्शन सिंह चक्र कहते हैं कि हनुमान जी जब रामर के महल में पहुंचे तो दसानन की दशा को देख रहे, दसानन की दशा को देख रहे, दुर्दशा है दसानन की दशा, बड़ी दुर्दशा है। क्या रूपक खींचा? बोले क्या दुर्दशा? बोले चौदिस स्त्रियां हैं, चारों तरफ रावण के बिस्तर पर स्त्रियां लेटी हैं, किसी के आधे वस्त्र नहीं, किसी के पूर्ण वस्त्र नहीं, कोई पान की पीक खाए हुए पड़ी है, कोई मद में मस्त है, कोई गाली बक रही है, कोई गिन रही, कोई झूम रही, कोई गिटार बजा रही और कोई पान खिला रही, कोई रावण के सिरहाने पड़ी, कोई रावण के सिरों को मल रही और कोई रावण के तलवों को मल रही, कोई रावण को भोजन का नाश्ता हाथ में लिए ही पड़ी, मानो अभी अभी रावण यह विचित्र विचित्र स्थितियों से थक करके लेट गया हो। ऐसी स्थिति में दुर्दशा में दशा को हनुमान जी ने देखा। पर उस पूरे महल के अंदर, उस पूरे कक्ष में, रावण के कक्ष में हनुमान जी देखते हैं ऊपर बैठकर, कहीं जानकी जी नहीं दिखाई पड़ रहे। सुंदर स्त्रियों को देखकर एक पल के लिए लगा ये माता है। और एक ही घटना हुई वहां पर, क्या? एक बड़ी सुंदर स्त्री देखी जो दिखने में बड़ी सुंदर थी, बाल घुंघराले थे, लटक रहे थे, विचित्र स्थिति में जरूर पड़ी थी, पर सबसे सुंदर वही स्त्री थी और रावण के वही बगल में लेटी हुई थी। उस स्त्री को देखकर हनुमान जी को लगा यही माता जानकी है, लेकिन तुरंत याद आया यदि ये मां जानकी है तो इस दशा में नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती इस दशा में, नहीं, हमारी माँ जानकी तो अब अति मर्यादित है, इस दशा में नहीं हो सकती, फिर कौन है? तब तक ध्यान आया हनुमान जी को ज्ञानी नामा गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम वीर बजरंग बली को, अरे लगता है ये मंदोदरी है, फिर हमारी माँ कहाँ है? अंत तो गत्वा पूरे महल में छाना। सुदर्शन सिंह चक्र लिखते हैं हनुमान जी को जब माता जानकी नहीं दिखाई पड़ी तो अंत तो गत्वा, हनुमान जी ने कभी देखा तो था नहीं पर हाव भाव से ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकती ये हो सकती, ये नहीं हो सकती ये हो सकती, हाव भाव से ही पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब माता जानकी जी नहीं दिखाई पड़ी, उन स्त्रियों में सुंदर स्त्रियां भी भ्रम की स्थिति में है कि ये नहीं हो सकती, क्योंकि रूप तो सुंदर है पर चरित्र ठीक नहीं, और ऐसी हमारी माँ नहीं हो सकती। तो अंत तो गत्वा हनुमान जी ने सोचा माता जानकी मिली नहीं और हम ब्रह्मचारी,
और ब्रह्मचारी को स्त्री का दर्शन ऐसी स्थिति में करना अपराध है। और हमने आज तक ऐसी दर्शन स्त्रियों के किए नहीं, आज हमने अपराध कर लिया। हनुमान जी ने वहीं पर तलवार रावण की खड़क को उठाया और मरने के लिए तैयार हुए। पहली बार हनुमान जी मरने के लिए आतुर हुए और जैसे ही खड़क को उठाया, मरना चाहा हनुमान जी, मरते मरते सोचा एक काम किया जाए, एक बार और खोज लिया जाए, शायद पता लग जाए, यहां तो मिली नहीं, एक बार और चक्र लगा लिया जाए। तलवार रावण की उठा ली, अंत तो गत्वा वरना हम ये मुंह राम जी को तो नहीं दिखाएंगे, चाहे जो हो पाए हो जाए, हम प्राण यही त्याग देंगे, वापस जीवित नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने एक पूरा चक्र पुनः लगाया और पूरा चक्र जब श्री हनुमान जी ने लंका का लगाया तो लंका में विभीषण जी अंगली यात्रा में हनुमान जी को मिले और ये तीसरी उपलब्धि हनुमान जी को सुंदरकांड में प्राप्त हुई। पहले शांति मिली, फिर शक्ति मिली और इसके बाद में भक्त मिला विभीषण, और चौथा भक्त के मिलते ही भक्ति मिल गई। भक्ति कौन है? बोलो बोलो बोलो। जानकी माता भक्ति। कौन है? जोर से बोलो। मां जानकी भक्ति है और रावण चतुर है। रावण को पता था कि भक्ति को लाए बिना भगवान नहीं आ सकते, इसलिए वो भक्ति को लाए। रावण विद्वान तो था ही, साधारण थोड़ी था, विद्वान तो था ही। चलत दसानन डोलत अवधि, चार वेद छह शास्त्र का ज्ञाता रावण, इसलिए जानता था भगवान को बुलाएंगे तो वो आएंगे नहीं, अकेले भगवान नहीं आएंगे। बोले क्या किया जाए? बोले भक्ति को ही बुला लो, भगवान खोजते खोजते आएंगे। और यही बात जनक जी के साथ हुई। जनक जी से जब कहा तो भगवान चाहते कि भक्ति, जनक जी ने कहा हमारे घर पर भगवान का अवतार ना हो, भक्ति का अवतार। महाराज जनक माता जानकी के पिता बोले हमारे घर भगवान का अवतार नहीं, भक्ति का अवतार होना चाहिए। किसी ने जनक से पूछा क्यों? जनक राज जी बोले यदि भक्ति का अवतार होगा तो भगवान वर बन के हमारे घर आएंगे। यदि भक्ति का अवतार हमारे घर पर होगा तो भगवान वर बनकर हमारे घर आएंगे और हमको नहीं जाना पड़ेगा, उल्टे दूल्हा बनकर के आएंगे, क्योंकि जहां भक्ति होगी वहां भगवान होंगे। तो इसलिए महाराज जनक ने भक्ति को चुना, रावण ने भी भक्ति का हरण किया, भगवान उनके घर गए। हनुमान जी महाराज की ये चौथी उपलब्धि है, पहली शांति, दूसरी शक्ति, तीसरा भक्त और चौथी भक्ति। और ये चारों उपलब्धि के कारण हनुमान जी स्वयं भगवान हो गए। इसलिए चारों युग परिताप, हमें लगता है ये चार उपलब्धि के कारण हनुमान जी चारों युगों में पूजे जाते, तब तो गोस्वामी जी ने लिखा।

हमसे तो भगवान करवा रहा, भगवान हमसे कथा करवा रहा, भगवान हमसे प्रवचन करवा रहा, हम नहीं कर रहे। जहां हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, अब तो बहुत लाखों लोग हर शनिवार मंगलवार जाते हैं। 300 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। हमारे यहां हर 10 में 12 में व्यक्ति को कैंसर हो रहा है। तो जिस क्षेत्र में हमें, उस क्षेत्र में भला हमारे गांव में आसपास ऐसा कोई सोच ही नहीं पाता कि हम लोग कभी दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा देखो, इंडोनेशिया आकर हनुमान कथा सुनो, ये बात बता के हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, हम ना तो तुमसे डोनेशन लेने आए, ना कोई सहयोग लेने आए हैं, ये मन में मत रखना। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप भारतवासी, भारत से प्यार करना मत भूलना, और यहां रहना। विचार भले ही तुम्हारे इंडोनेशिया के हों, पर संस्कार भारत के रखना।

0: हाईटेक हो रहे पैदल सेना के जंगबाज, जमीनी युद्ध के लिए मिल रहे मॉडर्न ब्रह्मास्त्र, इंडियन इन्फेंट्री का कायाकल्प। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
3: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
2: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
2: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था, और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
7: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
13: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
14: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
15: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
16: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
20: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
22: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
22: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
22: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
22: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे
0: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: जाएगा नया इतिहास, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च के लिए तैयार, मिशन आगमन से होगी लॉन्चिंग। पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा का तीसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान, भक्तों ने दर्शन पूजन किए। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची भारतीय शटलर पीवी सिंधु, चीन की वर्ल्ड नंबर 4 चेन यूफोई को 7 साल बाद दी मात, 2 साल बाद खेलेंगी वर्ल्ड टूर इवेंट का फाइनल। पूर्व अंडर 17 विश्व चैंपियन नेहा सांगवान के नाम कुश्ती में एक और उपलब्धि, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में जीता गोल्ड मेडल, 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जीता खिताब। द्रास में सेना ने चलाया टाइगर हिल अभियान, सैन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया अभियान, लामोचन व्यू पॉइंट पर फहराया गया तिरंगा।

यात्रा का आज तीसरा दिन है। भगवान जगन्नाथ मौसी के घर पहुंच चुके हैं, जहां ये 7 दिनों तक विश्राम करेंगे। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का पहला चरण संपन्न हो गया। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के दोनों रथों श्री गुंडिचा मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मनय बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमः। करोड़ों लोगों की आंखों में बस एक ही तस्वीर होती है, एक झलक अपने आराध्य की, वो पल जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आ गए। हर हाथ जुड़ते नहीं थका, हर सर बस श्रद्धा से झुकता रहा। पुरी का ये दिव्य नजारा जिसने देखा वो बस देखते ही रह गया। जब भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर पहुंचे, तो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उत्साह और विश्वास से सजी ये पावन यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची।
1: आज बिफोर टाइम में जगन्नाथ जी आ गया तीनों रथ। अभी जगन्नाथ जी का जो नीति है, रथ के ऊपर जो नीति है, अभी नीति चलेगा। महासंक्रांति पूजा जो है उसका पूजा चलेगा, फिर इसके बाद सकल भोग जो है, पहले भोग, दूसरा भोग, तीसरा भोग चलेगा, स्वयं तृप्त पूजा चलेगा। महाश्रम जैसे भगवान को बड़ा सिंगर होगा, पौड़ में होगा, भगवान स्वयं है। जैसे आगे साल में जैसा प्रॉब्लम था इसके लिए सब हम लोग अरेंजमेंट किया है, जैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सब भगवान को दर्शन करने के लिए जितना भक्त है सब आइए, अच्छा से दर्शन करिए।
0: गुरुवार को शुरू हुई यात्रा उसी दिन पूरी नहीं हो सकी थी। पहांडी अनुष्ठान में देरी और शाम होने की वजह से रथ अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। परंपरा के मुताबिक सूर्यास्त के बाद रथ नहीं खींचे जाते, इसीलिए यात्रा रोक दी गई।
1: सारा साल जितना पुण्य होता है ये मंडप में एक दिन दर्शन के लिए इतना पुण्य होता है, इसलिए ये जो मंडप है ये जन्मस्थान है, इनका जगह में जगन्नाथ जी आते हैं।
0: इसके बाद सुबह फिर से रथ आगे बढ़े। सुबह करीब 9:30 बजे सबसे पहले भगवान बलभद्र के तल ध्वज रथ को खींचना शुरू किया गया। इसके बाद देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ को आगे बढ़ाया गया और अंत में भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ श्री गुंडिचा मंदिर के सामने पहुंचा। बारिश और उमस के बावजूद करीब 9 लाख श्रद्धालु ग्रैंड रोड पर मौजूद रहे। जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा पुरी गूंज उठा। गुरुवार की शाम तक भगवान बलभद्र का रथ करीब 700 मीटर चलकर मार्केट चौक पर रुक गया था। देवी सुभद्रा का रथ लगभग 400 मीटर आगे बढ़ा और मरीचिकोट चौक पर ठहर गया। वहीं भगवान जगन्नाथ का रथ श्री मंदिर के मुख्य द्वार से केवल कुछ ही दूरी तय कर सका। पूरी रात तीनों देवता अपने अपने रथों पर ही विराजमान रहे। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने वहीं दर्शन किए। मंदिर प्रशासन ने रात भर दर्शन की व्यवस्था जारी रखी। सुबह तीनों रथों के श्री गुंडिचा मंदिर पहुंचने के साथ ही यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया। परंपरा के मुताबिक भगवान की प्रतिमाएं शुक्रवार रात

0: तक रथों पर ही विराजमान रहेंगी। शनिवार शाम को विशेष विधि विधान के साथ उन्हें मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा। मान्यता ये भी है कि यह स्थान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का जन्म स्थान भी है। गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक रहने के बाद भगवान 8वें दिन मुख्य मंदिर के लिए वापसी शुरू करते हैं। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। ये महापर्व भक्त और भगवान के अद्भुत मिलन का साक्षी है। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन परंपरा के साक्षी बनने के लिए पुरी जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। गुंडीचा प्रवास के 5वें दिन हेरा पंचमी का विशेष उत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजते हुए यहाँ पहुंचती हैं। भगवान के बिना बताए चले जाने से नाराज होकर वो प्रतीक के रूप में रथ का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त कर देती हैं और फिर वापस लौट आती हैं। इस परंपरा को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार रथ यात्रा के दौरान एक अलग नजारा भी देखने को मिला। लगातार बारिश की वजह से भगवान जगन्नाथ के पारंपरिक पुष्प मुकुट ताहिया का वजन काफी बढ़ गया था। इसी कारण पहली बार भगवान बिना ताहिया के भक्तों को दर्शन देते नजर आए। हालांकि इससे श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। हर कोई अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कहते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का ये महापर्व भक्त और भगवान के अद्भुत मिलन का साक्षी है। यही वजह है कि पुरी की सड़कों पर महाप्रभु की ये रथ यात्रा भक्ति भाव की छटा बिखेर रही है। लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का भागीदार बने हुए हैं।

0: रथ यात्रा पावन नमन जगन्नाथ श्री धाम नैन युगल कंजल कमल दर्शन कोटि प्रणाम। रथ पे सवार भगवान जगन्नाथ और दर्शन को बेताब भक्तों का सैलाब। मन में आस्था हो तो थकान कैसी, दिन हो या रात, जब प्रभु का नाम साथ हो तो हर कदम आसान हो जाता है। पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के दूसरे दिन यही अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं और नजरें प्रभु पर टिकी हैं।
1: विश्व प्रसिद्ध गुंडीचा यात्रा महाप्रभु की, ये विश्व में ऐसे भगवान हैं जो खुद अपनी प्रजा अपने भक्तों को देखने आते हैं साल में एक बार, और अपनी मातृभूमि में रहकर फिर वापसी करते हैं, जिसे हम सब बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। और ये भगवान का एक लीला खेला है, जिसमें भगवान ये कलयुग में विभिन्न प्रकार का अपना रूप दिखाते हैं, और विशेषकर विश्व के लोग, उड़ीसा के लोग, जनसाधारण बहुत अच्छे से रहे हैं, उनके मंगल कामना सुख कामना के लिए भगवान खुद आते हैं रथ यात्रा में द्वितीया के दिन। और आज तीन ही रथों में भगवान जगन्नाथ का, बड़े भाई बलभद्र का, बहन सुभद्रा का दर्शन हुआ। हम लोग सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, हम सब परिवार आके आज प्रभु के दर्शन किए हैं।
2: बहुत तो अच्छा दर्शन मिला है मुझे, बहुत खुशी है, आनंद भी है जगन्नाथ का, बहुत ज्यादा खुशी है महाप्रभु का।
0: वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश भी आस्था में बाधा नहीं बनी, श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। 44 फीट ऊंचे नंदीघोष, ताल ध्वज और दर्प दलन रथों को खींचने के लिए लाखों हाथ एक साथ आगे बढ़े। कोई भेद नहीं, बस मन में सेवा भाव, कोई दूरी नहीं, बस प्रभु के करीब रहने का संकल्प। हर धर्म, हर जात, हर बोली और हर प्रदेश के लोग एक साथ प्रभु की सेवा में जुटे रहे। होठों पर जयकारा, मन में श्रद्धा और आंखों में प्रभु दर्शन का सौभाग्य। महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने मौसी घर यानी गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं। रास्ते भर ढोल मंजीरों की गूंज, शंखनाद और हर तरफ भक्ति का उत्सव नजर आ रहा है।

0: रथ यात्रा पहले दिन श्री मंदिर से शुरू हुई थी। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन सुबह फिर यात्रा आगे बढ़ी। सुबह मंगला आरती, मैलम नीति, ताड़पा लागी और अवकाश नीति जैसे सभी पारंपरिक अनुष्ठानों के बाद रथ फिर गुंडिचा मंदिर की तरफ बढ़ा। करीब 3 किलोमीटर की ये यात्रा 2 दिनों में पूरी होती है। मान्यता है कि गुंडिचा मंदिर भगवान की मौसी का घर है। कहा जाता है कि रानी गुंडिचा की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान ने हर साल आषाढ़ महीने में यहाँ 7 दिन रहने का वचन दिया था और उसी परंपरा का निर्वाह आज भी होता है। भगवान जगन्नाथ के असंख्य भक्तों में कुछ भक्त 7 समंदर पार से भी आए हैं, जो वहां प्रभु की रथ यात्रा में शामिल होकर खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं।
1: Yeah, yeah, we are coming from Colombia to get the mercy of Lord Jagannath. Lord Jagannath is the Lord of all over the world, and all the devotees coming from all around the world. That's the beauty of Lord Jagannath in Jata Yatra, that for all the devotees who cannot go inside the mandir, he's coming out to get his darshan. That's the beauty. That is why it's so special for us to come to Jagannath for Rata Yatra, because we cannot go inside. We respect that. That is the mercy of the Lord. But he's going out to give us his beautiful face, lotus face for us.
0: रथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन आस्था का ये कारवां थमा नहीं रहा था, क्योंकि पुरी की इन सड़कों पर सिर्फ रथ नहीं चल रहा है करोड़ों भक्तों का अटूट विश्वास और गूंज रहा है एक ही स्वर, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: जब विश्वास कदमों में उतर आए, जब भक्ति गीत बनकर गलियों में गूंजे, जब हर चेहरा प्रभु के रंग में रंग जाए, तब समझिए आस्था का सबसे बड़ा उत्सव धरती पर उतर आया है। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने ऐसा ही अद्भुत दृश्य रचा, जहां लाखों लोगों ने प्रेम, सेवा और समर्पण का संदेश दिया। दिल्ली से जयपुर, उदयपुर से प्रयागराज और पुरी तक हर ओर श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा।

0: मैं तब तक साथ चलूं प्यारे जब तक तुम हाथ संभाले हो, कैसे साथ ना आऊं मैं जब तुम ही पालनहारे हो। इस बार की रथ यात्रा में हर कदम पर अद्भुत नजारा है, कहीं भजन गूंजे, कहीं मृदंग और करताल की ताल पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। किसी ने रस्सी पकड़कर स्वयं को धन्य माना तो किसी ने प्रभु के दर्शन को जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझा। पूरे देश में वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय दिखाई दिया। दिल्ली के द्वारका स्थित सेक्टर 13 के इस्कॉन मंदिर से भव्य आयोजन की शुरुआत हुई। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण के लिए निकले तो हर रास्ता जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा।
1: भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमा है वो सामने है और जो यहाँ पर दर्शकों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो सैकड़ों नहीं हजारों नहीं जबकि लाखों में यहाँ पर है। और इस वक्त जो द्वारका का जो सेक्टर 13 है जहाँ पर ये इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ रही है। और जो ये रथ यात्रा है ये कई सेक्टर से होती हुई दोबारा इसी इस्कॉन टेम्पल पर पहुँचेगी।
0: लगभग 5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर हजारों लोग भक्ति में डूबे दिखाई दिए। अलग अलग सेक्टर्स और प्रमुख चौराहों से गुजरते हुए ये आयोजन दोबारा मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है।
1: इससे पहले भी आए कभी रथ यात्रा?
2: नहीं, फर्स्ट बार आई हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है, धन्य हो गई आके।
3: ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो भक्तों को डायरेक्ट जगन्नाथ जी के बाहर आके कृपा बरसाते। बोलिए जय जगन्नाथ।
4: बहुत खुश है,
5: बता नहीं सकते, वर्ड्स में नहीं बता सकते हैं।
6: भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, बहुत खुशी है जगन्नाथ यात्रा की, हमको दर्शन हुए बाबा के।
7: मैं तो हर साल आती हूँ यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे।
0: पूरे रास्ते में भजन कीर्तन, नृत्य, संकीर्तन का अद्भुत संगम देखने को मिला। महिलाएं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। सबसे खास आकर्षण रहा सजे हुए रथ की भव्य सजावट। इस बार 108 प्रकार के आमों से रथ को सजाया गया, जबकि भगवान को 11,000 किलो आम का विशेष भोग अर्पित किया गया। बाद में यही प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया गया। आयोजन शुरू होने से पहले मंदिर में भी 11,000 आमों से विशेष श्रृंगार किया गया था।
8: आषाढ़ी द्वितीया जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, सेम टाइम पर इस्कॉन द्वारका रथ यात्रा निकाल रहा है। हजारों लाखों श्रद्धालु उमड़ उमड़ के आ रहे। इस्कॉन द्वारका ने इस बार पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली एनसीआर में इतनी बड़ी रथ यात्रा नहीं हुई है। सभी भक्तों के लिए प्रसाद है, 11,000 किलो आम का भोग भगवान को लगाया गया है और रथ से वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर रंगोलियां बनाई गई हैं, जगह जगह पर 200 से अधिक स्टॉल पर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जल की सेवा की जा रही है, एम्बुलेंस है, हर व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है ताकि सब श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का यथारूप पूरी का आनंद द्वारका दिल्ली में ले सके।
0: वहीं जयपुर में करीब 250 साल पुरानी परंपरा ने नया इतिहास रचा। पहली बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा एक साथ नहीं बल्कि 3 अलग अलग रथों पर विराजमान हुए। भगवान जगन्नाथ नंदीघोष, बलभद्र तालध्वज और देवी सुभद्रा दर्प दलन रथ पर सवार होकर निकले। तीनों रथों की ऊंचाई, रंग, पहिए, सारथी और पारंपरिक रस्सियां अलग पहचान बनाती नजर आई। दर्पदलन रथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित महिलाओं ने संभाली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गोविंद देव जी मंदिर से इस भव्य आयोजन को रवाना किया। जलेबी चौक, पुरानी विधानसभा, हवा महल रोड, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और त्रिपोली गेट से गुजरते हुए ये यात्रा चांदनी चौक स्थित श्री बृजनिधि मंदिर पहुँची। पूरे रास्ते श्रद्धालु जयकारे लगाते नजर आए, भक्ति गीत में झूमते नजर आए। उदयपुर में भी उत्साह कम नहीं था। लगभग 8 घंटे तक चलने वाला धार्मिक आयोजन आकर्षण का केंद्र बना। जगदीश चौक से शुरुआत हुई और घंटाघर, मोचीवाड़ा, भड़भुजा घाटी, अस्थल मंदिर और कालकाजी गोराजी सहित कई प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नगर भ्रमण पूरा हुआ। इस अवसर पर करीब 375 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक लकड़ी के रथ का उपयोग किया गया। मंदिर स्थापना के बाद पहली बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी प्राचीन रथ पर विराजमान हुए। साथ ही 95 किलो चांदी से बना रजत रथ भी आकर्षण का केंद्र बना। 21 बंदूकों की सलामी के बाद शोभा यात्रा आगे बढ़ी, जगह जगह पुष्प वर्षा हुई और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। रथ यात्रा की रौनक प्रयागराज में भी दिखी। आस्था की उसी उमंग में भक्त रंगे नजर आए। हेविट रोड स्थित श्री शिव दुर्गा हनुमान मंदिर से शुभारंभ हुआ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अलग अलग रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। हेविट रोड, जॉनसनगंज, लोकनाथ, राम भवन, गुंडीचा मंदिर, छोटा चौराहा और मुट्ठीगंज तक हर रास्ता श्रद्धा के रंग में रंगा नजर आया। कई आकर्षक झांकियां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। हजारों श्रद्धालु ने पूरे उत्साह के साथ रस्सियां थामकर रथ को आगे बढ़ाया। हर और भक्ति गीत, शंखनाद और जय घोष ही सुनाई दे रहे थे। पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा सराबोर था। वहीं पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के प्रति लोगों का उत्साह हमेशा की तरह चरम पर नजर आया। देश के अलग अलग राज्यों में भी उसी परंपरा की झलक देखने को मिली। कहीं ऐतिहासिक रथ आकर्षण का केंद्र बने, कहीं विशेष श्रृंगार ने सबका मन मोहा, तो कहीं हजारों लोगों की भागीदारी ने आयोजन को यादगार बना दिया। दिल्ली से ओपी शुक्ला, जयपुर से रिदम जैन, उदयपुर से पंकज शर्मा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा का तीसरा दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान, भक्तों ने दर्शन पूजन किए। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची भारतीय शटलर पीवी सिंधु, चीन की वर्ल्ड नंबर 4 चेन यू फेई को 7 साल बाद दी मात, 2 साल बाद खेलेंगी वर्ल्ड टूर इवेंट का फाइनल। पूर्व अंडर 17 विश्व चैंपियन नेहा सांगवान के नाम कुश्ती में एक और उपलब्धि, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में जीता गोल्ड मेडल, 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जीता खिताब। द्रास में सेना ने चलाया टाइगर हिल अभियान, सैन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया अभियान, लामोचौन व्यू पॉइंट पर फहराया गया तिरंगा।

0: और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक शानदार खबर। खबर यह है कि भारत ने अब अंतरिक्ष में नई इबारत लिख दी है। भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है और थोड़ी देर में जो है वो लॉन्च हो जाएगा। पहली बार प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित पहला ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, मिशन आगमन के तहत स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 रॉकेट को आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट के साथ गृह स्पेस कॉस्मोस डिक्यूब्ड और स्काई रूट के अपने प्रयोग जैसे कई तकनीकी पेलोड भेजे जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा वंदे मातरम वाला पोस्ट कार्ड, इसरो के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों के संदेश और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश भी इस मिशन से भेजे जाएंगे। हैदराबाद में युवा इंजीनियर्स की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है जिसका डायामीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है और ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। रॉकेट में 3 स्टेज वाले सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिक्विड फ्यूल वाला ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल इस्तेमाल किया गया है।
1: बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज व्हेन द एंटायर रॉकेट व्हेन इन फ्लाइट it experiences combined effect of aerodynamic loads, engine thrust, wind gust.
0: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं हमारी खास पेशकश में यानी कि फैक्ट चेक पर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे बिना परखे इसे सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे बिना समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का है, जहां ईरान ने इसराइल के लिए हथियार ले जा रहे जहाज पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको आगे बताते हैं। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि सांसद रवि किशन ने ये बयान दिया है कि भरत तिवारी अपराधी था और उसका जो एनकाउंटर हुआ उससे जुड़ा बयान दिया गया है। बिहार के भोजपुर में एनकाउंटर हुआ था। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का है, जहां ईरान ने इसराइल के लिए हथियार ले जा रहे जहाज पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।

0: हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच हवाई हमले एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह वाले शहरों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों और कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया है। इस बीच दोनों देशों में चल रहे हालिया संघर्ष का बताकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें समुद्री जहाज पर हमले का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी हमले का बताकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक जहाज में धमाका होने के बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है। एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, IRGC से बिना बात किए ही अमेरिका ने इस जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी दे दी थी। अब इस जहाज में आग लग गई है। ये जहाज समुद्र की तलहटी में समा गया है। जहाज को इस जल डमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने के लिए सिर्फ IRGC ही मंजूरी दे सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हर दिन जंग तीखी होती जा रही है। अमेरिका ने ईरान पर हमलों का दायरा बढ़ाते हुए ब्रिज एयरपोर्ट, कम्युनिकेशन टावर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। जवाब में ईरान ने कतर समेत खाड़ी देशों में मिसाइलें दागी और पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की चेतावनी दी है। आपको बता दें, इन सब के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, जहां ईरान ने इसराइल के लिए हथियार ले जा रहे जहाज पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में हमने वायरल वीडियो की जांच की, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे, ये हमारा मकसद था। आपको बता दें, दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने इंटरनेट और मिडिल ईस्ट एशिया के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे ये साबित हो सके कि इसराइल के लिए हथियार ले जा रहे जहाज पर ईरान ने हमला किया और नष्ट कर दिया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं हमले के पुराने वीडियो को हालिया बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? इन सवाल
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 मार्च की रिपोर्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट मिला। खबर के मुताबिक अमेरिका के हमले के बाद ईरान का एक मिसाइल युद्धपोत नष्ट हो गया। ये युद्धपोत शहीद सुलेमानी क्लास का है, जिसे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ऑपरेट करती है। एक न्यूज आउटलेट के यूट्यूब चैनल पर मौजूद 9 मार्च की वीडियो रिपोर्ट में भी ये वीडियो देखने को मिला। इसके मुताबिक ये वीडियो फारस की खाड़ी का है, जहां अमेरिकी इसराइल हमले में एक ईरानी तेल टैंक नष्ट हो गया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया है कि वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। ये वीडियो फारस की खाड़ी का है, जहां अमेरिकी इसराइल हमले से एक ईरानी तेल टैंक नष्ट हो गया था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन का एक बयान सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस बयान को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि रवि किशन ने हाल ही में बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर को सही ठहराया है। वायरल हो रहे दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।

0: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्हें एनकाउंटर को सही ठहराते हुए सुना जा रहा है।
1: एनकाउंटर किसी सामान्य, किसी अच्छे परिवार का या किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं हो रहा है। ऐसे वो जो अपराधी हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं।
0: सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस बयान को बिहार में हुए भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रवि किशन ने कहा कि भरत तिवारी अपराधी था, इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ।
1: जो भी व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है, मारा गया है, वो व्यक्ति अपराधी रहा या अपराध करने जा रहा था या वो अपराध करता उस वक्त पुलिस पर गोली चला।
0: पहले आप ये सुनिए, आखिर वायरल हो रहे वीडियो में सांसद रवि किशन क्या बोल रहे हैं।
1: एनकाउंटर किसी सामान्य, किसी अच्छे परिवार का या किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं हो रहा है। ऐसे वो जो अपराधी हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं।
0: सुना आपने, रवि किशन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है, मारा गया है, वो व्यक्ति अपराधी था। इसे सुनने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सांसद रवि किशन एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन हाल ही में बिहार के भोजपुर में हुए एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के बारे में ही वो बोल रहे हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। एक इंस्टाग्राम हैंडल से ये वीडियो अपलोड करते हुए दावा किया गया कि भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सांसद रवि किशन का बयान।
1: एनकाउंटर किसी सामान्य, किसी अच्छे परिवार का या किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं हो रहा है। ऐसे वो जो अपराधी हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद रवि किशन का ये बयान खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल हो रहे बयान में रवि किशन ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है, मारा गया है, वो व्यक्ति अपराधी था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाल ही में बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को रवि किशन ने सही ठहराया है, और ऐसे में वायरल हो रहे बयान की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमने इसकी जांच की है। आपको बता दें, फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें रवि किशन का हाल फिलहाल में ऐसा कोई बयान नहीं मिला जिसमें उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर को सही ठहराया है। क्योंकि अगर रवि किशन ने ऐसा कोई भी बयान दिया होता तो ये अपने आप में खबर होती और कहीं ना कहीं इसके बारे में खबरें जरूर होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। और इसके अलावा रवि किशन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इससे संबंधित कुछ नहीं मिला है। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो सांसद रवि किशन ने यह बयान कब और किस संदर्भ में दिया? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर बयान के जरिए सियासी अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब हमने सवालों की जांच की तो क्या जवाब मिला, इस रिपोर्ट में देखिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सर्च के दौरान हमें एक चैनल के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट मिली। 30 जून 2026 की इस पोस्ट में बताया गया था कि यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि जिन लोगों का एनकाउंटर हुआ है वो सामान्य नागरिक नहीं बल्कि आपराधिक मामलों में शामिल आरोपी थे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों पर कई मुकदमे दर्ज थे और जनता जानती है कि एनकाउंटर अपराधियों का हुआ है। रवि किशन ने विपक्ष पर चुनावी माहौल में जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।
1: एनकाउंटर किसी सामान्य, किसी अच्छे परिवार का या किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं हो रहा है। ऐसे वो जो अपराधी हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं।
0: एक YouTube चैनल पर हमें वायरल वीडियो का बड़ा वर्जन मिला जिसमें रवि किशन को वायरल वीडियो वाला बयान देते हुए सुना जा रहा है। इस पूरी बातचीत में कहीं भी बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर का संदर्भ नहीं मिला। ये वीडियो 28 जून 2026 को अपलोड किया गया। कैप्शन में भी बताया गया कि बीजेपी सांसद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए करारा जवाब दिया। जांच को आगे बढ़ाते हुए रवि किशन के सोशल मीडिया हैंडल को खंगाला। हमें 30 जून 2026 को अपलोड किया गया एक बयान मिला। इसमें रवि किशन ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। वायरल बयान यूपी के अपराधियों के संदर्भ में दिया गया था।
1: एनकाउंटर किसी सामान्य, किसी अच्छे परिवार का या किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं हो रहा है। ऐसे वो जो अपराधी हैं जिन पर कई मुकदमे दर्ज।
0: इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि बीजेपी सांसद रवि किशन ने एनकाउंटर के संदर्भ में जो बयान दिया था वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में था। मीडिया से बातचीत में कहीं भी भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए रवि किशन ने यूपी के संदर्भ में वायरल बयान दिया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
2: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
10: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को अपना बचपन याद दिला दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने घर के बाहर खुले आंगन में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कबाड़, प्लास्टिक की टोकरियां और लोहे के एक स्टैंड की मदद से अपने लिए एक अनोखा झूला तैयार किया है। कोई उस झूले में बैठकर घूमने का आनंद ले रहा है, तो कोई अपने दोस्त को धक्का देकर मस्ती करता नजर आ रहा है। बच्चों के चेहरे पर दिख रही मुस्कान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस पल को कितना एंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए ये साधारण सा झूला किसी बड़े मनोरंजन पार्क से कम नहीं है। जिम में कई बार ऐसा नजारा भी देखने को मिल जाता है जिनके बारे में हम आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। ज्यादा उम्र होने के बाद लोग सही से उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं सकते और वजन नहीं उठा सकते। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र को महज एक नंबर मानते हैं और बुढ़ापे में भी कहर बरपाते हैं। इस वीडियो में भी एक दादाजी ने कुछ ऐसा ही दम दिखाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह दादाजी जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका अंदाज देखकर लोग दंग रह गए।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के सफर के दौरान बीएसएफ के जवानों ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे कोच में बैठे लोग भावुक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई बीएसएफ जवान ट्रेन के एक कोच में सफर कर रहे हैं। सफर के दौरान अचानक कुछ जवान गिटार निकालते हैं और फिर सभी मिलकर फिल्म का एक मशहूर गाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता है, पूरा डिब्बा देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। जवानों की आवाज और गिटार की मधुर धुन ने पूरे माहौल को बेहद शांत, भावुक और सुकून भरा बना दिया है।

0: उज्बेकिस्तान के युवा कलाकारों ने बॉलीवुड का मशहूर गाना गाकर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल वीडियो को देख लोग इन कलाकारों की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में खास बात यह है कि वो इस गाने को अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गा बजा रहे हैं। उनकी मधुर आवाज और संगीत का अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: दुनिया में सबसे बड़ी इंसानियत वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी उम्मीद के किसी भी जुबान की प्यास बुझा दे।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक महिला ने प्यास से परेशान एक लंगूर की मदद करके हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंगूर काफी देर से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक नल मौजूद है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। बंदर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो काफी देर से प्यासा है और किसी तरह पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहाँ मौजूद एक महिला की नजर उस लंगूर पर पड़ती है। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाती है। महिला को देखकर लंगूर भी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करता। महिला तुरंत
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
3: क्यों आपके विवाह होने में विलम्ब हो रहा है? क्यों विवाह की उम्र हो जाने के बावजूद शादी नहीं हो पा रही है? कौन से कारण हैं जो विवाह में विलंब करवाते हैं, और शीघ्र विवाह के कौन से होंगे उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
6: भारतीय नौसेना ने अपने आने वाले युद्धपोत INS मालवन का प्रतीक चिन्ह जारी किया। 22 जुलाई को होगा कमीशन, स्वदेशी तकनीक से किया गया तैयार। द्रास में सेना ने चलाया टाइगर हिल अभियान, सैन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया अभियान। लामोचन व्यू पॉइंट पर फहराया गया तिरंगा। पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा का आज तीसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान, भक्तों ने दर्शन पूजन किए। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची भारतीय शटलर पीवी सिंधु। चीन की वर्ल्ड नंबर 4 चेन यूफोई को 7 साल बाद दी मात, 2 साल बाद खेलेंगी वर्ल्ड टूर इवेंट का फाइनल। पूर्व अंडर 17 विश्व चैंपियन नेहा सांगवान के नाम कुश्ती में एक और उपलब्धि, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में जीता गोल्ड मेडल, 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जीता खिताब।

आपका आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके विवाह होने में विलंब हो रहा है तो अपने लग्न के अनुसार आप कौन सा उपाय करें जिससे आपका विवाह जल्दी हो सके और बेहतर हो सके। यानी आज चर्चा करेंगे शीघ्र विवाह के सरल उपायों की। बात करेंगे कि कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका जप स्त्री या पुरुष कोई भी करे उसका विवाह जल्दी होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः। वैसे तो इस मंत्र की बहुत महिमा है और बहुत सारी आवश्यकताओं में इस मंत्र का जप किया जाता है। आप स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो रोज सुबह और रोज शाम लाल चंदन की माला से अगर इस मंत्र का जप करें 108 बार और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो आपका विवाह निश्चित रूप से जल्दी संभव होगा। देखिए आज हम बात कर रहे हैं शीघ्र विवाह के सरल उपायों के बारे में। शीघ्र विवाह होने में मुश्किलें कब आती हैं, बाधाएं कब आती हैं? देखिए कुंडली में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर इन 5 तत्व में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है तो जीवन में सब कुछ पाने में संघर्ष करना पड़ेगा, विवाह भी विलंब से होगा। वायु तत्व की मात्रा भी अगर ज्यादा है तो जीवन में चंचलता ज्यादा रहेगी और विवाह विलंब से होगा। चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे विवाह के लिए। तो चंद्रमा गड़बड़ हो जाए, शुक्र गड़बड़ हो जाए या बृहस्पति गड़बड़ हो जाए तो सामान्यतः विवाह में विलंब होता है, विवाह जल्दी नहीं हो पाता। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो ये भी विलंब से विवाह का कारण बनता है, क्योंकि मंगल दोष होने पर ज्यादातर मामलों में कुंडली मिल नहीं पाती। अगर कुंडली में ग्रहण योग है, सूर्य राहु केतु का या चंद्र राहु केतु का, तो ये भी शीघ्र विवाह नहीं होने देता, बेवजह से विवाह में विलंब की संभावना बन जाती है। कुंडली के 8वें या दूसरे भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं, अष्टम और दूसरा भाव विवाह के टाइमिंग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो अगर अष्टम भाव में या द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठें तो विवाह में विलंब होता है। कुंडली का 7वां स्थान यानी सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अगर पाप स्थिति में हो, अगर पाप प्रभाव में हो,
तो भी विवाह में विलंब की संभावना बन जाती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में आप कुंडली में देखेंगे कि विवाह में विलंब के लिए दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। कुंडली में वक्री ग्रहों का होना विवाह में विलंब करवाता है। कुंडली में एक या ज्यादा वक्री ग्रह हो, खास तौर से एक से ज्यादा हो, तो विवाह में विलंब होता है। और अगर कुंडली में शनि का प्रभाव ज्यादा हो तो भी विवाह में विलंब की संभावना बन जाती है।

बचना चाहिए शीघ्र विवाह के लिए। कभी भी तंत्र मंत्र का सहारा मत लीजिए, उल्टे सीधे तरीकों से शीघ्र विवाह के अंट शंट उपाय मत करिए। वैदिक और सात्विक तरीके से सात्विक मंत्रों के माध्यम से लाभ लेने का प्रयास करिए। विवाह के लिए होता क्या है कि लड़के से कहो कि ये मंत्र पढ़ लो, लड़की से कहो कि ये पूजा कर लो, तो वो कहते हैं समय नहीं है, किसी और से करवा दीजिए। शादी आपकी होनी है ना, तो विवाह के लिए दूसरों के पूजा पाठ या दूसरों के मंत्र जप का सहारा मत लीजिए। जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, वास्तव में उपाय उसको करना चाहिए, या जिस लड़के का विवाह नहीं हो रहा है उसको उपाय करना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होगा। अगर कोई मजबूरी है तो लड़के या लड़की के माता पिता उसके लिए उपाय कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जरूर गौर कर लीजिए कि केले का पौधा ना हो। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप केले का पौधा रखेंगे या केले का पौधा लगाएंगे, तो ऐसा करने से भी विवाह में विलंब होता है। देखिए, अगर कुंडली में विलंब विवाह का योग है तो आप उपाय करके उसको जल्दी नहीं कर सकते। अगर कुंडली में विवाह में विलंब का योग है तो जल्दबाजी में विवाह करने का निर्णय ना लें। और मान लिया लड़के या लड़की की कुंडली में विवाह के ग्रह ज्यादा खराब हैं, ज्यादा निगेटिव हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। लड़की के आठवें मंगल सूर्य बैठा है, विवाह में विलंब होगा और साथ में वैवाहिक जीवन में भी उपद्रव होगा, तो ऐसी स्थिति में विवाह जब करिए तो ऐसे लड़के से करिए जो मंगल सूर्य को बैलेंस कर सके, जिसकी आयु थोड़ी ठीक हो। आपके लड़के या लड़की की कुंडली में विवाह का मामला अच्छा नहीं दिख रहा है और आप जोश में आके बिना विचार किए अगर जल्दबाजी में शादी कर देंगे तो इसके परिणाम गंभीर होंगे, इसके परिणाम निगेटिव होंगे। देखिए, हर लग्न के लिए विवाह की एक विशेष स्थिति होती है। अगर आप उस स्थिति को समझें और लग्न के हिसाब से उपाय करें तो विवाह समय पर हो सकता है। तो चलिए आपको लग्न के हिसाब से बताते हैं कि विवाह होने की स्थिति क्या होती है और शीघ्र और बेहतर विवाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर मेष लग्न की बात करें तो इनका विवाह आम तौर पर समय पर हो जाता है। मेष लग्न वालों की शादी आम तौर पर आज के समय में देखें तो 24-26 के आसपास इनकी शादी हो जाती है। इनके विवाह में विलंब तब होता है जब इनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगे। यानी स्वास्थ्य अगर मेष लग्न वालों का खराब है तब इनके विवाह में विलंब होगा, अन्यथा सामान्य स्थितियों में मेष लग्न वालों की शादी टाइम से हो जाती है।

0: अगर आपका लग्न मेष है और आप समय से विवाह करना चाहते हैं तो आप एक मंत्र आपको बताते हैं, स्क्रीन पर देखिए। मंत्र है ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करिएगा और सामान्य जीवन में सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग अगर आप ज्यादा करें तो आपके लिए बेहतर होगा, आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। और देखिए ये उपाय करने से विवाह जल्दी तो होगा ही, बेहतर भी होगा, क्योंकि शादी जल्दी हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन विवाह अच्छा हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के विवाह के लिए जिम्मेदारी होती है मंगल की और कुछ मामलों में बुध की। इनके विवाह में आम तौर पर विलंब होता है। अगर वृषभ लग्न है आपका तो आपके विवाह में थोड़ा विलंब होगा। 28 से 30 साल वाले पार्ट में आपकी शादी की संभावना ज्यादा रहेगी। इनके विवाह में विलंब होता है इनकी आर्थिक स्थिति की वजह से, क्योंकि पैसा होता ही नहीं, कभी कभी शादी कहां से करेंगे, और कभी कभी बहुत सारी कुंडलियां मिलाई जाती हैं, 100-150 कुंडलियां मिलाई जाती हैं लेकिन कुंडली नहीं मिल पाती। तो आर्थिक स्थिति और मिलान की समस्या की वजह से इनके विवाह में विलंब होता है। अगर आपका लग्न वृष लग्न है तो थोड़ा टाइमली शादी हो जाए और बेहतर शादी हो जाए, इसके लिए सुबह शाम दोनों समय ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का जप सुबह और शाम 108 बार करिएगा। और सामान्य जीवन में अगर आप नारंगी रंग का प्रयोग करें, ऑरेंज कलर के रेगुलर कपड़े पहने या नारंगी रंग का रुमाल लगातार अपने पास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों का विवाह आम तौर पर मध्यम आयु में होता है, लगभग 26 से लेके 30 साल की उम्र का जो समय है, खास तौर से 26-28 वाला जो समय होता है उस समय इनके विवाह की संभावनाएं काफी मजबूत होती हैं और उस समय इनका विवाह होता है। अक्सर मिथुन लग्न वाले प्रेम विवाह करते हैं और प्रेम विवाह के चक्कर में विवाह में विलंब हो सकता है या विवाह में विलंब हो जाता है या रिश्तों को मनाने में, समझाने में, बैठाने में इस चक्कर में विलंब होता है। मिथुन लग्न वालों के विवाह में नॉर्मली विलंब नहीं होता, लेकिन प्रेम और रिश्तों के मामलों को हल करने के चक्कर में विलंब होता है। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है, विवाह थोड़ा जल्दी हो, थोड़ा बेहतर हो, तो रोज सुबह और शाम ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप आपको नियमित रूप से करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार, और पीले रंग का प्रयोग आपको रेगुलर करना चाहिए। ज्यादा कुछ ना कर सकें तो पीले रंग का रुमाल अपने पास आपको हमेशा रखना चाहिए। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के बारे में देखा गया है कि या तो इनका विवाह बहुत जल्दी होगा, 22-24 साल में होगा, या कभी कभी बहुत देरी से 30 या 32 साल तक भी शादी इनकी जाती है। कर्क लग्न वालों को जल्दी रिश्ते समझ में नहीं आते, और एक बात यह भी है कि समझ में आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा नहीं होता। इसलिए कर्क लग्न वाले जब भी विवाह करें, टाइम लगता है लगने दें, विलंब होता है होने दें, क्योंकि बिना सोचे समझे कर्क लग्न वाले विवाह करेंगे, विवाह चौपट होगा। और कर्क लग्न में विवाह की स्थिति आम तौर पर जीवन में सुख नहीं देती है। इसीलिए कर्क लग्न वालों को सामान्य सलाह ये रहती है, जल्दी शादी हो जाए बहुत बढ़िया, लेकिन अगर विलंब होता है तो सोच समझकर ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा, ताकि विवाह खराब ना हो। विवाह अच्छा हो, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपका विवाह अच्छा हो, इसके लिए रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करिएगा। और साथ में अगर आप नीले रंग का प्रयोग करें, ब्लू कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें, या नीले रंग का एक रुमाल अपने साथ में रखने लगें, तो आपको लाभ होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों का विवाह सामान्यतः विलंब से होता है। अगर 30 साल के पहले हो गया तो ठीक, वरना शादी 32-34 साल भी जा सकती है। इनका विवाह सामान्यतः विलंब से होने की संभावना ज्यादा होती है। इनके विवाह में देरी होती है इनके अपने करियर की वजह से, करियर सेटल नहीं होता, इस वजह से विवाह में विलंब होता है, और जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत ज्यादा होती हैं, तो जिम्मेदारियों के कारण भी इनके विवाह में विलंब होता है। देखिए, सिंह लग्न वालों का विवाह विलंब से होने के बावजूद नॉर्मल कोर्स में आप देखेंगे कि इनको जीवन साथी समझदार मिलता है, गंभीर मिलता है, जो कठिन समय में इनका सपोर्ट करता है। नियमित रूप से रोज शाम के समय ओम छाया पुत्राय नमः, ओम छाया पुत्राय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिए 108 बार। और फिरोजी रंग का, टर्कवाइज कलर का जितना प्रयोग आप करें, या फिरोजी रंग का रुमाल अपने साथ में हमेशा रखें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या लग्न, इनका विवाह मध्यम समय पर होता है, ज्यादातर 28 से 30 साल की उम्र में कन्या लग्न वालों के विवाह की संभावना बनती है। मोटे तौर पे 30 वर्ष के पहले और खास तौर से 26-28 वाले समय में इनके विवाह की संभावना बनती है। इनके तेज स्वभाव की वजह से और इनके कैलकुलेशन की वजह से हर चीज में जो फायदा नुकसान देखते हैं, हर चीज में जो जोड़ घटाना करते हैं, इस वजह से इनके विवाह में विलंब होता है। हर मामले में फायदा देखने की आदत और इनका तेज स्वभाव, इसकी वजह से विवाह में विलंब होता है। अगर आपका कन्या लग्न है तो आप शीघ्र और बेहतर विवाह के लिए रोज सुबह के समय 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। सामान्य जीवन में सुनहरे रंग का, गोल्डन कलर का अगर आप प्रयोग करें या सुनहरे रंग का रुमाल अपने साथ में रखें तो आपको लाभ होगा। तुला लग्न, तुला लग्न वालों का विवाह सामान्यतः जल्दी होता है। आम तौर पर 24 वर्ष के आयु के बाद इनका विवाह कभी भी हो सकता है, लेकिन तुला लग्न वाले अक्सर प्रेम के कारण विवाह में देरी में फंस जाते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं वहां शादी नहीं हो पाती और अक्सर इस वजह से बाद में विलंब होता है और एडजस्टमेंट करके इनको शादी करनी पड़ती है। कर्क लग्न में और तुला लग्न में, दोनों लग्नों में विवाह का मामला बहुत बेहतर नहीं होता। आम तौर पर तुला लग्न वाले भी अपने जीवन साथी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, चाहे इनका विवाह अपनी मर्जी से हो या परिवार वालों की मर्जी से हो, इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना बहुत होती है। जितने सरल और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, इनका वैवाहिक जीवन उतना ही ड्राई यानी उतना ही सूखा रहता है। अगर आपका लग्न तुला लग्न है और आप चाहते हैं कि आपका बेहतर विवाह हो, तो रोज सुबह 108 बार ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। लाल रंग का एक रुमाल हमेशा अपने साथ रखिएगा। इतना करने से ये होगा कि वैवाहिक जीवन में असंतोष नहीं होगा, सही तरीके का विवाह आप सही समय पर कर पाएंगे। वृश्चिक लग्न, इनका विवाह या तो बहुत जल्दी होता है या बहुत विलंब से होता है। वृश्चिक लग्न वाले 25 साल की उम्र के पहले शादी कर पाते हैं या आम तौर पर 30 साल की उम्र के बाद इनके विवाह की संभावना बनती है। इनके विवाह में विलंब होता है जिम्मेदारियों के कारण, परिवार की जिम्मेदारियां, करियर की जिम्मेदारियां, इस कारण से विवाह में विलंब होता है। लेकिन आम तौर पर वृश्चिक लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। समझदार और गंभीर जीवन साथी इनको जीवन में प्राप्त होता है। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है और विवाह में विलंब हो रहा है तो रोज संध्या काल में शाम के समय में शुक्र के मंत्र का जप करें, ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। सफेद स्फटिक की माला से रोज शाम को इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर होगा। ब्राइट वाइट कलर के कपड़े पहनिए, चमकदार सफेद रंग के, और चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा हमेशा पहने रहें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु लग्न, इनका विवाह आम तौर पर विलंब से होता है और 30-31 के आसपास शादी होने की संभावना इनकी ज्यादा होती है। इनके साथ ये है कि इनका करियर सेटल नहीं होता काफी समय तक, और करियर में अस्थिरता बनी रहती है जिस वजह से विवाह में विलंब होता है। और धनु लग्न वाले कितनी भी कोशिश कर लें, इनको जीवन साथी अपने मेंटल मैच का नहीं मिलता। इनका मेंटल लेवल जितना ताकतवर होता है, जितने बुद्धिमान और इंटेलिजेंट होते हैं, वैसा जीवन साथी इनकी किस्मत में नहीं होता। इसीलिए धनु लग्न वालों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा भी बेहतर जीवन साथी मिले तो शादी कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छे के चक्कर में बहुत विलंब हो सकता है। अच्छा विवाह हो, अच्छा जीवन चले, थोड़ा जल्दी भी हो जाए, इसके लिए रोज सुबह शाम ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करें 108 बार, और हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, हरे रंग का रुमाल अपने साथ में रखें, आपको लाभ होगा। मकर लग्न, विवाह के मामले में भाग्यवान लग्न है मकर लग्न। इनका विवाह मध्यम आयु में होता है, अमूमन 24 से 28 की उम्र के बीच में, खास तौर से 24-26 वाले समय में। इनके विवाह में अगर विलंब होगा तो दो कारण होंगे, या तो इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता होगा जिस वजह से विलंब होगा, या आर्थिक समस्या की वजह से इनके विवाह में विलंब होता है। मकर लग्न वाले थोड़ा सोच समझकर, अच्छी तरह विचार करके अगर विवाह करें तो आम तौर पर मकर लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अगर आपके विवाह में थोड़ा विलंब हो रहा है, आप अच्छा विवाह समय से करना चाहते हैं, तो सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिएगा नित्य प्रातः और सायंकाल 108 बार नमः शिवाय का जप करें। क्रीम रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें या क्रीम रंग का रुमाल अपने साथ रखें, लाभ होगा। कुंभ लग्न, इनका विवाह विलंब से होने की संभावना बनती है और अच्छा भी है क्योंकि अगर इन्होंने जल्दी शादी की, शादी चौपट जरूर होगी। वैवाहिक जीवन का मामला कुंभ लग्न वालों का बहुत अच्छा नहीं होता। कुंभ लग्न वाले बड़े फिलोसफिकल विचार के होते हैं, दार्शनिक होते हैं, ज्ञानी बुद्धिमान होते हैं और पत्नी इनकी बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोच की होती है, या इनका पति बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा मटीरियलिस्टिक अप्रोच का होता है। इस वजह से कुंभ लग्न वालों की शादी सोच समझ कर हो वही अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुंभ लग्न वालों को लगता है शादी करनी नहीं चाहिए और इस चक्कर में विवाह सोचते नहीं है, बेवजह का विलंब होता चला जाता है। 32 साल, 34 साल, 35 साल काफी विलंब होता है और कभी कभी पैसे रुपए के हालात अच्छे नहीं होते जिस वजह से ये शादी करना नहीं चाहते। मेन बात यह है कि कुंभ लग्न वाले विलंब से शादी करें लेकिन बहुत सोच समझ के शादी करें, क्योंकि जैसे कर्क लग्न है, जैसे तुला लग्न है, वैसे ही कुंभ लग्न वालों का भी वैवाहिक जीवन कुछ खास अच्छा नहीं होता। इनका मेंटल लेवल हाई इंटेलेक्चुअल होता है और जीवन साथी के साथ मैच नहीं करता। तो क्या करें ऐसा जिससे विवाह देर में हो, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी हो जाए और अच्छा हो। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह जप करें 108 बार। अगर संभव हो तो सूर्य देव को एक लोटा जल भी चढ़ाइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का प्रयोग करिएगा, बहुत सुंदर होगा। और नहीं तो नारंगी रंग का एक रुमाल अपने पास हमेशा रखिएगा, इससे आपको लाभ होगा। मीन लग्न, इनका विवाह या तो जल्दी होगा, ज्यादा से ज्यादा 25, 26, 27 की उम्र में या 30 साल के बाद। 25 से 27 तक होने की संभावना या 24, 26 में होने की संभावना ज्यादा है या फिर 30 साल के बाद ही शादी होती है। और इनके विवाह में विलंब होता है क्योंकि ये बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, अपने करियर में, काम में, नाम यश के पीछे भागते रहते हैं और उन्हें परिवार और विवाह के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता, अपने करियर पे ज्यादा फोकस बनाते हैं। लेकिन मीन लग्न वालों की आमतौर पर शादीशुदा जिंदगी अच्छी होती है। अगर ये जल्दी शादी करें तो भी इनको अच्छा पति पत्नी मिलता है और अगर देर में शादी करें तो भी जीवन साथी इनको कुल मिला जुला के एडजस्ट करने वाला अच्छा मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो, जीवन साथी अच्छा मिले, तो रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की माला से बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करें। और धानी रंग का, जो उगते हुए धान का रंग है ना, या हल्का हरा लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग आप जीवन में ज्यादा करें, आपको लाभ होगा। देखिए, मीन वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है लेकिन मीन लग्न वालों को ये सलाह दी जाती है कि अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदार बने रहिए। देखिए, अगर आप स्त्री हैं, बालिका हैं और आपके विवाह में जरूरत से ज्यादा विलंब हो रहा है, आपकी उम्र 34 साल, 35 साल, 36 साल हो गई है, शादी होने में बहुत कठिनाई आ रही है और कुंडली में विवाह का योग है, तो आप हर रविवार को प्रातः काल स्नान करके स्वयं पार्वती मंगल का पाठ करिएगा, निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी होगा। लगातार 6 महीने तक हर रविवार को पार्वती मंगल का पाठ करें अगर आप बालिका हैं। अगर आप पुरुष हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 34 साल, 36 साल, 38 साल, शादी नहीं हो पा रही है, तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें। रोज शाम को लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का रोज शाम को पाठ करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: A good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game, from all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
9: एक अनोखे खेल की तस्वीरें जबरदस्त वायरल है। लड़कियां मिलकर ये अनोखा गेम खेल रही हैं, जिसमें दो लड़कियां लाइन में झुकी हुई लड़कियों को एक टी शर्ट पहना रही हैं। दो गुट इस खेल को खेल रहे हैं और तस्वीरों में दिख रहा है कि इस गुट ने अपनी लाइन की आखिरी लड़की को भी टी शर्ट पहना दी है। गेम जल्दी से पूरा करके ये समूह अपनी जीत पर खुशी से चिल्लाने लगा। लोगों को ये अनोखा गेम खूब पसंद आ रहा है। कहते हैं कि रोटी की कीमत वही जानता है जिसने भूख देखी हो, और पानी की कीमत वही जानता है जो प्यासा हो। तस्वीरों में एक नन्ही बच्ची को एक नन्हे बेजुबान बंदर के बच्चे को पानी पिलाते हुए देखा जा सकता है और लोग इसको देख के काफी भावुक हो रहे हैं। ये भावुक तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल होती अनोखी दोस्ती की भी ये तस्वीर देख लीजिए, जिसमें एक छोटे बच्चे और एक रेप्टाइल के बीच अनोखी फ्रेंडशिप नजर आ रही है। इस अनोखी दोस्ती ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। बच्चा किनारे बैठा है, पानी से एक रेप्टाइल निकल कर आता है, बच्चा उसे सहलाता है और वो भी बच्चे के स्पर्श को पूरी शिद्दत से महसूस करता है। लोग अब इस दोस्ती की मिसालें दे रहे हैं, बच्चे की बहादुरी को भी सराह रहे हैं।
10: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here. On TuneIn.
6: लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
8: अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च। मिशन आगमन के नाम से हुई लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने बधाई। भारतीय नौसेना ने अपने आने वाले युद्धपोत INS मालवान का प्रतीक चिन्ह जारी किया, 22 जुलाई को होगा कमीशन, स्वदेशी तकनीक से किया गया तैयार।
12: 5, 4, 3, 2, 1, 0
13: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle.
14: Normal.
13: And we have great views coming from the tracking cameras and isn't this quite something?
15: Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
8: और चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक शानदार खबर। खबर यह है कि भारत ने अब अंतरिक्ष में नई इबारत लिख दी है, लेकिन भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। भारत में पहली बार प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित पहला ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया है। जी हाँ, पहले से तय समय से करीब 35 मिनट देर से ही सही, लेकिन इस रॉकेट को लॉन्च करने में कामयाबी हासिल हो चुकी है, ये शानदार खबर हम आपको बता रहे हैं। मिशन आगमन के तहत स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 रॉकेट को आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें इस रॉकेट के साथ ये गर्व ग्रह स्पेस और इसके अलावा कॉस्मोस और स्काई रूट के अपने प्रयोग जैसे तकनीकी पेलोड भेजे गए हैं। तो वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा हुआ वंदे मातरम वाला पोस्ट कार्ड, इसरो के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों के संदेश और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश भी इस मिशन में भेजे गए हैं। विक्रम वन कई ग्रहों के छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी से करीब 450 किलोमीटर ऊंची लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगा मिशन से पहला मिशन। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। रॉकेट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने स्काई रूट टीम को फोन पर बधाई भी दी है। हैदराबाद में युवा इंजीनियर्स की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है और ये 23 मीटर रॉकेट है जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है और ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें रॉकेट में 3 स्टेज वाले सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिक्विड फ्यूल वाला ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी इस्तेमाल किया गया है और इसमें कई टेस्ट पेलोड भी ले जाए जा रहे हैं। नवम्बर 2025 में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था जिसने आज उड़ान भरी है। विक्रम वन रॉकेट का मिशन आगमन पूरी तरह से कमर्शियल मिशन के उलट है। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन है जिसे उड़ान भरने के हर चरण में जरूरी डेटा इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें इसके जरिए रेगुलर कमर्शियल लॉन्च शुरू करने से पहले मिशन इंजीनियर प्रोपल्शन स्टेज सेपरेशन गाइडेंस नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम और पूरे व्हीकल्स की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिवानी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, एक बहुत बड़ी कामयाबी अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब भारत को मिल चुकी है।
12: बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली बार किसी निजी कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट जो ऑर्बिटल रॉकेट है अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस हो चुका है और ये मिशन आगमन बिल्कुल पूरी तरह से सफल रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी मिली कि जो भी अलग अलग चरण होते हैं प्रक्षेपण के उन सभी को उनके मिशन के हिसाब से सफलता मिली है और जो पेलोड होते हैं इस रॉकेट में वो पूरी तरह से सुरक्षित और सफल तरीके से अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किए जा चुके हैं। आपको बता दूं कि 450 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो विक्रम वन ने यहाँ पर पूरा किया है और 350 किलो के पेलोड अलग अलग पेलोड थे जिनको उसको अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस करना था। सेपरेशन स्टेज के बाद उनको प्लेस किया जा चुका है, यानी कि जो मिशन है इसमें नई संभावनाएं नई उपलब्धियां नया इतिहास नया कीर्तिमान गढ़ा है भारत के लिए क्योंकि 2020 में भारत की सरकार ने अंतरिक्ष को अंतरिक्ष के पूरे विज्ञान को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला। इन स्पेस और इसरो की मदद से स्काईरूट जैसी तमाम कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। स्काईरूट जिसकी स्थापना 2018 में हुई उसने विक्रम एस जो इसका पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट था उसको 2022 में लॉन्च किया और आज एक बार फिर एक नया कीर्तिमान गढ़ा है जिसमें विक्रम वन जो पहला ऑर्बिट रॉकेट लॉन्चर है उसका एक सफल प्रक्षेपण आज हुआ है।
8: जी बिल्कुल शिवानी, और इससे यही उम्मीद की जा रही है कि यह भारतीय निजी क्षेत्र के एक नए युग में प्रवेश का प्रतीक है।
12: बिल्कुल, देखिए बहुत संभावनाएं हैं जब हम स्पेस साइंस स्पेस रिसर्च की बात करते हैं तो लगभग 6 दशक से इसरो और सरकारी संस्थाएं ही प्रक्षेपण कराती थी। बहुत सारे रॉकेट लॉन्चेस बहुत सारे स्पेस मिशन हमने देखे लेकिन सब कुछ सरकारी होता था सरकारी डोमेन में होता था। पहली बार इस क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया है और लगभग 400 कंपनियां हैं जो स्टार्टअप जिन्हें कहते हैं वो भारत में काम कर रहे हैं स्पेस साइंस में। यानी 2020 से जब ये रूल चेंज हुए तब से 6 सालों में इतनी बड़ी संख्या में ये कंपनीज काम कर रही हैं। एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत सारी जो देश हैं वो भारत की तरफ देखते हैं क्योंकि भारत के जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बार बार अपनी स्किल्स को प्रूव किया है अपने टैलेंट को प्रूव किया है और भारत की जो स्पेस साइंसेज हैं वो न सिर्फ भारत की इन कंपनियों के लिए बल्कि भारत के स्पेस बाजार के लिए एक बड़ी संभावना लेकर
8: जी आए। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम साइंटिस्ट को इसको लेकर बधाई दी है, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं।
14: सर वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज टू हियर यू फर्स्ट योर वॉइस आफ्टर द सक्सेस।
16: भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की और मैं जब आपके इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे तो मन करता था मैं पहुंचू लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम स्पेस को प्राइवेटाइज करना चाहते थे तब मेरे सामने कई सारी आशंकाएं रखी गई थी, ये तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे वैसे करोगे, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ता ही गया। अब आपके कारण मेरे उस निर्णय को ताकत मिल गई है। अब मेरी टीम भी स्वीकार करेगी, यहां देश के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए और वो करके दिखाते हैं। आपने काम करके दिखाया है, मैं आपकी और आपकी टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं।
8: और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
17: 4 3 2 1
13: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
18: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
19: Tune in How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
7: खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य

आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए, और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली
और पाइल्स यानी

0: बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्नकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, यह आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास। पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च, मिशन आगमन के नाम से हुई लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने बधाई दी। भारतीय नौसेना ने अपने आने वाले युद्धपोत INS मालवान का प्रतीक चिन्ह जारी किया। 22 जुलाई को होगा कमीशन, स्वदेशी तकनीक से किया गया तैयार। द्रास में सेना ने चलाया टाइगर हिल अभियान, सैन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया अभियान। लामोचन व्यू पॉइंट पर फहराया गया तिरंगा। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची भारतीय शटलर PV सिंधु। चाइना की वर्ल्ड नंबर 4 चेन यूफेई को 7 साल बाद मात दी, 2 साल बाद खेलेंगी वर्ल्ड टूर इवेंट का फाइनल। पूर्व अंडर 17 विश्व चैंपियन नेहा सांगवान के नाम कुश्ती में एक और उपलब्धि। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में जीता गोल्ड मेडल, 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जीता खिताब।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: वीकेंड आ गया है और सैटरडे का नाम सुनते ही मूड फुल ऑन पार्टी मोड में चला जाता है। कहीं फैमिली के साथ आउटिंग की प्लानिंग, कहीं दोस्तों के साथ गेट टुगेदर, तो कहीं घर पर ही एंटरटेनमेंट का फुल ऑन सेलिब्रेशन। और आज तो टीवी की दुनिया में भी मूड बिल्कुल वीकेंड वाले सेलिब्रेशन की तरह है। तो चलिए आप भी हो जाइए हमारी इस एंटरटेनमेंट से भरपूर पार्टी में शामिल। शुरू करते हैं ये पार्टी, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।
4: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए जनता के सामने वसुधा लाएगी उषा का सच, चंद्रिका को आएगा उषा पर गुस्सा,

0: अनुपमा के सामने पराग दिखाएंगे हीरो वाला टशन, राहिल शुरू करेंगे अपना नया सफर। और साथ ही लखनऊ में दिखेगा बरेली के बच्चन का नया टशन, साथ ही होगा कृष्णा और संगम का खास रिसेप्शन लखनऊ वासियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: जगदात्री तो है हिम्मत और हौसले की एक नई कहानी। ऐसे वीकेंड पर भी ना जो फुल ऑन हिम्मत दिखाए उसे ही हीरो कहलाते हैं, और इस शो की हीरो तो डेफिनेटली हैं हमारी जगदात्री। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको जगदात्री और शिवाय के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्योंकि सुनने में तो आया है कहानी में फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग ड्रामा। लेट्स चेक इट आउट।

0: लगता।
1: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री और शिवाय शादी कर एक ही घर में रह तो रहे हैं, लेकिन इनके बीच की दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जगधात्री जो चाहकर भी शिवाय को कुछ कह नहीं पा रही और शिवाय जो चाहकर भी जगधात्री के दिलों की धड़कन सुन नहीं पा रहा। ऐसे में दोनों के बीच बहुत सारी अनकही बातें हैं जो न जाने कब कही जाएंगी। ऐसे में शिवाय जैसे ही सोने के लिए जाता है तो उसकी नज़र सामने रखी थालियों पर पड़ती है। ऐसे में उसे समझ आ जाता है कि जगधात्री ने खाना नहीं खाया। तभी तो देखिए कैसे वो न सिर्फ खाने की थाली जगधात्री को देता है बल्कि खुद भी खाने की थाली लेकर जगधात्री के साथ खाने के लिए बैठ जाता है।

दो लोग हैं जिनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं और जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताई है। भले इनके घर में मैं पीजी के तौर पे रहता था, लेकिन दोस्ती भी थी, कॉपवर्ड में भी हम साथ हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ें हम एक दूसरे से शेयर करते थे। और आज एक साथ एक कमरे में होके भी मौजूद नहीं है, वहाँ पे खाना खा रहे हैं, करीब बैठे हैं, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं है, बात करने के लिए कुछ नहीं है।

दोनों साथ तो हैं, लेकिन यहाँ न जगधात्री शिवाय से कुछ कह पा रही है, न शिवाय जगधात्री से कुछ कह रहा है, लेकिन दोनों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों ही एक दूसरे से प्यार जो करते हैं, लेकिन अब वो प्यार बयां नहीं कर पा रहे। तभी तो देखिए कैसे जब अचानक खाना खाते हुए शिवाय को ठसा लग जाता है तो जगधात्री उसकी परवाह करती है और जाकर उसे पानी का ग्लास भी देती है।

0: अपने तरफ से हर बात कह चुके हों और जगदात्री के साथ बहुत सारी बातें हैं, बट
1: जगदात्री जो कुछ बोलती नहीं है, कभी बोलती ही नहीं है, बताती नहीं है कि क्या चल गया रहा है इनके मन में। तो ये है वहाँ पे अभी ऐसा भी है कि एक जानवी जो है वो आ गई है और वो बोलती है कि मैं जो है इन्वेस्टिगेट करूँगी कि हुआ क्या था, कि इन्होंने पर्सनल अपने इंटरेस्ट के लिए उसे मारा है, रिवेंज लेने के लिए, या सच में कानून की अपनी ड्यूटी निभाई है। तो कहीं ना कहीं इनको वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ।
2: प्यार हो जब प्यार हो, हर बार हो तुमसे ही।
3: भाई शिवाय की चुप्पी कहीं ना कहीं जगधात्री को कमजोर कर रही है और अब तो जगधात्री को टशन देने के लिए जानवी की भी एंट्री हो गई है, जो अब जगधात्री के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। तो देखना होगा क्या जगधात्री शिवाय से अपने दिल की बात कह पाएगी या फिर जानवी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: वीकेंड और रोमांस का कॉम्बिनेशन भी फुल ऑन हिट होता है, तो कैसा मूड है आज इस जुनूनी की कहानी में? वेल, किस तरफ जा रहा है आज ये रोमांस? क्या आज देखने को मिलेगी यहाँ पर हमें कोई लव स्टोरी, या फिर से चल रहा है कहानी में कोई बड़ा ड्रामा? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको गुरु और रूहानी के पास।

0: तरस गए गुरु और रूहानी। गौतम के पिए की हुई मौत, फिर पुलिस के चंगुल में फंसा गुरु। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर गौतम के पिए की मौत हो चुकी है, यानी कि मिश्रा जी अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उनकी वाइफ अलका देखिए कैसे कर रही है तमाशा। असल में अलका को लगता है कि गुरु ने गोली मारी, जिस वजह से वो घायल हुए, और अब डॉक्टर रूहानी ने उनका इलाज किया और उन्हें जान गंवानी पड़ी। ऐसे में अलका का गुस्सा रूहानी पर फूट रहा है।
1: मिश्रा
2: ने मुझे बुलाया था और उनकी परमिशन के आगे आग पर फैसला मैंने नहीं रखा।
1: ये क्या बात हुई ना, हटिए मुझे चेक करने दीजिए।
0: भाई गुस्से में अलका रूहानी को धक्का मारती है और सही समय पर गुरु आकर रूहानी को बचा लेते हैं। लेकिन तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ है। आग में घी डालने का काम कर रहे हैं गौतम, जो अलका को तो भड़का ही रहे हैं, साथ ही साथ गुरु को भी गुनहगार ठहरा रहे हैं। ऐसे में गुरु भी भड़कता है, लेकिन रूहानी उसे संभालती है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां तो मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं।
3: हाथ भी मत लगा, मार दिया हमारे पति को। ये ना इन दोनों मियां बीवी की मिली भगत है।
2: आपके पति के हत्यारे सजा मैं दिलवाऊं, फांसी के फंदे में चढ़ाऊंगा इस रूप चौधरी।
4: ए गौतम सिंह, ओ चौधरी,
3: मैं तो अपने ही तमाशा, तुम्हारे पति ने मेरे पति पे गोली चलाई, तो
0: इन सब तमाशों के बीच और गौतम की चाल के बीच पुलिस आ जाती है गुरु को फिर एक बार गिरफ्तार कर जेल पहुंचाने के लिए। लेकिन रूहानी पुलिस वालों को रोकने की कोशिश कर रही है और गुरु को छुड़वाने की, लेकिन रूहानी की बात कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में फिर एक बार पुलिस वाले रूहानी को धक्का दे देते हैं और फिर फूटता है गुरु का गुस्सा और वो सभी पुलिस वालों को धक्का मार रूहानी के पास चला जाता है।
1: यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, सब पता है। मिश्रा जी की मौत के पीछे जो कोई भी है ना, सामने लाऊंगी गुरु।
4: मैडम आप ऐसे तो नहीं मिल सकते।
1: देखिए मैं सिर्फ इनकी पत्नी नहीं, एक डॉक्टर भी, और अभी तक मैंने इन्हें डिस्चार्ज नहीं किया, फिर आप इन्हें कैसे लेके जा सकते हैं?
4: मैडम मैं डिस्चार्ज पेपर मिल गया, आपके सीनियर ने दिया।
5: सांस रुक सी गई, जिस्म चिल
1: रुकी, मैं अपने सीनियर से बात करूंगी। आप गुरु को ऐसे लेके नहीं जा सकते, बहुत गहरी चोट लगी है।

0: वही फिलहाल तो पुलिस वाले गुरु को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए हैं, लेकिन रूहानी ने ठान लिया है कि वो सच का पता लगा कर ही रहेगी और गुरु को बेगुनाह साबित करेगी। अब रूहानी ऐसा कैसे कर पाती है ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तो कई सारे ट्विस्ट आने बाकी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: वीकेंड तो अभी जवान है और एंटरटेनमेंट की ये पार्टी भी, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको हमारे इस एक्साइटिंग सेगमेंट की तरफ, जहां एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज कर रही हैं आप सबका इंतजार। वेल, यहां तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। मैं जानती हूं आप नहीं बुझाऊंगी मैं ये पहेलियां, लेकर चलते हैं आपको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर।
0: अनुपमा के समधी बने हीरो,
2: धड़कनों में बस रहे होना।
0: प्रीति चौधरी संग जमी राहिल आजम की जोड़ी,
2: अज से बढ़कर कह चुके हैं ना।
0: राहिल आजम का नया म्यूजिक वीडियो,
2: धड़कनों में बस रहे होना।
0: नए सफर की नई कहानी,

0: के हातिम ने कभी अपनी आशिकी दिखाई तो कभी पुलिस गिरी तो कभी बिजनेसमैन पराग कोठारी बनकर दिखाया अनुपमा को दर्शन। लेकिन अब ये सभी किरदार निभाने वाले राही आजिम करने जा रहे हैं अपना नया सफर, क्योंकि ये बन गए हैं डायरेक्टर, या यूँ कह लो ऑलराउंडर, क्योंकि हाल ही में इनका नया गाना आया है जिसका नाम है शिद्दत, स्ट्रेंथ ऑफ इमोशंस, और इस गाने को उन्होंने खुद लिखा है, खुद फिल्माया है, खुद प्रोड्यूस किया है, इतना ही नहीं खुद एडिट भी किया है। और तो और इस गाने में उनकी एंट्री देखने लायक बनती है, क्योंकि ये हीरो की तरह अपना स्वैग दिखा रहे हैं, लेकिन एक म्यूजिक वीडियो के जरिए एक कहानी लेकर आ रहे हैं अपने फैंस के लिए। सबसे पहले तो देख लीजिए इस म्यूजिक वीडियो का BTS नजारा, जो खुद राहिल ने अपने फैंस के लिए शेयर किया है।
1: या द गर्ल रिवील सॉन्ग स्टार्ट्स।

0: ओके डन रेडी।
1: गर्मी की मां की आंख,

0: कट।
1: अब इतने किरदार करने के बाद कुछ ऐसा है कि मैंने अपने आप को उस तरह से मैंने देखा नहीं। वो जो थोड़ा सा एक हीरो एक टच होता है, एक पर्सनालिटी होती है जो 70s और 80s के हीरोज में हुआ करती थी, जो अभी वो खो गया है कहीं ना कहीं। उसको कहते हैं स्क्रीन प्रेजेंस, वो एक्चुअल में टॉल, 6 फुट, हैंडसम, गुड लुकिंग। तो मुझे पता नहीं मैं कितना हैंडसम कितना गुड लुकिंग हूं, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा स्क्रीन प्रेजेंस उस तरह से हो। तो मुझे तलाश थी एक गाने की। अब शुरुआत यूं हुई कि मैं इंस्टाग्राम की रील्स काफी बनाया करता था। वो बंदा जो सोशल मीडिया से हमेशा भागता था, वो इंस्टाग्राम का सहारा लिया उसने और इंस्टाग्राम की रील्स बनाए मैंने, और मैंने रील्स उन पर बनाए जो गाने ट्रेंडिंग नहीं थे। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप लोग ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे गाने बनाएं, आप दिल से बनाइए। आपको जो अच्छा लगता है ना सुनने में, आपको जो आपकी आत्मा जो कहती है ना, उस पे बनाइए। तो फिर वो जो है वायरल होने लगे। वहां से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं उसको खुद डायरेक्ट भी करता था और उसको खुद एडिट भी करता था। अब एडिटिंग में मुझे काफी समय लगता था, 3-4 घंटे लग जाते थे। तो मैंने सोचा कि अगर 40 सेकंड की अगर रील के लिए मैं 4-5 घंटे एडिट कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं एक 4 मिनट का म्यूजिक वीडियो ही बना दूं। तो शुरुआत वहां से हुई, गाना ढूंढना पड़ा, उसके बाद स्टोरी अपने आप दिमाग में आ गई ऊपर वाले के रहम से, फिर स्क्रीन प्ले, फिर मैंने सीन्स लिखे, उसके शॉर्ट डिविजन किया, फिर आई बारी कास्टिंग की। अभी लड़की की तलाश थी, अब मैं जो हूँ वो एक बहुत बारीकी से मैं हर चीज देखता हूँ मेरे किरदारों में और हर चीज में। 2 महीने लग गए मुझे कास्टिंग के लिए, लड़की के लिए मैंने कम से कम 100-150 प्रोफाइल्स देखे मैंने। बाद में मुझे फाइनली मुझे जो किरदार चाहिए था वो मिला प्रीति चौधरी में। एंड जहाँ तक मुझे लगता है, और मुझे लगता है 100% श्योर, प्रीति ने बहुत बेहतरीन काम किया है। प्रीति चौधरी, वेलकम।
2: थैंक यू सो मच।
1: प्लेजर, प्लेजर।
2: आप कहाँ जा रहे हैं?
1: नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी कि यार एक म्यूजिक वीडियो कर ले, एक गाना तेरे नाम पे हो। तो जब राहिल ने मुझे कॉल किया तो राहिल ने मुझे गाना सुनाया एंड आई वाज मोर देन थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड राहिल को नहीं पता है कि एक्चुअली मैं ही प्रे कर रही थी कि आई विश मुझे इसमें कास्ट करे, बिकॉज इसकी एक ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन है और मैं थोड़ी फिल्मी हूँ, तो मुझे एक्चुअली इसी टाइप का फील बहुत पसंद है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मुझे तो मेरे बचपन के सारे सीन्स याद आ रहे थे, जैसे हम मूवीज देखते थे और आई वॉज living each and every scene. So I'm really thankful and grateful to you ki aapko laga that I can do justice to this role, because it's as an actor, of course music song videos mein gaane bhi hote, like dance once hota hai, but I always wanted to be a part of subject where there are scenes to perform, aur yahan pe mujhe bahut acche se perform karne ke liye mila. So I'm really really happy for it. Thank you so much.
1: Pleasure is all mine.
3: To dekha aapne कितनी मशक्कत की है इन्होंने ये गाना बनाने में। वैसे हाल ही में इनके इस गाने का लॉन्च हुआ है, जहां पर राहिल ने अपनी को स्टार प्रीति चौधरी के साथ बाइक में एंट्री की है, वो भी स्वैग से। और तो और, इनके इस गाने के लॉन्च के मौके पर इनकी पूरी अनुपमा की टीम भी आई है, जिसमें क्या अनुपमा, क्या प्रोड्यूसर राजन शाही और क्या प्रेम राही, सभी राहिल की तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं।
4: आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी टू बी अ राहिल, और सारी DKP, सारी अनुपमा, दीपा शाही जी, शिका, सारी यूनिट की तरफ से लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन।
1: थैंक यू सर,
4: एंड वी आर सो सो प्राउड ऑफ यू।
1: थैंक यू सर।
4: एंड राहिल के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली इज अ फैबुलस एक्टर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव, बट व्हाट अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मतलब जब वो काम करो इनके साथ ना, इतना मज़ा आता है, बिकॉज पॉजिटिविटी, एंटरप्राइजिंग एंड द हार्ड वर्क ही पुट्स इट। एंड कभी मैंने राहिल के मुंह से कभी भी छोटी बात सुनी नहीं है। यू नो व्हेन यू वर्क, अनबन होता है, कभी इश्यूज होते हैं, मतलब सच अ ग्रेशियस पर्सन टू वर्क विद, एंड व्हाट ही इज डन, आई एम सो सो प्राउड, बिकॉज दैट शोज इज एंटरप्राइजिंग नेचर। मतलब वेन एवर आई मीट अप विद राहिल, आई नो मैं 10 चीज़ें सीख के जाऊँगा, विच इज़ अ ब्यूटी एंड आई थिंक ब्रिलियंस एंड वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड, बैलेंस्ड एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बींग, एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड
5: मुझे शिद्दत, इनकी शिद्दत बहुत अच्छी लगी, और
0: क्योंकि इनके जो रील्स हम लोग देखते थे, हम सेट पर होते थे, उनके रील्स कुछ अलग ही होते थे. In fact, it was the most entertaining thing to watch. If you watch Rahil's Instagram also, there's so much entertainment there. And then for him, who makes such funny things, to come up with something, an intense concept like this, wow. So thank you for having the entire Anupama team here. We are all here. And you are always Anupama family. So wishing you all the very best to many more. This is just the beginning.
5: सत्या एंड जतिन, इन दोनों के साथ मैंने शुरुआत की अपनी रील्स की. वरना मैं शुरुआत करता नहीं हूँ. आई वॉज वेरी सोशल मीडिया शाय सर. इन दोनों की वजह से थैंक यू माई ब्रदर्स, थैंक यू सो मच. एंड दैट मेड मी मेक दिस. थैंक यू सो मच.
6: आई एम अ बिग फैन ऑफ राहिल सर. और जिस तरीके से जब मैंने वो शॉर्ट देखा था सिगार फूंकते हुए, तो तभी मेरा मुझे लगा था कि इट विल बी अमेजिंग. I'm a fan of bikes as well. वो भी इन्होंने include कर दी. And we are waiting कब राहिल सर cast करें शिवदा 2 की. तो बता दे when are you casting राहिल सर? We need 2-3 days off.
0: तो आप रील्स बहुत ही अच्छा बनाते थे, बहुत seriously, passionately, जो मुझे बहुत inspire किया है. And congratulations.
5: The backbone of the BTS.
7: Preeti ki tarif karna bhool gaya. Preeti, you were looking fabulous. And I think marne ke baad goli, I think second song mein you can continue as someone who can take revenge for me.
0: So Rahil ji, aapke liye ek kuch aa raha hai dimag mein. Fata poster nikla hero. पहले ही देखते हो जो पोस्टर आपका रिवील हुआ, उसके बाद हीरो वाला जो आपका एक स्टाइल में हमेशा बोलती हूँ. एंड अभी रूप से मुझे बोला, अरे तू तो उनकी रील पार्टनर थी. मैं यस, मैं हूँ रील पार्टनर. आप सबको कास्ट दीदी, वो तो मैं पहले से ही हो चुकी हूँ उनके साथ फेमस. मेरा एक बहुत वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर राहिल जी. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस.
3: भाई मानना पड़ेगा, अलग अलग गानों पर रील्स बनाने वाले राहिल आजम ने बना लिया है अपना एक गाना, जिसमें वो एक अलग कहानी लेकर आए हैं. और ये कहानी है एक डॉन की और एक बदले की आग में झुलस रही लड़की की. खैर, म्यूजिक वीडियो तो वाकई बहुत दमदार है और उसने सभी का दिल भी जीत लिया है.
8: एक म्यूजिक वीडियो में पूरा स्टोरी उन्होंने बताई कि यू नो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड. तो दैट वाज वेरी लाइक वेरी थॉटफुल. आई जस्ट विश कि शिद्दत 2, शिद्दत 3 एंड
2: मतलब मेरे लिए ये है कि राहिल जी जैसे वो जो कंटेंट वो सोचते थे वहां से ये कंप्लीटली डिफरेंट है.
8: ऑफ कोर्स
2: वेरी सीरियस. मतलब राहिल जी से
8: मतलब हम उनका कॉमिक टाइमिंग के ज्यादा फैन है, लेकिन आज हम उनके थोड़ा इंटेंस टाइमिंग के भी हो.
9: मुझे इसके इस वीडियो में सबसे अलग ये लगा कि जब बाइक चल रही थी वहाँ पे बाइक के अलावा और कोई साउंड नहीं था, कोई म्यूजिक, कोई लिरिक्स नहीं था. एंड व्हेन जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंट, इट वाज जस्ट साइलेंट. सो इट्स डिफरेंट. दैट्स व्हाट मेक्स राहिल अ डिफरेंट पर्सन. सो या कांग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड ऑल द बेस्ट.
10: जैसे रूपाली जी ने बहुत सच कहा कि वी यूजुअली seen Rahil ji only doing comedy reels etc. So it was really nice, itna emotional, itni badhiya storytelling. And in fact hame andar pata chala during the launch that he also sings. So I think with this song he has made his debut as a director, a producer, editor, writer. I hope to see him soon making his debut in the next one as a singer also. So yeah, do watch it.
3: वैसे राहिल के इस म्यूजिक लॉन्च में ना सिर्फ अनुपमा की टीम आई है, बल्कि वहाँ पर दिखी है मैडम सर गुलकी जोशी भी, जो पहुँची है राहिल आजम को देने ढेर सारी बधाइयाँ. इसी के साथ वहाँ पर नजर आई हुनर हाली, दलजीत कौर, वाबिस डोराबजी और तो और आए हैं राजू खेर भी. अब नया सफर है, लोगों का साथ तो बनता है. खैर, जब पूरी टीम एक साथ मिलती है तो बरसाती है एक दूसरे के साथ ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियाँ. उम्मीद करते हैं कि जैसा ये गाना दर्शकों का दिल जीत रहा है, वैसे ही राहिल आजम और भी कई सारे गाने लेकर आए, क्योंकि ये सफर अब चलता रहेगा.

0: वीकेंड पर तो आपके फेवरेट स्टार्स भी निकल पड़ते हैं अपने कुछ हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करने, कहीं फैमिली आउटिंग, कहीं ब्रंच, कहीं सैला आउटिंग, तो कहीं ये निकल पड़ते हैं किसी वीकेंड ब्रेक पर। तो चलिए दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट सेलेब्स अप क्लोज एंड पर्सनल, हमारा अगला सेगमेंट जहां हमारा सास बहू और बेटा का बाप राजी करता है इन्हें अपने कैमरा में कैद। तो चलिए देखते हैं कौन कौन हुआ आज स्पॉटेड।
1: अनन्या पांडे बनी दुल्हन, गौरव गुप्ता का फैशन शो, फैशन शो में दिखा सितारों का गाला लुक, बॉलीवुड फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता लेकर आ गए हैं अपना खास कलेक्शन, वो भी वेडिंग सेरेमनी के लिए। और ऐसे में उन्होंने रखा है एक फैशन शो जहां पर अनन्या पांडे बन गई है दुल्हन। जरा देखिए कैसे व्हाइट कलर के चमचमाते लहंगा चोली में अनन्या दुल्हन की तरह इतराती, शर्माती और बलखाती हुई रैंप वॉक पर चलते हुए सामने आई।

इनके अलावा कई और मॉडल्स भी दूल्हा और दुल्हन के अवतार में वहाँ नजर आए। ये सारे कलेक्शन है वेडिंग के लिए, चाहे वो शादी का स्पेशल फंक्शन हो या फिर हो रिसेप्शन का। ये सारा कलेक्शन गौरव गुप्ता लेकर आ रहे हैं और तो और इस फैशन शो में खास परफॉर्मेंस भी हुई जो देखने लायक थी। भाई फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के सभी मॉडल्स ने उनके कलेक्शंस को सभी दर्शकों के सामने पेश तो किया, लेकिन गौरव गुप्ता के फैशन शो की शो स्टॉपर है अनन्या पांडे। ऐसे में उन्होंने सबके आगे आकर अपना न सिर्फ स्वैग दिखाया बल्कि सबका धन्यवाद भी किया है।

0: वैसे फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के इस फैशन शो में बॉलीवुड के कई और सितारे भी पहुंचे हैं, सच धज कर अपना स्वैग दिखा रहे हैं और इनका लुक तो गाला लुक जैसा है। देख लीजिए सानिया मल्होत्रा का लुक, जिन्होंने ब्लैक कलर का गाउन पहना है और स्पेशल हेयर स्टाइल किया है, ऐसे में इनका इतराना तो बनता है। इसी के साथ शोभिता धुलीपाला भी काले रंग के आउटफिट में अपना टशन दिखा रही हैं। स्टेबिन भी पहुंचे हैं ब्लैक कलर के सूट बूट में और साथ ही आई हैं नुपुर सेनन, जिन्होंने इंडो वेस्टर्न साड़ी चुनी है और इस रॉयल कलर की साड़ी में लग रही हैं वो गजब की खूबसूरत। इसी के साथ बॉबी देओल भी अपनी बीवी के साथ पहुंचे हैं और दोनों का लुक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वैसे जोड़ी में तो माधुरी दीक्षित भी पहुंची हैं। ब्लैक कलर के इस गाउन में वाकई उन्होंने जाहिर कर दिया है कि यह असली बॉलीवुड दीवा है। वैसे इनके साथ इनके पति डॉक्टर नेने भी आए हैं, जो इनका साथ दे रहे हैं। इनके अलावा कई और अभिनेत्रियां भी पहुंची हैं, जिन्होंने अपने लुक के लिए वेडिंग थीम ही चुनी है, वो भी रिसेप्शन वाली, तभी तो सबका लुक देखने लायक है। इनके अलावा यश बिरला, जिम शार्बी और फरदीन खान भी सूट बूट पहनकर पहुंचे हैं। अब इतना बड़ा फैशन शो है तो जाहिर सी बात है स्वैग दिखाना तो बनता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: वैसे तो हो रहा है लंच टाइम और मुझे भी लग रही है जोरों की भूख, और मुझे तो आ रही है पिज्जा की खुशबू। ओह माय गॉड, हमारी टीम सास बहू और पेटिया कर रही है पिज्जा स्टोरी रजत वर्मा के साथ। वैसे रजत को तो हमने देखा है कई सारे टीवी शोज में, जैसे कि इतनी सी खुशी, बेहद फालतू। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास और हम भी एंजॉय करते हैं इनके साथ ये पिज्जा वाला लंच।

0: रजत का पिज्जा लव, कुछ पागलपन है, रजत बने मास्टर शेफ, दूसरा मन है, अपने हाथों से बनाया यमी यमी पिज्जा, सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं एक्टर रजत वर्मा, जिन्हें आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि फालतू, बेहद, जमुनिया, दहेज दासी, और हाल फिलहाल में वो नजर आ चुके हैं इतनी सी खुशी में। और आज सास बहू और बेटिया में वो बिताने वाले हैं अपना पूरा एक दिन। भाई फिलहाल तो उन्होंने छोटा सा ब्रेक लिया है सीरियल इतनी सी खुशी के बाद, और आज मुंबई की बारिश का मजा लेने के लिए वो पहुंच गए हैं टॉसन, जहां वो बनाएंगे पिज्जा, चखेंगे पिज्जा, क्योंकि बारिश के मौसम में कुछ यमी यमी खाना तो बनता ही है। भाई इतना ही नहीं, आज तो वो जाएंगे टॉसन के किचन में अपने हाथों से बनाने पिज्जा, और साथ ही हमें भी बताएंगे इसकी सीक्रेट वाली रेसिपी। तो बिना देर किए सीधा चलते हैं टॉसन में और देखते हैं कैसे रजत अपने इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं।
1: मुंबई में मॉनसून का आगाज हो गया है और हाथों में अम्ब्रेला लिए रजत है हाजिर और एंजॉय कर रहे हैं अपना मॉनसून।
2: बहुत सही वेदर हो रहा है, इसी मॉनसून का वेट करते रहते हैं हम लोग मुंबई में कि भाई मॉनसून स्टार्ट हो। और इतना ये वही वाला जैसे आजकल मीम चल रहा है ना, इमरान हाशमी वाला मौसम हो गया और सलमान खान वाली जिंदगी रह गई तो वो वाला मौसम हो गया। और आज हम लोग आ गए टॉसन पिज्जा में अपनी पेट पूजा करने के लिए। इस मौसम में गर्मा गर्म पिज्जा हो जाए तो क्या ही बात हो।
1: तो कितना फूडी है रजत?
2: फूडी मतलब रजत, मतलब मैं टॉसन को तब से जानता हूँ, मतलब 2015 उस टाइम से मुझे ये इनका एक पिज्ज़ा बहुत पसंद आया था। उसके बाद से मतलब कहीं पर भी होता हूँ मैं टॉसन ढूंढ रहा होता हूँ, और वैसे भी बहुत फूडी हूँ मैं, मतलब कहीं पर भी हम लोग स्ट्रीट फूड या कुछ भी, दिल्ली से हूँ यार, दिल्ली वालों को तो खाना तो भाई चाहिए ही होता है अच्छा, तो हम कहीं पर भी होते हैं तो सबसे पहले जो स्ट्रीट फूड होता है वो ढूंढते हैं कि हर जगह बेस्ट स्पॉट्स, हमें सब कुछ पता रहते हैं यहाँ पर। तो कोई किसी भी मेरा कोई फ्रेंड भी कहीं पर जा रहा होता तो बोलता है कि रजत यहाँ पर जरूर से ट्राई कर लियो। सो ऐसे हम लोग ढूंढ ढूंढ के एक स्पॉट ढूंढ लेते हैं यहाँ पे।
1: फिलहाल तो हम हैं वर्ली में टॉसिन पिज्जा का लुफ्त उठाने के लिए रेडी।
2: यस लेट्स गो।
1: तो और बातें भी करेंगे और भी मस्ती फन,
2: बस खाने देना मेरे को।

0: इतना तूफानी मौसम हो रहा है रजत, तो कुछ ऐसा तूफानी करने को यहाँ आकर भी मन हो?
1: अरे एकदम क्यों नहीं करेंगे तूफानी, इतना अच्छा टेस्ट मिलता है टॉसन में, तो आज जानते हैं कि होता कैसे है और क्या क्या मिलाते हैं ये लोग, इनकी सीक्रेट रेसिपी क्या है जो इन्होंने पहली बाइट ली और तब से मेरा फेवरेट हो गया। लेट्स सी, किचन में चलते हैं।
0: ऐसे कभी किचन में घर पे कितना टाइम मिल पाता है, ऐसे कभी कुछ ट्राई किया है?
1: हाँ मतलब जब से बॉम्बे शिफ्ट हुए तब से तो किचन ही संभालना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो थोड़ा मोड़ा बनाना आ गया है, लेकिन बस मतलब पहले तो पानी उबालना आता था, अंडे उबालने आते थे, बस अब तो सब कुछ मतलब बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, दाल वाल मतलब बेसिक खाना बना सकते हैं, तो अच्छी चीज़ है। कुकिंग आनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है।
0: क्योंकि उसमें एक और एड ऑन हो जाएगा, पिज़्ज़ा बनाना भी आ जाएगा।
1: बस फ्रांस का वीजा यहीं से लगेगा, पिज्जा बनाना आ जाएगा मेरे को, तो इटालियन अब खिला सकता हूँ मैं किसी को भी।
2: तो भाई जब किचन में जाना है तो ग्लव्स पहनने होंगे और सर पर कैप लगानी होगी ताकि वो मास्टर शेफ बन जाए और अपने हाथों से बनाए ये पिज्जा। तो चलिए चलते हैं किचन में।
1: तो चलिए चलते हैं टॉसन पिज्जा के किचन में और जाके देखते हैं इनकी सीक्रेट रेसिपी क्या होती है और कुक करते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा पिज्जा। ओ, इनका यहाँ पर रूल है कि पहले अपने बालों को कवर करना है और ग्लव्स पहनना है। पता नहीं ऐसे टेस्ट कैसे आता होगा इनके पिज्जा में, क्योंकि हमें तो भाई गोलगप्पे वाली आदत है, जब तक तो वो खुद से पसीने वाले हाथ से वो ऐसे टेस्ट ना आए ना तब तक तो वो टेस्ट कैसे आता है, लेकिन इनका कोई स्पेशलिटी है। लेट्स सी।
2: तो भाई आज रजत अंडर गाइडेंस बनाने वाले हैं पिज्जा, तो बेस तो तैयार है, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिंग्स और क्या क्या सॉस लगेंगी जिससे पिज्जा का स्वाद और भी ज्यादा निखर कर आएगा, और जब ये पिज्जा रजत बना रहे हो तो उसके क्या कहने।
1: तो अभी आ गए हम टॉसन पिज्जा के किचन में और मेरा जो यहाँ का फेवरेट पिज्जा है वो है ओजी पेरी पेरी वेज पिज्जा। लेट्स सी, और हम चुपके से ना यहाँ पर वो रेसिपी सीखने की कोशिश करेंगे, हालांकि आएंगे यहाँ पर खाने के लिए लेकिन कभी किसी को खिलाना हुआ, घर पे खुद का पेट भरना हुआ तो खा बना लेंगे। तो भैया क्या क्या करना है? ओके तो ये मैं करूँ? आप पकड़ो, आप मेरा इंटरव्यू ले लो।
2: तो चलिए बिना देरी किए झटपट से शुरू करते हैं पिज्जा बनाने का ये प्रोसेस शुरू।
1: तो एकदम राउंड सा बना दिया है, बेस रेडी है, अब इसके ऊपर ये क्यों करते हैं
3: सर? नीचे ही पक्का कर दीजिए।
1: ओके हो गया, चलो जी रोलर चल गया है इसके ऊपर,
3: इसके बाद

0: नीचे रख।
1: अच्छा नीचे रखो, मतलब
0: बेस के तो नीचे रख।
1: अच्छा अच्छा ओके ओके ओके ठीक है। तो अभी तो हो गया ना, खराब हो गया अभी तो। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा फैला दिया है, थोड़ा सा कम फैलाना होता है, बेस से थोड़ा सा ऐसे ऐसे साइड साइड से अलग रखा होता है। बिल्कुल बात नहीं, पहली बार है,

0: ये भी पूरे स्प्रेड आप देख रहे हो यहाँ पर टॉपिंग्स की ना कोई कमी नहीं पड़ रही है, तो एकदम जितना है एकदम भर के आपको फ्लेवर मिलता है इसीलिए।
1: उसके बाद ऐसे
0: डिजाइन बनाना पड़ता है, ब्यूटीफाई करेंगे।

तो अभी हमने इसमें डाले हैं बहुत सारे वेजीज, हमने डाले हैं इसमें स्पिनच, अनियन, टमाटो, एल्बिनो और बिल पेपर, ये सारे बड़े ही अच्छे वेजीज हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। लेट्स सी, अब हम अपना फेवरेट चीज़ डालने वाले हैं जो पिज्ज़ा जिसके बिना अधूरा है, चीज़।

0: तो आप चीज की क्वांटिटी देख रहे हो यहाँ पर ना, ये मेरा अभी माउथ वाटरिंग ऐसा फील होने लगा है मेरे को, क्योंकि चीज देखो कितना सारा है इसमें।
1: यार दीजे पुसी संदा दे नाल परी होई आ, बारी खुली
0: आ। And this cheese is 100% mozzarella, no blend. So it's gonna taste yum.

0: जी पिरी पिरी वेज पिज्जा, तो प्लीज आप इसके खाने के लिए टॉसिन में जरूर आइएगा।
1: करते करते कितनी भूख लग गई है?
0: भूख तो मैं चीज देख के हो गया ऐसा कि फील कि भाई इतना सारा चीज यम यम अब खाएंगे, लेट्स सी अब क्या बन के आता है। कहीं मैंने अच्छा तो बनाया है ना, वैसे अच्छा तो किया था मैंने, शायद से देख के तो अच्छा लग रहा था, कलरफुल सा लग रहा था, और चीज़ देख के तो यार वैसे ही मन सा वो हो गया है कि जल्दी से बन के आए, बस टेस्ट करते हैं। और
1: पिज्ज़ा बनने के बाद वैसे पूछना चाहिए, बट बनते बनते ही हम पूछ लेते कि रजत ये पिज्ज़ा किसको, किस स्पेशल को खिलाना चाहते, अगर लेके आना चाहते और पिज्ज़ा खिलाना चाहते तो किसे लेके आते?
0: यार मेरे ना मतलब पहले तो मैं खुद ही इतना तगड़ा पिज्ज़ा लवर हूँ तो पता नहीं दूसरों के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, बट हाँ कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो सर्कल है जिनके साथ हम बैठ के एंजॉय करते हैं, तो वो मेरे कुछ है फ्रेंड, लक्ष्य है, अक्षय है, ये सब। सेट पे तो हम लोग खैर अभी इतनी से खुशी में हम लोग थे, तो सुम्बुल उम्बुल हम लोग सब लोग बहुत पिज्ज़ा खाते थे, हाँ तो वो सब चीज़ें थी, बट अभी फ़िलहाल तो मैं हूँ यहाँ पर, तो आप और मैं हम लोग मस्ती से खाएंगे, और क्या इधर शेयर नहीं करना पड़ेगा। यार ये पिज्जा 2 मिनट की मैगी जैसे क्यों नहीं होता है, फटाक से क्या फटाक से आ जाता ना, इतना इंतजार कर रहा है। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा आजा आजा आजा आजा, मैं हूँ भूखा तेरा। इट्स कमिंग ऑन द वे, ETA 5 मिनट्स।
2: तो भाई एक पिज्जा तो कुक हो रहा है, अब बारी दूसरे पिज्जा की जो यहाँ के शेफ बना रहे हैं। असल में ये पिज्जा है आज की स्पेशलिटी, यानी कि क्रैनबेरी पिज्जा, जिसे खाने के लिए रजत काफी एक्साइटेड है। लेकिन खाने से पहले वो ये देख रहे हैं कि ये पिज्जा कैसे बनता है और इसमें क्या कुछ टॉपिंग्स यूज होती है।
0: तो एक इनकी सीक्रेट रेसिपी तो मुझे मिल गई है, ठीक है, मेरा सिग्नेचर वाला वो पिज्जा जो है बन रहा है। तब तक अरे ये क्या बना रहे हैं? हेलो भैया, क्या बना रहे हो आप?
3: सर ये आज ही लॉन्च हुआ है। सर
0: आज ही लॉन्च हुआ है, क्या होता है इसमें, क्या डलता है?
3: सर बफेलो सॉस जाते हैं हम लोग का, स्मोकिंग चिकन, स्प्रिंग ऑनियन, ऑनियन, फ्रेश जलेपिनो सर।
0: ओके, एंड ये क्या है? ये क्रैनबेरीज है क्या? ओके, तो गाइज इनका नया क्रैनबेरी पिज्जा आज ही लॉन्च हुआ है। ये तो अलग इनके सीक्रेट रेसिपी हो गई, एक सीखा दूसरा लेके आ गए ये लोग, अब ये भी ट्राई करना पड़ेगा भाई। ये वाला इनको बनाने देते हैं क्योंकि ये वाला मुझे फ्लेवर ट्राई करना है, सो इसमें कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा सा भैया बनाना, ठीक है, ये मेरे पेट में जाना चाहिए और अच्छा होना चाहिए ये, ओके, ऑब्वियसली अच्छा होगा, टॉसिन पे भरोसा है। अरे मेरा पिज्जा आ गया।
2: तो फाइनली रजत के हाथों से बनाया हुआ पिज्जा कुक हो चुका है, जिसे देख कर देखिए रजत कितने खुश हो रहे हैं। अब बारी इसे चखने की।
0: पिज्जा गाइस, पिज्जा बन गया है मेरा।
4: जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की
0: ऑलरेडी अप्रो। तो देखो मैंने इतनी मेहनत करके पिज्जा तो बना दिया है, अब प्लीज आप इसे ना काट वाट के ना एकदम सर्व कर दो अच्छे से, मैं जाता हूँ बाहर वेट करता हूँ, और अपना प्लीज ये सिग्नेचर क्रैनबेरी वाला ना वो भी लेते आइएगा, ओके। तो बस आने वाला है पिज्जा, फिर बारिश के मौसम में मस्त हम पिज्जा एंजॉय करेंगे, आप वेदर देखिए, तब तक मेरा पिज्जा है।
2: तो भाई लंबे इंतजार के बाद फाइनली पिज्जा आ ही गया, लेकिन पिज्जा टेस्ट करने से पहले बारी इसकी तस्वीरें खींचने की, क्योंकि रजत ने इसे अपने हाथों से जो बनाया है तो तस्वीरों में ये याद कैद करना भी तो जरूरी है। तो भाई अब इंतजार हुआ खत्म और बारी टेस्टिंग की, तो आइए रजत से ही जानते हैं कैसा बना है ये पिज्जा।
0: अब है इम्तिहान की घड़ी, देखते हैं जो मैंने बनाया है वो कैसा टेस्ट करता है।

0: नॉट बैड रजत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कुक है तू।
1: तो गाइज, मुझे तो ये पिज्ज़ा बहुत पसंद आया, पर अब हम एक और इम्तिहान की घड़ी है। हम जो यहाँ के ओनर हैं उनको पिज़्ज़ा खिलाएंगे और देखते हैं वो मुझे कितने नंबर देते हैं उनके ही रेस्टोरेंट में। हम उनको ही पिज़्ज़ा खिलाने वाले हैं। लेट्स सी। सर बताइए, टेस्ट करिए।
2: थैंक यू। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा दिख रहा है।
1: यस,
2: लेट मी सी हाउ इट टेस्ट्स। द प्रोडक्ट विल बी गुड,
1: आई नो।

0: लो बैलेंस है।
1: नाइस
2: गुड।
1: कितने नंबर देंगे आप मुझे इसमें?
2: सॉस थोड़ा सा ज्यादा था। वी ऑलवेज वर्क फॉर परफेक्शन बट आई विल स्टिल गिव यू अराउंड 7.5।
1: नो नाइस गुड 7.5।
2: बट आई विल गिव यू अ नाइसर पिज्जा with cranberries on it which we've imported from the US.
1: Yes, I just got to know. Yes. All right.
3: तो अब इनका क्रैनबेरी पिज्जा खाने को मिलेगा। लेट्स सी, आज ही लॉन्च हुआ है तो टेस्ट करके बताते हैं कैसा है।

0: तो भाई ओनर ने तो इन्हें दिए हैं 10 में से 7.5 नंबर। अब बारी क्रैनबेरी पिज्जा को टेस्ट करने की।
1: तो ये क्रैनबेरी पिज्जा एंड आई एम द लकी वन जो ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको बताएगा इसका रिव्यू कि हाउ इज इट।

0: yo claro,
1: pero yo creo la revolución. Dale something new. ये मतलब एक बेसिकली चीज है जैसे लोग पाइनएप्पल पिज्जा खाते हैं आप क्रैनबेरी पिज्जा ट्राई कर सकते हैं ये बहुत अमेजिंग लगेगा ये जो कॉम्बिनेशन इट्स समथिंग न्यू एंड आपको सच में बहुत पसंद आएगा
2: मुझे तो बहुत अच्छा लगा
3: तो भाई अपने हाथों से बनाया पिज्जा खाकर और ये क्रैनबेरी पिज्जा खाकर रजत का तो दिल खुश हो गया
4: तो पेट पूजा हो गई है गाइस अब निकलते हैं हाँ इनको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है मैं तो एक लॉयल कस्टमर हूँ टॉसन पिज्जा के साथ 2015 से सो जब मैंने पहली बार ट्राई किया था नोएडा में सो उसके बाद से मैं हर जगह जहाँ पर भी जाता हूँ मुंबई में भी तो यहाँ पर भी आया था तो यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स थे जहाँ पर हम पिज्जा ट्राई करते थे बट मैं यहाँ पर भी टॉसिन ढूंढता था कि यार टॉसिन वाला जो टेस्ट है ना तो वो नहीं मिल रहा था मुझे फिर उसके बाद आसपास खुला फिर पता चला कि फिर वही हो गया मेरा फेवरेट प्लेस सो थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस और मुझे बहुत मज़ा आया एंड आप लोगों के सच में रेसिपी और जो क्वालिटी है दैट इज़ वेरी गुड सो मैं तो आता रहूँगा तो थैंक यू सो मच
5: मोस्ट वेलकम
3: तो भाई सास बहू और बेटियां संग आज रजत की ये पिज्जा पार्टी रही काफी शानदार अब वक्त तो चला है इन्हें बाय बाय कहने का उम्मीद है रजत वर्मा फिर एक बार नए किरदार के साथ टीवी पर लौटें और अपने दर्शकों का मनोरंजन करें मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अब वीकेंड की पार्टी हमारे लिए तब और भी एक्साइटिंग हो जाती है जब उसमें आते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया में जहां कुछ खबरें करती हैं रॉक तो कुछ करती हैं हमें शॉक जी हां सही पहचाना आपने लेकर चलते हैं हम आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें रॉकिंग वीडियो देख लीजिए जेनिफर विंगेट का जेनिफर विंगेट हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड विलियम के साथ शादी के बंधन में बन चुकी हैं लेकिन अब उनकी शादी से पहले का एक वीडियो सामने आया है जहां पर उन्होंने पहना है अपनी शादी का जोड़ा और निभा रही है शादी की रस्में

0: आजकल जवाब जो है ना वो हर जगह मिलने लग गया है, आपकी जेब में भी। नहीं समझे।
1: सोनी टीवी पर 10 अगस्त को टीवी पर दस्तक देगा कौन बनेगा करोड़पति 18। ऐसे में अमिताभ बच्चन के कुछ प्रोमोस सामने आए हैं जहां पर उन्होंने कर दिया है केबीसी का आगाज।
0: भूगोल, इतिहास, खेल, विज्ञान, इन सब का ज्ञान इस बार केबीसी में काफी नहीं होगा क्योंकि अब खेल जो है वो बदल गया है। केवल उत्तर याद रखने से काम नहीं चलने वाला, सोचना पड़ेगा। जी हाँ।
1: डायरेक्टर एसएस राजा मौली ने अपनी आने वाली फिल्म मंदाकिनी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जहां पर प्रियंका चोपड़ा का लुक रिवील हुआ है और ये शूटिंग हुई है वाराणसी में।

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप से आ रही है रॉकिंग न्यूज। खबरों की माने तो जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है, और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कोई और नहीं बल्कि अपूर्वा मुखीजा है, जो कि रेबल किड के नाम से जानी जाती है और ये एक कंटेंट क्रिएटर है। प्लस का सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम से आ गई है शॉकिंग न्यूज। खबरों की माने तो ये सीरियल जल्द ही अपने दर्शकों से अलविदा कहेगा और इस सीरियल की लास्ट डे शूटिंग होगी 30 जुलाई को। हालांकि अब तक इस सीरियल से जुड़े किसी भी कलाकार ने इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी है। LSG की बिजनेस हेड रेखा वेद ने अपने घर में रखी है माता की चौकी, जहां पर पहुंच गए हैं तुम से तुम तक के सभी कलाकार माता रानी से आशीर्वाद लेने, जिनमें शामिल है शरद केलकर, निहारिका चौकसी और भी कई कलाकार पहुंचे हैं माता रानी का आशीर्वाद लेने। भाई सीरियल TRP में अब अच्छा कर रहा है, तो ऐसे में आशीर्वाद लेना तो बनता है।

सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में जल्द ही खास मेहमान बनकर नजर आएंगी मीनाक्षी और जयप्रदा। दोनों ही सेट के बाहर स्पॉट हुई हैं देसी अवतार में। इसके साथ जावेद जेफरी भी नजर आए हैं।

दंगल टीवी के सबसे लंबे चले आ रहे शो मन अति सुंदर में जल्दी होने वाली है न्यू एंट्री। और ये न्यू एंट्री किसी और की नहीं बल्कि आशीष चतुर्वेदी की है, जो कहानी में लाएंगे ट्विस्ट।

फहान पांडे और अनित पड्डा का फिर से नजर आई है सैयारा वाला आशिकी। असल में फिल्म को हो गए हैं पूरे एक साल, ऐसे में दोनों फिर से मिले हैं और शेयर कर रहे हैं अपनी खुशी की कुछ तस्वीरें।

हाल ही में रणदीप हुड्डा और उनकी बीवी लिन ने अपनी बेटी के अन्नप्राशन की रस्मों की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं अपने फैंस के लिए। हालांकि अब तक बेटी का चेहरा रिवील नहीं हुआ है,

अनुष्का रंजन ने हाल ही में अपने फैंस के लिए शेयर की है कुछ तस्वीरें अपने बहन की शादी की, जहां पर उन्होंने अपनी एड ऑन फैमिली की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

0: आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है, आप हाथ उठा सकते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई अलग आए हैं, किसी अलग प्लेनेट से आए हैं आप, लेकिन ये जो चार्ज आपने किया ना, ये अलाउड नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं होना चाहिए।
1: देख लीजिए अमेज़न प्राइम के रियलिटी शो अलायंस का ये प्रोमो, जहाँ पर कुणाल खेमू कुशाल टंडन पर गुस्सा दिखा रहे हैं।
2: इस हफ्ते भी है टोटल तहस नहस, लेकिन इस हफ्ते चॉइस आपकी है।
3: वो किस तरीके से आपके बारे में भी बोलता है, हाँ सबके बारे में, उसके लिए सब यहाँ पे पपेट्स।
4: You don't have to play into them.
1: इसी के साथ वर्षज फिर से वापस आ गए हैं अपनी टीम बनाने के लिए।
3: तो आया रात को, अगले दिन वहाँ बैठ के कह रहे हैं अग्गू को निकाल देते हैं।
5: हाय पायल।
6: अच्छा हाय भी नहीं कर रही,
7: पर दिख गया कौन दोस्त है कौन नहीं, टीम को पूछा भी नहीं कहाँ हो तुम।
8: उसने भी आके ऐसा नास्टी लेटर पढ़ा है, थप्पड़ से ज्यादा आपकी जबान चुभती है।
9: This is not your life.
10: वीकेंड नए सपनों और नई उम्मीदों का दिन भी होता है, तो चलिए पता कर आते हैं आज मन्नत की कहानी में किस दुआ को मिल रही है एक नई राह। वेल, मन्नत की कहानी भी है ट्विस्ट से भरपूर। एक्चुअली देखिए, कहानी में विलन्स की कमी नहीं है, कोई ना कोई मन्नत के रास्ते में जाल बिछाता ही है। वो फंस जाती हैं, फिर निकलती हैं, फिर आता है एक नया ट्विस्ट, फिर फंस जाती हैं, लेकिन ये कहानी है सुपर एंटरटेनिंग। तो चलिए फिर पता कर आते हैं इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आपको मन्नत के सेट पर।
11: सितारे सितारे मिले सितारे,
1: मान्यता और अभिमन्यु का नच बलिए,
11: नजारे तुम्हारे ओ सितारे, सितारे
1: जोड़ी के बीच झूम कर नाचे बच्चे,
11: सितारे तभी तो हुए नजारे तुम्हारे,
1: बच्चे बने डांस ब्रेकर।

कलर्स के सीरियल मन्नत में जल्द ही अभिमन्यु और मान्यता की शादी होने वाली है और आज हो रही है इनके संगीत की रस्म, जहां पर जश्न का माहौल बना हुआ है और उसी माहौल में अभिमन्यु और मान्यता दोनों ही प्यार में गुम हो गए हैं। तभी तो देखिए कैसे होने वाले दूल्हा दुल्हन पहुंच गए हैं नच के मंच पर और एक दूसरे का हाथ थामे फरमा रहे हैं रोमांस।

मान्यता तो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि इनके डांस के बीच पहुंच गए हैं बच्चे यानी कि दुआ, बंटी और यूवी, और देखिए कैसे इनके बीच ये भी तीनों फुदक रहे हैं, नाच रहे हैं, और तो और इनके डांस में ब्रेक भी लग रहा है इन्हीं बच्चों के चलते। ऐसे में कहीं न कहीं मान्यता को गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि बच्चे अभिमन्यु और उसके बीच की दीवार जो बन रहे हैं।

भाई बच्चों को इस तरह से दोनों को डिस्टर्ब करता देख मन्नत हैरान रह जाती है और तो और तीनों बच्चों को डांस के मंच से नीचे लाती है और उन्हें आदेश देती है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा।

0: इतना ही नहीं, वो तो तीनों को ले जाती है रसोई में भी, और वहाँ पर वो तीनों को समझाने की कोशिश कर रही है, खासकर युवी को। भाई मन्नत ही नहीं बल्कि बच्चे भी जानते हैं कि आखिर मान्यता झूठ बोल रही है। खैर मन्नत तो जानती है कि बच्चे मासूम हैं। ऐसे में मन्नत ने युवी को समझाया बुझाया, बंटी और दुआ को भी समझाया कि अगर वो ऐसा करेंगे, बीच बीच में आएंगे तो उनका प्लान फेल हो सकता है। इसीलिए अपने प्लान को कामयाब करने के लिए मन्नत ने तीनों को अपना फैसला सुना दिया है और तीनों मन्नत का साथ भी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीयूष राजवंश भी चाहते हैं कि इस संगीत की रस्म में अंकित और विभा दोनों डांस करें। ऐसे में दोनों को वो अपने सामने डांस करने को कहते हैं कि तभी वहाँ पर आ जाती है सम्रागी और अंकित और विभा के डांस पर ब्रेक लगाकर वहाँ से अंकित को ले जाने लगती है। ऐसे में पीयूष सम्रागी को समझाता है लेकिन सम्रागी पीयूष को अपना टशन दिखाकर और अल्टीमेटम देकर वहाँ से चली जाती है और बेचारे पीयूष चुपचाप बैठे रह जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर आती है दुआ भी, जो करना चाहती है पीयूष का धन्यवाद। फिलहाल तो दुआ ने परमिशन मांग ली है स्टेज पर जाकर पीयूष राजवंश को थैंक यू कहने की, लेकिन दुआ भी चालाक है। देखना होगा कि अब दुआ कौन सा नया राज खोलेगी जिसके चलते अभिमन्यु का अतीत फिर से सामने आएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सैटरडे का मूड होता है फुल ऑन सेलिब्रेशन का, और एंटरटेनमेंट की महफिल अभी तो और भी रंगीन होने वाली है क्योंकि संभाल कर रखी है हमने ये स्पेशल स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, क्या सब कुछ मैं ही बता दूंगी आपको? फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
0: संगम और कृष्णा का रिसेप्शन। लखनऊ में बरेली के बच्चन्स,

0: संगम बनी दुल्हनिया, कृष्णा बना दूल्हा, लखनऊ के वासियों संग हुआ बरेली के बच्चन का ग्रैंड रिसेप्शन, सास बहू और बेटियां पहुंच गया है लखनऊ, जहां पर बरेली के बच्चन के घर में हो रहा है शादी का तामझाम। जी हां, संगम और कृष्णा की हो रही है शादी और रिसेप्शन, लेकिन बरेली में नहीं बल्कि बरेली के स्टेट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जी हां, सारे बच्चन लखनऊ पहुंचे हुए हैं, इसीलिए इनकी मुस्कुराहट देखने लायक है। दुल्हन यहां सज रही है और दूल्हे राजा का भी श्रृंगार कुछ कम नहीं है, और तो और इनके भाइयों का टशन भी देखने लायक है। सब सज धज कर तैयार हैं ताकि लखनऊ में ये बरेली के बच्चन अपना टशन दिखा सकें। कैसी है शादी की तैयारी, लखनऊ में कैसे बरेली के बच्चन मचा रहे हैं धमाल, कैसा है संगम का शादी वाला लुक, कैसा है कृष्णा का दूल्हे वाला लुक, भाई ये सब हम आपको दिखाएंगे, वो भी मुस्कुराते हुए, क्योंकि सास बहू और बेटियां पहुंच गया है लखनऊ। तो चलिए करते हैं मुलाकात संगम और कृष्णा से, जो अपनी शादी का फर्स्ट लुक हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं संगम के मेकअप रूम में, क्योंकि वो दुल्हन बनने जा रहे हैं। अब तक आपने उन्हें इंडो वेस्टर्न लुक में देखा है, लेकिन आज संगम ये खास ड्रेस पहनने वाली है।
1: ओके हेलो, मैं हूँ आपकी चहीती संगम, जो बॉम्बे से, पहले बरेली से बॉम्बे से अब लखनऊ पहुंच चुकी है। तो मुस्कुराइए कि अब लखनऊ में है, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपनी रिसेप्शन के लिए रेडी हो रही हूँ। और आज हम साड़ी पहनने वाले हैं, जो है ऑरेंज कलर की साड़ी।
2: बता दो।
1: या मैं दिखा देती हूँ लोगों को, ये है मेरी साड़ी, आज का लुक ही होने वाला है। और अभी हम बस मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी अब बस मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। मेकअप अगेन वही सेम रहेगा, काफी लाइट सा ही रहेगा। और यस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, अभी हम रिहर्सल करके आए हैं एंड अब बस मीडिया भी पहुंच चुकी है, तो जल्दी जल्दी रेडी होना है, तो चलो रेडी होते हैं।
0: भाई शादी है तो मेकअप भी ग्रैंड होगा, इसीलिए मेकअप और हेयर की टीम लगी हुई है, ताकि लखनऊ में बरेली के बच्चन की दुल्हन चमक सके। और इस चमक का नतीजा है कि फटाफट हो रहा है इनका साज श्रृंगार, जहां पर चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर स्किन को किया गया है इवन टोन, और आंखों को चमकदार बनाने के लिए लगाया जा रहा है चमकीला आई शेडो। भाई बरेली के बच्चन की दुल्हन है, सबसे अलग दिखनी चाहिए।

0: हेलो संगम इज रेडी, मेकअप इज डन, अभी बस मुझे कॉस्ट्यूम में चेंज करना है एंड देन आई विल बी रेडी फॉर द इवेंट एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड. आज लुक भी थोड़ा अलग है, थोड़ा मेकअप अप किया है बिकॉज हम लखनऊ में आए हैं. यूजुअली इतना नहीं होता है बट यस आई एम वेरी एक्साइटेड. तो चेंज करके आती हूँ.
1: संगम का मेकअप तो हो गया और साथ ही हो गया इनका हेयर स्टाइल भी. इसी के साथ इन्होंने पहन ली है दुल्हन वाली साड़ी और ये बन गई हैं दुल्हनिया.

0: get ready.
1: अब बारी है दूल्हे राजा से मिलने की। यूँ तो प्रवेश मिश्रा अपने सभी सीरियल्स में कई बार दूल्हा बन चुके हैं, लेकिन बरेली के बच्चन का कृष्णा पहली बार दूल्हा बन रहा है, इसीलिए तो दूल्हे राजा का टशन भी जरा अनोखा है, बिल्कुल बरेली के बच्चन की तरह। तो कृष्णा बच्चन की क्या है दूल्हा बनने की तैयारी, आइए देखते हैं।
2: यही सोच रहे ना कि मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे भाई मुस्कुराएंगे क्यों नहीं, लखनऊ में है तो नवाबों के शहर में हम आ गए हैं। हमारे शो में अब संगम की शादी हो, मतलब मेरी और संगम की शादी हो चुकी है। संगम घर के अंदर आ चुकी है और घर वालों ने एक सरप्राइज रिसेप्शन, जिसे पढ़े लिखे लोग रिसेप्शन कहते हैं, हमारे घर पे कोई रिसेप्शन कहता है, कोई रिप्रेशन कहता है, कोई रिस्पेशन कहता है, जो मुंह से निकल जाए, तो वो रखा है। लेकिन बात ऐसी है कि सच्चाई कोई जानता नहीं है कि शादी की सच्चाई क्या है, संगम को मैं कैसे घर के अंदर लाया हूं, और रिसेप्शन कर पाएंगे या नहीं, होना चाहिए या नहीं, मतलब संगम स्टेज पे आएगी या नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। तो वो आए ना आए, मैं उसको लेकर, हमारे भाइयों को लेकर, सबको लेकर लखनऊ आ गया हूँ, लखनऊ के लोगों से मिलने, उनसे दिल खोल के बात करने। तो वो सब तैयार हुए उसके लिए। हाँ, आज कृष्णा वो नॉर्मल जो कृष्णा पहनता है ना, जीन्स और शर्ट और बनियान, वो सब नहीं है, देख रही हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन
3: क्या बात,
2: या तो ब्राउन पहने या ब्लू पहने, टाई या तो लाल पहने या ऑरेंज पहने। तो मैं बस रुका हूँ कि जरा पता चले संगम की साड़ी कौन सी पहन रही है, तो जो भी जो उनसे मैच होगा
3: बस
2: हम वो वाला कपड़ा पहनेंगे। ये मेरा जो मोर पंख वाला वो है जो कृष्णा हमेशा पहनता है, ये तो मैं पहनूंगा ही, मतलब चाहे कपड़ा बदल जाए लेकिन किरदार नहीं बदलना चाहिए इंसान का, तो ये मेरे किरदार की निशानी है मेरे लिए। और हाँ, ये रिंग ये जो पहनता हूँ, तो ऐसा जब ये उंगली में जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस अब सुदर्शन चक्र चलाना है कृष्णा को। हाँ, दूल्हा तो घोड़ी पे चढ़ के तैयार है कि बस मैडम आए हों तो भगा के ले जाए। वैसे मैं मेकअप करता नहीं हूँ, लेकिन क्या आज संगम जी तैयार हो रही है ना, तो उनके टक्कर का बनने के लिए थोड़ी सी कोशिश है बस। ये लोग बोलेंगे जोड़ी अच्छी है, कोई ऐसा ना बोल दे कि लड़का प्यार तो करता है बहुत ज्यादा, लेकिन दिखता थोड़ा उन्नीस है, मामला 19-20 नहीं 20-21 होना चाहिए।

कृष्णा तो रेडी हो गए क्योंकि इनका रिसेप्शन है, इसीलिए इनका लुक भी रिसेप्शन वाला है। अब हमने कृष्णा को तो कभी सूट बूट में नहीं देखा, लेकिन आज कृष्णा ने पहना है ये ब्लू सूट और टाई वाई लगाकर ये बिल्कुल जेंटलमैन बन गए हैं। और सबसे खास है इनका ये सहरा, वो गाना सुना है ना, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, तो आज हमारे बच्चन बाबू भी सुहाने लग रहे हैं इस दूल्हे के लुक में।

लखनऊ वासी भी रेडी हैं और हमारे बच्चन भी रेडी हैं और इनकी एंट्री हुई है ग्रैंड। भाई लखनऊ अपने रिक्शा के लिए मशहूर है, इसलिए इनकी एंट्री भी रिक्शा में हुई है और देखिए कैसे हुआ है इनका स्वागत।

0: एंट्री के बाद हुई है रिसेप्शन की एक खास किट, जहां बच्चन ने अपने परिवार को पेश किया और सभी लखनऊ वासियों का दिल जीत लिया।
1: हमने बहु प्यार के कृष्णा बच्चन की भाई बरेली की बर्फी को हम लाल की साड़ी कर मिलना चाहेंगे उनसे, जरा सबर करिए, उससे पहले हम आपको मिलाते हैं हमारे बाकी के बरेली के बच्चों से। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं चिराग नंबर 3 गंगा भैया खाना बनाने बरेली में हमको ला नहीं पाए, हमें 2 नंबर चिराग कृष्णा बच्चन, चिराग नंबर 3 सतलुज बच्चन, एंग्री यंग मैन, जलवा देखिए भाई।

0: गुस्सा ऐसा रहता है इसकी नाक पे, नहीं डरता किसी के बाप से। बाइक का इंजन हो या इंसान का पुर्जा, पुर्जा खोल फिट कर देता है।
1: अरे क्या करें, आजकल लोगों के कार्बोरेटर में इतना मैल जमा हुआ है, इतना गंद मचाया हुआ है, जब तक दिमाग गर्म ना करो साले लाइन में नहीं आते।
2: अब जहां बच्चन से वहां डांस तो लाजमी है। जरा देखिए कैसे सभी झूम उठे हैं लखनऊ वासियों से।

0: Rasel wieder so hin. एक छोटा सा आपको स्क्रिप्ट के बाद एक चीज को बता दूं, माही अस्तर को लखनऊ से है, माही की मम्मी उसका भाई यहाँ आया है, ठीक है?
1: अरे उससे बात मिलाएंगे आपको,
0: मुस्कुराइए,
1: आप लखनऊ में
0: हैं,
1: हाँ,
0: उसका थोड़ा सा ठीक है ना मम्मी?
2: नहीं,
0: अरे भाभी, भाभी इस घर का हिस्सा है, आप बताइए ना,
1: अब कृष्णा भैया उसका ग्वालियर से है, कहते हैं कि रिसेप्शन हो ही नहीं सकता।
3: कृष्णा ना झूठा नंबर वन है और इस बच्चे के घर में बहू आ ही नहीं सकती है।
1: ये सारे मिलके हमें बेवकूफ बना रहे
4: हैं। पर झूठ बोलने की भी कोई हद होती है।
3: और हमने कहा था पहले ही कि इस परिवार में लेडीज आई नहीं, चलो हट जाओ यहाँ से।

अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और इस खास रिसेप्शन में लखनऊ की लेडीज के एक किटी पार्टी ग्रुप आया है इन्हें विश करने के लिए। भाई रिसेप्शन है, मेहमान बहुत जरूरी है और मेहमानों संग बच्चन कैसे मिले आइए देखते हैं।

0: लेके बाजार अभी तेरा जमगा
1: झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय
2: कि अभी तक हमें बहुत प्यार मिलता आ रहा है बरेली से मुंबई से तो खैर है ही और अब लखनऊ वाले भी हमें बहुत प्यार दे रहे हैं और सबने बहुत लोगों ने यहाँ शो देखा भी है विच इज ऑनेस्टली मतलब इट्स अ वेरी गुड फीलिंग
3: हम तो यहाँ थैंक यू बोलने आए हैं जो जितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसको देख रहे हैं एंटरटेन हो रहे हैं प्यार दे रहे हैं तो हम उनको बस थैंक यू बोलने आए हैं और लखनऊ वालों थैंक यू शुक्रिया
4: मतलब हमारा दिल तो यहीं बसता है ना
3: जी
4: तो यहाँ आगे जो सुकून और एक सुकून दिल की इच्छा पूरी हो रही है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू
2: अभी तो बस शुरुआत ही है दिन की अभी तो बहुत जगह जाना है बहुत कुछ खाना है मतलब बातें करनी है
3: तो
2: पर बहुत प्यार मिल रहा है मतलब अभी जो लोग भी बोल रहे थे लाइक हमसे कि यूएस में भी लोग शो देख रहे हैं हमारा यहाँ लखनऊ में तो देख ही रहे हैं तो उससे बेटर मतलब कुछ नहीं है मतलब नो रेटिंग नथिंग कैन टॉप पीपल्स रिस्पॉन्सेज अबाउट द शो
4: लखनऊ उस चांद की तरह है जिसमें नूर भी है गुरूर भी और दूर भी मुंबई वालों के लिए अभी पास है इसलिए
2: दिल बना लो तो लखनऊ दूर नहीं है
3: उस दूरी को मिटाने वहाँ गए लखनऊ में
5: भाई ये तो था बरेली के बच्चन के कृष्णा और संगम का शादी वाला सेलिब्रेशन या यूँ कह लो शादी वाला लुक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई अभी तो इनकी और भी मस्ती बाकी है तो बने रहिए सास बहू और बेटियां संग क्योंकि बरेली के बच्चन का लखनऊ का सफर अभी भी जारी है लखनऊ से नुपुर मौची संग ब्यूरो रिपोर्ट
6: अब वीकेंड हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना कितना जरूरी है तो क्या कुछ हो रहा है वसुधा की इस कहानी में आज क्या एक नई खुशी देने वाली है इनके दरवाजे पर दस्तक या फिर आएगा कोई नया ट्विस्ट जो लेकर आएगा कहानी में अनलिमिटेड ड्रामा वेल जो भी हो देखिए हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो पक्का है लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के पास
7: बिकाऊ पत्रकार उषा बेदी का भांडा फोड़ हो गया इसीलिए वो सारे कैमरा बंद करवाने वाली है सारी लाइव बंद करवाने वाली है आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप एक्सपोज करो
5: वसुधा ने किया उषा का खुलासा
7: आप इस समय से संध्या जी के साथ नहीं हुए काली का तो मैं आपने भी साथ दिया है
5: चंद्रिका ने मारा उषा को चाटा उषा का कबूल नामा जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज उषा बेहद खुश है क्योंकि उसे लगा था कि उसे कामयाबी मिल जाएगी पूरी दुनिया के सामने चंद्रिका को बदनाम करने की तभी तो आज उषा ने वसुधा और दिव्या को अपने ऑफिस बुलाया है ताकि वो लाइव इंटरव्यू कर सके और लाइव के दौरान वसुधा चंद्रिका का नाम ले ले बस फिर क्या वसुधा के आते ही उषा ने उनका स्वागत किया और शुरू कर दिया लाइव शो लेकिन उषा को ये नहीं पता कि ये लाइव शो उसी पर भारी पड़ने वाला है
7: किसी के चेहरे से नकाब उतारे right? तो बताइए कौन जनता सुन एक औरत जब आगे बढ़ी है तो उसे पीछे खींचने वाले और नीचे गिराने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों में ज्यादातर महिलाएं हैं
8: उन लोग हाउ डिस्गस्टिंग
7: उस औरत ने हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली असहाय लाचार गरीब विधवा औरत को जज्जिया बनाकर हमारे खिलाफ हड़ताल करवा दी हमारे खिलाफ नारेबाजी करवा दी और हमारे बिजनेस पर ताला लगवा दिया पर यूं सब करके भी उसका मन ना भरा तो उसने एक ऐसी चाल चली कि मैं अपने परिवार वालों पर ही शक करूँ ताकि हमारा व्यापार और हमारा परिवार दोनों पता चले लेकिन हमारे अपनों ने हमारी मदद की
5: अब उषा का घबराना तो लाजमी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डाउट हो गया है कि वसुधा उसी की ओर इशारा कर रही है और देखिए कैसे वसुधा ने बेझिझक होकर उषा के सामने सच बताना शुरू कर दिया
7: आप
5: और इस इंटरव्यू में समर का नाम लेने के साथ साथ ये भी बता दिया कि उषा समर के साथ मिली हुई है बस फिर क्या ये सुनकर उषा भड़क उठी
7: समर से सो दिया जी उन्हें तो आप जानती होंगी
8: हाउ डेयर यू
7: आवाज नीचे अब चिल्लाने से कुछ ना होगा उषा जी समर से सो दिया जी ने तो हमने जेल में पहुंचा दिया है अब बारी आपकी है
9: बिकाऊ पत्रकार उषा बेदी का भांडा फोड़ हो गया है, इसीलिए वो सारे कैमरा बंद करवाने वाली है, सारी लाइव बंद करवाने वाली है। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप
10: एक्सपोज करोगी। कितनी हिम्मत हो गई तुम्हारी?
9: हाँ हो गई। आप भी समय से सुधिया जी के साथ मेरी हुई है ना, काली का तो मैं आपने भी साथ दिया है ना, समर के साथ आप भी जीत।
10: लाइव बंद हो चुका है, कोई बकवास नहीं सुन रहा तुम्हारी यहाँ।
9: सच किसी लाइव का मोहताज नहीं होता उषा जी, आपका सच तो मैं सबके सामने
11: ला दूँ। हाँ, वसुधा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी और जो है कि थप्पड़ तो इसीलिए मारती हूँ क्योंकि उसने वसुधा के बारे में बुरी तरह से बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। तो वो बोलती है कि आप तो उसको बहू भी नहीं मानती हो, तो मैं बोलती हूँ कि बहू नहीं मानती हूँ पर माँ की तरह उसको प्यार दिया है मैंने, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और वसुधा यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी तो उस उषा बेदी को पता नहीं होता कि मैं भी आ रही हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं आती हूँ और फिर ये पूरा सब कुछ दिव्या ने जो है लाइव शूट किया हुआ है, तो इसीलिए वो उसको काट भी नहीं सकती, ना ही उसका वीडियो उसको मिल सकता है, तो फंस गई वो।
5: उषा को तो लगा था कि लाइफ बंद हो चुका है, इसीलिए उसने अपने जुर्मों को कबूल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दूर खड़ी विद्या अपने मोबाइल से लाइव शो कर रही है। ऐसे में बिना जाने उषा सब सच बताती गई और वहीं चंद्रिका भी आ गई जो ये सुनकर हैरान है, और तो और उषा ने चंद्रिका को भी धमकी दी। इतना ही नहीं, वसुधा के बारे में बोलने लगी तो चंद्रिका भी अपने आप को रोक नहीं पाई।
11: मैंने पहले भी बताया है कि चंद्रिका वसु से नफरत बिल्कुल नहीं करती है, वो जो भी करती है उसको सिखाने के लिए ही कर रही है, और क्यों कर रही है वो सारा चीज़ तो अभी बहुत जल्द खुलने वाला है। और ये है कि जो समर है और उषा बेदी, सो इनकी पूरी बहुत मतलब वसुधा का बिजनेस को ख़राब करने की जो इनकी साजिश चल रही थी वो एक्सपोज हो चुका है आज।
5: भाई सास बहू का ये साथ देखकर तो उषा खुद हैरान है और तो और गुस्से से बौखलाई हुई भी है। इतना ही नहीं, उसने तो गुस्से में चंद्रिका को धमकी तक दे दी कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। इसी बीच दिव्या भी बड़ी चालाकी से उसके सामने चली गई और अपने मोबाइल में उसकी गवाही रिकॉर्ड करने लगी।
10: आपने जो अभी अभी कहा वो एक बार मेरे इस कैमरे में देख कर भी बोल दीजिए जरा क्लोजअप। चौहान के हर एक रिश्ते और हर एक काम को मैं स्कैंडल और ब्रेकिंग न्यूज बना दूंगी। फोन छीन लो इसका और सारे वीडियोस डिलीट कर दो। रुक जाइए, छीनने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही ले लीजिए। तो क्या करेंगे लेके? वीडियो तो फोन में है ही नहीं।
12: What?
10: वो क्या है ना, यहाँ आते ही मैंने वसु के सोशल मीडिया चैनल से वीडियो गया। मैडम इतना तो हम भी समझ गए।
5: उषा को लगा था कि वो डेढ़ शाणी है पर उसे ये नहीं पता कि वसुधा दो कदम आगे है। खैर उषा का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। ऐसे में तभी वॉचमैन ने आकर उषा को जानकारी दी कि लोग भड़क रहे हैं और उनके ऑफिस के बाहर पत्थरबाजी कर रहे हैं। बस फिर क्या, डर के मारे उषा ने पुलिस को खुद ही कॉल कर लिया और खुद ही सरेंडर भी कर दिया, जिसके चलते पुलिस भी झटपट आ गई उषा को गिरफ्तार करने। खैर आज तो उषा लोगों के गुस्से से बच गई है, लेकिन जाते जाते वो इस तरह से टशन दिखा रही है कि जल्द ही वो फिर से लौटेगी वसुधा की जिंदगी में तमाशा करने के लिए। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: अब वीकेंड का बेस्ट पार्ट होता है अपनों के साथ वक्त बिताना और दिल की बातें शेयर करना। बिल्कुल ऐसा ही होता है इस रियलिटी शो के मंच पर जिसे होस्ट कर रहे हैं हम सब के फेवरेट राजीव खंडेलवाल। यहाँ सब शेयर करते हैं अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज और उसके साथ साथ हैं ढेर सारी मस्ती और ढेर सारा फन। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको तुम हो ना के इस मंच पर।
13: हमारी जो ये सुपरस्टार हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक पहचान बनाई। इन्होंने वो करके दिखाया जो इनसे पहले किसी भी भारतीय महिला ने नहीं किया।
14: जी मैं भारत की पहली भारतीय महिला हूँ जो WWE में जाके मैंने सूट सलवार पहनकर फाइट की। वेट लिफ्टिंग में साउथ एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट। पेरेंट्स सपोर्टिव थे, लेकिन सर किसान परिवार है और पांचों भाई बहनों को पढ़ाना फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। इतने लंबे सफर में बहुत बार गिरी, लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स का त्याग देखा ना, उनकी मेहनत, मेरे भाइयों का सेक्रीफाइस देखा, उसने मुझे कभी चैन से नहीं बैठा।
13: समझ रहा हूँ मैं आपको देखकर कि ये आप महसूस कर रहे हैं उनका जो स्ट्रगल।
12: तो जिस समय ये मेरे जीवन में आए उस समय ये ऐसी परिस्थिति में थे कि शायद इनको संभाल पाना मुश्किल था। एक समय ऐसा था कि इनका गेम बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था किन्हीं लोगों की वजह से, जिनको इनका खामियाजा 4 साल लगातार भुगतना पड़ा। एक रात इनका हाथ मेरे चेहरे पे बहुत तेज लगा ऐसे करके। मैंने इनसे पूछा, कविता आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इन्होंने एक ही शब्द बोला, नहीं गौरव जी, सपने में भी मेरे गेम चलता, क्योंकि वजन जो उठाते ना ऐसे उठाते ना स्नैच करते हैं। मैं उस दिन पूरा दिन लगातार सोचता रहा, जिस इंसान के सपने में भी गेम चलता है उसको कौन कैसे रोक सकता है।
6: हमारी वीकेंड की ये सैटरडे वाली पार्टी यही होती है खत्म। उम्मीद करते हैं आपके वीकेंड में भी फुल ऑन एंटरटेनमेंट आ गया होगा। तो आप बस इस वीकेंड को एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ। हंसिए, मुस्कुराइए और इसी तरह देखते रहिए सास बहू और बेटियां। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, नमस्कार।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
16: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। वेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू'ल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेज़ हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।

0: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती। मैदान का चाणक्य, फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
4: रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश, 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 किया लॉन्च, मिशन आगमन के नाम से हुई लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। बुलंदशहर को सीएम योगी ने सौंपी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे चेक, बच्चों की प्रदर्शनी का भी किया निरीक्षण। भारतीय नौसेना ने अपने आने वाले युद्धपोत INS मालवन का प्रतीक चिन्ह जारी किया, 22 जुलाई को होगा कमीशन, स्वदेशी तकनीक से किया गया तैयार। फिल्म वाराणसी की फायर मंदाकिनी का धांसू लुक आया सामने, प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर राजा मौली ने शेयर की तस्वीर, जन्मदिन की दी बधाई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: भारत की पहली प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ने भरी उड़ान, श्रीहरिकोटा से 2:12:05 पर स्कायरूट एरोस्पेस का विक्रम 1 पहली टेस्ट फ्लाइट मिशन आगमन लॉन्च। विक्रम 1 ने रचा नया इतिहास, 24 मीटर लंबा कार्बन फाइबर रॉकेट, 350 किलो तक का पेलोड, 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम। विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग से इसरो के साथ निजी स्पेस सेक्टर की बड़ी छलांग, इस पूरे मिशन पर देश की नजर। 2020 के स्पेस रिफॉर्म का बड़ा असर, इन स्पेस के मुताबिक 5 से 6 स्टार्टअप से बढ़कर अब देश में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप सक्रिय। 3D प्रिंटेड इंजन और ऑल कार्बन फाइबर टेक्निक से लैस विक्रम 1 भारत को दिला सकता है ग्लोबल पहचान, स्पेस सेक्टर में बढ़ा भारत का कद। लॉन्च की कामयाबी के बाद स्कायरूट के फाउंडर से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर की बात और दी बधाई, सफल मिशन को बताया युवाओं की जीत।
5: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई,
4: कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया, ये माइक्रो आर्ट पीस है 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट। इस खास माइक्रो आर्ट पीस पर वैज्ञानिक सर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां उकेरी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से लिखा गया एक पोस्ट कार्ड भी रॉकेट में भेजा गया, जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। बुलंदशहर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने बुलंदशहर को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बुलंदशहर के मेधावी छात्रों से सीएम योगी ने की बातचीत। विज्ञान से प्रेरित छात्रों के बनाए मॉडल्स के बारे में जानकारी ली। सीएम योगी ने छात्रों को भेंट की कलम। सीएम योगी ने संगीत विद्यार्थियों से भी की मुलाकात। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कलाकृति भेंट करने वाली छात्रा को सीएम ने उपहार में चॉकलेट दी। सीएम योगी ने कान्हा और राधा की वेशभूषा पहने बच्चे और बच्चियों को दुलार किया। अन्न प्राशन पर खिलौने और बंसी उपहार में दी। जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को मिली बड़ी सौगात। सीएम योगी ने लैपटॉप, चेक, मकान की चाबी, थर्मल प्रिंटर, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, टूलकिट और प्रमाण पत्र वितरित किए। गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दर्शन पूजन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद सुबह दूधेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा की। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी

0: मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने प्रवेश किया। जगन्नाथ धाम में आस्था का उमड़ा जन सैलाब, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा के दिव्य दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज रही है पूरी नगरी। भक्तों का विश्वास है कि प्रभु के दर्शन मात्र से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। रथ यात्रा के दूसरे दिन तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे। भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान माना जाता है गुंडीचा मंदिर। 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा, दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। सहारनपुर को मिली नई रेल सेवा की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई ट्रेन शुरू होने से वाराणसी, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद समेत कई शहरों के लिए बेहतर यात्रा विकल्प मिला। रोजाना हजारों यात्रियों को इसका सीधा फायदा होगा। बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत। रेलवे ने श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई। कोडरमा, नवादा, जमालपुर और सुल्तानगंज होकर स्पेशल ट्रेनें श्रद्धालुओं को पहुंचाएंगी। सावन में बाबा धाम यात्रा होगी आसान। श्रावणी मेले को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। देवघर जाने वालों को मिली बड़ी सौगात। 26 जुलाई से सितंबर तक चलने वाली ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल कोच की सुविधा मिलेगी। रांची भागलपुर के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें अलग अलग रूट और दिनों में संचालित होंगी। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। देश भर में 75 रेलवे स्टेशन की बदली। सूरत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया पुनर्विकास। भारत और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हुई स्पीड रेल परियोजना को लेकर सकारात्मक चर्चा। 2030 की शुरुआत में E10 श्रृंखला की हाई स्पीड ट्रेन उपलब्ध कराएगा जापान। तेजी से चल रहा है इस परियोजना का निर्माण कार्य। 2027 में परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा इसका पहला खंड। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार पाली सोमेसर स्टेशन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। करीब 12.5 करोड़ की लागत से पूरी की गई है सोमेसर स्टेशन की परियोजना। 1453 वर्ग मीटर में फैला है स्टेशन परिसर। पूरी तरह बदली गुजरात के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण गोधरा जंक्शन की सूरत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ स्टेशन का कायाकल्प। करीब 6 करोड़ की लागत से हुआ स्टेशन का रीडेवलपमेंट। यात्रियों के सभी आधुनिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए फुटओवर ब्रिज और लिफ्ट भी शामिल। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम से किया पुनर्विकास फतेहपुर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झारखंड के पिस्कौर और मुरी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। नए रंग रूप में नजर आया स्टेशन। हैदराबाद में हाईटेक सिटी अमृत भारत रेलवे स्टेशन का हुआ उद्घाटन। रामचंद्र राव ने समारोह में हिस्सा लिया।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
3: Jack, you're killing me.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर, चीते सी फुर्ती। मैदान का चाणक्य, फुटबॉल का जादूगर। मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम। शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
5: Keep it on smooth jazz.
6: This is Roots Reggae
7: exclusively on TuneIn.
8: This is classic hip hop
9: exclusively on TuneIn.
3: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
10: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: हाईटेक हो रहे पैदल सेना के जंगबाज, जमीनी युद्ध के लिए मिल रहे मॉडर्न ब्रह्मास्त्र, इंडियन इन्फेंट्री का कायाकल्प। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
16: रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश, 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च, मिशन आगमन के नाम से हुई लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। बुलंदशहर को सीएम योगी ने सौंपी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे चेक, बच्चों की प्रदर्शनी का भी किया निरीक्षण। भारतीय नौसेना ने अपने आने वाले युद्धपोत INS मालवन का प्रतीक चिन्ह जारी किया, 22 जुलाई को होगा कमीशन, स्वदेशी तकनीक से किया गया है तैयार। फिल्म वाराणसी की फायर मंदाकिनी का धांसु लुक आया सामने, प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर राजा मौली ने शेयर की तस्वीर, जन्मदिन की दी बधाई।

जिनके रोम रोम में बसते हैं श्री राम, जिनके पास है हर समस्या का समाधान और देवता भी जिनका करते हैं गुणगान। प्रार्थना हो स्वीकार में आज हम बात करेंगे उन्हीं वीर हनुमान की। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के सामने सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। महाबली हनुमान की बात हम कर रहे हैं और उनकी महिमा ही कुछ ऐसी है। उनके नाम मात्र से हर समस्या का समाधान हो जाता है। बजरंग बली की आराधना से हर बिगड़ा काम बन जाता है। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संकट मोचन की कृपा से सारे संकट टल जाते हैं। अजर अमर हैं वीर हनुमान, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनके सारे कष्ट हर लेते हैं।

0: भक्तों की पुकार सुनते हैं वीर हनुमान, दुखियों के तारण हार है केसरी नंदन। जब महाबली हनुमान देंगे वरदान, तो हर समस्या का होगा समाधान। पवन पुत्र हनुमान की महिमा अपरंपार है, बजरंग बली की लीला कमाल है। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं जो हनुमान जी की आराधना से पूरा ना हो सके। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब समस्याओं का अंबार लग जाता है। ऐसे में कोई साथ दे या ना दे, बजरंग बली अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं।
1: और देवता चित्तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करहि, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये सुंदर रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि हनुमान जी के एक साधना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और तो और, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, और कोई नहीं देने वाला। इस कलिकाल में हनुमान जी की साधना से ही अष्ट सिद्धि नव निधि प्राप्त होने के योग बनते हैं।
0: हनुमान जी डर, शत्रु और शनि पीड़ा के अलावा शिक्षा हासिल करने में आ रही परेशानियों को भी दूर कर देते हैं। यही नहीं, महाबली अपने भक्तों को आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। परेशानी चाहे कितनी ही बड़ी हो, समस्या चाहे जितनी विकट हो, हनुमान जी की आराधना से सारी समस्या का समाधान संभव हो जाता है। आज हम आपको आपके जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान बताएंगे जो संभव है महावीर की उपासना से। धर्म ग्रंथ और ज्योतिष के जानकार भी मानते हैं कि संकट बिखरे भक्तों के सारे संकटों को चुटकियों में दूर कर सकते हैं अंजनी के लाला। चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके जीवन में कला ने घर बना लिया हो तो इस बाधा से कैसे पार पाएं।
1: यदि वहां हनुमान जी की सुंदर स्थापना हम कर लें, नित्य प्रति हनुमान जी का पूजन अपने घर में कर लें, हनुमान जी का की सुंदर मूर्ति वहां रखने के बाद नित्य प्रति उनका एक दिया वहां जला दें, तो कहा जाता है संपूर्ण प्रकार के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं, और तो और घर में शांति व्याप्त करने के सुंदर योग बन जाते हैं।
0: घर में शांति के लिए उपाय, मंगलवार को पीपल के पत्ते पर हनुमते नमः लिखें, इसे हनुमान जी के चरणों में रख दें। हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। अगर परेशानी पड़ी है तो एक साल तक नियमित पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी को नारियल भेंट करें, फिर उसे घर ले आएं और कलश में स्थापित करें। रोज कलश की पूजा करें और उस पर सिंदूर का तिलक करें। माना जाता है कि नौकरी या कारोबार में तरक्की ना हो तो भी विक्रम बजरंगी की कृपा से ये संकट भी दूर हो सकता है। अगर किसी कारणवश आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, सफलता आपसे दूर हो गई है, तो भी हनुमान जी का वरदान आपको तरक्की दिलवा सकता है। आप भी करके देखिए ये छोटा सा महा उपाय।
1: हनुमान जी कृपा उन्हीं पर करते हैं जो राम काज करने को ही आतुर रहते हैं। इसलिए संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए काज को अपना काज मत मानो, सब कुछ राम को समर्पित कर दो। तब जो कार्य करोगे वो राम काज ही होगा, और वो सफलता प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद आपको अपने आप मिल जाएगा।
0: सफलता देगा हनुमान जी का वरदान। मंगलवार को हनुमान जी को लाल कपड़े में लाल फूल अर्पित करें। हनुमान जी को लाल कपड़े में लपेट कर सिंदूर चमेली का तेल भी भेंट करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको उन्नति मिल जाएगी। बजरंग बली आपके दुखों का पल भर में नाश कर देते हैं। बजरंगी की कृपा से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। तो अगर आपको धन से संबंधित समस्या आ रही है तो आप इसके लिए भी उपाय कर सकते हैं।
1: आम तौर पर जब व्यक्तियों के ग्रह शुभ नहीं चल रहे होते हैं, अशुभ चल रहे होते हैं, तब कष्ट होता है। शनि महाराज अनुकूल ना चल रहे हों तो लक्ष्मी कृपा नहीं होती, अलक्ष्मी के रूप में भगवती कृपा करती हैं। ऐसे में अलक्ष्मी को दूर करने के लिए, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय है, चमेली के तेल में से सिंदूर मिलाकर उनको हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें, और चांदी का वर्क उसके साथ साथ हनुमान जी को चढ़ाएं। भगवती के आशीर्वाद से इस प्रयोग को करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होने के सुयोग बनते हैं।
0: धन लाभ के लिए उपाय, मंगलवार को घर में राम दरबार स्थापित करें। पीपल के 11 पत्तों पर राम राम लिखें। भगवान का ध्यान करें और अपने मन की बात कहें। मंगलवार को सूर्यास्त के बाद पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें, इससे आपकी धन से जुड़ी समस्या दूर होगी। महाबली हनुमान की पूजा से हर समस्या का समाधान होता है। अगर आपको बुरी नजर ने परेशान कर रखा है या फिर दुश्मनों से डर सता रहा है तो आप राम भक्त हनुमान की पूजा आपके लिए लाभकारी होगी। बुरी नजर से बचाएंगे वीर हनुमान। हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को तिलक करें। हनुमान जी का तिलक अपने कान के पीछे लगा लें। हनुमान जी के तिलक से ही करके चौखट पर राम राम लिखें। इस उपाय को हर मंगलवार को करें तो लाभ होगा।
1: हनुमान जी तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उनको दूर भगा देते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर जब नाम सुना सुनता है व्यक्ति, तो इन्हीं हनुमान जी के नाम से सिद्ध करा हुआ लाल धागा जो धारण कर लेते हैं, जो हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ, हनुमान चालीसा से सिद्ध करा हुआ धागा जो धारण कर लेते हैं, उनकी सब नजर दोष दूर हो जाते हैं।
0: महावीर की उपासना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपसे अकारण शत्रुता का भाव रखने वाले दुष्टों के जीवन में हनुमान जी अशांति ला देते हैं। दुश्मनों से षड्यंत्रों से भी बचाते हैं हनुमान जी। बस ज्योतिष में बताए गए इस छोटे से उपाय से आपका रक्षा कवच बनेंगे हनुमान जी। दुश्मनों को शांत करने के लिए उपाय, राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को गदा भेंट करें, ओम हम हनुमते नमः के 108 मंत्रों से गदा की प्राण प्रतिष्ठा करें। यह कार्य शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करें। रात 9 बजे से 11 बजे के बीच ये कार्य करें। इसके बाद गदा अपने पास रखें। शत्रु कभी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। ध्यान रखें ये गदा चांदी की ना हो। दुश्मन नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप अपा मार्ग की जड़ गले में पहने। इसके बाद ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप रक्त चंदन की माला से करें तो आप भी इन उपायों के जरिए हनुमान जी की कृपा जल्दी हासिल कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की आराधना से कैसे मिलेगा सेहत और सुंदरता का वरदान। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए। प्रार्थना हो स्वीकार।
2: वो महावीर भी हैं और हर युग में अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बजरंग बली की आराधना से कैसे मिलता है सेहत और सुंदरता का वरदान।
0: मुसीबत में जब फंसता है इंसान तब सहायता करते हैं वीर हनुमान। देवता भी करते हैं राम भक्त का गुणगान, जिनकी साधना से भक्तों को मिलता है वरदान। माना जाता है कि भक्तों की प्रार्थना सुनकर बजरंग बली पल भर में उनकी समस्याओं को दूर कर देते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए महाबली आतुर रहते हैं। बस जरूरत है पूरी भक्ति और आस्था के साथ पवन पुत्र का ध्यान करने की। जानकार बताते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी की आराधना से पूरा ना हो। बजरंग बली के पास आपकी हर समस्या का समाधान है। बस आपको सच्चे मन से केसरी नंदन की पूजा करनी है और फिर आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। आइए आपको हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के कुछ उपाय बताते हैं।
1: कहा जाता है कि रामायण काल के अंदर, भगवान के युग के अंदर, जब सब साकेत धाम जा रहे थे तो भगवान हनुमान जी महाराज यहीं विद्यमान हो गए। क्यों? भक्तों की कृपा के निमित्त। हरि हरि नाम का, राम नाम का संकीर्तन इस संसार में होता रहे और उसके लिए प्रत्यक्ष हनुमान जी लोगों को प्रेरित करते रहें। हनुमान जी का आशीर्वाद आज भी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिलता है।
0: हनुमान जी देंगे वरदान। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर से तिलक करें। हनुमान जी की प्रतिमा पर फूल माला और लौंग अर्पित करें। हवा में उड़ रहे हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी पंचोपचार पूजा करें। पूजा के बाद पीले आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। ओम हम वज्रदेयाय नमः मंत्र का 2 घंटे तक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं, सुंदर कांड का पाठ करें। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी की भक्ति से न केवल शक्ति और बुद्धि का वरदान मिलता है, बल्कि हनुमान जी की पूजा से भक्तों को आरोग्यता और सौंदर्य का भी वरदान मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो पूजा विधि जिससे आपको मिलेगा अच्छी सेहत और खूबसूरती का वरदान।
1: सबसे पहले तो हनुमान जी का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है, हनुमान चालीसा। अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, तुलसी बाबा के माध्यम से लिखा गया और इन 500 सालों में अरबों खरबों बार जप लिया गया है। उसी जपने के कारण से उस हनुमान चालीसा की सिद्धि स्वतः बन गई है। उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, गलत पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, इस साबर मंत्र को पढ़ लेने से सब प्रकार के कष्टों से रक्षा करने का सुयोग हनुमान जी कृपा से अपने आप बन जाता है।
0: हनुमान जी देंगे वरदान। मिट्टी का आसन बनाकर उस पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। हनुमान जी को सिंदूर से तिलक करें। घायल लक्ष्मण जी के साथ खड़े हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करें। हरे रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। ओम हम कपिराजाय नमः मंत्र का 2 घंटे तक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती करें, लड्डू का भोग लगाएं। इससे आपको सेहत का वरदान मिलेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आध्यात्मिक ज्ञान, यश और राज्य सत्ता तो चाहते हैं, लेकिन ये सफलता उन्हें मिल नहीं पा रही है। तो चलिए बताते हैं हनुमान जी की वो पूजा विधि जिससे होगा कल्याण। समस्या का समाधान वीर हनुमान। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के बाद वानर सेना के साथ खड़े हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और पंचोपचार पूजा करें। भगवा रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। ओम हम रुद्र स्वरूपाय नमः मंत्र का 2 घंटे तक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं। इस उपाय से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
1: ओम हं हनुमतये नमः, इस मंत्र का स्तवन कर लेना भी अपने आप में चमत्कारिक लाभ देने के योग बना देता है। राम नाम एक ऐसा है जिसको तारक मंत्र बोला जाता है और बिना हनुमान जी कृपा से ये जपा भी नहीं जाता। तो हनुमान जी का स्तवन कर राम नाम का जप कर लेने से सब प्रकार से रक्षा का योग बन जाता है। हनुमान जी के विभिन्न मंत्र हैं, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बोधिमताम वरिष्ठम वातात्मजम नरयूत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस प्रकार से हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, सब प्रकार के कष्ट जीवन से दूर होने के सुयोग अपने आप बनते चले जाएंगे।
0: कहते हैं कि हनुमान जी अपने हर भक्त की फरियाद सुनते हैं, वो अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। बस जरूरत है अपने आराध्य हनुमान जी से अपने दिल की बात कहने की और उन्हें प्रसन्न करने की। तो आप इन उपायों को अपनाएं और वीर हनुमान से आशीर्वाद पाकर जीवन को खुशहाल बनाएं।
2: आज हम आपको बता रहे हैं महाबली हनुमान की महिमा के बारे में, जिनके पास आपकी हर समस्या का समाधान मौजूद है। हनुमान जी की उपासना सच्चे मन से करने वालों की हर बाधा दूर करते हैं महावीर। राम भक्त हनुमान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बजरंग बाण के पाठ से कैसे हो सकता है हर समस्या का समाधान।

0: हर परेशानी का एक ही उत्तर है और वो है बजरंग बली की शरण। परेशानी कोई भी क्यों ना हो, उसको दूर करने में हनुमान जी का कोई सानी नहीं। रामायण में ऐसे अनेकों प्रसंग हमें मिलते हैं कि हनुमान जी ने अगर ठान ली तो वो आपकी समस्या का हल करके रहेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर आप कोई शुभ काम करने जाते हैं और उसमें किसी तरह की रुकावटें आती रहती हैं, तो हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी से जुड़े कुछ मंत्र जो कारगर असर दिखाते हैं। शुभ काम से पहले रुकावट आती हो तो बजरंग बाण से जुड़ी चंद लाइनें बहुत कारगर साबित होती हैं।
1: कहा जाता है विकट से विकट शत्रु को समाप्त करने के लिए हनुमान जी का जो बाण है वो बड़ा अद्भुत है। बजरंग बाण एक ऐसा सिद्ध प्रयोग है कि जिस पर चला दिया जाए वो भागता फिरेगा, कहीं वो बच नहीं सकता है। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के नाम से सिद्ध करा हुआ बजरंग बाण जो नित्यपति उसका पाठ करते हैं, सुबह शाम पाठ करते हैं, उनका कोई शत्रु रह ही नहीं सकता। जो मन भाव से भी आपके प्रति शत्रुत्व का भाव रखेगा वो भी कहीं ना कहीं क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए बजरंग बाण नित्यपति पाठ कर लेने से अपने आप हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाती है।
0: बजरंग बाण से होगा कल्याण। ओम हीम हीम हीम हनुमंत कपीसा, ओम होम होम हो हनु अरि उर्षिसा, ओम चम चम चम चम चपल चलंता, ओम हनु हनु हनु हनु हनु हनुमंता, ओम हम हंक पेत कपि चंचल, ओम सम सम सहनी पराने खलदल। अपने जन को तुरत उभारो, सुमिरत होत आनंद हमारो। इन लाइनों का रात के अंतिम पहर में उठें, पूर्व की ओर मुंह करके लाल चंदन की माला से जाप करें। बजरंग बाण की इन लाइनों के विषय में ज्योतिषी कहते हैं कि इनका असर अचूक है और किसी भी कठिन परिस्थितियों से उबारने में ये बेहद सहायक होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो कैसे बजरंग बली का ध्यान आपके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है।
1: में बजरंग बाण का पाठ यदि रात्रि में शुरू कर दें तो हनुमान जी की कृपा से वो अवसाद मानस रोग वो भी ठीक होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। धन की संपदा की दिक्कत हो, बजरंग बाण का जो पाठ है वो भी उसको दूर करने के लिए अद्भुत कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। ग्रह दोष खराब हो गए हो, जहां कोई और स्थिति ना चल रही हो, यदि धूप दीप जलाकर नित्यपति हनुमान जी के समक्ष बैठकर, सिद्ध मूर्ति के समक्ष बैठकर रात्रि के तुरि संध्या के समय में बजरंग बाण का पाठ करो तो कहा जाता है कि हनुमान जी की कृपा से बजरंग बाण अकाट्य प्रयोग है कि जो समस्त प्रकार की नजर दोष इत्यादि को दूर कर आपके मार्ग को सुगम कर देता है।
0: बजरंगी देंगे आत्मविश्वास का वरदान। शमी के पेड़ की जड़ को मंगलवार को गले में पहनकर मंत्र जाप करें। ओम अंजनी जाय विघ्नेह वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपि प्रचोदया। 1,25,000 जाप से ये मंत्र सिद्ध माना जाता है। जब भी आत्मविश्वास की कमी महसूस हो तो इसका जाप करें। ये तमाम उपाय आपसे जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और आपको मिल सकता है वीर हनुमान का वरदान। बस आपका संयम और नियम से ज्योतिष में बताए ये महा उपाय करके देखिए, हनुमान जी की कृपा से शीघ्र ही आपके सारे संकटों का नाश हो जाएगा।
2: प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
12: एक अनोखे खेल की तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं। लड़कियां मिलकर ये अनोखा गेम खेल रही हैं, जिसमें दो लड़कियां लाइन में झुकी हुई लड़कियों को एक टी शर्ट पहना रही हैं। दो गुट इस खेल को खेल रहे हैं और तस्वीरों में दिख रहा है कि इस गुट ने अपनी लाइन की आखिरी लड़की को भी टी शर्ट पहना दी है। गेम जल्दी से पूरा करके ये समूह अपनी जीत पर खुशी से चिल्लाने लगा। लोगों को ये अनोखा गेम खूब पसंद आ रहा है। कहते हैं कि रोटी की कीमत वही जानता है जिसने भूख देखी हो और पानी की कीमत वही जानता है जो प्यासा हो। तस्वीरों में एक नन्ही बच्ची को एक नन्हे बेजुबान बंदर के बच्चे को पानी पिलाते हुए देखा जा सकता है और लोग इसको देख के काफी भावुक हो रहे हैं। ये भावुक तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल होती अनोखी दोस्ती की भी ये तस्वीर देख लीजिए, जिसमें एक छोटे बच्चे और एक रेप्टाइल के बीच अनोखी फ्रेंडशिप नजर आ रही है। इस अनोखी दोस्ती ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। बच्चा किनारे बैठा है, पानी से एक रेप्टाइल निकल कर आता है, बच्चा उसे सहलाता है और वो भी बच्चे के स्पर्श को पूरी शिद्दत से महसूस करता है। लोग अब इस दोस्ती की मिसालें दे रहे हैं, बच्चे की बहादुरी को भी सराह रहे हैं। कहते हैं कि बहन का दर्जा माँ से कम नहीं होता और वो भी तब जब बहन माँ की तरह ही केयरिंग और प्यार देने वाली हो। ये तस्वीरें इसलिए वायरल हैं क्योंकि एक बहन इसी तरीके से अपने छोटे भाई का ख्याल रखती नजर आ रही है। तस्वीरों में एक बच्ची जो कि खुद भी बेहद छोटी सी है, लेकिन स्कूल में अपने भाई को लंच ब्रेक में ऐसे खाना खिला रही मानो उसकी माँ हो। अब इस भावुक वीडियो को देखकर लोग अपनी बड़ी बहन को याद कर रहे हैं, उनको ये तस्वीरें बेहद पसंद आ रही हैं और इस तस्वीर पर लोग बेहद प्यार लुटा रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, स्केटिंग रिंग में ये बच्ची अपने स्केटिंग टैलेंट का प्रदर्शन करती है। स्केट्स के साथ उसके मूव्स दर्शकों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। हालांकि वो इस दौरान गिर भी जाती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि वो संभलती है और फिर स्केटिंग की उड़ान भरने लगती है। असली आर्टिस्ट ऐसा ही होता है जो पब्लिक को पता भी न चलने दे और लोग यही समझे कि शायद ये उसके प्रदर्शन का ही हिस्सा हो। लोगों को न सिर्फ इसका टैलेंट पसंद आया बल्कि सब इसकी सूझबूझ और कुशलता की भी तारीफ कर रहे हैं।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: Here's the math. Thrive Market members save an average of $32 a month on groceries they were already buying. Just healthier versions screened against over 1,000 harmful ingredients. This week, their biggest sale of the summer stacks on top of that with up to 25% off thousands of member favorites, from Siete chips to Graza olive oil. And new members get an extra $30 off their first two orders. This sale ends July 19th, so if you've been on the fence, join today at thrivemarket.com/getstarted.
14: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
15: Schwarber to right field, and it will lead.
14: From the first pitch of the season to the stretch run,
15: and that's the ball game.
14: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर जीते सी फुर्ती। मैदान का चाणक्य, फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम। शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश, 7 दिनों तक यही करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च, मिशन आगमन के नाम से हुई लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने दी बधाई। बुलंदशहर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे गए चेक, बच्चों की प्रदर्शनी का भी किया गया निरीक्षण।

नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो, खेल हो, टेक्नोलॉजी हो या किसी नए क्षेत्र की बात, भारत के होनहार हर जगह देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे ही धुरंधरों की जिन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए बल्कि अपना और भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज भी कराया। सबसे पहले बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास हुए उस करिश्मे की जब समंदर के पानी में लहराया गया तिरंगा। बात यहीं पर देखिए, एक दिन बाद समंदर के नीचे बने मानव मीनार की भी करेंगे। नागपुर के हितेन के सबसे छोटे रोबोटिक आर्म की भी आज हम बात करने वाले हैं, जिसके जरिए उन्होंने रोबोटिक की दुनिया में हलचल मचा दी थी। लखनऊ के पुशअप बास से भी आपको मिलवाएंगे, जिन्होंने कई पुशअप्स के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज करवा रखे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे समंदर में लहराए गए विशाल तिरंगे की।

नीले समंदर की गहराइयों में जब तिरंगा लहराया तो वो नजारा सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि पूरे देश के गर्व का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। अंडमान और निकोबार द्वीप के समंदर में वो कर दिखाया गया जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था। आमतौर पर झंडा ऊंचे पहाड़ों या इमारतों पर फहराया जाता है, जबकि यहाँ इस बार भारत का तिरंगा समुद्र की गहराई में लहराया गया। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, साहस और जज्बे का ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। तारीख थी 3 मई 2026, जगह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्वराज द्वीप, राधानगर बीच पर रचा गया इतिहास जिसे देखकर और सुनकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारतीय नौसेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम समेत 223 गोताखोरों की एक टीम ने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारत ने यह उपलब्धि स्वराज द्वीप, जिसे हैवलॉक द्वीप भी कहा जाता है, यहाँ जटिल और सुनियोजित ऑपरेशन के जरिए हासिल की। करीब 2400 वर्ग मीटर का यह विशाल तिरंगा समुद्र के नीचे फहराया गया। ये पूरा ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि पानी के अंदर इतनी बड़ी संरचना को संभालना आसान नहीं होता। वीडियो में आप देख सकते हैं कि समुद्र के भीतर गोताखोरों की एक बड़ी टीम तिरंगे को संभालते हुए धीरे धीरे फैलाती है। चारों तरफ नीले पानी के बीच जब तिरंगे के तीन रंग उभरते हैं तो नजारा बेहद शानदार और भावुक कर देने वाला हो जाता है। ऊपर पानी की सतह पर नावें और सुरक्षा टीम मौजूद दिखाई देती है, जबकि नीचे गोताखोर पूरी सटीकता के साथ इस मिशन को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे आयोजन में खास तरह के वाटर रेसिस्टेंस मटेरियल और खास वेटेड फ्रेम और रस्सियों की मदद से स्थिर रखा गया ताकि वो पानी के बहाव में संतुलित रहकर पूरी तरह फैल सके और लहराता हुआ दिखाई दे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज फहराने का रिकॉर्ड बनाने के ठीक एक दिन बाद इस इलाके में एक और उपलब्धि हासिल की गई। स्वराज द्वीप पर ही एक नया रिकॉर्ड बनाया गया जहां स्कूबा गोताखोरों की एक टीम ने समुद्र की गहराई में मानो स्केट बनाकर एक आकृति बनाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी के जोशी समेत 14 स्कूबा ड्राइवर्स की टीम ने लाइट हाउस डाइव

0: बात महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले 17 साल के छात्र हितेन धारपुरे की, जिन्होंने देश का नाम गर्व से भर दिया। हितेन ने दुनिया का सबसे छोटा और पूरी तरह से काम करने वाला इलेक्ट्रोमैकेनिकल रोबोटिक आर्म बनाया। ये रोबोटिक आर्म बनाकर उन्होंने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। इस रोबोटिक आर्म का साइज महज 39.250 मिलीमीटर है, जो कि उंगली के साइज से लगभग आधा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इससे पहले दर्ज हुआ सबसे छोटा रोबोटिक आर्म 44.49 मिलीमीटर था, जो इससे 5.24 मिलीमीटर बड़ा था। साइज में बेशक ही ये छोटा हो, लेकिन ये डिवाइस सटीकता से पकड़ और चीजों को उठा सकता है। भविष्य में इसका हेल्थ केयर और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हो सकता है। परफॉर्मेंस पर असर डाले बिना इसका साइज कम करके हितेन ने सबसे छोटी काम करने वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रोबोटिक आर्म के लिए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हितेन धारपुरे ने FDM बेस्ड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोबोटिक आर्म बनाया। इस डिवाइस में माइक्रो सर्वो मोटर्स, PWM बेस्ड कंट्रोल सिस्टम और खास तौर पर डिजाइन किए गए मैकेनिकल ज्वाइंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी वजह से छोटे आकार के बावजूद ये आसानी से और कंट्रोल कर सकता है। रोबोटिक आर्म का मोशन पाथ 3 एक्सिस वाला है, जिससे ये छोटी चीजों को पकड़कर उन्हें इधर से उधर ले जा सकता है।
1: तो ये रोबोटिक आर्म है जो 3 एक्सिस मोशन दिखाता है, जो PWM सिग्नल्स पे वर्क करता है, और इसे बेसिकली हम हेल्थ केयर सेक्टर में यूज कर सकते हैं। अभी बेसिकली प्रोटोटाइप स्टेज पे है, और इसे फर्दर अप स्केल हम करना चाहते हैं कि उसे हम हेल्थ केयर सेक्टर में स्केल अप कर सकें, जो माइक्रो सर्जरीज में यूज अप कर सकते। हाँ, तो इसे डॉक्टर टेक्निकली ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया वह PWM सिग्नल यूज करता है, तो इसे हम रिमोट कंट्रोल से इंटीग्रेट करवा सकते हैं ताकि डॉक्टर्स उसे कंट्रोल कर सकते।
0: हितेन की इंजीनियरिंग में दिलचस्पी बहुत ही कम उम्र से शुरू हो गई थी। वे सिर्फ अपने खिलौनों से खेलते नहीं थे, बल्कि ये समझने के लिए उन्हें खोल कर देखते थे कि वे कैसे काम करते हैं। इस जिज्ञासा ने ही इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी दिलचस्पी जगाई, और जैसे जैसे हितेन बड़े होते गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, और आज उसी का परिणाम सबके सामने है। अब बात लखनऊ के अश्वनी कुमार सिंह की, जिन्होंने शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया और देश का नाम रोशन किया। जिन्होंने एक मिनट में सबसे ज्यादा स्पाइडरमैन पुशअप कैटेगरी में 55 सेकंड में 96 पुशअप्स लगाने का नया कीर्तिमान बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सीरिया के शेख मुस्तफा के नाम था, जिन्होंने एक मिनट में 94 पुशअप लगाए थे। अश्वनी ने 96 पुशअप्स लगाकर तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2018 में अश्वनी ने 30 किलोग्राम वजन पीठ पर रखकर एक मिनट में 34 पुशअप का रिकॉर्ड बनाया था। 2021 में पीठ पर वजन रखकर एक पैर हवा में रखते हुए 30 सेकंड्स में 50 पुशअप कर दूसरा गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा अश्वनी ने 2016 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर कीर्तिमान बनाया था। अश्वनी ने अपनी सफलता से साबित कर दिया कि अगर लगन पक्की हो तो कोई भी रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। अश्वनी बताते हैं कि रिकॉर्ड के बनाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को मोटिवेट और प्रेरित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कुछ अलग करने का जुनून कई बार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। कुछ ऐसा ही गुवाहाटी में भी देखने को मिला। यहाँ के सरू सजाई स्टेडियम में हजारों लोगों ने एक साथ भरतनाट्यम करके एक रिकॉर्ड बनाया। हजारों लोगों ने जब एक साथ नृत्य किया तो लगा मानो पूरा वातावरण ही उत्साह के रंग में रंग गया हो। एक रिकॉर्ड अहमदाबाद के पुष्प मंडल के नाम भी रहा। तो बटुकंबा उत्सव में भी कई रिकॉर्ड्स बने।

भरतनाट्यम नृत्य शैली की जड़ें ऋषि भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र से जुड़ी हैं। इसे पहले सादिर या दासी अट्टम भी कहा जाता था। प्राचीन काल में ये नृत्य मंदिरों में देवदासियों द्वारा भगवान की स्तुति के रूप में किया जाता था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल जैसी हस्तियों ने इस कला को पुनर्जीवित किया और इसे मंदिरों से बाहर निकालकर मंच तक पहुंचाया। चूंकि भरतनाट्यम नृत्य की परंपरा तमिल संस्कृति से जुड़ी है, इसलिए इसका फैलाव श्रीलंका में भी देखा जाता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के गॉल फेस प्रोमिनेड में अद्भुत सांस्कृतिक नजारा देखने को मिला, जब 5,000 से अधिक नर्तकों ने एक साथ नृत्य कर दुनिया के सबसे बड़े भरतनाट्यम डांस लेसन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये आयोजन भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को जीवंत रखने और भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। इस भव्य कार्यक्रम में भारतीय उच्चायुक्त ने आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट

भरतनाट्यम नृत्य हमारी परंपरा और संस्कृति की पहचान है। सबसे प्राचीन और लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में से एक भी है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मानी जाती है। ये नृत्य मुख्य रूप से भाव, राग और ताल का एक अद्भुत संगम है।

इन 5000 से ज्यादा नर्तकों ने अपने थिरकते कदमों से पुराने रिकॉर्ड को एक विशाल अंतर से तोड़ा है। इससे पहले ये विश्व रिकॉर्ड भारत के ही नाम था, जिसे 2 फरवरी 2020 को चेन्नई में 416 प्रतिभागियों के साथ स्थापित किया गया था। ये आयोजन शास्त्रीय नृत्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण इसलिए साबित हुआ क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच अटूट सांस्कृतिक संबंधों की झलक भी दिखी। इस शानदार प्रस्तुति ने प्रतिष्ठित समुद्र तटीय स्थल को परंपरा, अनुशासन और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के जीवंत प्रदर्शन में बदल दिया। जनवरी 2026 का दिन, गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम, 10,000 से ज्यादा बोडो नर्तक,

एक साथ बगुरुम्बा नृत्य, मानो पूरा वातावरण ही उत्साह के रंग में रंग गया और बन गया विश्व रिकॉर्ड। वो पल हर भारतवासी को गर्व की अनुभूति दे गया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। भारत विविध संस्कृतियों का देश है और यहाँ पर अलग अलग परंपराएं और संस्कृति तो हैं ही, लेकिन लोक कलाएं और लोक नृत्य भी सभी को प्रभावित करती हैं। बागुरुम्बा नृत्य बोडो जनजाति के लोगों का खास नृत्य है। इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है, जिसे अक्सर खुशी के मौके पर किया जाता है। ये नृत्य तितलियों की कोमल गति और उड़ने वाले पक्षियों की नकल करते हुए किया जाता है। ये नृत्य प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। ये नृत्य शैली परंपरागत रूप से केवल बोडो समुदाय की महिलाओं द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है, जबकि वाद्य यंत्र पुरुष बजाते हैं। नर्तक हाथ से बुने हुए चमकीले लाल, पीले और हरे रंग के दोखना, जोमग्रा और अरोनाई वस्त्र पहनते हैं और हस्त निर्मित ताल वाद्य यंत्रों की मधुर धुन पर नृत्य करते हैं।

0: कुछ अनोखा रिकॉर्ड इसी साल जनवरी में अहमदाबाद में बना, जिसमें पहला रिकॉर्ड विश्व के सबसे बड़े फूल मंडल का बना। साबरमती रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर में तैयार इस विशाल फूल मंडप का मापन DGPS तकनीक के माध्यम से किया गया। आधिकारिक सर्वे के मुताबिक पुष्प मंडल का व्यास करीब 33.6 मीटर और कुल क्षेत्रफल 886.789 वर्ग मीटर दर्ज किया गया। इससे पहले इस श्रेणी में न्यूनतम बेंचमार्क 706.86 मीटर था, जिसे इसी साल काफी अंतर से पार कर लिया गया। दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल के भव्य फूल पोर्ट्रेट के नाम दर्ज हुआ। इस पोर्ट्रेट की लंबाई 41.17 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर और कुल क्षेत्रफल 229.360 मीटर दर्ज किया गया। इसे विश्व का सबसे बड़ा फूलों से बना पोर्ट्रेट घोषित किया गया। इससे पहले इस श्रेणी में न्यूनतम बेंचमार्क 50 वर्ग मीटर था। इस फ्लावर शो का आयोजन हर साल अहमदाबाद नगर निगम करता है और इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू कर दी जाती है। तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाने वाला बाटुकम्मा उत्सव पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में मनाया जाने वाला ये त्योहार 2025 के लिए यादगार बन गया। पिछले साल इस उत्सव के आखिरी दिन सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर नाच गाकर उत्सव मनाया। इस दौरान बाटुकम्मा उत्सव ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। बाटुकम्मा को समुद्र से लाए गए फूलों से श्रद्धा पूर्वक सजाया जाता है। इसी क्रम में हैदराबाद के सरूर नगर मैदान में आयोजित सदुल्ला बाटुकम्मा कार्यक्रम में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़े लोक नृत्य और सबसे बड़े बाटुकम्मा का रिकॉर्ड बनाया गया। स्टेडियम में 63 फीट ऊंचा और 36 फीट चौड़ा एक विशाल बाटुकम्मा स्थापित किया गया था। फूलों की पिरामिड नुमा आकृति बाटुकम्मा को 10 टन से ज्यादा अलग अलग प्रकार के फूलों से सजाया गया था, जिसमें 9 से 11 परतें शामिल थीं। इस अद्भुत पुष्प संरचना को बनाने में लगभग 300 स्वयं सेवकों ने 72 घंटे तक अथक परिश्रम किया था। फूलों को बाद में रिसाइकिल करके अगरबत्ती बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे ये पर्यावरण अनुकूल भी बन गया। इस आयोजन में हजारों महिलाओं ने एक साथ लयबद्ध तरीके से पारंपरिक गीत गाते हुए बाटुकम्मा खेलकर एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड को 1354 महिलाओं ने पूरी तरह से तालमेल में नृत्य प्रस्तुत करके हासिल किया, जिसने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हम आपको कुछ ऐसे रिकॉर्डधारियों से मिलवा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम उन्होंने हासिल किया है जिसने उन्हें खास बना दिया है। तो चलिए कुछ ऐसे ही लोगों से अब आपकी मुलाकात कराते हैं।

0: एक साथ उठते हजारों हाथ, एक सुर में गूंजता महामंत्र, और आस्था का ऐसा सैलाब जिसने नागपुर की पावन धरती पर सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिख दिया था। हजारों दियों की रोशनी की जगमगाहट, महाआरती का भव्य आयोजन, पूरा भक्तिमय माहौल, और इस दौरान विश्व शांति का सबसे बड़ा संदेश। ये सिर्फ श्रद्धा नहीं थी, ये था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। रामनवमी के पावन अवसर पर नागपुर ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रामनवमी की धूम पूरे देश में थी, लेकिन नागपुर के सावनेर से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौका था महाआरती का और लक्ष्य था आस्था के साथ विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का। हुआ भी ऐसा ही। नगर परिषद मैदान में 4,911 लोगों ने एकजुट होकर महाआरती का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। इस महा आयोजन की तैयारी महीनों पहले से चल रही थी। लक्ष्य बड़ा था, इसलिए इंतजाम भी चाक चौबंद थे। हर एक श्रद्धालु के प्रवेश को दर्ज करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। गिनीज बुक के कड़े नियमों के तहत हर हिस्सेदारी को बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा था। जैसे जैसे शाम ढली, नागपुर का ये मैदान एक दिव्य धाम में तब्दील हो गया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे पुरुष, हाथों में आरती की थाल थामे महिलाएं और माथे पर तिलक लगाए लोग, हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए आतुर था। फिर वो क्षण भी आया जब एक साथ लोगों ने हजारों की संख्या में दिए जलाए। ऐसा लगा कि जैसे पूरा माहौल ही जगमगा उठा हो। जब तय समय पर एक साथ 4,900 दिए रोशन हुए तो भक्ति का सागर जैसे हिलोरे मारने लगा। दिव्यता से भरे माहौल में इस भव्य आरती में शामिल हर आम और खास भाव विभोर हो उठा। हजारों लोगों की मौजूदगी और इस माहौल में जब हरे राम हरे कृष्ण गूंजा तो पूरा माहौल ही भक्ति अध्यात्म की ऊर्जा से भर गया। एक साथ हवा में लहराती आरती की थालियां और हवा में तैरती कपूर की खुशबू ने पूरे माहौल को अलौकिक बना दिया। नियमों के मुताबिक सभी श्रद्धालुओं को एक निश्चित समय तक लगातार पूरे अनुशासन के साथ इस आरती का हिस्सा बने रहना था। हुआ भी ऐसा ही। श्रद्धा भाव से लबरेज लोगों ने अद्भुत अनुशासन का परिचय देते हुए इस परीक्षा को भी पार कर लिया और ये पल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। रामनवमी पर बना नागपुर का ये रिकॉर्ड आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा। नागपुर में आस्था का अद्भुत रिकॉर्ड देखने को मिला तो चेन्नई में आत्मरक्षा का ऐसा जज्बा दिखा जिसने भारत का नाम दुनिया के नक्शे पर चमका दिया। एक साथ हवा को चीरते हजारों बच्चे, एक सुर में गूंजती हुंकार और ड्रीम बीट्स पर कराटे की गूंज। ये सिर्फ कराटे की ट्रेनिंग नहीं थी, ये था दुनिया का सबसे बड़ा कराटे पाठ जिसने जापान और दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया। तारीख थी 8 फरवरी 2025 और आयोजन करता थे वर्ल्ड कराटे मास्टर्स एसोसिएशन। एक ही जगह पर इतने बड़े लेसन को बिना किसी गलती के पूरा करना एक चुनौती बन गया था, लेकिन चुनौतियों को पार करके ही तो इंसान वो कर दिखाता है जो किसी के बस में नहीं। मैदान पर पूरे 2,996 छात्र और प्रतिभागी मौजूद थे। हर किसी की नजर सामने मंच पर थी और दिल में बस एक ही संकल्प था, भारत के नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराना। जैसे ही लेसन की शुरुआत हुई पूरा चेन्नई कराटे की थाप पर थिरक उठा। पंच, किक और ब्लॉक, कराटे की हर एक तकनीक को सभी 2996 प्रतिभागियों ने एक साथ एक ही सेकंड में दोहराया। ऐसा लग रहा था मानो हजारों शरीर हों, लेकिन एक ही आत्मा काम कर रही हो। फिर वो पल भी आया जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने आधिकारिक डेटा की घोषणा की, तो एक सिंगल वेन्यू पर लार्जेस्ट कराटे लेसन का आधिकारिक रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो गया। रिकॉर्ड की घोषणा होते ही चेन्नई का ये ऑडिटोरियम जश्न के समंदर में डूब गया। ट्रेनर्स, छात्र और अभिभावक सबकी आंखें गर्व से भर आईं, क्योंकि वर्ल्ड कराटे मास्टर्स एसोसिएशन ने वो कर दिखाया था जिसकी गूंज बरसों तक मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNK के साथ।

0: soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यही करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च, मिशन आगमन के नाम से हुई इसकी लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने दी बधाई। बुलंदशहर को सीएम योगी ने सौंपी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे चेक, बच्चों की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण। झारखंड के धनबाद में मां विपद तारिणी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के विशेष पूजा अर्चना, 400 से ज्यादा व्रती महिलाओं ने संकट से रक्षा का मांगा आशीर्वाद। फिल्म वाराणसी की फायर मंदाकिनी का ढांसू लुक आया सामने, प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर राजामौली ने शेयर की ये खास तस्वीर, जन्मदिन की दी बधाई।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: भारत की पहली प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ने भरी उड़ान, हरी कोटा से दोपहर 12:05 पर स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 पहली टेस्ट फ्लाइट मिशन आगमन लॉन्च। विक्रम 1 ने रच दिया इतिहास, 24 मीटर लंबा कार्बन फाइबर रॉकेट, 350 किलो तक का पेलोड, 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में सक्षम। विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग से इसरो के साथ निजी स्पेस सेक्टर की बड़ी छलांग, इस पूरे मिशन पर देश की नजर। साल 2020 के स्पेस रिफॉर्म का बड़ा असर, इन स्पेस के मुताबिक 5 से 6 स्टार्टअप से बढ़कर अब देश में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप सक्रिय। 3D प्रिंटेड इंजन और ऑल कार्बन फाइबर तकनीक से लैस विक्रम 1 भारत को दिला सकता है ग्लोबल पहचान, स्पेस सेक्टर में बड़ा भारत का कद। लॉन्च की कामयाबी के बाद स्काई रूट के फाउंडर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की खास बातचीत दी, उन्हें बधाई। इस सफल मिशन को बताया युवाओं के लिए जीत।
10: और कोई नहीं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई।
9: कॉस्मोस डायमंड्स के कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। ये माइक्रो आर्ट पीस है 18 कैरेट सोने से बने छोटा सा रॉकेट। इस खास माइक्रो आर्ट पीस पर वैज्ञानिक सर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां उकेर गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से लिखा गया एक पोस्ट कार्ड भी रॉकेट में भेजा गया, जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। बुलंदशहर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने बुलंदशहर को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। बुलंदशहर के मेधावी छात्रों से सीएम योगी ने की खास बातचीत, विज्ञान से प्रेरित छात्रों के बनाए मॉडलों के बारे में ली जानकारी। सीएम योगी ने छात्रों को भेंट की कलम। सीएम योगी ने संगीत विद्यार्थियों से भी की खास मुलाकात, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की कलाकृति भेंट करने वाली छात्रा को सीएम ने उपहार में दी चॉकलेट। सीएम योगी ने कान्हा और राधा की वेशभूषा पहने बच्चे बच्चियों को किया दुलार, अन्नप्राशन कर खिलौने और बंसी दी उपहार। जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को मिली बड़ी सौगात, सीएम योगी ने लैपटॉप, चेक, मकान की चाबी, थर्मल प्रिंटर, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति सब्सिडी, टूल किट और प्रमाण पत्र वितरित किए। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दर्शन पूजन सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद सुबह दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रही। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती हुई संपन्न, बाबा महाकाल का हुआ भव्य दिव्य श्रृंगार। श्रद्धालुओं ने जयकारों के बीच दर्शन कर लिया बाबा का आशीर्वाद। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर परिसर भक्तिमय रहा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में विधि विधान से हुई भस्म आरती, बाबा महाकाल के मनमोहक स्वरूप ने भक्तों का मोह लिया मन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ ने किया प्रवेश। जगन्नाथ धाम में आस्था का उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के दिव्य दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज रही है पूरी नगरी। भक्तों का विश्वास है कि प्रभु के दर्शन मात्र से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। रथ यात्रा के दूसरे दिन तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे, भगवान जगन्नाथ का जन्मस्थान माना जाता है गुंडीचा मंदिर। 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा, दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। सहारनपुर को मिली नई रेल सेवा की सौगात, पीएम नरेंद्र मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा के किया रवाना। उद्घाटन यात्रा में ट्रेन सहारनपुर स्टेशन पहुंची तो जोरदार स्वागत हुआ। नई ट्रेन शुरू होने से वाराणसी, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद समेत कई शहरों के लिए बेहतर यात्रा विकल्प मिला। रोजाना हजारों यात्रियों को इसका सीधा फायदा होगा। वैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर आई सामने। रेलवे ने श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई, कोडरमा, नवादा, कियूल, जमालपुर और सुल्तानगंज होकर स्पेशल ट्रेनें श्रद्धालुओं को पहुंचाएंगी। सावन में बाबा धाम यात्रा होगी आसान, श्रावणी मेले को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, देवघर जाने वालों को मिली बड़ी सौगात। 26 जुलाई से सितंबर तक चलने वाली ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल कोच की सुविधा मिलेगी। रांची भागलपुर के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें अलग अलग रूट और दिनों में संचालित होंगी। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई सामने, देशभर के 75 रेलवे स्टेशनों की बदली सूरत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया इनका पुनर्विकास। भारत और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर सकारात्मक चर्चा, साल 2030 की शुरुआत में E10 श्रृंखला की हाई स्पीड ट्रेन उपलब्ध कराएगा जापान। तेजी से चल रहा है इस परियोजना का निर्माण कार्य, साल 2027 में परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा इसका पहला खंड। अमृतधार स्टेशन योजना के तहत तैयार पाली के सोमेसर स्टेशन का हुआ शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इसका वर्चुअल उद्घाटन। करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई सोमेसर स्टेशन की परियोजना, 1453 वर्ग मीटर में फैला है स्टेशन परिसर। पूरी तरह बदली गुजरात के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण गोधरा जंक्शन की सूरत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ स्टेशन का कायाकल्प। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है स्टेशन का रीडेवलपमेंट, यात्रियों की सभी आधुनिक सुविधाएं हैं इसमें उपलब्ध, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए फुट ओवरब्रिज और लिफ्ट की सुविधा भी है शामिल। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम से किया पुनर्विकसित फतेहपुर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झारखंड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन, नए रंग रूप में नजर आया स्टेशन। हैदराबाद में हाईटेक सिटी अमृत भारत रेलवे स्टेशन का हुआ उद्घाटन, रामचंद्र राव ने समारोह में लिया हिस्सा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आया रिकॉर्ड उछाल। लगातार दूसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ोतरी, 675 अरब डॉलर के पार पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के गोल्ड रिजर्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा, कई विकास परियोजनाओं का किया उन्होंने उद्घाटन, रखी आधारशिला। टू व्हीलर से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों पर भी लगेगा अब 100 रूपए एंट्री का टैक्स, बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले टू व्हीलर पर लागू हो गया नया फैसला। बिहार के गया में बोरवेल में फंसे 3 साल के बच्चे का सफल रेस्क्यू करने वाली एनडीआरएफ टीम को मिली वाहवाही, जवानों को किया जाएगा सम्मान। उत्तर पश्चिम पूर्व पूर्वोत्तर भारत में अगले 6 से 7 दिन जमकर बारिश के आसार, मौसम विभाग ने सक्रिय मॉनसून की चेतावनी जारी की। आज अरुणाचल असम मेघालय में भारी बारिश की है संभावना, कई इलाकों में अत्यधिक बारिश से जनजीवन हो सकता है प्रभावित। 19 से 20 जुलाई को उत्तराखंड और 20 से 21 जुलाई को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान, भूस्खलन और अचानक बाढ़ का बढ़ सकता है खतरा। आज और कल पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की दी जा रही है सलाह। पश्चिम मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 7 दिन बारिश की गतिविधियां सुस्त रहने के आसार, कई इलाकों में हो सकती है सामान्य से कम वर्षा। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जल भराव, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन प्रभावित। अचानक आई बाढ़ से लाहौल स्पीति में उफान पर तांदी उदयपुर मार्ग पर रंगबे नाला तेज बहाव के साथ बहता नजर आया मलबा। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर छोड़ी के निकट टूट कर सड़क पर आया पहाड़ का बड़ा हिस्सा, सुरक्षा कर्मी तैनात, यात्रियों को सुरक्षित, आर पार भेज रहे जवान। हिमाचल में मॉनसून जल्द पकड़ेगा अब रफ्तार, मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। गोवा में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, एहतियातन तौर पर प्रशासन अलर्ट मोड पर। पंडरपुर में भगवान विट्ठल को भक्तों की अनोखी भेंट, भगवान के चरणों में अर्पित की सोने की पादुकाएं, करीब 57 लाख बताई जा रही है स्वर्ण पादुकाओं की अनुमानित कीमत, दान के दौरान भक्त अपना नाम गोपनीय रखने की रखी है शर्त। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे भक्तों ने बनाया एक और रिकॉर्ड, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, 19 अप्रैल से शुरू हुई थी पवित्र चार धाम यात्रा। मॉनसून का दौर शुरू होने के बावजूद बद्रीनाथ यात्रा की रफ्तार बरकरार, पल पल बदलते मौसम के बीच भी आस्था भारी, बड़ी संख्या में आ रहे हैं श्रद्धालु। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा मार्ग का जायजा लिया, श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर दिया जोर। कांवड़ मेले को सुरक्षित और सुगम बनाने को लेकर हरिद्वार में इंटर स्टेट बैठक, उत्तराखंड दिल्ली हरियाणा राजस्थान और यूपी के अधिकारियों के अलावा आईटीबीपी एसएसबी और एनडीआरएफ के आला अधिकारी इसमें हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 83 लोगों का अनोखा संयुक्त परिवार, 6 पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हैं। परिवार में 43 पंजीकृत मतदाता, 20 बेटे और बहुएं हैं शामिल, परिवार का कहना है आपसी एकता है सबसे बड़ी दौलत। खेती से लेकर कारोबार तक हर काम मिलकर करता है परिवार, आज भी परंपराओं के साथ जी रहा है ये संयुक्त परिवार। देशभर में घोषित हुए नीट यूजी परीक्षा परिणामों में पंजाब के मानसा जिले की बेटी भाविका ने किया शानदार प्रदर्शन, ऑल इंडिया 56वीं रैंक हासिल की। शानदार सफलता के बाद भाविका को बधाई देने वालों का लगातार परिवार ने उपलब्धि पे जताया कर। नीट यूजी परीक्षा परिणामों के बाद जयपुर में भी खुशी का माहौल। उपलक्ष गोयल ने ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की, खुश हुए परिवार वाले। नागपुर के सौम्य धनराज बडोले ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 77 हासिल की, सौम्य के घर खुशी की लहर। नीट परीक्षा में 676 अंक लाकर झारखंड टॉपर बने ज्ञानेंद्र गर्व, सफलता पर परिवार गदगद, कहा परिवार का बड़ा मान। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी ने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया धमाल। पहले दिन दुनिया भर में $40 मिलियन यानी 383 करोड़ रुपए से ज्यादा किया कारोबार। द ओडिसी के आने से शुक्रवार को धमाल 4 की कमाई पर काफी असर पड़ा। फिल्म ने 8वें दिन कमाई महज 3.95 करोड़ रुपए। सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 3 आइकॉनिक फिल्में बड़े पर्दे पर हो रही हैं फिर से रिलीज। दामिनी घातक और घायल को री रिलीज करने का बनाया जा रहा है प्लान। आलिया भट्ट स्टारर अल्फा की कमाई में आई गिरावट, अब तक इस फिल्म ने 94 करोड़ रुपए की ग्लोबल कमाई की है। जुनैद खान और साई पल्लवी की एक दिन ओटीटी पर मचा रही है धूम। प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही मैराडोना की हैंड ऑफ गॉड वाली गेंद होगी नीलाम। 1986 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेल गए मैच के ऐतिहासिक गेंद की शुरुआती बोली करीब $25 लाख रखी गई। हैंड ऑफ गॉड गेंद से रिकॉर्ड कीमत की उम्मीद। नीलामी कराने वाली कंपनी का मानना है कि ये गेंद साल 2022 में बिकी मैराडोना की जर्सी की तरह $करोड़ों में बिक सकती है। मैच के बाद मुख्य रेफरी ने इस गेंद को संभाल के रखा था अपने पास, जिसे अप्रमाणित कर नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। साल 2026 फीफा वर्ल्ड कप से बड़ा फुटबॉल से जुड़ी यादगार चीजों का क्रेज। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले अगले वर्ल्ड कप से पहले फुटबॉल कलेक्टिबल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। जुलाई के अंत से अगस्त तक चलेगी इसकी नीलामी। मैराडोना के हैंड ऑफ गॉड गोल से जुड़ी ऐतिहासिक गेंद 21 से 23 अगस्त तक होने वाली नीलामी में खरीदारों के लिए उपलब्ध रहेगी। यूरोप की गर्मी से राहत पाने का अनोखा जुगाड़। क्रोएशिया के ट्रोगर के पास अंडर वाटर म्यूजियम में डुबकी लगाकर पर्यटक गर्मी से खुद की कर रहे हैं रक्षा। समंदर में बना दुनिया का अनोखा धार्मिक म्यूजियम, यहाँ पर 52 मूर्तियां और दुनिया का इकलौता अंडर वाटर वे ऑफ द क्रॉस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिना स्कूबा टैंक भी कर सकते हैं सैर। पानी में तैरने वाला मांस और सांस लेने वाली ट्यूब के सहारे नए और गैर तारीख पर्यटक भी समंदर के नीचे कला दिखा सकते हैं। 7 मीटर ऊंची यीशु मसीह की प्रतिमा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। समुद्र में 8 से 9 मीटर की गहराई पर स्थापित विशाल प्रतिमा देखने के लिए दुनिया भर से पहुंच रहे हैं लोग।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
0: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
12: हाईटेक हो रहे पैदल सेना के जंगबाज, जमीनी युद्ध के लिए मिल रहे मॉडर्न ब्रह्मास्त्र,
13: इंडियन इन्फेंट्री का कायाकल्प।
12: देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
14: एक अनोखे खेल की तस्वीरें जबरदस्त वायरल है। लड़कियां मिलकर ये अनोखा गेम खेल रही है, जिसमे 2 लड़कियां लाइन में झुकी हुई लड़कियों को एक टी शर्ट पहना रही हैं। 2 गुट इस खेल को खेल रहे हैं और तस्वीरों में दिख रहा है कि इस गुट ने अपनी लाइन की आखिरी लड़की को भी टी शर्ट पहना दी है। गेम जल्दी से पूरा करके ये समूह अपनी जीत पर खुशी से चिल्लाने लगा। लोगों को ये अनोखा गेम खूब पसंद आ रहा है। कहते हैं कि रोटी की कीमत वही जानता है जिसने भूख देखी हो और पानी की कीमत वही जानता है जो प्यासा हो। तस्वीरों में एक नन्ही बच्ची को एक नन्हे बेजुबान बंदर के बच्चे को पानी पिलाते हुए देखा जा सकता है और लोग इसको देख के काफी भावुक हो रहे हैं। ये भावुक तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल होती अनोखी दोस्ती की भी ये तस्वीर देख लीजिए, जिसमें एक छोटे बच्चे और एक रेप्टाइल के बीच अनोखी फ्रेंडशिप नजर आ रही है। इस अनोखी दोस्ती ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। बच्चा किनारे बैठा है, पानी से एक रेप्टाइल निकल कर आता है, बच्चा उसे सहलाता है और वो भी बच्चे के स्पर्श को पूरी शिद्दत से महसूस करता है। लोग अब इस दोस्ती की मिसालें दे रहे हैं, बच्चे की बहादुरी को भी सराह रहे हैं। कहते हैं कि बहन का दर्जा माँ से कम नहीं होता, और वो भी तब जब बहन माँ की तरह ही केयरिंग और प्यार देने वाली हो। ये तस्वीरें इसलिए वायरल हैं क्योंकि एक बहन इसी तरीके से अपने छोटे भाई का ख्याल रखती नजर आ रही है। तस्वीरों में एक बच्ची जो कि खुद भी बेहद छोटी सी है, लेकिन स्कूल में अपने भाई को लंच ब्रेक में ऐसे खाना खिला रही मानो उसकी माँ हो। अब इस भावुक वीडियो को देखकर लोग अपनी बड़ी बहन को याद कर रहे हैं, उनको ये तस्वीरें बेहद पसंद आ रही हैं और इस तस्वीर पर लोग बेहद प्यार लुटा रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, स्केटिंग रिंग में ये बच्ची अपने स्केटिंग टैलेंट का प्रदर्शन करती है। स्केट्स के साथ उसके मूव्स दर्शकों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। हालांकि वो इस दौरान गिर भी जाती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि वो संभलती है और फिर स्केटिंग की उड़ान भरने लगती है। असली आर्टिस्ट ऐसा ही होता है जो पब्लिक को पता भी न चलने दे और लोग यही समझे कि शायद ये उसके प्रदर्शन का ही हिस्सा हो। लोगों को न सिर्फ इसका टैलेंट पसंद आया बल्कि सब इसकी सूझबूझ और कुशलता की भी तारीफ कर रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
15: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती। मैदान का चाणक्य, फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: Tune-ins How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
17: क्या शनि अशुभ होने पर लापरवाह बना देता है? क्या शनि के अशुभ होने पर संघर्ष का फल नहीं मिल पाता? क्या है शनि की अशुभता के लक्षण और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
9: रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ ने किया प्रवेश, 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च, मिशन आगमन के नाम से हुई इसकी लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने दी बधाई। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात, बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। उत्तराखंड को नई ट्रेन की सौगात, सीएम पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली रामनगर देहरादून एक्सप्रेस का किया शुभारंभ, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क को मिलेगी इससे मजबूती। बुलंदशहर को सीएम योगी ने सौंपी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे चेक, बच्चों की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण। झारखंड के धनबाद में मां विपद तारिणी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना, 400 से ज्यादा व्रती महिलाओं ने संकट से रक्षा का मांगा आशीर्वाद। फिल्म वाराणसी की फायर मंदाकिनी का ढांसू लुकाया सामने, प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर राजामौली ने शेयर की एक खास तस्वीर, जन्मदिन की दी बधाई।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सुरा।

0: पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, योद्धाओं की वो टोली जो विषम परिस्थितियों में भी देश की हिफाजत में डटे रहते हैं। तपते रेगिस्तान से लेकर खून जमा देने वाली बर्फीली वादियों तक इनकी मौजूदगी है, जो दुश्मन को फटकने का मौका तक नहीं देते। भारतीय सेना के रणबांकुरों को मॉडर्न, हाईटेक और लेटेस्ट वेपन से लैस किया जा रहा है, ताकि वो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने वाले हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। भारतीय सेना अपने हथियारों को अत्याधुनिक बनाने और इन्हें हल्का बनाने के लिए लगातार इन पर काम कर रही है, और इसी कड़ी में 450 कार्ल गुस्ताफ MK4 मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर्स को खरीदने का प्रपोजल दिया गया है। ये खरीद मेक इन इंडिया के तहत ही होगी और इसके बाद भारतीय सेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। कार्ल गुस्ताफ सिर्फ एक एंटी टैंक हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध में पैदल सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला मल्टी रोल वेपन सिस्टम है, जो बख्तरबंद वाहनों से लेकर मजबूत बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। भारतीय सेना इसे करीब 5 दशकों से इस्तेमाल कर रही है और अब इसका सबसे आधुनिक संस्करण MK4 को सेना की नई युद्ध जरूरतों के हिसाब से शामिल किया गया है। सेना की RFP में साफ हो गया है कि नया लॉन्चर पुराने MK3 जितना सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए। बैरल की उम्र कम से कम 1500 राउंड या 15 साल होनी चाहिए। ये -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और अलग अलग जलवायु में बिना किसी समस्या के काम भी कर सके। आधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम हो, रेड डॉट साइट और पकैटनी रेल्स लगाने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि सैनिक तेजी से निशाना लगा सके और पहली गोली में ही दुश्मन को मार सके।
1: इंडियन आर्मी बहुत जल्दी ही कार्ल गुस्ताफ 4 शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक वेपन को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसका जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है, उसके तहत कार्ल गुस्ताफ 4 का जो लॉन्चर होगा उसका वजन 7 किलो से कम होना चाहिए। यह गौरतलब बात है कि इसके पहले का जो Mark 2 वेरियंट था और Mark 3 वेरियंट था, उनका वजन 14 किलो और 10 किलो होता था। तो इन्फेंट्री ट्रुप्स को एक हैवी एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए अब जो नया वर्जन टाइप 4 बनेगा उसका वजन 7 किलो या कम होगा।
0: सेना के लिए 84 mm के हल्के रॉकेट लॉन्चर्स कार्ल गुस्ताफ MK4 खरीद सिर्फ एक वेपन परचेज तक सीमित नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में लॉन्चर, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, तकनीकी दस्तावेज और रखरखाव की पूरी व्यवस्था शामिल है। सेना के रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में बहुत सारी खास बातें हैं, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि साब कंपनी इसे हरियाणा के झज्जर में बनाएगी, यानी कि ये पहली बार होगा कि स्वीडन के बाहर इसका प्लांट किसी और मुल्क में लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ जब तमाम मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगी तो हमें स्पेयर पार्ट्स या फिर दूसरी चीजों के लिए स्वीडन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी और मजबूत होता है।
2: भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियां देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। वो सीमा पर हर तरह के इलाके में तैनात रहती हैं। पुराने हथियार भारी और कम प्रभावी हो चुके हैं। ऐसे में MK4 हल्का होने की वजह से सैनिकों की गतिशीलता बढ़ेगी, खासतौर पर सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में, जहां पर हर अतिरिक्त किलो वजन सैनिकों के लिए चुनौती होता है। कार्ल गुस्ताफ MK4 का वजन लगभग 7 किलोग्राम है, जो पुराने संस्करणों से हल्का है। इसकी लंबाई 1 मीटर से भी कम है, जिससे दुर्गम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पैदल सैनिक इसे आसानी से ले जा सकते हैं और मुश्किल इलाकों में लंबे समय तक आसानी से ऑपरेशन भी किया जा सकता है।
1: इसमें जो वॉरहेड लगाए जाएंगे वो 3 तरह के होंगे। नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड दुश्मन के बंकर को ध्वस्त करने के लिए, एंटी टैंक वॉरहेड दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए, और एक एरिया वेपन जो कि हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड होगा, दुश्मन के जो इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं जो ओपन एरिया में डिप्लॉयड हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि यह जो नया वेपन होगा ये -20 डिग्री हिमालयन क्षेत्र में, जैसे टेम्परेचर सर्दियों में हो जाता है, और +50 डिग्री राजस्थान के डेजर्ट में, जैसे टेम्परेचर गर्मियों में हो जाता है, के रेंज में काम कर सके। इसका टेक्निकल तात्पर्य ये है कि -20 डिग्री में जो ट्यूब है वो श्रिंक नहीं होनी चाहिए, ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, और +50 डिग्री में जो इसका लॉन्च ट्यूब है वो सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, रिजिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए।
2: अगर दुश्मन पहाड़ी बंकर में छिपा है, किसी इमारत के अंदर हो, या फिर हल्के बख्तरबंद वाहन में हो, या फिर सीमा पर मजबूत चौकी बना रखी हो, कार्ल गुस्ताफ MK4 कम समय में ऐसे लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। इससे पैदल सैनिकों को टैंक या तोपखाने के समर्थन का इंतजार हमेशा नहीं करना पड़ता।
1: युद्ध के दौरान जब हमारी टैंक दस्ते आगे बढ़ते हैं तो वो दुश्मन के जो एंटी टैंक कमांडोज हैं और दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं उसकी जद्दोजहद में आ सकते हैं। ऐसे में टैंक फॉर्मेशन जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमेशा उनको इन्फेंट्री ट्रूप्स का सपोर्ट दिया जाता है, ख़ास तौर से एक्सिस ऑफ एडवांस के बाएं फ्लैंक पर और एक्सिस ऑफ एडवांस के दाहिने फ्लैंक पर। इन इन्फेंट्री ट्रूप्स को, जो हमारे इन्फेंट्री है जो कि टैंक को कवर दे रहे हैं, टैंक की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनका काम होता है कि दुश्मन ने अगर अपने एंटी टैंक दस्तों को दाएं या बाएं में जंगल के पीछे, खेत के पीछे, पहाड़ के पीछे छुपा के रखा हुआ है, उसका क्लियरेंस करते जाएं ताकि हमारी टैंक फॉर्मेशन बिना किसी रेजिस्टेंस के या बिना किसी नुकसान के मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, जिसे हम फॉर्म अप पॉइंट कहते हैं, FUP। क्योंकि टैंक फॉर्मेशन FUP पे पहुंचने के बाद ही जो असली टारगेट है उसके ऊपर अपना हमला शुरू करती है। असली टारगेट क्या है? डिचकम बंद हो सकता है, दुश्मन का टैंक कंसंट्रेटेड एरिया होना हो सकता है, दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हो सकता है।
2: पहले अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग हथियारों की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन कार्ल गुस्ताफ MK4

0: फोर से एंटी स्ट्रक्चर और बंकर बस्टर गोले दागे जा सकते हैं। इसके लिए HEDP 502 और MT-756 गोले का इस्तेमाल होता है। HEDP 502 एक ड्यूअल पर्पस गोला है। इसमें इम्पैक्ट यानी टकराते ही फटना और डिले मोड यानी कि टारगेट से टकराने की थोड़ी देर बाद फटना दोनों होते हैं। डिले मोड में ये पहले कंक्रीट या फिर लकड़ी की दीवार को छेद कर अंदर घुसता है और फिर बंकर के भीतर विस्फोट करता है ताकि अंदर छिपे दुश्मनों का सफाया हो सके। बंकरों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। MT-756 से एक मल्टी टारगेट गोला भी दागा जा सकता है। ये कंक्रीट ईंट और मजबूत दीवारों को तोड़ते हुए विशेष रूप से टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल करता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर है। कार्ल गुस्ताव MK4 से एंटी पर्सनल गोले जैसे कि HE-441D और 441DRS भी दागे जा सकते हैं। गोले के भीतर करीब 800 छोटे स्टील के छर्रे होते हैं। गोले खुली जगह या फिर झाड़ियों में छिपे दुश्मन के पैदल सैनिकों और गैर बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकते हैं। युद्धभूमि में पैदल सैनिकों के लिए मूवमेंट बेहद जरूरी होता है और इसमें खतरा बहुत बड़ा होता है, लिहाजा दुश्मन की नजरों से बचने के लिए कार्ल गुस्ताफ MK4 के पास सपोर्ट और गाइडेड गोले भी हैं जो दुश्मन की आंखों के सामने धुएं की दीवार खड़ी कर सकते हैं। कार्ल गुस्ताफ MK4 धुआं फैलाने वाले गोला स्मोक 469C दाग सकता है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर है और ये युद्ध क्षेत्र में तुरंत भारी धुआं पैदा करता है ताकि सैनिक दुश्मन की नजरों से बचकर अपनी पोजीशन बदल सके। यानी एक ही हथियार से टैंक और बख्तरबंद वाहन पर हमला हो सकता है। बंकर और कंक्रीट को तबाह किया जा सकता है।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क 4 के लॉन्चर से 1 मिनट में जरूरत पड़ने पर 6-6 मिसाइलों को दाग सकते हैं। इसके अलावा आर्मी ने अपने RFP में ये भी कहा है कि इसकी कैलेंडर लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिए, यानी बारिश, आंधी, तूफान, रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद वह 15 साल तक इफेक्टिव होना चाहिए। 1500 राउंड्स फायर करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। क्या होता है कि हर वेपन सिस्टम्स में टैंक तो तरंगबंद गाड़ियों का जो मेन मशीन गन है उनमें कुछ 100 या कुछ हजार राउंड फायर करने के बाद जो मेन बैरल है या कार्ल गुस्ताव में मेन ट्यूब है उसको चेंज करना पड़ता है। तो आर्मी ने अपने स्पेसिफिकेशन में लिखा कि 1500 राउंड तक इस कार्ल गुस्ताव मार्क 4 का जो ट्यूब है वो सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और उसके दौरान ही उसका जो ट्यूब है वो आर्मी के जवान के शोल्डर पे ही फट गया।
0: कार्ल गुस्ताफ MK4 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है जो कि 1 मिनट में करीब 6 राउंड फायर कर सकता है। इसके प्रभावी मारक क्षमता की बात की जाए तो मूविंग टारगेट यानी कि चलते हुए वाहनों के खिलाफ करीब 350 से 400 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। वहीं स्थिर बख्तरबंद वाहनों या फिर टैंकों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। इमारतों और बंकरों के खिलाफ कार्ल गुस्ताफ MK4 की मारक क्षमता 700 से 1000 मीटर है। कार्ल गुस्ताफ MK4 को विशेष रूप से शहरी युद्ध और पैदल सैनिकों की मोबिलिटी को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया है। भारतीय सेना की पैरा फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस के लिए कई बार दुश्मन के नजदीक जाकर भी हमला करना पड़ता है। स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए वो कई बार दुश्मन की सरहद में भी घुसते हैं, तो ऐसे में गुस्ताफ MK4 उनके लिए सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। दरअसल परिस्थितियों के लिहाज से हथियार कितना अत्याधुनिक है और उसका हर एक ग्राम मैटर करता है। तो स्थिति चाहे ऊंचाई वाले इलाकों की हो या फिर दूर दराज के इलाकों की, गुस्ताफ MK4 इन फोर्सेस के लिए सबसे बेस्ट हथियार साबित हो सकता है। कार्ल गुस्ताफ MK4 की लंबाई 1 मीटर से कम है, जिससे कमांडो इसे अपने पैराशूट हार्नेस या बैकअप के साथ आसानी से बांध सकते हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते समय या फिर पैराशूट से कूदते समय ये सैनिकों के मूवमेंट में बाधा नहीं बनेगा। पैरासेफ अक्सर रात के अंधेरे में हमला करते हैं। MK4 का स्मार्ट फायर कंट्रोल डिवाइस FCD-558 थर्मल और नाइट विजन डिवाइस के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इससे कमांडोज बिना कोई रोशनी किए घने अंधेरे या फिर कोहरे में भी दुश्मन के ठिकाने

0: इंसानों को ढूंढकर तबाह कर सकते हैं। भारतीय सेना की इन्फेंट्री के पास दरअसल एक घातक प्लाटून भी होती है। इनमें शारीरिक रूप से सक्षम और स्मार्ट जवानों को भर्ती किया जाता है। वैसे इनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। इनका सबसे बड़ा मकसद सीधे तौर पर यही होता है कि जब भी भारतीय सेना कहीं हमला के लिए जा रही है तो सबसे पहले यही प्लाटून आगे उस सेना का रास्ता क्लियर करती है। फिर चाहे बंकरों को नष्ट करना हो या फिर सेना के लिए रास्ता बनाना, यानी इस प्लाटून का कहां बहुत अहम हो जाता है रण क्षेत्र में। फॉरवर्ड पोस्ट पर दुश्मन की रक्षा पंक्ति को मिनटों में ध्वस्त करने के लिए घातक प्लाटून के जवान काल गुस्ताफ MK4 से HEDP-502 और MT-576 मल्टी टारगेट बंकर बस्टर गोलों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन का किला चुटकियों में ध्वस्त हो जाएगा। कश्मीर या उत्तर पूर्व में जब आतंकवादी किसी मजबूत घर या कंक्रीट की इमारत में छिप जाते हैं तो घातक प्लाटून को बुलाया जाता है। पहले भारी हथियारों को संकरी गलियों में ले जाना मुश्किल होता था, वहीं MK4 के हल्के वजन के कारण सैनिक इसे आसानी से संकीर्ण रास्तों पर ले जा सकेंगे और कमरे के अंदर से फायर करने वाले विशेष गोलों की मदद से बिना अपनी जान जोखिम में डाले इमारत को उड़ा देंगे।
1: किसी भी इन्फेंट्री असॉल्ट के दौरान इन्फेंट्री के जो ट्रुप्स हैं या कमांडोज हैं उनको या तो ऊंची चोटियों पर जल्दी से जल्दी चढ़कर दुश्मन के ऊपर वार करना होता है, या खेतों में, मार्शी एरिया में, दलदल एरिया में, या रेगिस्तान, जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ पर सॉफ्ट सैंड पर द्रुत गति से आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में अगर एंटी टैंक लॉन्चर ट्यूब का वजन 14 किलो है या 10 किलो है तो फिर जवानों की मोबिलिटी में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी को ओवरकम करने के लिए अब यह तय किया गया है कि कार्ल गुस्ताव मार्क 4 का जो लॉन्च ट्यूब होगा वो कॉम्प्लेक्स ग्लास फाइबर ट्यूब का बना होगा और टोटल वेपन सिस्टम का वजन 7 किलो से कम होगा, ताकि इन्फेंट्री का जो जवान है वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, समझिए उसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर, 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के बंकर पर हमला करना हो तो द्रुत गति से वो अपने पैरों से ऊपर चढ़कर द्रुत गति से इफेक्टिव फायर दुश्मन पर ला सके।
0: हथियारों की दुनिया में काल गुस्ताफ MK4 को सेना के बजट के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। एंटी टैंक मिसाइल से ये बेहद सस्ता है, जहां स्पाइक या फिर जेवलिन ATGMs की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, इसके उलट काल गुस्ताफ का एक रॉकेट शेल महज कुछ लाख रुपए में आ जाता है। इसके टाइटेनियम लाइन बैरल की लाइफ 1500 राउंड है। इसका मतलब ये है कि ये सालों साल बिना खराब हुए हजारों गोले दाग सकता है, जिससे रखरखाव का खर्च बहुत कम हो जाता है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भरता आएगी। स्वीडन की कंपनी सादगी ओर से झज्जर हरियाणा में लगाई गई 100% FDI फैक्ट्री के कारण भारत को अब लॉन्चर या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क 4 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हरियाणा में हिसार के पास सेटअप किया जा रहा है। इसी के तहत यह भारत सरकार के लिए मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। यह बहुत हाईली कॉस्ट इफेक्टिव वेपन सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि यह फाइबर ग्लास का बना होता है और एक ही ट्यूब को 15 साल तक और युद्ध की परिस्थिति में 1500 राउंड फायर करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही रेवेन्यू फ्रेंडली यानी कम खर्चे वाला वेपन सिस्टम लॉन्ग रन में साबित होगा।
0: मौजूदा समय में काल गुस्ताफ सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। अलग अलग देश इसे अलग अलग नामों और रणनीतियों के साथ अपना रहे हैं। ब्रिटिश सेना इसे चार्ली जी कहती है, कैनेडियाई सैनिक इसे काल जी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की सेना चार्ली गट्स एक कहती है, वहीं अमेरिका में इसे मॉज यानी मल्टी रोल एंटी आर्मर एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम कहा जाता है। कालगुस्ताव सिस्टम के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन काम एक है और वो है दुश्मन को बैकफुट पर धकेलना। भारतीय सेना ने कालगुस्ताव को 1974 में अपनाना शुरू किया और 1976 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के साथ ये समझौता हुआ, जिसके बाद से अभी तक कालगुस्ताव लगातार भारतीय सेना का एक बहुत भरोसेमंद साथी बना हुआ है। करगिल युद्ध के समय भारतीय सेना ने कालगुस्ताव सिस्टम का बाखूबी इस्तेमाल किया। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पहाड़ों की चट्टानों के बीच कंक्रीट और पत्थरों के मजबूत बंकर बना दिए थे, जहां पारंपरिक राइफलों और मशीन गनों की गोलियां बेअसर थी। भारतीय सैनिकों ने कालगुस्ताव को अपने कंधों पर उठाकर 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके हाई एक्सप्लोसिव ड्यूअल पर्पस गोलों ने बंकरों की दीवारों को सीधे छेद कर उड़ा दिया, जिसने भारतीय इन्फेंट्री को चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराने में सबसे बड़ी मदद की। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अगर देखा जाए तो खास तौर पर कश्मीर घाटी में भारतीय सेना का सबसे मजबूत साथी है कालगुस्ताव। दरअसल ये इस तरह का इलाका है जहां पर आतंकवादी कहीं भी आकर हमला करके उसके बाद झाड़ियों में या कंक्रीट में के बने कुछ मकानों में या फिर गुफाओं में अंदर जाके छिप जाते हैं। ऐसे में इन जगहों पर आतंकियों को काम तमाम करने के लिए सैनिकों को ठीक उनके पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये काम कालगुस्ताव आसानी से कर देता है। हथियारों की रीयूजेबिलिटी और वर्स्टेबिलिटी के कारण भारतीय सेना ने इसे अपनी अग्रिम सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बनाया। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीजफायर वॉयलेशन का जवाब देने और उनके अग्रिम बंकरों को तबाह करने के लिए कालगुस्ताव सिस्टम का अक्सर इस्तेमाल होता है। वहीं LAC पर चीनी चौकियों के ठीक सामने भारतीय सेना की लगभग सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर कालगुस्ताव के पुराने संस्करण MK2 और MK3 हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि किसी भी अचानक बख्तरबंद घुसपैठ को रोका जा सके। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: पक रही होती है खबरें तो समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती, मैदान का चाणक्य फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: भारतीय सेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा करने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बना रही है। इसमें नए नए हथियार भी शामिल हैं, इसमें सेना का मॉडर्नाइजेशन भी शामिल है, और यही वजह है कि भारतीय सेना ने नाग 2 पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तमाम टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के बारे में कहा जाता है कि इसके रडार पर एक बार टारगेट आया तो उसका बचना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे दागने के बाद दोबारा कमांड देने की जरूरत नहीं होती।
11: फायर एंड फॉरगेट टेक्निक जो है कि जब एक बार ऑपरेटर टारगेट को लॉक कर लेता है और फिर फायर कर देता है, तो फिर उसको जो मिसाइल रास्ते में है उसको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं, फिर वो खुद पे खुद जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। तो ये जो फायर एंड फॉरगेट है ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। एक बार जब ऑपरेटर टारगेट पे लॉक कर लेता है मिसाइल को और फायर करने के बाद ड्यूरिंग फायरिंग टाइम उसको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए नेविगेशन में, वो खुद पे जाके टारगेट को हिट करेगा। और तो ये जो नाग मिसाइल है जो भारत ने अभी डेवलप की है नाग मार्क 2, पहले हमने नाग मार्क 1 की थी जिसकी रेंज करीब 4 किलोमीटर थी, अब ये नाग मार्क 2 की है जिसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर में है। ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है और ये फायर एंड फॉरगेट टेक्निक से है।
0: नाग मिसाइल हर मौसम में काम करने में सक्षम है, इसमें इंफ्रारेड तकनीक है जो लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करती है और तूफानी रफ्तार से उसे तबाह कर देती है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर प्रहार करती है, यानी 4 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को 17 से 18 सेकंड में निस्तानाबूद करने में सक्षम है।
11: नाग मार्क 2 जो है वो इम्प्रूव वर्जन है नाग मार्क 1 का। जो नाग मार्क 1 था उसकी रेंज जो थी 4 किलोमीटर थी, जबकि नाग मार्क 2 की रेंज जो है 7 से 10 किलोमीटर है। ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है, ये फायर एंड फॉरगेट टेक्निक से चलती है। एक बार ऑपरेटर इसको लॉक कर लेता है फायर करने से पहले, उसके बाद इसको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द बेसिकली जब ये फायर की जा रही है। तो ये सच्चाई है, एक बहुत ही आधुनिक है ये जो नागबाग टू भी, और ये भारत ने खुद इंडिजिनसली बनाई है। ये एक प्रकार आत्मनिर्भर भारत के तहत है, बल्कि यही नहीं जो नागबाग वन और टू दोनों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, दूसरे देश उसको खरीदना चाहते हैं।
0: हल्के वजन और अचूक निशाने वाली नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी। भारतीय सेना की नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने 300 करोड़ की लागत से विकसित किया है। 1990 में इसका सफल परीक्षण हुआ और इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से 2017, 2018 और 19 में भी नई तकनीक के साथ लगातार इसका परीक्षण होता चला गया। रक्षा मंत्रालय ने इस बात को क्लियर किया है कि नाग मिसाइल ने अपने हर परीक्षण में हर टेस्ट पूरी तरह से पास किया है और अब ये भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। डीआरडीओ ने नाग एटीजीएम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। नाग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे जमीन और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, यानी सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि इसे हवा से हवा में लॉन्च कर दुश्मन टैंक और बख्तरबंद वाहनों को खाक में मिलाया जा सकता है। नाग एटीजीएम के चार विंग्स हैं और ये चारों विंग्स पूरी तरह से फोल्डेबल हैं। इसका वजन है करीब 43 किलोग्राम और इसमें एक रियल टाइम इमेज प्रोसेसर के साथ तेज और कुशल एल्गोरिदम भी है जो खुद ब खुद टारगेट को पहचान कर सीधा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है और उसे निशाना बनाती है। नाग मिसाइल के लिए खास मिसाइल कैरियर NAMICA तैयार किया गया है जिसे सारथ नाम मिला है। ये एक टैंक डिस्ट्रॉयर है जिसमें 12 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। नाग मिसाइल के 5 अलग अलग टाइप पर काम चल रहा है। नाग मिसाइल का एक लैंड वर्जन, दूसरा मास्ट माउंटेड सिस्टम, बाकी 3 खास जरूरतों के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी की MP-ATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ट्रायल 2005 में शुरू हुआ। ये दिखने में नाग मिसाइल के लैंड वर्जन जैसी ही है लेकिन बेहद हल्की, जो करीब 14 किलोग्राम है। नाग का MP-ATGM वर्जन की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है। ये टैंकों के ऊपर से हमला करने में सक्षम है जिसे टॉप अटैक कहा जाता है। दरअसल टैंकों में चारों तरफ रिएक्टिव आर्मर की प्लेट लगी होती है जो मिसाइल हमले के दौरान फटक कर उसके प्रभाव को कम कर देती है। इसीलिए ऊपर की ओर टैंक पर हमला उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसे दागने के बाद उसके लक्ष्य को बदला भी जा सकता है।
12: ये देखिएगा जो टैंक है हर जगह से मजबूत होता है कि नहीं, तो कहां कमजोर है टॉप मतलब ऊपर जहां से वो आप देखते हैं कि टैंक का खुद सर निकाल करके खड़ा है या कहीं से कर रहा है, तो जो ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा सा कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द टैंक ज्यादा कमजोर है। सो जो कमजोर पार्ट को मारने के लिए तो टॉप गाइडेड मतलब आपने टैंक मिसाइल फायर किया वो टैंक के ऊपर उसने देखा और फिर ऊपर से उसने टॉप अटैक किया, यानी कि जो भी टैंक आपने देखा होगा कि बख्तरबंद जो गाड़ियां होती हैं टैंक्स होते हैं ये मोटा जो स्टील होता है पूरा का टरेट जो होता है पूरा का पूरा भारी सब जगह से लोडेड लैथ होता है कि टैंक जो है उसको बर्बाद करना इतना आसान है। सो सबसे कमजोर जो पोर्शन है ये मिसाइल उधर जा करके उसको बर्बाद कर देता है।
0: नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पहाड़ पर ले जाना हो या फिर रेगिस्तान में, इसे कहीं पर भी आसानी से प्लेस किया जा सकता है, कहीं भी फिट किया जा सकता है। यानी इसके लिए किसी निश्चित जगह की जरूरत नहीं है बल्कि जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल हो सकता है। MP-ATGM में और भी कई हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। MP-ATGM इमेज इंफ्रारेड रडार से लैस है जो रात के अंधेरे में दुश्मनों को ढूंढ लेती है। MP-ATGM में इंटीग्रेटेड एवेनॉक्स भी लगा है। इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता करीब 3 किलोमीटर है। करीब 1.25 मीटर लंबाई वाली इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड फिट होते हैं, जिससे ये टैंक के बेहद मजबूत कवच को भी पिघला सकती है। थर्मल सेंसर की वजह से ये टैंक से निकलती गर्मी को और भगाती है, जिससे बचना टैंक के लिए आसान नहीं होता।
11: जो नाग मार्क 2 है ये भी थर्मल इमेजिंग है, ये एक प्रकार से हीट सीकर होती है, जो मतलब कि जहां से भी टारगेट जो हीट प्रोड्यूस करता है वो उसको होमोन कर लेते हैं और फिर उसकी तरफ जाते हैं। तो थर्मल इमेजिंग का बड़ा फायदा है कि ये एक प्रकार से हीट सीकर होते हैं और ये जो टारगेट को उसकी हीट के नज़र से पहचानते हैं और वो 100% जाके उसको हीट करते हैं।

0: स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। एफओएस वेरिएंट का नाम है ध्रुवास्त्र, जिसे हेलेना नाम से भी जाना जाता है। ध्रुवास्त्र को ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने ध्रुवास्त्र मिसाइल के तमाम टेस्ट पास कर लिए हैं और इन तमाम टेस्टों को पास करने के बाद अब ये भारतीय सेना और वायु सेना को अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये न सिर्फ अत्याधुनिक है बल्कि साथ ही साथ भारतीय सेना और वायुसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा भी करेगी। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर चलने वाली इस मिसाइल से दुश्मन के टैंक बच नहीं पाएंगे। यही वजह है कि ध्रुवास्त्र की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक में होती है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा हुआ है, जिससे ये अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। ध्रुवास्त्र मिसाइल की रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है, जो ये 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसमें 8 किलो विस्फोटक लगा सकते हैं। भारत के पास सेंट यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल में होती है। सैंट ध्रुवास्त्र का अपग्रेडेड वेरिएंट है। 15 से 20 किलोमीटर रेंज वाली सैंट में एक्टिव रडार सीकर लगा है, ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। ये मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से टारगेट का पता लगाती है और भागते टारगेट को भी तबाह कर सकती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मार्च 2023 में अपने थर्ड जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। अमोघा 3 बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर है। इसमें जो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है वो 650 मिलीमीटर बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर के भी चीथड़े उड़ा सकता है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन की तरफ इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक की मदद से आगे बढ़ती है। हालांकि इसकी स्पीड का खुलासा इसे बनाने वाली कंपनी ने नहीं किया है। अमोघा 3 मिसाइल पर 8 फिन्स यानी कि छोटे छोटे पंख लगाए गए हैं, ताकि उड़ान के समय इसे कंट्रोल किया जा सके।
1: जमीनी दस्ते का सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार होता है टैंक और इसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां। यकीन मानिए कि जब टैंकों का काफिला निकलता है तो इसे रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं है। यानी हमारी सेना के टैंक इतने ताकतवर हैं कि दुश्मन इनकी फौज को देख के ही थर थर कांपता है।
0: टैंकों को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल भी कहा जाता है। लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी कि रिकॉइल लेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।
1: टैंक के खिलाफ 106mm की RCL गन एक बेहद प्रभावशाली हथियार बना। वैसे उस दौर में ये इतना आसान भी नहीं था। दरअसल इसके गोले अगर टारगेट को हिट कर दें तो टारगेट बचता नहीं था। वहीं खराब बात इसकी ये थी कि फायर होते ही दूर से पहचान लिया जाता था, क्योंकि इसके शोले पीछे की तरफ निकलते थे, यानी दुश्मन को पहचाना जा सकता था। एक और बड़ी बात कि ये केवल 3 ही बार फायर हो सकती थी। बावजूद इसके ये भारतीय सेना का एक मजबूत साथी बनती रही।
0: 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पे तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए, ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग सके। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उलट। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुकी रही जब तक पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आए। अब्दुल हमीद एक जीप पर RCL गन के साथ तैनात थे।
1: असल उत्तर की धूल भरी जमीन पर जब लड़ाई छिड़ी तो दुश्मन का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। एक तो धूल भरी जमीन थी, यानी चारों तरफ धुआं और ऊपर से फायर लगातार हो रहे थे और उसका धुआं अलग से, और ऐसे में दुश्मन को पहचान पाना, उसे निशाने पर लेना इतना आसान नहीं था। ऐसे में अब्दुल हमीद ने एक स्मार्ट स्टेप उठाया। उन्होंने वेट किया, उन्होंने दुश्मन को करीब आने दिया और फिर उसे निशाने पर लिया। इसी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने दुश्मन को निशाना बनाया और इसके बाद उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो तुरंत से गाड़ी को पीछे ले और पोजीशन चेंज करे। दिन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने दो टैंकों को तबाह कर दिया था, बल्कि चार टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं पर छोड़कर भाग खड़ी हुई। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने चार ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले एक घंटे में ही पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हमीद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी आरसीएल गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा मिला। यहां से उन्होंने सबसे पहले आगे के टैंक को उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर दो और टैंकों को उड़ा दिया। अब्दुल हमीद ने गजब साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र भी दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
2: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे, तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है टैंकों के विरुद्ध और बस्तरबंद गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नागमार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की, तो ये बैटलफील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
1: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नई योद्धा की भी एंट्री हो चुकी है। यह हथियार है स्पाइक NLOS, यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट। आज की तारीख में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बहुत जरूरी है। वैसे देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर में हिमालय क्षेत्र है और जहां की सीमा सीधे पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़ती है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऊंचाई वाले इलाकों में कई बार दुश्मन छिपा होता है। करगिल युद्ध में अगर आपको याद हो तो ऐसी परिस्थितियां बनी थी, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठा के दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है। तो ऐसे में ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमारी सेना का बाखूबी साथ देती है। स्पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
3: वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलकर ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन दी लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्शन में, यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम, वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन दी लूप वाला सिस्टम है, तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबार्ट करना पड़े तो ये अबार्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है।
0: हवा से दागी गई NLOS मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। भारत ने इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी। इसे वायुसेना में MI-17 हेलीकॉप्टर्स पर लगाया जाएगा। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC के करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू विमान तैनात करना शुरू कर दिए, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ऑर्डर दिया।
1: भारत बहुत लंबे समय से मिसाइल खरीदने का इच्छुक था। 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे, एक था अमेरिका की FGM-148 जेवलिन मिसाइल और दूसरा विकल्प था स्पाइक NLOS। भारत ने स्पाइक को चुना। उसकी सबसे बड़ी और खास वजह यह थी कि ये इसराइल की कंपनी थी, और दूसरी बात यह कि इसराइल भारत के साथ न सिर्फ इसकी डील कर रहा था बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी कर रहा था। ये वो दौर था जब मोदी सरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही थी, यानी कहीं ना कहीं ये डील भारत को ज्यादा सूट करती थी।
0: फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में NLOS मिसाइलें ऑर्डर की हैं, बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा संख्या में हासिल किया जाएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दो तरह की हैं। एक तो छोटी मिसाइलें जिन्हें एक व्यक्ति आसानी से उठाकर ले जा सकता है और कंधे से ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। वहीं दूसरी होती है बड़ी मिसाइलें जिन्हें लॉन्च करने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत होती है, यानी हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत को देखा है। वहीं यूक्रेन एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका से मिले जेवलिन मिसाइलों का खूब इस्तेमाल किया गया। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्पाइक को जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल माना जाता है। स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स ने दुनिया भर में कई युद्धों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। स्पाइक मिसाइल ने 1982 और 2006 के लेबनान युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। साल 2001 और 2021 के अफगानिस्तान वॉर में इसने जबरदस्त जंगी क्षमता का परिचय दिया। वहीं इराक युद्ध में भी स्पाइक बेजोड़ साबित हुई। साल 2014 इसराइल गाजा संघर्ष और साल 2020 नारगोन कारबाख संघर्ष में भी स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल ने अहम भूमिका निभाई। स्पाइक की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एंटी टैंक मिसाइल में होती है। भारत के पास पहले से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जमीन से फायर करने वाला वर्जन मौजूद है। भारतीय सेना इस समय स्पाइक LR मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। स्पाइक LR पोर्टेबल है। दो जवानों की टीम के साथ इसे तैनात किया जा सकता है। एक जवान लॉन्चर लेकर चलता है और दूसरा मिसाइल। स्पाइक मिसाइल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं। इसे फायर करने के दो मोड हैं। पहला है फायर एंड फॉरगेट, मतलब मिसाइल फायर करने के बाद टारगेट को भूल जाइए। दूसरा फायर एंड ऑब्जर्व एंड अपडेट, इसमें मिसाइल के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से विजुअल लॉन्चर तक पहुंचता है। सैनिक देख पाता है कि मिसाइल किस टारगेट की ओर बढ़ रही है, वो टारगेट पर कहां लगेगा। जरूरत पड़ने पर मिसाइल की हवा में रहते समय ही सैनिक उसकी दिशा में बदलाव कर सकते हैं। इस खूबी के चलते उस टारगेट को भी खत्म किया जा सकता है जो सीधे नजर नहीं आता।

बाइक को कंधे पर रखकर या फिर हेलीकॉप्टर में कहीं से भी दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे टैंक पर भी फिट किया जा सकता है जहां से इसे लॉन्च किया जाएगा। बहरहाल भारत ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण करते हुए दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत की सैन्य ताकत कितनी मजबूत है।

0: स्पाइक मिसाइल अपने टारगेट पर अचूक प्रहार करती है। यह इतनी घातक है कि टारगेट को बचने का मौका तक नहीं मिलता। स्पाइक मिसाइल न सिर्फ दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर को तबाह करने में सक्षम है, बल्कि ये दुश्मन के टैंकों के परखचे उड़ाने की ताकत भी रखती है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
2: क्या शनि अशुभ होने पर लापरवाह बना देता है? क्या शनि के अशुभ होने पर संघर्ष का फल नहीं मिल पाता? क्या है शनि की अशुभता के लक्षण और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
0: एक अनोखे खेल की तस्वीरें जबरदस्त वायरल है। लड़कियां मिलकर ये अनोखा गेम खेल रही है, जिसमें दो लड़कियां लाइन में झुकी हुई लड़कियों को एक टी शर्ट पहना रही हैं। दो गुट इस खेल को खेल रहे हैं और तस्वीरों में दिख रहा है कि इस गुट ने अपनी लाइन की आखिरी लड़की को भी टी शर्ट पहना दी है। गेम जल्दी से पूरा करके ये समूह अपनी जीत पर खुशी से चिल्लाने लगा। लोगों को ये अनोखा गेम खूब पसंद आ रहा है। कहते हैं कि रोटी की कीमत वही जानता है जिसने भूख देखी हो, और पानी की कीमत वही जानता है जो प्यासा हो। तस्वीरों में एक नन्ही बच्ची को एक नन्हे बेजुबान बंदर के बच्चे को पानी पिलाते हुए देखा जा सकता है, और लोग इसको देख के काफी भावुक हो रहे हैं। ये भावुक तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल होती अनोखी दोस्ती की भी ये तस्वीर देख लीजिए, जिसमें एक छोटे बच्चे और एक रेप्टाइल के बीच अनोखी फ्रेंडशिप नजर आ रही है। इस अनोखी दोस्ती ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। बच्चा किनारे बैठा है, पानी से एक रेप्टाइल निकल कर आता है, बच्चा उसे सहलाता है और वो भी बच्चे के स्पर्श को पूरी शिद्दत से महसूस करता है। लोग अब इस दोस्ती की मिसालें दे रहे हैं, बच्चे की बहादुरी को भी सराहा रहे हैं। कहते हैं कि बहन का दर्जा माँ से कम नहीं होता, और वो भी तब जब बहन माँ की तरह ही केयरिंग और प्यार देने वाली हो। ये तस्वीरें इसलिए वायरल हैं क्योंकि एक बहन इसी तरीके से अपने छोटे भाई का ख्याल रखती नजर आ रही है। तस्वीरों में एक बच्ची जो कि खुद भी बेहद छोटी सी है, लेकिन स्कूल में अपने भाई को लंच ब्रेक में ऐसे खाना खिला रही मानो उसकी माँ हो। अब इस भावुक वीडियो को देखकर लोग अपनी बड़ी बहन को याद कर रहे हैं। उनको ये तस्वीरें बेहद पसंद आ रही हैं और इस तस्वीर पर लोग बेहद प्यार लुटा रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, स्केटिंग रिंग में ये बच्ची अपने स्केटिंग टैलेंट का प्रदर्शन करती है। स्केट्स के साथ उसके मूव्स दर्शकों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। हालांकि वो इस दौरान गिर भी जाती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि वो संभलती है और फिर स्केटिंग की उड़ान भरने लगती है। असली आर्टिस्ट ऐसा ही होता है जो पब्लिक को पता भी न चलने दे और लोग यही समझे कि शायद ये उसके प्रदर्शन का ही हिस्सा हो। लोगों को न सिर्फ इसका टैलेंट पसंद आया बल्कि सब इसकी सूझबूझ और कुशलता की भी तारीफ कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती। मैदान का चाणक्य, फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: क्या शनि अशुभ होने पर लापरवाह बना देता है? क्या शनि के अशुभ होने पर संघर्ष का फल नहीं मिल पाता? क्या हैं शनि की अशुभता के लक्षण और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
10: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
5: रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर। अब तक 4,08,000 श्रद्धा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यही करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। झारखंड के धनबाद में मां विपद तारिणी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, परिवार में सुख समृद्धि और शांति की विशेष पूजा अर्चना, 400 से ज्यादा व्रती महिलाओं ने संकट से रक्षा का मांगा आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात, बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। महाराष्ट्र के पुणे में 3 नए राजमार्ग और सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ, 16,700 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का होगा निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार। उत्तराखंड को नई ट्रेन की सौगात, सीएम पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली रामनगर देहरादून एक्सप्रेसवे का किया शुभारंभ, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क को मिलेगी इससे मजबूती। IRCTC ने लॉन्च किया हम्पी बदामी विरासत ओडिसी टूर पैकेज, सैलानी 6 दिनों में कर्नाटक के प्रमुख स्थलों का कर सकेंगे दीदार, 40,000 से 600 रुपए के पैकेज की शुरुआत। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च, मिशन आगमन के नाम से हुई लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। फिल्म वाराणसी की फायर मंदाकिनी का धांसू लुक आया सामने, प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर राजामौली ने शेयर की तस्वीर, जन्मदिन की दी बधाई।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने अपनी कैप्टेंसी में लगातार दूसरी बार अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 15 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के आखिरी क्षणों में मेसी ने अपने दो शानदार पास से मैच का रुख जिस तरह से बदल दिया, उसे देखकर इस खेल के विशेषज्ञ अब ये कहने लगे हैं कि मेसी ऑल टाइम ग्रेट है।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जेय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों में मेसी ने विरोधी टीमों पर हावी होकर आखिरी क्षणों में जिस तरह से मैच का रुख मोड़ दिया, उसे देखकर सॉकर एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि मेसी निसंदेह ऑल टाइम ग्रेट हैं। मेसी के डाई हार्ड परफॉर्मेंस की वजह से अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने में सफल हुआ है। अटलांटा के एंथनी गार्डन में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में 55वें मिनट पर गोल करके इंग्लैंड फाइनल की तरफ कदम बढ़ा चुका था, लेकिन लियोनेल मेसी ने आखिरी वक्त में मैच का रुख पलट दिया। मैच के 86वें मिनट पर मेसी ने शानदार शॉर्ट कॉर्नर खेलकर गेंद एंजो फर्नांडीज के पास पहुंचा दी और फर्नांडीज ने मेसी के शानदार पास पर बगैर देर किए 25 गज से शानदार गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में मेसी के बेहतरीन क्रॉस पर सब्स्टिट्यूट लॉटारो मार्टिनेज ने हेडर से गोल कर फाइनल में पहुंचने के इंग्लैंड के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस रोमांचक मुकाबले के बाद मेसी की खुले दिल से तारीफ करते हुए फुटबॉल एक्सपर्ट मीका रिचर्ड्स ने कहा कि अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, उनके पास ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, फुटबॉल के इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच हुए फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 पर यानी बराबरी पर था, लेकिन मैदान पर मेसी की मौजूदगी ने अर्जेंटीना के बाकी खिलाड़ियों का हौसला हमेशा बुलंद रखा, लिहाजा अतिरिक्त समय में 2 गोल दागकर अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स एंड पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया।

0: खिंचवाई। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
1: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो वो मानो भगवान बन गए हैं, लेकिन मेसी के

0: व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारों की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन वाकिफ नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मैसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मैसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मैसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मैसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मैसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मैसी की पूरी दास्तां आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थीं। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी। यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया, जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे वैसी किसी और बच्चे को न झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
0: तो चलिए बंद में है दम के आज के सफरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक दमदार शख्सियत का सफरनामा लेकर आप सभी के सामने। इजाजत दीजिए, देखते रहिए GNT।
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
8: महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं. कोई नकदी दान करता है तो कोई सोना चांदी और कीमती आभूषण चढ़ाता है. यहाँ चढ़ावे में आई हर चीज का ना सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाता है बल्कि उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाती है.
9: उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. भक्त यहां दिल खोलकर सोना चांदी नकदी और बहुमूल्य आभूषण दान करते हैं. हाल ही में कुछ मंदिरों में चढ़ावे और दान की राशि को लेकर सामने आए विवादों के बीच महाकाल मंदिर की सुरक्षा और दान व्यवस्था एक आदर्श मिसाल बनकर उभरी है. मंदिर प्रशासन का दावा है कि यहां आने वाले चढ़ावे की एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच की जाती है.
10: बाबा महाकाल की सेवा में जो सेवार्थी लगे हुए हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ 3 लोगों की समितियां भी है. स्वर्ण का समाज के पारखी जोरिया है, वो पूरा जांच करने के बाद ही और प्रत्येक चढ़ावे की राशि का पूर्णता पारदर्शिता के साथ में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जांच होती है. बाबा महाकाल का आशीर्वाद पूरी सृष्टि के ऊपर तो है, उज्जैन वासियों के ऊपर भी है और उसी के कारण प्रतिदिन मेरे बाबा के दर्शन करने लगभग 2.25 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं. उज्जैन के निवासी उनकी सेवा के लिए, उज्जैन के सेवक उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ में आने पाई का पूर्णता व्यवस्थित हिसाब होता है.
9: मंदिर समिति के अनुसार चढ़ावे में मिले सोने और चांदी के आभूषणों की जांच के लिए सुनारों की 3 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम है. ये टीम सोने चांदी की शुद्धता, गुणवत्ता और कैरेट की बारीकी से जांच करती है. जांच पूरी होने के बाद उसका लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जाता है. दानदाता को मंदिर समिति की ओर से रसीद भी जारी की जाती है जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है.
11: देखिए मैं 2020-21 से मैं यहाँ मूल्यांकन समिति में काम कर रहा हूँ और मुझे ये देखने में आया है कि कोई छोटी मोटी धातु कभी कोई गलती से कोई चढ़ा जाता है वही आती है, लेकिन जो बड़े मुकुट होते हैं, कुंडल होते हैं, तो वो तो सब असली पाए जाते हैं और जो नकली होते हैं वो या तो कोई ऐसे फ्रॉड जेलर्स के यहाँ से परचेसिंग कर लेता है श्रद्धालु तो आ जाती है, या फिर अन्य कोई खोया पाया विभाग से जो प्राप्त होती है, जैसे किसी का गुम हो जाता है, कोई नकली पायल पहन के आया, कोई नकली सामग्री रहती है, तो इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है नकली का. वहां पर जितने भी धातु आती है लगभग असली ही.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
12: soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
6: दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर। अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम। लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। झारखंड के धनबाद में मां विपद तारिणी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। परिवार में सुख समृद्धि और शांति के विशेष पूजा अर्चना। 400 से ज्यादा व्रती महिलाओं ने संकट से रक्षा का मांगा आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात। बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। महाराष्ट्र के पुणे में 3 नए राजमार्ग और सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ। 16,700 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का होगा निर्माण। औद्योगिक क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार। उत्तराखंड को नई ट्रेन की सौगात। सीएम पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली रामनगर देहरादून एक्सप्रेसवे का किया शुभारंभ। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क को मिलेगी मजबूती। IRCTC ने लॉन्च किया हम्पी बादामी विरासत ओडिसी टूर पैकेज। सैलानी 6 दिनों में कर्नाटक के प्रमुख स्थलों का कर सकेंगे दीदार। 40,600 रुपए से पैकेज की शुरुआत। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास। पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च। मिशन आगमन के नाम से नई हुई लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवलीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल के होंगी ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह। बहत्तरवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्टर का अवार्ड।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड के विनर्स की हुई घोषणा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऐलान किया। कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। फिल्म चंदू चैंपियन के लिए होंगे सम्मानित। फीमेल एक्टर कैटेगरी में यामी गौतम को सम्मान। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए मिलेगा नेशनल अवार्ड। राजकुमार राव की श्रीकांत को मिला बेस्ट फिल्म। तुषार वीरानंदानी ने किया था निर्देशन। रणदीप हुडा की स्वातंत्र वीर सावरकर ने जीता निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का पुरस्कार। भारत की पहली प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ने भरी उड़ान। श्रीहरिकोटा से दोपहर 12:05 पर स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 पहली टेस्ट फ्लाइट। मिशन आगमन लॉन्च। विक्रम 1 ने रचा नया इतिहास। 24 मीटर लंबा कार्बन फाइबर रॉकेट 350 किलो तक का पेलोड 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के सक्षम। विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग से इसरो के साथ निजी स्पेस सेक्टर की बड़ी छलांग। इस पूरे मिशन पर देश की नजर। 2020 के स्पेस रिफॉर्म का बड़ा असर। इन स्पेस के मुताबिक 5 से 6 स्टार्टअप से बढ़कर अब देश में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप सक्रिय। 3D प्रिंटेड इंजन और ऑल कार्बन फाइबर तकनीक से लैस विक्रम 1 भारत को दिला सकता है ग्लोबल पहचान। स्पेस सेक्टर में बढ़ा भारत का कद। लॉन्च की कामयाबी के बाद स्काईरूट के फाउंडर से पीएम मोदी ने फोन पर की बात और दी बधाई। इस सफल मिशन को बताया युवाओं की जीत।
14: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई।
8: कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ग्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। ये माइक्रो आर्ट पीस है 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट। इस खास माइक्रो आर्ट पीस पर वैज्ञानिक सर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां उकेरी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसन लिखा गया। एक पोस्टकार्ड भी रॉकेट से भेजा गया जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। अमित शाह ने सिलीगुड़ी में बीएसएफ पोस्ट का किया दौरा। बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कई विकास कार्यों की रखी आधारशिला। किया उद्घाटन। जवानों के साथ बैठकर खाया खाना। मध्य प्रदेश में सरकारी खर्चों पर सख्ती। अफसरों की हवाई यात्रा होगी सीमित। होटल्स में बैठकों पर लगी रोक। किराए के वाहन भी होंगे कम। IRCTC लाया हम्पी बादामी विरासत ओडिशी टूर। 6 दिन में दिखाए जाएंगे कर्नाटक के प्रमुख स्थल। 30 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा हवाई पैकेज। 40,600 प्रति व्यक्ति है पैकेज की शुरुआती कीमत। सहारनपुर को मिली नई रेल सेवा की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन यात्रा में ट्रेन सहारनपुर स्टेशन पहुंची तो जोरदार स्वागत। नई ट्रेन शुरू होने से वाराणसी, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद समेत कई शहरों के लिए बेहतर यात्रा विकल्प मिला। रोजाना हजारों यात्रियों को इसका सीधा फायदा होगा। बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत। रेलवे ने श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई। कोडरमा, नवादा, कियूल, जमालपुर और सुल्तानगंज होकर स्पेशल ट्रेन श्रद्धालुओं को पहुंचाएगी। सावन में बाबा के धाम की यात्रा होगी और आसान। श्रावणी मेले को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। देवगढ़ जाने वालों को मिली बड़ी सौगात। 26 जुलाई से सितंबर तक चलने वाली ट्रेनों में एसी स्लीपर और जनरल कोच की सुविधा मिलेगी। रांची भागलपुर के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन अलग अलग रूट और दिनों में संचालित होगी। बुलंदशहर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने बुलंदशहर को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। बुलंदशहर के मेधावी छात्रों से सीएम योगी ने की बातचीत। विज्ञान से प्रेरित छात्रों के बनाए मॉडल्स के बारे में ली जानकारी। सीएम योगी ने छात्रों को भेंट की कलम। सीएम योगी ने संगीत विद्यार्थियों से भी की मुलाकात। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की कलाकृति भेंट करने वाली छात्रा को सीएम ने उपहार में दी चॉकलेट। सीएम योगी ने कान्हा और राधा की वेशभूषा पहने बच्चे बच्चियों को किया दुलार। अन्न प्राशन कर खिलौने और बंसी दी उपहार। जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को मिली बड़ी सौगात। सीएम योगी ने लैपटॉप, चेक, मकान की चाबी, थर्मल प्रिंटर, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, टूल किट और प्रमाण पत्र वितरित किए। गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वरनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दर्शन पूजन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद सुबह दूधेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा की। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद भी दिखाई दी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती संपन्न। बाबा महाकाल का हुआ भव्य और दिव्य श्रृंगार।

0: श्रद्धालुओं ने जयकारों के बीच दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर परिसर भक्ति में रहा। महाकालेश्वर मंदिर में विधि विधान से हुई भस्म आरती। बाबा महाकाल के मनमोहक स्वरूप ने भक्तों का मन मोह लिया। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने प्रवेश किया। जगन्नाथ धाम में आस्था का उमड़ा जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा के दिव्य दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज रही है पूरी नगरी। भक्तों का विश्वास है कि प्रभु के दर्शन मात्र से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। रथ यात्रा के दूसरे दिन तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे। भगवान जगन्नाथ का जन्मस्थान माना जाता है गुंडीचा मंदिर। सात दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। धनबाद के निरसा सहित कालीमंडा के बाणी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। 100वें विपदा तारिणी पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन। करीब 400 महिलाओं ने रखा व्रत। मां विपदा तारिणी की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पारंपरिक वेशभूषा में पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंची महिलाएं और विधि विधान के साथ की मां विपदा तारिणी की आराधना। खराब मौसम के बीच भी पूरी आस्था से जारी है चारधाम यात्रा। अभी तक 14,08,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं केदारनाथ धाम में दर्शन। बारिश के बीच पहाड़ियों पर छाई है धुंध। यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही बंद। बाबा केदार के भक्त पैदल ही पहुंच रहे हैं धाम। धनबाद में स्कूल के बच्चों ने किया कमाल। मरीजों को समय पर दवा लेना याद दिलाई स्मार्ट बोतल। पिल सिप है स्मार्ट बोतल का नाम। मरीज को समय पर दवा लेने की याद दिलाती है ये स्मार्ट डिवाइस। आगरा में एक अनोखी खबर ने खींचा सबका ध्यान। सुनील कुमार ने अपने पालतू तोते माऊ को वापस लाने के लिए 50,000 का रखा इनाम। मॉनसून में बारिश के लिए भोपाल में अनोखा टोटका। गधों को खिलाए गए गुलाब जामुन। सालों पुरानी मान्यता और परंपरा है का हिस्सा है गधों को गुलाब जामुन खिलाना। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इससे इंद्र देवता होते हैं प्रसन्न। लगातार बारिश से चंबा के चुवाड़ी भराड़ी मार्ग पर भारी भूस्खलन। मलबे में फंसी गाड़ी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमें। वाहन को सुरक्षित निकालने और सड़क को जल्द बहाल करने के लिए 2 जेसीबी मशीनों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू। हरिद्वार में भारी बारिश। शहर भर में भरा पानी। ट्रैफिक प्रभावित। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई के लिए जारी किया रेड अलर्ट। चंबा कांगड़ा मंडी कुल्लू शिमला सिरमौर हमीरपुर सोलन बिलासपुर और ऊना सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी। उत्तर पश्चिम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 6 से 7 दिन जमकर बारिश के आसार। मौसम विभाग ने सक्रिय मॉनसून की चेतावनी जारी की। आज अरुणाचल असम मेघालय में भारी बारिश की संभावना। कई इलाकों में अत्यधिक बारिश से जनजीवन हो सकता है प्रभावित। 19 से 20 जुलाई को उत्तराखंड और 20 से 21 जुलाई को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी से अत्यधिक बारिश का अनुमान। आज और कल पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। पश्चिम मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 7 दिन बारिश की गतिविधियां सुस्त रहने के आसार। कई इलाकों में हो सकती है सामान्य से कम वर्षा। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। पहली बार जापान बैडमिंटन ओपन के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर 4 चेन यूफेई को हराया, अब याक गुची से होगा खिताबी मुकाबला। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय स्क्वैश स्टार्स का जलवा, भारतीय स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह महिला वर्ग की बनी टॉप लीड। पहले वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की खिताब पर अनाहत की नजर, अनाहत ने 2025 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीता था ब्रॉन्ज। भारतीय स्क्वैश स्टार को आर्यवीर दीवान को पुरुष वर्ग में 5-8 सीडिंग, अंडर 19 एशिया स्क्वैश चैंपियन का खिताब जीत चुके हैं आर्यवीर दीवान। कल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच, लॉर्ड्स के मैदान पर होगा मुकाबला। दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच, सीरीज में अब तक दोनों टीमों ने जीता है एक एक मैच। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर हुए वॉशिंगटन सुंदर, हैमस्ट्रिंग चोट के कारण नहीं खेलेंगे मैच। रोहित के संन्यास को लेकर चल रही अटकलों को बीसीसीआई ने किया खारिज, कहा रोहित शर्मा अभी भी भारतीय वनडे टीम की योजनाओं का हिस्सा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज तीसरे स्थान के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस और इंग्लैंड का मैच, मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी ने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, पहले दिन दुनिया भर में 40 मिलियन डॉलर यानी 386 करोड़ रुपए से खोला खाता। द ओडिसी के आने से शुक्रवार को धमाल 4 की कमाई पर काफी असर पड़ा, फिल्म में आठवें दिन कमाई महज 3.95 करोड़ रुपए। सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 3 आइकॉनिक फिल्में बड़े पर्दे पर हो रही हैं फिर से रिलीज, दामिनी घातक और घायल को रिलीज करने का बना जा रहा है प्लान। आलिया भट्ट स्टारर अल्फा की कमाई में आई गिरावट, अब तक इस फिल्म ने 94 करोड़ की ग्लोबल कमाई की। जुनैद खान और साई पल्लवी की एक दिन ओटीटी पर मचा रही है धूम, प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही टॉप 10 में बनाई जगह। माराडोना की हैंड ऑफ गॉड वाली गेंद होगी नीलाम, 1986 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच की ऐतिहासिक गेंद की शुरुआती बोली करीब $25,00,000 रखी गई। हैंड ऑफ गॉड गेंद से रिकॉर्ड कीमत की उम्मीद, नीलामी कराने वाली कंपनी का मानना है कि यह गेंद 2022 में बिकी माराडोना की जर्सी की तरह करोड़ों डॉलर में बिक सकती है। मैच के बाद मुख्य रेफरी ने इस गेंद को संभाल कर रखा था अपने पास, जिसे अब प्रमाणित कर नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप से बड़ा, फुटबॉल से जुड़ी यादगार चीजों का क्रेज अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले अगले वर्ल्ड कप से पहले फुटबॉल कलेक्टिबल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। जुलाई के अंत से अगस्त तक चलेगी नीलामी, माराडोना के हैंड ऑफ गॉड से जुड़ी ये ऐतिहासिक गेंद 21 से 23 अगस्त तक होने वाली नीलामी में खरीदारों के लिए उपलब्ध रहेगी। यूरोप की गर्मी से राहत का अनोखा जुगाड़, क्रोएशिया के ट्रोगिर के पास अंडरवाटर म्यूजियम में डुबकी लगाकर पर्यटक गर्मी से बच रहे हैं। समंदर में बना दुनिया का अनोखा धार्मिक म्यूजियम, यहां 52 मूर्तियां और दुनिया का इकलौता अंडरवाटर वे ऑफ द क्रॉस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिना स्कूबा टैंक भी कर सकते हैं सैर, पानी में तैरने वाला मास्क और सांस लेने वाली ट्यूब के सहारे नए और गैर तैराक पर्यटक भी समंदर के नीचे की कला देख सकते हैं। 7 मीटर ऊंची यीशु मसीह की प्रतिमा बनी आकर्षण, समुद्र में 8-9 मीटर की गहराई तक स्थापित विशाल प्रतिमा देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और जंगलों की आग के बीच क्रोएशिया का अंडर वाटर म्यूजियम लोगों के लिए राहत की जगह बन गया। कनाडा में जंगलों में लगी आग हेलीकॉप्टर से लगातार बुझाने की कोशिश जारी। पश्चिमी कनाडा में गर्म और शुष्क मौसम के बीच फायर फाइटर सक्रिय, आग पर काबू पाने की जंग जारी। कनाडा की आग का धुआं वॉशिंगटन डीसी समेत कई अमेरिकी शहरों तक पहुंचा, 12 से ज्यादा राज्यों में एयर क्वालिटी अलर्ट। खराब हवा के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह, अधिकारियों ने बाहर कम निकलने की चेतावनी दी। कनाडा में हाल के वर्षों में जंगल की आग पहले से ज्यादा विकराल होती नजर आ रही है, इसका असर सीमा पाक तक दिख रहा है। हंगरी के हॉटोबैगी नेशनल पार्क के एक बड़े इलाके में अधिकारी पानी पहुंचाने में जुटे, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मौजूद पेड़ों को बचाने की कवायद। हाटोबैगी नेशनल पार्क के दलदली इलाके में इस साल जल्दी आया है सूखा, पेड़ों के सूखने का है खतरा। दलदली इलाके में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी पहुंचाया गया, न्यूगाटी सिंचाई नहर से आ रहा है पानी। हाटोबैगी नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, दलदली इलाका हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए अहम पड़ाव। जलवायु परिवर्तन और कम बारिश की वजह से यहां के वन्य जीवों पर पड़ रहा है इसका असर, पक्षियों का प्रवास पैटर्न भी हुआ प्रभावित। यूरोप में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कर रहे हैं झील और जंगलों का रुख, साइकिल से सफर कर प्रगति के बीच पहुंच रहे हैं। बेल्जियम के लिम्बर्ग प्रांत में झील और जंगल के बीच बने रास्तों पर लोग उठा रहे हैं साइकिलिंग का लुत्फ। यूरोप में बढ़ती गर्मी से जानवर भी परेशान, इटली में गायों को गर्मी से राहत देने के लिए किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। ज्यादा गर्मी से गाय सुस्त पड़ जाती है, खाना कम खाती है, दूध की क्वालिटी और मात्रा पर भी पड़ता है इसका असर। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर गाय 10% तक कम दूध देती है, चीज जैसी डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है प्रभावित।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: $20 billion of precious metal sold to 1.8 million customers means Atmex knows how to help you find the investment you want when you want it. Our logistics experts get it to you fast, and our support team is ready to solve any issue by phone, email, or chat. Over 220,000 reviews have one common thread: satisfied customers insisting we're the best precious metals retailer. When you're ready to join them, shop Apmex.com. That's APMEX.com.
3: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: वो सच्ची खबर।

0: जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या शनि अशुभ होने पर लापरवाह बना देता है? क्या शनि के अशुभ होने पर संघर्ष का फल नहीं मिल पाता? क्या है शनि की अशुभता के लक्षण और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
2: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
1: to live sports action.
3: To the near side corner, to wrap around. He scores!
1: And your favorite music.
4: You and I stargazing.
1: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा

0: लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाए कोहरे की मोटी चादर। अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यही करेंगे विश्राम। लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी को दी विकास की सौगात। BSF की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। उत्तराखंड को नई ट्रेन की सौगात। CM पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली रामनगर देहरादून एक्सप्रेस का किया शुभारंभ। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क को मिलेगी इससे मजबूती। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास। पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च। मिशन आगमन के नाम से हुई इसकी लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल के होंगे ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कंपनी

होंगी शादियां। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज का मुद्दा यह है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल बात इसलिए हो रही है क्योंकि वह सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। एक दक्षिण भारतीय लड़की ने शादी को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद वीडियो के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कोई पक्ष में राय दे रहा है तो कोई विपक्ष में राय दे रहा है। तो क्या आज भी दबाव में तय होती हैं शादियां? एक बेटी के बाल कटवाने पर छिड़ी ये कैसी बहस? रीतियों की बेड़ियों में बंधे सात फेरे कब तक? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ मैरिज काउंसलर, समाजशास्त्री, समाज सेवी और कानूनी जानकार भी मौजूद रहेंगे।

0: तो पूरी चर्चा शुरू हुई दरअसल एक सोशल मीडिया वीडियो के बाद जो कि वायरल हो गया और इस वीडियो में लड़की सर मुंडवाती नजर आ रही है। दरअसल इसी के साथ लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक कैप्शन लिखा है, माय मॉम प्लांट माय मैरिज, और इसी को लेकर बहुत सारे यूजर्स ने अलग अलग अपनी राय शेयर की है। वीडियो पर 24 मिलियन यानी कि 2,40,00,000 से ज्यादा व्यूज आ भी चुके हैं और करीब 5,000 लोगों ने इसे रीशेयर किया है। साथ ही साथ 4,00,000 लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, 6,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है और कई लोगों ने इसे शादी के दबाव के खिलाफ प्रतीकात्मक कदम माना है। कमेंट में पूछा गया है कि क्या सर मुंडवाने का कारण वास्तव में शादी का विरोध था। वैसे लड़की ने पूरी बात शेयर नहीं की है, डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं दी गई हैं। कुछ यूजर्स का तर्क यही है कि अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए और कुछ लोगों ने लड़की के आत्मविश्वास को सराहा है, जबकि कुछ यूजर्स ने शादी और परिवार की सोच पर चर्चा की है। तो क्या ये वीडियो नजीर बनेगा? आखिर रीतियों की बेड़ियां क्यों? क्या अब आधुनिक सोच जरूरी नहीं है? ये ऐसे सवाल हैं जो कि 6,000 से ज्यादा कमेंट्स में पूछे गए हैं और साथ ही साथ लोगों ने इस पर अपनी राय भी रखी है। तो कब आजाद होंगी शादियां, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मीनल पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार अपनी बात भी रखती हैं। मीनल, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इसको लेकर ये वीडियो पहली बात तो अगर आपने देखा है तो आपके जहन में क्या सवाल आया? हालांकि नीचे तमाम तरह के कमेंट्स हैं, हर कोई अपनी अपनी राय इसको लेकर दे रहा है, अपने अपने विचार इसको लेकर रख रहा है। आपने जब ये वीडियो देखा तो पहली बात जो आपके जहन में आई, आपके मन में आई?
1: आई एम श्योर कि लड़की ने अपनी मन की बात अपने पेरेंट्स से अपनी फैमिली के साथ शेयर की गई होगी एंड दे वर नॉट एग्रीइंग टू हर टर्म्स और हर कंडीशंस एंड उसके खिलाफ उसने एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट यू नो डाला है और उसने वो बहुत हिम्मत के साथ अपने पब्लिक अकाउंट पे डाला है। तो बहुत सराहनीय बात है कि आपने एक ऐसा कदम लिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर अ पॉइंट जब लड़की की एक फैमिली ही उसका साथ या उसका सपोर्ट नहीं कर पाती है, देन शी हैज नोवेयर एल्स टू गो, बिकॉज आप अपनी फैमिली को, अपने ब्रदर्स को, अपने पेरेंट्स को ही तो अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, जो आपको आजीवन सपोर्ट करते हैं। अगर वो ही आपके लाइफ के इतने बड़े डिसीजन में आपके साथ नहीं खड़े हैं और आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरह बस उनकी मर्जी से शादी कर लें, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन एंड आई थिंक एज अ लास्ट स्टेप शी हैज डन दिस एंड आई थिंक कई मतलब बच्चे इस टाइप में बहुत भयभीत करने वाले स्टेप्स ले लेते हैं जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है एज अगेंस्ट समथिंग लाइक दैट जो सेल्फ हार्मिंग होता है, आपके जीवन के लिए खराब होता है, उसके हिसाब से तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइड पे स्टेप है जिसमें उसने एक फुल प्रोटेस्ट किया है कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा रहे हैं, तो लेट्स सी अगर इस तरह से यू नो द दूल्हा इज रेडी टू अपना उसको अपनाने के लिए।
0: और आपने इसमें देखा होगा मिलियंस इसके व्यूज हो गए हैं, 6,000 से ज्यादा लोगों ने इसको लेकर कमेंट किया, अपनी अपनी राय लोग रख रहे हैं, लोग सजेस्ट भी इसको लेकर कर रहे हैं। लेकिन एक बहस जो इसके बाद जरूर छिड़ गई है समाज में कि हम जिस सदी में जी रहे हैं जहां पर बेटा बेटी दोनों को बराबर माना जाता है, जहां पर बेटियों के हक की हमेशा बात की जाती है, कानून भी बेटियों को इक्वली अधिकार हक देता है, लेकिन आज की तारीख में भी जब शादी जैसी बात आती है तो आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो यही मान के चलते हैं कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, शादी हमारी ही मर्जी से हो तो बेटर है।
1: बिकॉज हमारा जो एक सोशल कस्टम या हमारी जो एक सोसाइटी की अप्रोच चलती आ रही है उसमें हमेशा ऐसा हुआ है कि जो शादी है सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, शादी परिवारों के बीच में होती है। तो हमेशा ये रहा गया, मतलब हमेशा से ये चलन भी रहा गया कि जो पेरेंट्स हैं वो पूरी दूसरी फैमिली को इवेल्युएट करते हुए, उनका पास्ट इवेल्युएट करते हुए कि ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स कैसे थे, क्या गोत्र रहा उनका और आपका क्या गोत्र है, वो सारी चीजों को नजर रखते हुए फिर ही शादी की बात आगे चलाते हैं। सो इट्स लाइक it's a kind of a milan of families in itself, and it's not just a you know a fling between a boy and a girl. तो उस चीज को देखते हुए शादियां की जाती हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी पॉजिटिव वे टू अप्रोच अ न्यू बिगनिंग विच इज लाइक अ मैरिज. बट आज के टाइम पे चीजें बहुत बदल चुकी हैं. गर्ल्स बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, दे आर अर्निंग फॉर देमसेल्फ्स एंड दे जस्ट डोंट वॉन्ट कि कोई और उनके बिहाफ पे ये इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन ले ले. बिकॉज आप मानिए या ना मानिए, आपकी लाइफ पे आपकी जो शादी वाला डिसीजन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके 90% और मे बी लिटिल मोर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन दैट वन डिसीजन ओनली. बिकॉज आप अपनी जिंदगी शादी के बाद किसके साथ पूरा व्यतीत करने वाले हैं, किस फैमिली में रहने वाले हैं, उन फैमिली की क्या अप्रोच है, आपको वहां पर कितना प्यार मिल रहा है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो लड़कियों को अब ये लग रहा है कि जब वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है तो दे शुड ऑल्सो बी अलाउड टू टेक देयर ओन डिसीजन. एंड
0: ठीक है, दो सवाल यहाँ पर मीनल आपके पास लौटूंगी. डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. डॉक्टर निशा, पहली बात तो मैं चाहूंगी कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो सबसे पहली बात आपके मन में क्या आई, पहले आप वो बता दीजिए, फिर उसके बाद जो मीनल ने अपनी बात रखी है मैं उस पर सवाल करूंगी आपसे.
2: मैंने वो वीडियो भी देखा और उसका अकाउंट भी अभी लॉग इन होने से पहले ही, और मुझे ये पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है. आई एम सॉरी, इट्स नथिंग एल्स देन क्रिएटिंग ए कंटेंट. आई हैव सीन हर प्रोफाइल, आई हैव सीन हर अर्लियर पोस्ट. इट्स मोर अबाउट ए पब्लिसिटी स्टंट. आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, क्योंकि उसके बाकी भी मैंने वीडियोज देखे जो पहले थे. मुझे नहीं लग रहा कि वो इतनी भी

0: इस वक्त जुड़ चुकी हैं, मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार आप सभी का रिएक्शन मैं ले लूं, फिर उसके बाद क्योंकि मीनल के अपने व्यूज हैं, डॉक्टर निशा खन्ना ने अपने विचार रखे हैं। रेखा जी, वीडियो अगर आपने देखा है, पहली चीज, पहला थॉट जो आपके दिमाग में आया इस वीडियो को देखने के बाद, क्या लग रहा है?
1: मुझे लगता है कि वो उन्होंने सिर्फ एक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ये करा है, क्योंकि अगर कोई वाकई के अंदर, अगर जैसे एक स्टोरी बनाई गई थी, ऑफ कोर्स अब तो उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि नहीं, उनको कोई कोई भी तरह का उनको प्रेशर नहीं करा गया था, उनकी माँ ने शादी करने के लिए। परंतु जिस समय उन्होंने वीडियो बनाया और जो उन्होंने कैप्शन दिया, वो बिल्कुल ये दिखाता है कि उन्होंने अटेंशन ड्रॉ करने के लिए दिया था, उसका मैरिज से कोई रिलेशन नहीं था। एक जैसे कहते हैं ना कि एक शॉक वैल्यू करने के लिए, एक शॉक इफेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर वो कामयाब भी हो गई। इसको मैरिज से लिंक करने का कोई फायदा नहीं है, और ये आई थिंक दिस इज आजकल ये जनरेशन, जो जेन जी जिसको कहते हैं, मैं तो कहूंगी उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस टू मच दैट दे हैव इन देयर हैंड्स, उनके हाथों के अंदर ये जो सोशल मीडिया का जो एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन या मैं एक डिस्ट्रैक्शन कहूंगी उनकी लाइफ के अंदर ऐसा बन गया है, तो उनको हर समय अटेंशन चाहिए, और उस अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, थोता चना बाजे घना, तो ये उस तरह का एक, मेरे को लगता है कि एक ये इस लड़की ने किया है।
0: लेकिन अगर इन्होंने उस तरीके से भी किया है, डॉक्टर निशा, रेखा जी, कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी किया है, तो यहां पर जरा गौर कीजिए, 24 मिलियन 2.4 करोड़ व्यूज, मतलब ये तो अपने अपने पर्पस में पूरी तरह से कामयाब हुई है। 5,000 लोगों ने इसको रीशेयर किया है, 4,00,000 लोगों ने लाइक किया है, 6,000 से ज्यादा कमेंट्स इसको लेकर आए हैं। इसका मतलब तो वो अपने मिशन में कामयाब हुई है।
1: बिल्कुल हो गई, वो यही चाहती थी अटेंशन ड्रॉ करना, और वो उनको अटेंशन मिल गया। और मतलब जैसे कहते हैं ना, दोनों बातों का कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर उनकी मदर उनको जबरदस्ती कहीं पर शादी करवा रही थी, जैसे पहले आया था मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर, तो भी उसको प्रोटेस्ट करने का तरीका एक जो एक मच्योर्ड लड़की से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल जिस तरह की एजुकेशन मिल रही है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको अपने घर में है, परिवार में है, एजुकेशन में है, समाज के अंदर है, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो मत करो भाई शादी, किसने जबरदस्ती करी है, ये तुम करके तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, मतलब अपने बाल अपना सिर मुंडवा के आपकी क्या मदर आपको क्या जबरदस्ती अभी भी करना चाहेंगी तो करेंगी। अगर आप नहीं शादी करना चाहती तो भाग सकते हैं, मना कर सकते हैं, आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, आप एक स्वाधीन नागरिक है इन भारतवर्ष के, और जो हमारा संविधान जो आपको एक जो हमारे अधिकार मिल रखे हैं फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर अपना जीवन जीने का अधिकार भी है जैसे आप चाहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट भी कहता है कि अगर आप शादी किसी के इच्छा के विरुद्ध हुई है तो वो शादी मानी नहीं जाएगी। तो कोई तरह का अगर उनके ऊपर प्रेशर था, तो प्रेशर को रोकने के लिए जो सही तरीका है प्रोटेस्ट करने का वो करिए, अपने पेरेंट्स से बातचीत करिए, अपने फैमिली से बात करिए, आपके फ्रेंड जोन से बातचीत करके कोई सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि पेरेंट्स आपके अगर जबरदस्ती शादी कर भी रहे हैं तो आपके दुश्मन नहीं है। अगर वो भी उन्होंने अपनी तरह की से कोई लड़का ढूंढा होगा उनके लिए जो उनको सूटेबल नहीं लग रहा, हो सकता है कि दोनों का विचार जो है उनमें फर्क आ रखा है, परंतु अगर आपके विचारों में फर्क आ भी रखा है तो आप इस तरीके से जो आप अपने ये अपने बाल मंडवा के जो आप दिखाना चाह रही है, क्या हासिल कर रहे हैं, आपने कुछ भी हासिल नहीं किया।
0: रेखा जी, जल्दी से एक बार मनीषा जी से मैं जानना चाहूंगी, मनीषा जी, वीडियो देखने के बाद, हालांकि रेखा जी के सवाल का जवाब मीनल आप ही को देना होगा, डॉक्टर निशा के भी सवाल का जवाब, लेकिन उससे पहले मनीषा जी, वीडियो अगर आपने देखा है, वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आया है?
2: अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से जस्ट पहले मैंने वीडियो देखा था, और उसमें काफी वो रिलैक्स्ड है, बिल्कुल अपने मन से वो करा रही हैं, उन्हें जरा भी स्ट्रेस उनका दिख नहीं रहा है। लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक वजह हो सकती है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको शादी से रिलेट करते हैं या हम शादी से रिलेट नहीं करते हैं, दोनों सिनेरियोज में यहाँ पे देखिए एकदम इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है पहली बात तो ये इसपे बहुत ज्यादा इसमें कोई हमें ओपिनियन ड्रॉ करना, कुछ कंक्लूड करना ठीक नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरा, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एक चीज जो कहीं ये लगती है कि सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं पे वो एक ओनरशिप, यू नो, अपनी जो फिजिकल उनकी जो बॉडी है उसकी ओनरशिप, वो एक कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन जा रहा है कि वो उसकी ओनरशिप उनके पास है। दूसरा, एक कहीं एक ये लाइन ड्रॉ करता है या एक डिस्टेंस करना खुद को पास से, जो उनकी पास लाइफ है उसको वो डिस्टेंस कर रही है अपनी प्रेजेंट लाइफ से, या जो लाइफ उनकी

0: टू स्टार्ट, जो शुरू होने वाला। तीसरा पॉइंट एक यहाँ पे मैं ये जरूर बोलूंगी कि कहीं ना कहीं वो टेस्ट कर रही हैं एक ऑथेंटिसिटी, जिनसे भी उनकी शादी तय हुई है, चाहे उनके मन मुताबिक हुई है या नहीं हुई है मुताबिक, या अगर वो क्योंकि हमें एग्जैक्ट हिस्ट्री पता नहीं है, तो ये भी अटकलें बेस्ड ही है, जो भी अजम्पशंस हम लगा रहे हैं उस पे बेस्ड। तो उसमें थर्ड एक जो एस्पेक्ट है वो ये है कि एक ऑथेंटिसिटी वो टेस्ट कर रही हैं कि एक फिजिकल ब्यूटी पे ना जाकर जो रियल उनकी ब्यूटी है, जो आंतरिक
1: ठीक
0: वो
1: है।
0: है, एक पर्सन, वो उनका जो भी एक पर्सनालिटी है, जो उनकी सोल है, तो वो जो भी इंसान है वो उसको कितना समझ पाता है, उनकी जो बाहर से जो सुंदरता दिख रही है उसको ना देख के, क्योंकि अगर कोई
1: ठीक
0: भी
1: है।
0: वो भी अगर बॉल्ड है तो डेफिनेटली ये अनएक्सेप्टेबल होता है, और स्पेशली शादी का टाइम है, मैरिजेबल लड़की है, और लड़के की साइड से ऐसा एक्सपेक्टेड होता ही नहीं है कि लड़की के बाल नहीं है, और वो भी अभी उन्होंने अपने
1: ठीक है,
0: बाल
1: ये भी एक व्यू
0: अपने।
1: हो सकता है। मैं अब जल्दी से, सबसे पहले तो रेखा जी और डॉक्टर निशा मानती नहीं है, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए हो सकता है। मीनल, इस पर जवाब।
2: See, I have not like literally gone and checked every record and every news report, but prima facie to me it seems like a a revolt by आजकल के जैसे जेंजी किड्स हैं, it's a sign of a revolt कि अगर and जो उसका कैप्शन है वो भी क्लियरली यही बोल रहा है कि माय मदर, आज के टाइम में, आज के एज में भी माय मदर इज ट्राइंग टू फिक्स माय मैरिज एंड शी इज जस्ट बेसिकली रिवोल्टिंग अगेंस्ट दैट। और ये उसका एक बहुत ही पीसफुल वे ऑफ रिवोल्ट है, और ये कह देना कि अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप सिंपली ना कर दीजिए, तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपका ना माना जाता है। आई नो दिस, आई एम जस्ट कोटिंग अनदर केस, ये सिया अग्रवाल का भी जो केस था, उसमें शी इज कमिंग आउट एंड सेइंग कि मैंने ना बोला था एंड इट वॉजेंट एक्सेप्टेड एंड समथिंग, दैट्स हाउ शी इज प्लांटेड समथिंग सो हिनियस एज अ केस। तो हमारी इंडियन सोसाइटी अभी इस लेवल पे भी नहीं आई है कि लड़की ने बोला कि ना मुझे इससे शादी नहीं करनी, तो एवरीबॉडी विल बी लाइक ठीक है ठीक है ठीक है अब नहीं करो, ऐसा नहीं है। मतलब द ना इज नॉट लाइक अ
1: रेखा
2: नो।
1: जी, कितनी बार लड़की की ना को मान लिया जाता है?
2: इस सर्कमस्टांसेस के अंदर लड़की पली बड़ी है। अगर आजकल जो हम देख रहे हैं कि सब लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है शहरों में, तो क्या गांवों के अंदर भी दी जाती है? और आजकल की लड़कियां जो है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी लड़की के ऊपर दबाव डाला जाए, और अगर उसके माँ बाप उसको नहीं मानते कि हाँ तुम्हारी हमारी जो इच्छा तुम्हारी है उसको, वो हमारे को मैटर नहीं करती, तो कोई भी लड़की जबरदस्ती शादी करेगी। आजकल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, बाकी भी जो इतनी एजुकेशन है, लड़कियों के पास इतनी पावर है। अब जैसे अगर सिया का भी जो केस अभी मीना जी ने जिक्र किया, वो सब अब वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। उनको जिस तरह के मॉडर्न घर की और पैसे वाले घर की लड़की है, वो जस्टिफाई करना चाह रही है अपने गलत एक्शन को, जो ऑफकोर्स एक साइकोलॉजिस्ट ज्यादा बता
1: लेकिन
2: कर
1: रेखा जी,
2: देंगे,
1: अच्छा एक
2: क्रिमिनल
1: सवाल जो
2: साइकोलॉजिस्ट।
1: रेखा जी मेरे मेरे जहन में भी आ रहा है, चलिए मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। आजकल दबाव ऐसे नहीं बनाया जाता, एक एक तरीका दबाव बनाने के, मेरे ख्याल से जो हमारे साथ दोनों साइकोलॉजिस्ट है बहुत अच्छे से इसको समझा पाएंगी, डॉक्टर निशा, दबाव बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बच्ची से इतना लाड प्यार कर दिया जाता है, उससे उसको इतना इमोशंस में बहा दिया जाता है कि बच्ची कहती है कि हाँ अगर मेरे पिता ने या मेरी माँ ने किसी को ढूंढा है मेरे लिए तो मैं कैसे उसको मना कर सकती हूँ, और मतलब इतना इमोशनल प्रेशर होता है, चाह के भी लड़की ना नहीं कर पाती है। डॉक्टर
2: देखिए,
1: निशा
2: डिपेंडेंट पर्सनैलिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, किसी भी तरह से बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता। और अगर वो
1: नहीं,
2: इंडिपेंडेंट
1: इस
2: डिसीजन
1: खास
2: पर्सन,
1: तौर पर अगर हम शादी जैसे फैसलों की बात करें तो
2: मैम जब शादी का फैसला एक सिर्फ एक बहुत मेजर फैसला है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट बनने नहीं दिया जाता। मान लीजिए मैं बड़ी बड़ी फैमिलीज की बात कर रही हूँ, वहां पर फीमेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पॉकेट मनी दी जाती है, वो अपने कपड़ों पर, अपनी शॉपिंग्स पर पैसे खर्च करते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मान लीजिए उन्हें कहीं जाना है तो ड्राइवर प्रोवाइड करा दिया जाता है, उन्हों कोई शॉपिंग करनी है उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं, तो वो जो मैनेजमेंट ऑफ द थिंग्स है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ द हाउस हो गया, मैनेजमेंट ऑफ द ऑफिस हो गया, तो मेजरली बहुत कम लोग होते हैं जो इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। यानी कि शादी के बाद सिर्फ घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं तो ऐसे केसेस करती हूँ जहां पर दो दो तीन तीन मेड्स होती हैं सिर्फ बच्चों को संभालने के लिए, किसी को घर का काम नहीं करना होता, मैनेजमेंट करना होता है, पर वो भी नहीं कर पाते क्योंकि वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटीज होते हैं। कुछ हम में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ट्रेट्स भी होते हैं, हम खुद को हमेशा विक्टमाइज करके ही देखते हैं। डिप्रेसिव पर्सनैलिटीज भी होती है, जो आपने बात की, पेरेंट्स इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने तुम्हें लिखाया है, मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है, ऐसी बातें, या हमने तुम्हें इसलिए पाल पोस कर पढ़ा नहीं किया है कि तुम अपनी मर्जी से शादी करो। और जैसे फॉर पर्टिकुलर केस, उस कल्पना केस में ये भी कहा जा रहा है कि केतन की शायद सिस्टर से उसके भाई की भी शादी होनी थी, कुछ ऐसा भी था। तो फैमिली प्रेशर जो होता है वो एक अलग तरीके से, जैसे आपने बोला, वो अलग तरीके से होता है, और वो अगेन उसके बीज हमारे चाइल्डहुड से ही होते हैं, जिसमें हम पर्सन को बचपन से ही ट्रेन करते हैं कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इफ यू वॉन्ट टू मैरी यू कैन मैरी द पर्सन जो तुम्हारे माँ बाप चुनेंगे, तुमने उस पर्सन से शादी करनी है जिसे तुम्हारे माँ बाप अप्रूव करेंगे या तुम्हारी सोसाइटी अप्रूव करेगी। अगर आप एक बनिया क्लास को बिलोंग करते हो, आप एक जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आप एक राजपूत कम्युनिटी को, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट टॉकिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपनी कम्युनिटी से बाहर ही नहीं जाना चाहते। और
1: स्टेटस भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना निशा जी?
2: बिल्कुल बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है,
1: सोशल फाइनेंशियल दोनों स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज इस पर्टिकुलर केस में जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, मैंने उसके कंटेंट को देखने की कोशिश की है, मुझे कहीं नहीं लगा कि वो लड़की कोई भी चीज मैसेज कर रही है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी रैंडम मोमेंट्स को डाल रही है, रैंडम पोजेस डाल रही है, कोई एजुकेशनल स्टफ नहीं डाल रही है, मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ।
1: अच्छा निशा जी, चलिए मैं ये बात मान लेती हूँ, चलिए हम ये बात माने, आप भी और रेखा जी भी ये बात कह रही हैं कि ये कंटेंट क्रिएट करने की बात हो सकती है, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि मिलियंस ऑफ व्यूज उसके हो गए, यानी कि वो उसमें सक्सेसफुल रही है। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं निशा जी, पहली बात तो जिस बात का जिक्र आप कर रही, मान लीजिए कि वो एक कंटेंट क्रिएटर है और उसने ये सब कुछ किया और आपने उसकी बाकी सारी पोस्ट को देखा और आपको लगता नहीं है कि वो इस तरह की फैमिली से बिलोंग करती है जहां पर जो इतनी कंजर्वेटिव हो, जिसके लिए उसको यहां पर अपने सर मुंडवाना पड़े। लेकिन ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनकी फैमिली तक को ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा किस तरह का कंटेंट बना रहा है, बिल्कुल उससे कोसों दूर होते हैं, उनको सोशल मीडिया चलाना ही नहीं आता। ये भी तो एक बात हो सकती है इसमें।
2: नहीं देखिए, ऐसे भी होते हैं जो अकाउंट्स बनाते हैं, अपने पेरेंट्स को इस अकाउंट में ऐड नहीं करते हैं, दो दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक फैमिली अकाउंट होता है और एक पर्सनल अकाउंट होता है। बट अगर कोई इतने ज्यादा फॉलोअर्स है तो मुझे नहीं लगता ऐसा पर्सन छुपा रहता है। रही बात आप जिन लोगों की एग्जाम्पल दे रहे, वो हो सकता है अनएजुकेटेड क्लास लोग हो, जहां पर जिनको मोबाइल यूज करने का नहीं पता, जैसे कई बार कई ऐसे केसेस भी हमने किए जिसमें बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, 14 लाख रुपए पिता के अकाउंट से निकाल रहे हैं, पिता के अकाउंट भी अप्रोचेबल था। तो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए वो बहुत रेयर केसेस में होता है, मैं मान लेती हूँ। जब हम सिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सिया के केस में भी उसके पेरेंट्स ने अगर उसे प्रेशराइज किया तो उसके पास पूरा हक था कि वो उन्हें मना कर सकती थी, वो घर से जा सकती थी, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकती थी, होटल में रह सकती थी, कोई किसी तरीके का प्रोटेस्ट कर सकती थी। क्योंकि आज सोशल मीडिया एक माध्यम है जहां पर हम अपनी फीलिंग्स को पोस्ट करते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जब हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अगेन सपोर्ट सिस्टम के नाम पर अब इसके पास कौन था कौन नहीं था वो मुझे नहीं पता है, बट हाँ मैं ये बात से भी अग्री करती हूँ कि लोग अकाउंट्स बनाते हैं, फैमिली को उस अकाउंट का राइट का नहीं पता होता, या फैमिली का अकाउंट सेपरेट होता है, आपका पर्सनल अकाउंट सेपरेट होता है। बट अगेन मैं एजुकेशनल स्टफ की बात कर रही हूँ, इस पोस्ट में और उसकी पूरी प्रोफाइल में कहीं भी मुझे कोई एजुकेशनल स्टफ नहीं मिला है जिसमें वो लड़की अपनी फीलिंग्स की बात कर रही है कि मेरे दिल में इतनी फीलिंग्स है, मैं बहुत दुखी हूँ, एक होता है ना, मतलब वो अपने पोजेस डाल रही है अलग अलग। तो मुझे वो नॉर्मल जो अटेंशन सीकिंग के या हम अपने हैप्पी मोमेंट्स को है उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल व्यूज ही उन पर आते
1: आप
2: कंटेंट से रिलेटेड।
1: ठीक है, अब रेखा जी चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, मान लीजिए कि उसके तो उसके जहन में एक सवाल ये भी है कि मेरे इतने फॉलोअर्स है। जब आपके इतने फॉलोअर्स होते हैं ना तो आप एक अलग दुनिया में जीने लग जाते हैं, आपको लगता है कि शायद ये फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम पर नजर आ रहे हैं, सही में आपके कितने फॉलोअर्स हैं उससे आप कोसों दूर, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं। उस बीच अगर इस लड़की की शादी तय हो जाती है, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि हो सकता है कि वो चाह रही हो कि अगर शादी हो गई तो उसके बाद शायद इतने फॉलोअर्स ना रहे, ये भी एक मन में डर रहता है क्योंकि उस वर्चुअल दुनिया में वो लड़की जी रही है, तो वो कितना बड़ा प्रेशर है, ये भी एक फैक्ट हो सकता है इसके पीछे, ये भी एक फैक्टर हो सकता है।
3: देखिए अगर अगर शादी आपकी बिना मर्जी के हुई है, जैसे मैंने पहले कहा था, तो वो कानूनी तौर के ऊपर लीगल मैरिज नहीं मानी जाएगी। जहां पर ये अटेंशन ड्रॉइंग जो हम ये देख रहे हैं कि जो ये लड़की जो कर रही है कि किस पर्पज से उसने ये वीडियो बनाया मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि एक बाल, जैसे कि निशा जी ने भी कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने बाल बनवाने का, सिर मंडवाने का एक वीडियो डाला है और उसके साथ में लिखा है कि मेरी मदर ने मेरी शादी फिक्स कर दी। ये नहीं लिखा है कि मेरी मदर ने मेरी इच्छा के विरुद्ध करी है या मैं नहीं चाहती इस शादी को आगे करना। तो यहाँ पर जो अगर उनके फॉलोअर्स शादी करने के बाद अगर कम भी हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पर तो एक तरफ तो ये अपना ऐसा शो कर रही थी और अब ये अटेंशन ड्रॉ करने वाली और बात जो थी वो पूरी हो गई और अब इन्होंने देखो जी शादी भी कर ली, तो ये सब चीजें तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि बेसिकली तो ये एक साइकोलॉजी का मसला है। एज ए लॉयर मैं तो इसमें यही कमेंट कर सकती हूँ कि इस वीडियो का कोई सिर पैर नहीं है। और अगर कानून की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट बहुत क्लियर है कि जो शादी आपकी इच्छा के विरुद्ध होती है वो कानूनी तौर के ऊपर अवैध मानी जाएगी। हाँ, परंतु ये बात उनको प्रूव करनी पड़ेगी। सिर्फ ये कह के अगर फर्ज करिए कि वो शादी कर भी लेती हैं उसी शख्स से जो जो इनकी मदर ने जिस लड़के को चूज किया है, और उसके बाद भी वो इस वीडियो का सहारा लेके दिखाना चाहती है कोर्ट के अंदर कि देखिए ये शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध थी और इसका सबूत ये वीडियो है, तो ये इनके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। अगर ये सोच रहे कि ये वीडियो बना के बाद में इस शादी की जिम्मेदारी से नैतिक और कानूनी दोनों से निकल जाएंगी और इस वीडियो का सहारा लेंगी, तो ये वीडियो उनको कभी भी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ये वीडियो एक रैंडम वीडियो है, इसका कोई कानूनी वैधता नहीं है। क्यों बनाई, किसी प्रेशर में बनाई, किसी के कहने के पर करी, मजाक में करी, इसका कुछ इसका कोई वैल्यू नहीं है इस वीडियो की। हाँ, अगर अगर ये आखिर के अंदर अगर ये शादी को अगर कर भी लेती हैं और उस शादी की जिम्मेदारी आगे नहीं निभाना चाहती, तो इनको अपना इंडिपेंडेंट तरीके से साबित करना पड़ेगा कि देखिए ये शादी को नल एंड वॉइड माना जाए क्योंकि ये मेरी इच्छा के विरुद्ध है। और जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो 3-4 कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं करती है, मतलब जैसे उम्र के बारे में लिखा जाता है, आपका कोई और स्पाउस नहीं होना चाहिए जब आप शादी करती हैं, आपके एक ही धर्म के अंदर होना चाहिए, तो कई तरह की कंडीशंस जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी ले डाउन करी गई है। और उसी तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट में भी अगर आप अपने धर्म से नहीं शादी कर रहे हैं और आप इंटर रिलीजन अगर शादी कर रही हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकती है, उसके अंदर आपको धर्म बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होती है। तो उस अगर आप जिसको हम कहते हैं कोर्ट मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट जो होती है वो कोर्ट मैरिज के अंदर जो जो करी जाती है, तो वहां पर भी आपकी इच्छा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहां पे आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि देखिए मैं अपनी इच्छा से शादी कर रही हूँ। तो जब लड़की ने खुद ये एफिडेविट दे दिया कि मैं अपनी इच्छा से शादी कर रही हूँ, तो बात खत्म हो जाती है। पढ़ी लिखी लड़की होगी तभी वो एफिडेविट को दे सकती है। तो मैं यहाँ पर कुल मिला के यही कहूंगी कि शायद ये जो वीडियो है आज इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया और आज हम इसका डिस्कशन आपके चैनल पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो 1 महीने पहले जो केतन मर्डर केस हुआ है, जहां पे सिया जो है उसको कई तरह के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये कह के देखिए वो कहीं किसी तरीके से शायद जस्टिफाइड थी, पेरेंट्स उनको जबरदस्ती कर रहे थे, वो ना नहीं कर सकी वगैरह वगैरह। पर किसी भी सूरत में कानून की अगर हम बात करें तो माँ बाप का प्रेशर भी अगर आपके ऊपर है और आप अगर शादी करते हो उस माँ बाप के प्रेशर में आके, चाहे वो इमोशनल प्रेशर है, चाहे वो सोशल प्रेशर है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रेशर है, किसी भी तरीका का प्रेशर है, अगर आप उसमें शादी करते हैं तो आप उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। जब तक आप उसके ऊपर ये आप कानूनी तौर पर नहीं साबित कर देते कि वो प्रेशर आपके ऊपर ऐसा था कि आप दबाव के अंदर आके वो शादी आपको करनी ही पड़ी, अदरवाइज बाकी सारी जो बातें हैं वो आपके लिए एक बहाने बन जाते हैं और
1: बिल्कुल
3: आपको उसकी कोई मदद नहीं मिल सकती।
1: हाँ, चले यही से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं आप हमारे साथ।
4: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
5: continue to face political pressure to reach a peace deal,
4: or hear your favorite teams with live sports, plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: कब आजाद होंगी शादियां, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, व्यूज करोड़ों में चले गए हैं उसके, और 6000 से ज्यादा लोगों ने उस पर अपना कमेंट भी लिखा है, जहां पर एक लड़की अपना सर मुंडवा रही है ये कहते हुए कि मेरी माँ ने मेरी शादी पक्की कर दी। इसको लेकर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जिनकी अलग अलग राय है इस वीडियो को लेकर। कुछ ये मान रहे हैं कि एक कंटेंट क्रिएट करने का तरीका भी हो सकता है, और कुछ मान रहे हैं कि वाकई में शादी का प्रेशर भी हो सकता है। मनीषा जी, अगर हम मान लें कि अगर ये कंटेंट क्रिएट करने का भी तरीका है, और अगर उस लड़की की मनस्थिति की भी बात कर लें, कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वर्चुअल दुनिया में जी रही है, रियलिटी से कोसों दूर है, और इस वजह से, और पेरेंट्स ने शादी तय कर दी है, शादी करना नहीं चाह रही, उसके बाद की लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है?
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका एक लाइफ का बड़ा ट्रांजिशन है, और आई थिंक पेरेंट्स के साथ अच्छे ही हैं उनके संबंध, और इमोशनल है वो, ऐसा लगता है कि इमोशनल है, सेंसिटिव है, और एक डिफरेंट तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्रेस किया है, ऐसा पॉसिबल है। और लाइफ ट्रांजिशन में ऐसा लोग ऐसा स्टेप ले सकते हैं, इस तरह से सडनली कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक उनका एक ये मोटिव हो सकता है कि टेस्ट करना, जो एक सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको रीडिफाइन करना, कि अगर एक्चुअल में वो पर्सन जिस अरेंज मैरिज है, तो वो उस पर्सन को कैसे टेस्ट किया जाए। तो हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं उनके मन में हो, या फिर एक ईगो हर एक की होती है, सो एक डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो, उसको भी एक्सप्रेस करने के डिफरेंट पर्सनालिटीज डिफरेंट तरीके अपनाती है। तो इस केस में ठीक है, कंटेंट वो बात से मैं सहमत हूँ, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में ही हमारी जेंजीज है, इवन मिलेनियल्स भी, जेंजीज का हमने नाम बहुत ज्यादा हमने लिया हुआ है, लेकिन क्या मिलेनियल्स नहीं है ऑनलाइन, उनके उनके पोस्ट नहीं आती हैं, लेकिन क्योंकि जून के महीने में ही इतने सारे केसेस हुए हैं, बड़े वियर्ड से केसेस आजकल आने लगे हैं, तो हमारा फोकस कहीं और चला गया है आजकल। तो कहीं ना कहीं जो मकसद है वो हो सकता है कुछ और हो, और वो जो भी उनका प्रपोजल है उनको टेस्ट करना हो सकता है, और इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स को एक मैसेज कन्वे करना हो सकता है कि मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर रियल जेन्युइन पर्सन है तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो आजकल के जो बच्चे हैं, अगेन वो क्या तरीके उनके मन में आते हैं, और वो उसको इम्प्लीमेंट करने में हेजिटेट थोड़ा सा कम करते हैं, तो दिस मे बी माइट बी वन रीजन क्यों उन्होंने ऐसा किया।
0: बिल्कुल मीनल, आपने सबकी बात सुनी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
2: आई स्टिल बिलीव कि यू नो आजकल ऐसा नहीं है कि लाइफ में मैरिज का प्रेशर नहीं है, एंड आई वुड लाइक टू से कि इस तरह का प्रोटेस्ट इज मच बेटर देन द केसेस लाइक सोनम रघुवंशी, कि आप शादी में फोटोज में इतना खुश हैं, फैमिली को ये दिखा रहे हैं कि आपने बात मान ली है, फिर आप अपने हनीमून में जाके अपने हस्बैंड को मार रहे हैं, बट और फिर जब यहाँ पर हमारे इंडियन लीगल सिस्टम की बात आती है, तो मतलब वी नो हाउ ब्यूटीफुल आवर लीगल सिस्टम इज, बट 10 महीने के बाद उस लड़की को बेल दे दी गई, मतलब दिस इज सो हीनियस एज अ क्राइम, और आप उसके बाद 10 महीने बाद उस लड़की को बेल दे देंगे सेइंग कि आई डोंट नो व्हाटएवर द रीजन लीगली मस्ट बी गिवन, आई मीन वेयर आर वी गोइंग। तो मुझे तो लगता है उस सबसे बहुत ज्यादा अच्छा है इस तरह से सोसाइटी में प्रोटेस्ट करना, रेदर देन you know just agreeing to your parents and agreeing to your family and getting married when you don't even want to get married. It's not that she wants somebody else, and I don't really want to judge her on the kind of account she has. Wo uska personal Instagram account hai, aapko uska post pasand aata hai to aap use follow kariye, nahi aata to aap follow mat kariye, but you can't judge her for what she's posting. It's her account and she has absolutely every right to judge whatever she you know post whatever she wants, and same way she has posted this because usko aisa lagta hai ki this is her way of actually showing what she is feeling about getting married, and getting married in a way in which her mother has decided her to get married.
0: Acha, aap ye baat manti hain Meenal ki aaj ki tareekh mein bhi aise bahut se parivar hain jahan par betiyan chah ke bhi na nahi kar sakti?
2: Bilkul, aapko kya lagta hai ye Sonam Raghuvanshi aur ye jo cases ho rahe hain isme ladkiyon ne soch samajh ke aise shaadi ki maan ke, obviously they already are involved outside those marriages. अगर उनको बोलने का हक होता, वो ओपन कर सकती, तो दे वुड हैव गॉट इनटू दोस मैरिजेस एट ऑल। बट सोसाइटी के प्रेशर से, सोसाइटी के डर से कि लोग क्या कहेंगे और उनके पेरेंट्स की बहुत बदनामी हो जाएगी और उनके पेरेंट्स ने बचपन से ये बातें पता कर ली हैं और उनके पेरेंट्स का बचपन का रिश्ता है, दोस्ती है, यारी है, अब वो अकेले इस बात के लिए ना कैसे कह दे, और उनके पूरे संसार का, जिसे कहते हैं ना, बोझ आप अपने एक छोटी सी बेटी के कंधों पे डाल देते हैं कि बच्चे अगर तूने ये शादी से ना कर दी तो हम तो इज्जत से हम चले गए. सो यू नो दैट काइंड ऑफ अ बर्डन यू पुट ऑन अ स्मॉल 23-24 ईयर ओल्ड गर्ल. और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, आई थिंक एवरी 10th फैमिली दिस मस्ट बी हैपनिंग. और ये यू नो डिस्पाइट ऑल द एजुकेशन सिस्टम, डिस्पाइट शी बीइंग इंडिपेंडेंट एंड अर्निंग, स्टिल घर का, इज्जत का बहुत बड़ा एक वो सहरा लगा दिया जाता है यू नो लड़की की उसपे, कि अगर तुम हमारे यू नो सेट स्टैंडर्ड से बाहर कहीं निकल कर किसी तरह से शादी करना चाहोगी तो इट विल ब्रिंग अ बैड नेम टू द होल फैमिली. And that's that we know it happens. It's a part of our society. Just because I'm saying this, I'm not against love marriages and I'm not against girls going out of the you know family bondages and getting married. But I'm just saying that this is there. Our society is going through a complete change from a society जहाँ पर लड़कियों के पास बोलने की आवाज भी नहीं थी.
0: ठीक
2: अब
0: है,
2: वो you know they are trying to find out the ways in which they want to protest. कुछ बहुत meek ways में, कुछ बहुत साइलेंट वेज में, कुछ बहुत आउटरेजियस वेज में, बट देयर आर गर्ल्स हु इज ट्राइंग टू स्पीक अप कि आप अपनी इज्जत खुद संभाल लीजिए, मेरी शादी से अपने फैमिली और अपने कुंबे की इज्जत मेरी शादी से लिंक मत करके रखिए,
0: ठीक है
2: ये
0: निशा
2: मेरी
0: जी.
2: लाइफ है.
0: एक और चीज फिर इसमें आती है कि अगर ये तरीका प्रोटेस्ट करने का है, और अगर हम माने कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए किया गया है और ये जेंजी का प्रोटेस्ट है, अलग तरीके का प्रोटेस्ट है, तो इसमें एक और चीज आती है कि उनको तो सिंगल स्टेटस भी बहुत ज्यादा पसंद है. ये भी हो सकता है कि शादी नहीं करना चाह रहे हो.
1: एक चीज मैं बोलूंगी, अगर हम जेंजीज हो, यूथ हो, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर एक चीज बोलूंगी, शादी का जब ना बोलने का प्रेशर होता है वो लड़का और लड़की दोनों पर इक्वल होता है. अगर पेरेंट्स कंट्रोलिंग है तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की को लेकर कंट्रोलिंग होंगे, वो लड़के को लेकर भी होते हैं. क्योंकि मैं मैरिज काउंसलिंग के केसेस करती हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जहां पर पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं कि उनकी पसंद से लड़की से शादी करेंगे. वो उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहते जिसे उनका लड़का पसंद करता है, जो चाहे वो कल्चर अलग हो, चाहे वो सिटीजनशिप अलग हो, चाहे वो स्टेटस लेवल अलग हो. तो ये सिर्फ जेंडर को लेकर फीमेल पर प्रेशर नहीं होता. जब आप ऐसी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जहां पेरेंट्स कंट्रोलिंग होते हैं, वो दोनों जेंडर्स पर कंट्रोलिंग होते हैं, सिर्फ फीमेल पर बर्डन नहीं होता. दूसरी चीज रही बात, क्योंकि मैं दोनों तरह का केसेस करती हूँ तो मैं इसे सिर्फ फीमेल से कोरिलेट नहीं करूंगी, वो पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है. रही बात जब सोनल रघुवंशी की बात करें या किसी की भी बात करें, हम ये नहीं कह सकते और किसी के मारने को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ना बोलने की चॉइस नहीं थी. दीज पीपल मस्ट बी हैविंग साइकोपैथिक टेंडेंसीज, सोशियोपैथिक टेंडेंसीज. हम इस बात को ये नहीं बढ़ावा दे सकते कि आप अगर शादी से इंकार नहीं करोगे तो हम सामने वाले पर्सन की जान ले लेंगे. तो एक चीज तो वो बहुत क्लियर है, अगर ऐसे केसेस में हम ये जस्टिफिकेशन के लिए प्रयोग भी नहीं कर सकते. पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी सीख है कि वो बच्चों को शादियां जबरदस्ती ना करें, वो जहां करना चाहते हैं बच्चे वहां करें, क्योंकि बच्चे किस एक्सटेंड तक आगे बढ़ सकते हैं ये पेरेंट्स जानते भी नहीं है, क्योंकि किसी की नेगेटिविटी की कोई हद नहीं होती और कोई लिमिट नहीं होती. रही बात जब हम अगेन बात करते हैं कि प्रोटेस्ट करने का तरीका है, कई बार लोग अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं और जब वो बाहर की दुनिया में चेंज नहीं कर सकते तो उन्हें लगता है अपने हेयर स्टाइल में चेंज कर लिया जाए, अपने पहरावे के तरीके में चेंज कर लिया जाए, बिकॉज लाइफ में मुझे कुछ न्यू चाहिए. रही बात अगर हम इसको ये भी माने कि ये शादी के नाम को लेकर प्रोटेस्ट है उसका, बहुत अच्छी बात है. अगर वो प्रोटेस्ट कर रही है तो खुलकर फिर अपनी फीलिंग्स को लिखे. तो जैसा कि रेखा जी ने बोला कि अब उसने डिस्क्लेमर भी दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे लग रहा है फिर डिस्क्लेमर देने की भी जरूरत नहीं है. अगर फीलिंग्स है और पर्सनल अकाउंट है, हम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो खुलकर सामने के लिए नहीं आती. क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी दो अकाउंट्स लेकर चल रही है जिसमें पेरेंट्स को नहीं पता और आप नहीं पता, ये अपने आप में एक सबूत है आप एक कंफ्लिक्टेड पर्सनैलिटी हो. जो मैं बाहर हूं और जो मैं अंदर हूं, दो अलग पर्सनैलिटीज, यहीं से शुरुआत होती है कंफ्लिक्टेड सोसाइटी की, कॉन्फ्लिक्टेड लोगों की
0: ये निशा
1: और
0: जी ये खास तौर पर निशा जी
1: की.
0: इसी में इंक्लूड करते हैं ये सोशल मीडिया के आने के बाद, व्यूज के चक्कर में, पॉपुलर होने के चक्कर में, फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, ये ट्रेंड तो आजकल बहुत आम हो गया है.
1: मैम इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत कॉमन है.
0: मैंने शायद बहुत बार आपकी चैनल के थ्रू भी बोला है, अगर हार्वर्ड का लास्ट ईयर का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अब आई वुड से पीपल आर ओनली नियर अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेल्फ अवेयर. तो जब हम सेल्फ अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमारे बिहेवियर का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है, हम फीडबैक को पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हम हमारे कुछ पैटर्न्स हैं हम उनको नोटिस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, हमारा कुछ वैल्यू सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, हम हमेशा रिएक्शन देते हैं रिस्पांस नहीं देते हैं. तो जब भी हम किसी इंसान के प्रोटेस्ट करने के तरीका बहुत अच्छा तरीका है, अब जब अतुल सुभाष के मौत खबर आई थी, अब उसके बाद कितने केसेस आ गए, कोई मरने जा रहा है वो वीडियो बना देता है. अतुल सुभाष भी मेंटली हेल्दी नहीं था क्योंकि उसने उस बच्चे के बारे में ही सोचा, अगर मदर गलत कर रही थी तो फादर ने भी सुसाइड करके, मदर उसके ही सुसाइड के प्रेशर का केस झेल रही है, उस बच्चे 5 साल के बच्चे की जिंदगी का क्या है. तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन है हमारे वर्ल्ड में, हम इन चीजों को ना नकारे. जितने भी लोग चाहे वो सुसाइड करते हैं, अगर ऐसे कंटेंट को भी हम पोस्ट कर रहे हैं बहुत हाईलाइट करता है हम किसी इमोशनल प्रेशर में है. बेटर है एआई और सोशल मीडिया को छोड़कर किसी प्रोफेशनल के पास जाके उसे खुलकर सारी बात बताए, झूठ नहीं बताए, खुलकर सारी बात बताए, चाहे वो आपके 4 अफेयर रहे हैं 10 अफेयर रहे हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं नहीं लेते हैं, आप ड्रिंक्स करते हैं नहीं करते हैं, आप वेप करते हैं नहीं करते हैं, ये सच बोलना, आप इनफिडेलिटी में है नहीं है, तभी कोई डॉक्टर कोई साइकोलॉजिस्ट कोई साइकेट्रिस्ट आपकी मदद कर सकता है. अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं प्लीज डॉक्टर को बताइए, अगर आपका किसी को मारने का मन कर रहा है प्लीज डॉक्टर को बताइए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ चैट जीपीटी और सोशल मीडिया. ठीक है, एक एक और चीज जो रेखा जी आपसे समझना चाहूंगी, आजाद सोच या फिर इंडिपेंडेंट सोच आप किसको कहेंगे? ठीक है, आजकल हम इसी शो के माध्यम से कह रहे हैं कि शादियों को भी आजाद होना चाहिए, सबकी मर्जी बराबर होनी चाहिए और मायने भी रखती है. क्या टोटली बच्चों पर छोड़ दिया जाए शादी का फैसला? क्या उसमें माँ बाप का सजेशन भी जरूरी नहीं? क्योंकि आजकल ये भी देखा गया है कि प्रोटेस्ट इस वजह से भी होते हैं कि पेरेंट्स सजेस्ट कर रहे हैं. क्या बिल्कुल पेरेंट्स को बाहर रख देना चाहिए इस डिसीजन में? क्योंकि आपकी फैमिली आपकी पूरी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला है और दो परिवार जुड़ रहे हैं, केवल लड़का और लड़की नहीं जुड़ रहे, दो परिवार जुड़ रहे हैं.
3: मैं इसमें यहाँ पर कहूंगी कि देखिए, एक है जो सिर्फ हम कानूनी बात करें कि कानून क्या कहता है, और दूसरा पहलू है कि एक प्रैक्टिकल व्यावहारिकता की बात करें, क्योंकि हमको सिर्फ एक किताबी ज्ञान की बात नहीं करना चाहती आपके चैनल के माध्यम से. हाँ, कानून कहता है कि आप 18 साल की लड़की हो गई, वो बिल्कुल स्वच्छंद है, वो जो करना चाहे अपने जीवन को जैसा जीना चाहती है वो जी सकती है, उसको अपने माँ बाप की भी परमिशन लेने की कानूनी तौर के ऊपर जरूरत नहीं है, ये कानून कहता है. पर नैतिकता क्या कहती है, आपके खुद के ह्यूमन वैल्यूज क्या कहती है, आपका आपका अपने परिवार के साथ क्या बॉन्डिंग है, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या एक आपका एक हैप्पी फैमिली के अंदर आपकी परवरिश हुई है, ये दूसरी बातें हैं जिसको हम कहेंगे नैतिकता की बातें हैं. तो अगर आप जैसे आपने कहा कि क्या आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल शादी के उससे रखिए, हाँ अगर किसी लड़की या किसी लड़के को ऐसा लगता है कि आज अगर मैं एक बात कहूँ, ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है पर एक व्यवहारिकता की बात है, और आज के जमाने के अंदर जो एज अ लॉयर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि आज इतनी सारी आजादियां मिल गई, यू नो कानून में तो ऑलरेडी आजादी थी, फंडामेंटल राइट्स तो थे, पर जो आज सोशल मीडिया की वजह से आपको फ्रीडम मिल गई, आपको एजुकेशन की फ्रीडम मिल गई, लड़कियों को अपने पांव पर खड़े होने की फ्रीडम मिल गई, जो पहले लड़कियों को काम भी करने नहीं देना चाहते थे पेरेंट्स की लड़कियों को घर के बाहर भी ना भेजे कमाने के लिए, आज इतनी तरह की जब आपको आजादियां मिल गई तो उसके बाद में लोग खुश क्यों नहीं हैं? आज कोर्ट्स के अंदर एक फैमिली लॉयर की हैसियत से अगर मैं बोलूं तो आजकल फैमिली कोर्ट्स के अंदर पांव रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि किन किन बातों से परिवार टूट रहे हैं वो मतलब मैं खुद एक शॉक रह जाती हूँ कि मतलब क्या लड़की बता क्या रही है, किस वजह से वो अपने पति को छोड़ चुकी है या पति ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया है, क्यों दोनों के बीच में इतनी दरार आ गई है. क्योंकि आज मैं यहाँ पर कहूंगी कि एक जो हमारी जनरेशन है, और मैं किसी के ऊपर एक व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहती किसी आज की जनरेशन के ऊपर, पर तो अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकती हूँ कि आजकल एक बहुत कंफ्यूज्ड हमारे जो यूथ है, जहां पर एजुकेशन तो मिल गई पर आपको वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान मिला, और आपको ये जो आप समझ नहीं पाए, आप मेच्योरिटी नहीं आ पाई है, जहां पर हम कहते हैं ना आई मी माई सेल्फ, मैं फ्री पर्सन हूं, मैं जैसे
0: जी
3: मर्जी करूं। अरे भैया कोई किसी ने आपको मना नहीं करा है, परंतु जिसको एक बैलेंस तरीके से चलने का कहते हैं, तो आज जब लड़कियों को इतनी एजुकेशन मिल गई है, लड़कों को इतनी एजुकेशन मिल गई है,
0: बिल्कुल
3: तो फिर इतने परिवार क्यों टूट रहे हैं?
0: बिल्कुल
3: क्योंकि
0: बिल्कुल,
3: आपके अंदर
0: ये भी एक
3: मेच्योरिटी नहीं
0: सवाल
3: आई
0: है
3: है।
0: रेखा जी, वक्त अभी इतना ही है, ये भी एक सवाल है। तो कब आजाद होंगी शादियां, इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। एक महिला ने जो सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं, बहुत सारे कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और एक तरीके से समाज में बहस भी छिड़ी हुई है। इसी को लेकर तमाम खास मेहमानों से हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रही हमारे साथ, देख रहे हैं।
4: क्या शनि अशुभ होने पर लापरवाह बना देता है? क्या शनि के अशुभ होने पर संघर्ष का फल नहीं मिल पाता? क्या है शनि की अशुभता के लक्षण और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: कॉलेज शुडंट वेस्ट योर टाइम और योर मनी। That's why WGU's programs are designed with input from industry experts. You'll learn the skills that employers need today and be ready for the opportunities of tomorrow. Learn more at WGU.edu.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
8: Good news today.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या शनि अशुभ होने पर लापरवाह बना देता है? क्या शनि के अशुभ होने पर संघर्ष का फल नहीं मिल पाता? क्या हैं शनि की अशुभता के लक्षण और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना, खूबसूरत वादियों के बीच छाए कोहरे की मोटी चादर, अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ ने किया प्रवेश, 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात, BSF की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। उत्तराखंड को नई ट्रेन की सौगात, सीएम पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली रामनगर देहरादून एक्सप्रेस का किया शुभारंभ, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क को मिलेगी मजबूती। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास, मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 सफल लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवलीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक, 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की बात कर लेते हैं, जिसे लॉन्च कर दिया गया है। देखिए, विक्रम 1 को स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की, सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का ये टेस्ट पहली ही कोशिश में कामयाब रहा। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया और इसके तहत विक्रम 1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला जुड़े पेलोड अंतरिक्ष में ले गया।

0: एक बार फिर से अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया है। भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। देश में पहली बार प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित पहला ऑर्बिटल रोबोट विक्रम 1 लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही देश ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट की लॉन्चिंग का समय सुबह 11:30 पर था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से पहले से तय समय से करीब 35 मिनट देर से ही सही दोपहर 12:05 पर रॉकेट की लॉन्चिंग हो गई और वो कामयाबी हासिल हो गई जिसका पूरे देश को इंतजार था।
1: लगभग 16:20 के बाद उसने जो सैटेलाइट थे वो सही कक्षा में, सही ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं और 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट निर्धारित की गई थी और लगभग 7.5 किलोमीटर/सेकंड की स्पीड से, तो सैटेलाइट बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च होके अपनी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो यह एक बहुत ही सुवर्ण अवसर है भारत के स्पेस हिस्ट्री में, स्पेस के इतिहास में।
0: श्रीहरिकोटा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तमाम आला अधिकारी और वैज्ञानिक टकटकी लगाए इस लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे थे। वहीं जब रॉकेट की सफलता पूर्वक लॉन्चिंग हो गई तो सभी लोगों के चेहरे खिल उठे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्काईरूट कंपनी के CEO और COO को फोन करके पूरी टीम को बधाई दी। आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हैदराबाद में स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था जिसने अब अंतरिक्ष में शानदार उड़ान भरी है। विक्रम 1 ने पहली चारों स्टेज का प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया। यह भारत का पहला निजी तौर पर ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जिसने पहली ही कोशिश में लॉन्चिंग से लेकर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट तक सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। इस रॉकेट ने करीब 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को सफलतापूर्वक स्थापित किया। निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत विक्रम 1 रॉकेट को तैयार किया है। इस रॉकेट के साथ 6 खास पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे गए। इनमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की जांच करने वाला स्कोप सैटेलाइट है, तो स्पेस का कचरा हटाने वाला कॉस्मोजर्व स्पेस का मिशन एम्ब्रेस रोबोटिक सिस्टम भी है। इसके अलावा ग्रह स्पेस का एक छोटा सैटेलाइट सोलारास भी इससे अंतरिक्ष में भेजा गया और जर्मनी के 2 टेक्नोलॉजी पेलोड इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। साथ ही लैब में बना हीरा कॉस्मिक ब्लूम्स भी इस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है। भारत के 3 महान वैज्ञानिकों की छोटी प्रतिमाएं भी इससे अंतरिक्ष में भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम भी इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में पहुँचाया गया।
2: श्योर सर। और सर आपका कार्ड जो आप भेजे थे दैट हैज सक्सेसफुली रीच स्पेस एंड यू हैव रिटन वंदे मातरम, सो वंदे मातरम इज इन ऑर्बिट।
0: जो पेलोड इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए इनका मकसद नई तकनीक को परखना, अंतरिक्ष को सुरक्षित बनाना और आने वाले स्पेस मिशनों को बेहतर बनाना है। रॉकेट विक्रम 1 स्काई रूट के ये 3 डेवलपमेंट मिशनों पर पहला मिशन है। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। हैदराबाद में स्काई रूट के युवा इंजीनियरों की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
3: The space sector reform what is announced and encouraging the startup system is excellent. And today we had a very very important launch. I think let us congratulate the Skyroot team for this great achievement.
0: 2020 में भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खोला था। इसके बाद कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में आए। स्काईरूट एरोस्पेस उन्हीं में से एक है। इससे पहले 18 नवंबर 2022 को इसके रॉकेट विक्रम एस ने श्रीहरिकोटा से अपनी पहली सफल ऐतिहासिक उड़ान भरी थी। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। विक्रम एस रॉकेट ने 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर यह बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया। इसके बाद अब रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है बल्कि ये भारत के स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और नई तकनीक का भी शानदार मिसाल बन गया है। श्रीहरिकोटा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात नौसेना के नए जहाज की कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना 22 जुलाई को अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। माही श्रेणी का ये दूसरा पोत 80% से अधिक स्वदेशी तकनीक से लैस है। ये जहाज उथले समुद्री क्षेत्रों यानी कम गहरे समंदर में पनडुब्बी रोधी अभियानों, तटीय सुरक्षा और भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा।

भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करती जा रही है। INS महेंद्रगिरि के बाद अब नौसेना में शामिल होने जा रहा है INS मालवन। 22 जुलाई को मालवन नामक अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये माहे श्रेणी का दूसरा

0: INS मालवण की लंबाई करीब 80 मीटर है, चौड़ाई लगभग 11 मीटर है, इसका वजन करीब 1100 टन है। ये कम गहराई वाले पानी में भी आसानी से चल सकता है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कुल 57 लोग तैनात रहते हैं। इस जहाज में 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वाटर जेट सिस्टम से चलता है, जिससे जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। इसी वजह से दुश्मन के लिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है। ये स्टेल्थ तकनीक से भी लैस है, इससे यह रडार और सोनार पर कम नजर आता है। INS मालवण में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम, लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार, RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, हल्के टॉर्पिडो लॉन्चर, 30 मिलीमीटर नौसैनिक गन, आधुनिक रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। इन प्रणालियों की मदद से ये जहाज समुद्र के भीतर छिपी पनडुब्बियों का पता लगाकर उन पर प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। इस क्लास के कुल 8 जहाज बन रहे हैं। INS मालवण इनमें दूसरा है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। 8 जहाज को कोचिन शिपयार्ड बना रहा है, तो बाकी के 8 जहाज कोलकाता की GRSE बना रही है। वैसे जहाज का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवण के नाम पर रखा गया है। यह जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री ताकत से जुड़ी रही है। यहाँ उनके किले और मजबूत समुद्री रणनीति के निशान मिलते हैं। भारतीय नौसेना ने INS मालवण का प्रतीक चिन्ह भी जारी किया है। इसके क्रेस्ट में मशहूर बाघ नखा को दिखाया गया है, जो साहस, फुर्ती और निडरता का प्रतीक है। मालवण के नौसेना में शामिल होने के साथ भारत को स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी के उथले जल क्षेत्र में संचालन करने वाले युद्धपोतों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने जा रही है। यह पोत भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की कर लेते हैं। आस्था, उल्लास और श्रद्धा का अनुपम संगम। ओडिशा के बालासोर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने लाखों श्रद्धालुओं को भक्ति के एक सूत्र में बांध दिया। पुरी की तर्ज पर यहां भी प्रभु बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले। रथ की एक झलक पाने और उसकी रस्सी को छूने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा शहर जय जगन्नाथ के जयघोष और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया।

0: करतालों की गूंज, शंखनाद की पवित्र ध्वनि, जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजती पुरी और आस्था की ऐसी तस्वीर जिसे शब्दों में समेटना आसान नहीं। बालासोर की सड़कों पर श्रद्धालुओं का टूट विश्वास, दूसरी ओर नगर भ्रमण पर निकले स्वयं महाप्रभु। ऐसा दृश्य जिसे देखने के लिए लोग पूरे साल तक इंतजार करते हैं। यहाँ ना कोई छोटा दिखता है ना बड़ा, सबके मन में बस एक ही इच्छा, प्रभु की एक झलक और उनके रथ की रस्सी को छूने का सौभाग्य। बालासोर में रथ यात्रा का आयोजन पुरी की रथ यात्रा के एक दिन बाद होता है। ओडिशा के बालासोर में भी वही उत्साह देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु प्रभु का इंतजार कर दर्शन किए, एक दर्शन मात्र से लोगों के चेहरे खिल गए। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से निकलकर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर भगवान की मौसी का घर और जन्म स्थान माना जाता है, इसी कारण प्रभु स्वयं अपने भक्तों के बीच पहुँचते हैं।
1: मंदिर छोड़ करके 9 दिन के लिए ये प्रदान में जाते हैं और गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और सारा आपामर जनसाधन सारा भक्तों को दर्शन देते हैं, कृतार्थ करते हैं। जो मंदिर को नहीं जा सकते उनको भी दर्शन देते हैं, इसलिए ये एक अत्यंत ऐतिहासिक यात्रा है।
0: इस महापर्व की सबसे सुंदर तस्वीर तब दिखाई दी जब छोटे छोटे बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए। किसी ने रस्सी थामी, किसी ने जयकारे लगाए तो किसी ने हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उम्र भले अलग अलग रही हो लेकिन श्रद्धा सबकी एक जैसी थी। जगन्नाथपुरी में भगवान गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के घर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के 7 दिन बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मुख्य मंदिर लौटने के लिए बहुड़ा यात्रा

0: यात्रा आरंभ करते हैं। इस यात्रा का भी उतना ही धार्मिक महत्व माना जाता है जितना रथ यात्रा का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा की। तो चार धाम यात्रा में इस बार प्रकृति की चुनौती और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था दोनों की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, केदारनाथ पैदल मार्ग पर रास्ता कुछ समय के लिए बाधित हुआ, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उनकी जो आस्था है वो लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है। मुश्किल हालात के बावजूद ना तो व्यवस्थाएं थमी हैं और ना ही भगवान के दर्शन की श्रद्धालुओं की आस कम हुई है।

0: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार हर दिन एक नया अनुभव दे रही है। गौरीकुंड के पास केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है तो प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। लगातार बारिश के बीच रास्ता खोलने की कवायद चलाई। फिलहाल केवल पैदल यात्रियों के लिए रास्ता तैयार है। इन परिस्थितियों के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और पूरे जोश के साथ यात्री यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जुलाई के मध्य में, जबकि मानसून सीजन इस समय चल रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के पार हो चुकी है। मौसम की बात करें, मौसम लगातार पहाड़ों में भले ही बदल रहा है, सुबह सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है, रात को हल्की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन पूरे दिन मौसम चटक धूप और मौसम सुहाना मौसम बद्रीनाथ धाम सहित तमाम जनपद में बना हुआ है।
0: सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ तैनात है। जवान श्रद्धालुओं की लगातार मदद कर रहे हैं। SDRF, NDRF और पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटे हैं ताकि यात्रा सुरक्षित चलती रहे। बद्रीनाथ धाम से आस्था की बेहद शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस साल यात्रा ने नया कीर्तिमान बना दिया है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 जुलाई में ही 15 लाख के पार चली गई है। आमतौर पर ये आंकड़ा अक्टूबर के आखिर या नवंबर में पार होता था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड समय से पहले ही हो गया है और नया इतिहास बन गया है। मॉनसून के बावजूद बद्रीनाथ पहुंचने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ। कुछ दिनों तक बारिश की वजह से संख्या जरूर घटी, लेकिन मौसम साफ होते ही फिर रफ्तार बढ़ गई। बीते दिन 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देश के अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग धाम पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को कम समय में आसानी से दर्शन हो रहे हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रहने से सफर भी पहले से आसान बना हुआ है। मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक हर ओर श्रद्धा का माहौल दिखाई दे रहा है। बढ़ती संख्या का सकारात्मक असर स्थानीय व्यापार पर भी साफ नजर आ रहा है।
2: के लिए जाना है, मेरे मन में जबरदस्त उमंग, जबरदस्त साहस, जबरदस्त शक्ति हो गई। कई बार तो मेरे दोस्तों ने ये भी कहा कि ये बारिश का मौसम है, आप इस तरफ मत जाइए, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, क्लाउड क्रॉसिंग कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने बस अपने आप को प्रभु को सौंपा और मैंने कहा प्रभु मैं आपके शरण में हूँ और अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।
0: एक ओर केदारनाथ में प्राकृतिक चुनौती के बीच सुरक्षा और सेवा का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर बद्रीनाथ में उमड़ती आस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। यही तस्वीर बताती है कि कठिन परिस्थितियां भी श्रद्धालुओं के विश्वास को रोक नहीं पा रही। उम्मीद है कि आगे भी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल तरीके से चलती रहेगी। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: धनबाद के निरसा के काली मंडा के ऐतिहासिक बाणी मंदिर में आस्था, परंपरा और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां 100वें विपद तारिणी पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस ऐतिहासिक शताब्दी समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने मां विपद तारिणी के दर्शन और उनके पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट की। और देखिए, सबसे ज्यादा खास बात यह है कि करीब 400 महिलाओं ने व्रत रखकर विधि विधान से मां की पूजा की और परिवार की सुख समृद्धि, उनकी लंबी आयु तथा सभी संकटों से रक्षा की कामना भी की। सुबह से ही मंदिर परिसर शंखनाद, घंटियों की मधुर ध्वनि और मां के जयकारों से भक्तिमय वातावरण में डूब रहा। शताब्दी वर्ष के अवसर पर मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी झालरों से आकर्षक ढंग से विशेष तौर पर सजाया गया था। देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा और पूरा क्षेत्र भक्ति, उत्साह और धार्मिक आस्था के रंग में सराबोर नजर आया। और अब बात राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। तो देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। और आपको बता दें कि चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर चुना गया है। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। निर्देशक आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड संजय मिश्रा को दिया जाएगा। वहीं मैदान फिल्म के लिए मनोज मुंतशिर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुना गया है। आर्टिकल 370 के संगीतकार शाश्वत सचदेव को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड दिया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी की कर लेते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा के 44वें बर्थडे पर फिल्म मेकर्स ने वाराणसी से उनका मंदाकिनी के रोल में फर्स्ट लुक रिलीज किया, तो फैंस काफी क्रेजी हो गए और जमकर उनकी तारीफ करने लगे। देखिए पोस्टर की अगर हम बात करें तो पोस्टर में प्रियंका एकदम निडर और मिस्ट्री से भरी नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए।
4: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म वाराणसी के मेकर्स ने जब से फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है, जिसे देख फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे। दरअसल प्रियंका चोपड़ा के जन्मदिन पर फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर फैंस को सरप्राइज देते हुए ये बड़ा तोहफा दिया है। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की फिल्म वाराणसी का फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। प्रियंका का वाराणसी से पहला लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई है। इस नए अवतार में वो बेहद सशक्त, रहस्यमयी और प्रभावशाली अंदाज में नजर आ रही हैं, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म वाराणसी लंबे समय से सुर्खियों में है और प्रियंका का ये लुक फिल्म की स्टार कास्ट में एक नई एनर्जी पैदा करता है। उनके किरदार की झलक से साफ है कि ये भूमिका पारंपरिक ग्लैमर से अलग दमदार और कहानी का अहम हिस्सा बनने वाली है। फर्स्ट लुक में प्रियंका का भाव, पहनावा और स्क्रीन प्रेजेंस ये हिंट देता है कि उनका किरदार सिर्फ सहायक नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने वाला मजबूत हिस्सा होगा। यही वजह है कि फैंस इसे भारतीय सिनेमा में उनकी शानदार वापसी के रूप में देख रहे हैं। प्रियंका की लोकप्रियता देश और विदेश दोनों जगह है। ऐसे में वाराणसी से उनका पहला लुक फिल्म के लिए एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है, जिसने न सिर्फ दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है बल्कि फिल्म के प्रति उम्मीदों को भी बढ़ाया है। फिल्म वाराणसी की रिलीज का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। एक एक अपडेट पाने के लिए फैंस की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में फिल्म से महेश बाबू की राम के किरदार में एक तस्वीर लीक हुई थी, जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी और अब प्रियंका का वाराणसी से ऑफिशियल फर्स्ट लुक सामने आया है। मेकर्स ने प्रियंका चोपड़ा के 44वें बर्थडे पर वाराणसी से उनका मंदाकिनी वाला लुक रिवील किया है। दो पोस्टर शेयर किए हैं और साथ में लिखा है, और ये है हमारी मंदाकिनी, हैप्पी बर्थडे प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा के लुक के जरिए मेकर्स ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वाराणसी सिर्फ एक आम फिल्म नहीं बल्कि भव्य पैमाने पर बनी एक सिनेमा इवेंट होगी। प्रियंका की मौजूदगी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाएगी। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी वाराणसी में प्रियंका के साथ महेश बाबू लीड रोल में है। बड़े पर्दे पर दोनों को साथ देखना भी दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio. And fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में
8: विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप लक्षणों के आधार पे जीवन के चीजों के आधार पर कैसे जान सकते हैं कि आपका शनि आपके लिए शुभ है या अशुभ है, और अगर शनि आपके लिए अशुभ है तो उसको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 6:12 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 जुलाई 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, किसी व्यक्ति की आदतों से, उसके स्वभाव से, उसके लक्षणों से आप ग्रहों के हालत जान सकते हैं। हमारा शनि अशुभ है, हमें नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, ये कैसे जानेंगे? शनि अगर अशुभ प्रभाव दे तो व्यक्ति दुबला पतला होता है, कठोर वाणी और कठोर स्वभाव का होता है, व्यक्ति के बाल रूखे और उलझे हुए होते हैं, और शनि जब अशुभ स्वभाव का होता है तो व्यक्ति लापरवाह और कामचोर होता है, काम टालता रहता है। आम तौर पर जीवन में किसी बड़ी घटना के बाद इनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है, और शनि अगर अशुभ होता है तो जीवन में निम्न कर्म और गलत कार्य में संलग्न रहता है। शनि अगर अशुभ हो तो कदम कदम पर संघर्ष का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शनि के अशुभ होने पर दो बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं, व्यक्ति
व्यक्ति अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड नहीं होता और व्यक्ति अपने जीवन में लापरवाहियों की वजह से नुकसान उठाता है और हर छोटी चीज को पाने के लिए व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। शनि के लक्षणों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, धन की दशा में सुधार होगा, करियर की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका शनि आपके लिए शुभ है, अच्छा है। अगर शनि शुभ हो तो सामान्यतः व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है। शनि व्यक्ति को मोटा नहीं बनाता। शनि अगर शुभ है तो व्यक्ति के बाल घने और लंबे होते हैं, और शनि अगर शुभ है तो व्यक्ति अनुशासित होता है, कर्मठ होता है, तरीके से परिश्रम से जीवन में आगे बढ़ता है। और शनि अगर शुभ है तो आम तौर पर जीवन के मध्य भाग में, मिडिल में आध्यात्मिक भी हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसके जीवन में आध्यात्मिकता आ जाती है। शनि अगर आपके जीवन में शुभ है तो कानून, परिवहन या आध्यात्म से उसका जीवन में संबंध होता है। और शनि अगर शुभ है तो हो सकता है जीवन में विलंब हो, लेकिन विलंब से होने के बावजूद ऐसे लोग जीवन में बहुत धन बड़ी आसानी से प्राप्त करते हैं। यानी शनि अगर शुभ होगा तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष का फल आपको मिलेगा। और शनि अगर शुभ होगा
तो व्यक्ति बड़े तरीके से, बड़े सिस्टम से, बड़े अनुशासन से जीवन में काम को आगे बढ़ाता है। शनि पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के भी योग हैं, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में आपके लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब लक्षणों से अगर आपने जान लिया कि आपका शनि अशुभ है, तो जीवन में कौन सी सावधानियां रखें, कौन से उपाय करें कि शनि की अशुभता का प्रभाव ना पड़े। अगर शनि अशुभ परिणाम दे रहा है तो अपना आचरण, अपना आहार और अपना व्यवहार आपको शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। साफ सफाई से रहिए, स्वच्छता का और धर्म का ठीक तरीके से पालन करिए। शनि अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करना ज्यादा बेहतर होगा। देर तक सोने से और देर रात तक जगने से आपको बचना चाहिए, और सामान्य जीवन में काले रंग के बजाय हल्के नीले रंग के वस्त्रों का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शनि को शुभ करने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आलस्य छोड़ करके आप अनुशासन में रहें, काम समय पर निपटाएं और जीवन में मेहनत अवश्य करें। अगर आप सिस्टम से, तरीके से और मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो शनि की अनुकूलता आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर और कुंभ राशि और मीन राशि का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, वाद विवाद हो सकता है, परिवार की समस्या से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या में सुधार होगा, धन आसानी से मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। काम करने के बाद अपनी किताबें, कॉपियां और कलम कभी भी खोल कर मत छोड़िए। काम करने के बाद इनको बंद करके रखिए। अगर आप कलम, किताब, कॉपियां खोल करके रखेंगे तो इससे आपकी मानसिक एकाग्रता में कमी आएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 19 जुलाई 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
1: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने आस्था और सुविधा का अनोखा संगम तैयार किया है। देखिए रेलवे गोरखपुर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाने जा रही है, जिससे तीर्थयात्री देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने इस योजना के तहत यात्रियों को भुगतान के लिए आसान EMI विकल्प भी दिया है। गोरखपुर से चलने वाली इस विशेष ट्रेन में दक्षिण भारत और 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का उन्हें मौका मिलेगा। देखिए पहला टूर 31 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को तिरुपति बालाजी, रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। वहीं दूसरी यात्रा की अगर हम बात करें तो दूसरी यात्रा 17 अगस्त से 26 अगस्त 2026 तक रहेगी। इस यात्रा में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारकाधीश, भेट द्वारका, सिग्नेचर ब्रिज और स्टैचू ऑफ यूनिटी का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में AC, सेकेंड AC, थर्ड और स्लीपर श्रेणी की व्यवस्था की गई है खास तौर पर, और साथ ही LTC और EMI जैसी सुविधाएं भी यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो चलिए अब आपको करवाते हैं एक ऐसे म्यूजियम की सैर जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में है। यह अंडर वाटर म्यूजियम क्रोएशिया में है। आपको दिखाते हैं आखिरकार इस म्यूजियम में क्या क्या है।
8: समंदर में स्कूबा डाइविंग करने वालों को आमतौर पर शानदार मछलियों और समुद्री जीवों का दीदार करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को अनोखी आकृतियों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। ये तस्वीरें क्रोएशिया के अंडरवाटर म्यूजियम की हैं। इसमें एक पुराने विमान का मलबा है, तो साथ ही साथ ईसा मसीह और उनके जीवन यात्रा से जुड़े लोगों की कई प्रतिमाएं भी हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रतिमा ईसा मसीह की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। इसे करीब 9 मीटर की गहराई में लगाया गया है। खास बात ये भी है कि इस म्यूजियम की सैर उन लोगों के लिए भी आसान है जिन्हें तैरना नहीं आता या जो अभी तैरना सीख रहे हैं।
9: Nalazi se na dubini od 3,5 4 metra. Svi kipovi su visine otprilike prirodne veličine ljudske oko 2 metra, tako da idealno za sve početnike, ne plivače, nije uopće bitno da ljudi moraju ronit sa opremom i ronačkom bocama, nego je više na snorkeling turi bazirano, tako da je napravljeno za sve generacije. Evo.
8: यूरोप में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए अंडरवाटर म्यूजियम की सैर पर आना गर्मी से भी निजात पाने का बहाना है।
10: So this is a nice place, but the summer is so strong today. So I just went to the water and swimming here. And to be honest, the weather is beautiful compared to my nation. I came from Taiwan. So in Taiwan, that's humid and warm.
11: We expect to have a lot of fun since we love going to the beach, diving. And yeah, since we saw this thing you have in Croatia, which is very, very new, very exciting. So yeah, we look forward into seeing all we can see underwater in this museum.
8: दुनिया भर में ये अकेला ऐसा म्यूजियम है जहां ईसा मसीह की जीवन यात्रा को समुद्र की गहराइयों में प्रदर्शित किया गया है। इस म्यूजियम का माहौल काफी आकर्षक है। समुद्री टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए ये यादगार सैर सपाटे की शानदार जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
13: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University transforming your passion into profession।
7: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाए कोहरे की मोटी चादर, अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडिचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात। BSF की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। उत्तराखंड को नई ट्रेन की सौगात। सीएम पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली रामनगर देहरादून एक्सप्रेस का किया शुभारंभ। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क को मिलेगी मजबूती। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास। मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 सफल लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवलीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।

0: पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, योद्धाओं की वो टोली जो विषम परिस्थितियों में भी देश की हिफाजत में डटे रहते हैं। तपते रेगिस्तान से लेकर खून जमा देने वाली बर्फीली वादियों तक इनकी मौजूदगी है, जो दुश्मन को फटकने का मौका तक नहीं देते। भारतीय सेना के इन रणबांकुरों को मॉडर्न, हाईटेक और लेटेस्ट वेपन से लैस किया जा रहा है, ताकि वो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने वाले हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। भारतीय सेना अपने हथियारों को अत्याधुनिक बनाने और इन्हें हल्का बनाने के लिए लगातार इन पर काम कर रही है, और इसी कड़ी में 450 कार्ल गुस्ताफ MK4 मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर्स को खरीदने का प्रपोजल दिया गया है। ये खरीद मेक इन इंडिया के तहत ही होगी और इसके बाद भारतीय सेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। कार्ल गुस्ताफ सिर्फ एक एंटी टैंक हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध में पैदल सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला मल्टी रोल वेपन सिस्टम है, जो बख्तरबंद वाहनों से लेकर मजबूत बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। भारतीय सेना इसे करीब 5 दशकों से इस्तेमाल कर रही है और अब इसका सबसे आधुनिक संस्करण MK4 को सेना की नई युद्ध जरूरतों के हिसाब से शामिल किया गया है। सेना की RFP में साफ हो गया है कि नया लॉन्चर पुराने MK3 जितना सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए। बैरल की उम्र कम से कम 1500 राउंड या 15 साल होनी चाहिए। ये -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और अलग अलग जलवायु में बिना किसी समस्या के काम भी कर सके। आधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम हो, रेड डॉट साइट और पकैटनी रेल्स लगाने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि सैनिक तेजी से निशाना लगा सके और पहली गोली में ही दुश्मन को मार सके।
1: इंडियन आर्मी बहुत जल्दी ही कार्ल गुस्ताफ 4 शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक वेपन को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसका जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है, उसके तहत कार्ल गुस्ताफ 4 का जो लॉन्चर होगा उसका वजन 7 किलो से कम होना चाहिए। यह गौरतलब बात है कि इसके पहले का जो Mark II वेरियंट था और Mark III वेरियंट था, उनका वजन 14 किलो और 10 किलो होता था। तो इन्फेंट्री ट्रूप्स को एक हैवी एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए अब जो नया वर्जन टाइप 4 बनेगा उसका वजन 7 किलो या कम होगा।
0: सेना के लिए 84 mm के हल्के रॉकेट लॉन्चर्स कार्ल गुस्ताफ MK4 खरीद सिर्फ एक वेपन परचेज तक सीमित नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में लॉन्चर, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, तकनीकी दस्तावेज और रखरखाव की पूरी व्यवस्था शामिल है। सेना के रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में बहुत सारी खास बातें हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि साब कंपनी इसे हरियाणा के झज्जर में बनाएगी, यानी कि ये पहली बार होगा कि स्वीडन के बाहर इसका प्लांट किसी और मुल्क में लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ जब तमाम मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगी तो हमें स्पेयर पार्ट्स या फिर दूसरी चीजों के लिए स्वीडन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी और मजबूत होता है।
2: भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियां देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। वो सीमा पर हर तरह के इलाके में तैनात रहती हैं। पुराने हथियार भारी और कम प्रभावी हो चुके हैं। ऐसे में MK4 हल्का होने की वजह से सैनिकों की गतिशीलता बढ़ेगी, खासतौर पर सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में, जहां पर हर अतिरिक्त किलो वजन सैनिकों के लिए एक चुनौती होता है। कार्ल गुस्ताफ MK4 का वजन लगभग 7 किलोग्राम है, जो पुराने संस्करणों से हल्का है। इसकी लंबाई 1 मीटर से भी कम है, जिससे दुर्गम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पैदल सैनिक इसे आसानी से ले जा सकते हैं और मुश्किल इलाकों में लंबे समय तक आसानी से ऑपरेशन भी किया जा सकता है।
1: इसमें जो वॉरहेड लगाए जाएंगे वो 3 तरह के होंगे। नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड दुश्मन के बंकर को ध्वस्त करने के लिए, एंटी टैंक वॉरहेड दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए, और एक एरिया वेपन जो कि हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड होगा, दुश्मन के जो इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं जो ओपन एरिया में डिप्लॉयड हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि यह जो नया वेपन होगा ये -20 डिग्री हिमालयन क्षेत्र में, जैसे टेम्परेचर सर्दियों में हो जाता है, और +50 डिग्री राजस्थान के डेजर्ट में जैसे टेम्परेचर गर्मियों में हो जाता है, के रेंज में काम कर सके। इसका टेक्निकल तात्पर्य ये है कि -20 डिग्री में जो ट्यूब है वो श्रिंक नहीं होनी चाहिए, ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, और +50 डिग्री में जो इसका लॉन्च ट्यूब है वो सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, रिजिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए।
2: अगर दुश्मन पहाड़ी बंकर में छिपा है, किसी इमारत के अंदर हो या फिर हल्के बख्तरबंद वाहन में हो, या फिर सीमा पर मजबूत चौकी बना रखी हो, खाल गुस्ताफ MK4 कम समय में ऐसे लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। इससे पैदल सैनिकों को टैंक या तोपखाने के समर्थन का इंतजार हमेशा नहीं करना पड़ता।
1: युद्ध के दौरान जब हमारी टैंक दस्ते आगे बढ़ते हैं तो वो दुश्मन के जो एंटी टैंक कमांडोज हैं और दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं उसकी जद्दोजहद में आ सकते हैं। ऐसे में टैंक फॉर्मेशन जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमेशा उनको इन्फेंट्री ट्रूप्स का सपोर्ट दिया जाता है, ख़ास तौर से एक्सिस ऑफ एडवांस के बाएं फ्लैंक पर और एक्सिस ऑफ एडवांस के दाहिने फ्लैंक पर। इन इन्फेंट्री ट्रूप्स को, जो हमारे इन्फेंट्री है जो कि टैंक को कवर दे रहे हैं, टैंक की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनका काम होता है कि दुश्मन ने अगर अपने एंटी टैंक दस्तों को दाएं या बाएं में जंगल के पीछे, खेत के पीछे, पहाड़ के पीछे छुपा के रखा हुआ है, उसका क्लियरेंस करते जाएं ताकि हमारी टैंक फॉर्मेशन बिना किसी रेजिस्टेंस के या बिना किसी नुकसान के मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, जिसे हम फॉर्म अप पॉइंट कहते हैं, FUP। क्योंकि टैंक फॉर्मेशन FUP पे पहुंचने के बाद ही जो असली टारगेट है उसके ऊपर अपना हमला शुरू करती है। असली टारगेट क्या है? डिचकम बंद हो सकता है, दुश्मन का टैंक कंसंट्रेटेड एरिया होना हो सकता है, दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हो सकता है।
2: पहले अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग हथियारों की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन खाल गुस्ताख MK4 एक ही लॉन्चर से अलग अलग तरह की गोला बारूद दाग सकता है। एंटी टैंक गोले के तौर पर खाल गुस्ताख MK4 में HEAT-751 का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोला टैंडम यानी कि दोहरे वॉरहेड से लैस है। इसका पहला विस्फोट टैंक के बाहरी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर सुरक्षा को नष्ट करता है और दूसरा मुख्य धमाका टैंक के 500 mm मोटे स्टील कवच को चीरते हुए अंदर प्रहार करता है। खाल गुस्ताख MK4 से एंटी स्ट्रक्चर और बंकर बस्टर गोले दागे जा सकते हैं। इसके लिए HEDP-502 और MT-756 गोले का इस्तेमाल होता है। HEDP-502 एक ड्यूअल पर्पस गोला है। इसमें इंपैक्ट यानी टकराते ही फटना और डिले मोड यानी कि टारगेट से टकराने की थोड़ी देर बाद फटना दोनों होते हैं। डिले मोड में ये पहले कंक्रीट या फिर लकड़ी की दीवार को छेद कर अंदर घुसता है और फिर बंकर के भीतर विस्फोट करता है ताकि अंदर छिपे दुश्मनों का सफाया हो सके। बंकरों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। MT-756 से एक मल्टी टारगेट गोला भी दागा जा सकता है। ये कंक्रीट, ईंट और मजबूत दीवारों को तोड़ते हुए विशेष रूप से टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल करता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर है। खाल गुस्ताख MK4 से एंटी

0: एक मिनट में जरूरत पड़ने पर 6-6 मिसाइलों को दाग सकते हैं। इसके अलावा आर्मी ने अपने आरएफपी में ये भी कहा है कि इसकी कैलेंडर लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिए, यानी बारिश, आंधी, तूफान, रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद वह 15 साल तक इफेक्टिव होना चाहिए। 1500 राउंड्स फायर करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। क्या होता है कि हर वेपन सिस्टम्स में टैंक तो तरंगबंद गाड़ियों का जो मेन मशीन गन है उनमें कुछ 100 या कुछ हज़ार राउंड फायर करने के बाद जो मेन बैरल है या कार्ल गुस्ताव में मेन ट्यूब है उसको चेंज करना पड़ता है। तो आर्मी ने अपने स्पेसिफिकेशन में लिखा कि 1500 राउंड तक इस कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का जो ट्यूब है वो सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और उसके दौरान ही उसका जो ट्यूब है वो आर्मी के जवान के शोल्डर पे ही फट गया।
1: कार्ल गुस्ताव MK4 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है जो कि एक मिनट में करीब 6 राउंड फायर कर सकता है। इसके प्रभावी मारक क्षमता की बात की जाए तो मूविंग टारगेट यानी कि चलते हुए वाहनों के खिलाफ करीब 350 से 400 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। वहीं स्थिर बख्तरबंद वाहनों या फिर टैंकों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। इमारतों और बंकरों के खिलाफ कार्ल गुस्ताव MK4 की मारक क्षमता 700 से 1000 मीटर है। कार्ल गुस्ताव MK4 को विशेष रूप से शहरी युद्ध और पैदल सैनिकों की मोबिलिटी को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया है।
2: भारतीय सेना की पैरा फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस के लिए कई बार दुश्मन के नजदीक जाकर भी हमला करना पड़ता है। स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए वो कई बार दुश्मन की सरहद में भी घुसते हैं, तो ऐसे में गुस्ताफ MK4 उनके लिए सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। दरअसल परिस्थितियों के लिहाज से हथियार कितना अत्याधुनिक है और उसका हर एक ग्राम मैटर करता है। तो स्थिति चाहे ऊंचाई वाले इलाकों की हो या फिर दूर दराज के इलाकों की, गुस्ताफ MK4 इन फोर्सेस के लिए सबसे बेस्ट हथियार साबित हो सकता है।
1: कार्ल गुस्ताफ MK4 की लंबाई 1 मीटर से कम है, जिससे कमांडो इसे अपने पैराशूट, हार्नेस या बैकअप के साथ आसानी से बांध सकते हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते समय या फिर पैराशूट से कूदते समय ये सैनिकों के मूवमेंट में बाधा नहीं बनेगा। पैरा SF अक्सर रात के अंधेरे में हमला करते हैं। MK4 का स्मार्ट फायर कंट्रोल डिवाइस FCD-558 थर्मल और नाइट विजन डिवाइस के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इससे कमांडोज बिना कोई रोशनी किए घने अंधेरे या फिर कोहरे में भी दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ कर तबाह कर सकते हैं।
2: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के पास दरअसल एक घातक प्लाटून भी होती है। इनमें शारीरिक रूप से सक्षम और स्मार्ट जवानों को भर्ती किया जाता है। वैसे इनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। इनका सबसे बड़ा मकसद सीधे तौर पर यही होता है कि जब भी भारतीय सेना कहीं हमला के लिए जा रही है तो सबसे पहले यही प्लाटून आगे उस सेना का रास्ता क्लियर करती है, फिर चाहे बंकरों को नष्ट करना हो या फिर सेना के लिए रास्ता बनाना। यानी इस प्लाटून का कहां बहुत अहम हो जाता है रण क्षेत्र में।
1: फॉरवर्ड पोस्ट पर दुश्मन की रक्षा पंक्ति को मिनटों में ध्वस्त करने के लिए घातक प्लाटून के जवान कार्ल गुस्ताव MK4 से HEDP-502 और MT-576 मल्टी टारगेट बंकर बस्टर गोलों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन का किला चुटकियों में ध्वस्त हो जाएगा। कश्मीर या उत्तर पूर्व में जब आतंकवादी किसी मजबूत घर या कंक्रीट की इमारत में छिप जाते हैं तो घातक प्लाटून को बुलाया जाता है। पहले भारी हथियारों को संकरी गलियों में ले जाना मुश्किल होता था, वहीं MK4 के हल्के वजन के कारण सैनिक इसे आसानी से संकीर्ण रास्तों पर ले जा सकेंगे और कमरे के अंदर से फायर करने वाले विशेष गोलों की मदद से बिना अपनी जान जोखिम में डाले इमारत को उड़ा देंगे।
0: किसी भी इन्फेंट्री असॉल्ट के दौरान इन्फेंट्री के जो ट्रुप्स हैं या कमांडोज हैं उनको या तो ऊंची ऊंची चोटियों पर जल्दी से जल्दी चढ़कर दुश्मन के ऊपर वार करना होता है या खेतों में मार्शी एरिया

0: में दलदल एरिया में या रेगिस्तान जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ पर सॉफ्ट सैंड पर द्रुत गति से आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में अगर एंटी टैंक लॉन्चर ट्यूब का वजन 14 किलो है या 10 किलो है, तो फिर जवानों की मोबिलिटी में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी को ओवरकम करने के लिए अब ये तय किया गया है कि कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का जो लॉन्च ट्यूब होगा वो कॉम्प्लेक्स ग्लास फाइबर ट्यूब का बना होगा और टोटल वेपन सिस्टम का वजन 7 किलो से कम होगा, ताकि इन्फेंट्री का जो जवान है वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, समझिए उसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर, 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के बंकर पर हमला करना हो, तो द्रुत गति से वो अपने पैरों से ऊपर चढ़कर द्रुत गति से इफेक्टिव फायर दुश्मन पर ला सके।
1: हथियारों की दुनिया में कार्ल गुस्ताफ MK4 को सेना के बजट के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। एंटीटैंक मिसाइल से ये बेहद सस्ता है, जहां स्पाइक या फिर जेवलिन ATGMs की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, इसके उलट कार्ल गुस्ताफ का एक रॉकेट शेल महज कुछ लाख रुपए में आ जाता है। इसके टाइटेनियम लाइन बैरल की लाइफ 1500 राउंड है। इसका मतलब ये है कि ये सालों साल बिना खराब हुए हजारों गोले दाग सकता है, जिससे रखरखाव का खर्च बहुत कम हो जाता है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भरता आएगी। स्वीडन की कंपनी सादगी ओर से झज्जर हरियाणा में लगाई गई 100% FDI फैक्ट्री के कारण भारत को अब लॉन्चर या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
0: कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हरियाणा में हिसार के पास सेटअप किया जा रहा है। इसी के तहत यह भारत सरकार के लिए मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। यह बहुत हाईली कॉस्ट इफेक्टिव वेपन सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि यह फाइबर ग्लास का बना होता है और एक ही ट्यूब को 15 साल तक और युद्ध की परिस्थिति में 1500 राउंड फायर करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही रेवेन्यू फ्रेंडली यानी कम खर्चे वाला वेपन सिस्टम लॉन्ग रन में साबित होगा।
1: मौजूदा समय में कार्ल गुस्ताफ सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। अलग अलग देश इसे अलग अलग नामों और रणनीतियों के साथ अपना रहे हैं। ब्रिटिश सेना इसे चार्ली जी कहती है, कैनेडियाई सैनिक इसे कार्ल जी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की सेना चार्ली गट्स एक कहती है, वहीं अमेरिका में इसे मॉज यानी मल्टी रोल एंटी आर्मर एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम कहा जाता है। कार्ल गुस्ताफ सिस्टम के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन काम एक है और वो है दुश्मन को बैकफुट पर धकेलना। भारतीय सेना ने कार्ल गुस्ताफ को 1974 में अपनाना शुरू किया और 1976 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के साथ ये समझौता हुआ, जिसके बाद से अभी तक कार्ल गुस्ताफ लगातार भारतीय सेना का एक बहुत भरोसेमंद साथी बना हुआ है। करगिल युद्ध के समय भारतीय सेना ने कार्ल गुस्ताफ सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पहाड़ों की चट्टानों के बीच कंक्रीट और पत्थरों के मजबूत बंकर बना दिए थे, जहां पारंपरिक राइफलों और मशीन गनों की गोलियां बेअसर थी। भारतीय सैनिकों ने कार्ल गुस्ताफ को अपने कंधों पर उठाकर 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके हाई एक्सप्लोसिव ड्यूअल पर्पस गोलों ने बंकरों की दीवारों को सीधे छेद कर उड़ा दिया, जिसने भारतीय इन्फेंट्री को चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराने में सबसे बड़ी मदद की। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अगर देखा जाए तो खास तौर पर कश्मीर घाटी में भारतीय सेना का सबसे मजबूत साथी है कार्ल गुस्ताफ। दरअसल ये इस तरह का इलाका है जहां पर आतंकवादी कहीं भी आकर हमला करके उसके बाद झाड़ियों में या कंक्रीट में के बने कुछ मकानों में या फिर गुफाओं में अंदर जाके छिप जाते हैं। ऐसे में इन जगहों पर आतंकियों को काम तमाम करने के लिए सैनिकों को ठीक उनके पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये काम कार्ल गुस्ताफ आसानी से कर देता है। हथियारों की रीयूजेबिलिटी और वर्स्टेबिलिटी के कारण भारतीय सेना ने इसे अपनी अग्रिम सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बनाया। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीजफायर वॉयलेशन का जवाब देने और उनके अग्रिम बंकरों को तबाह करने के लिए काल गुस्ताफ सिस्टम का अक्सर इस्तेमाल होता है। वहीं एलएसी पर चीनी चौकियों के ठीक सामने भारतीय सेना की लगभग सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर काल गुस्ताफ के पुराने संस्करण MK2 और MK3 हमेशा तैनात रहते हैं ताकि किसी भी अचानक बख्तरबंद घुसपैठ को रोका जा सके। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: भारतीय सेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा करने और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बना रही है। इसमें नए नए हथियार भी शामिल हैं, इसमें सेना का मॉडर्नाइजेशन भी शामिल है और यही वजह है कि भारतीय सेना ने नाग 2 पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तमाम टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के बारे में कहा जाता है कि इसके रडार पर एक बार टारगेट आया तो उसका बचना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे दागने के बाद दोबारा कमांड देने की जरूरत नहीं होती।
8: फायर एंड फॉरगेट टेक्निक जो है कि जब एक बार ऑपरेटर टारगेट को लॉक कर लेता है और फिर फायर कर देता है तो फिर उसको जो मिसाइल रास्ते में है उसको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं, फिर वो खुद पे खुद जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। तो ये जो फायर एंड फॉरगेट है ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। एक बार जब ऑपरेटर टारगेट पे लॉक कर लेता है मिसाइल को और फायर करने के बाद ड्यूरिंग फायरिंग टाइम उसको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए नेविगेशन में, वो खुद पे जाके टारगेट को हिट करेगा। और तो ये जो नाग मिसाइल है जो भारत ने अभी डेवलप की है नाग मार्क 2, पहले हमने नाग मार्क 1 की थी जिसकी रेंज करीब 4 किलोमीटर थी, अब ये नाग मार्क 2 की है जिसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर में है। ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है और ये फायर एंड फॉरगेट टेक्निक से है।
1: नाग मिसाइल हर मौसम में काम करने में सक्षम है, इसमें इंफ्रारेड तकनीक है जो लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करती है और तूफानी रफ्तार से उसे तबाह कर देती है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर प्रहार करती है, यानी 4 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को 17 से 18 सेकंड में निस्तानाबूद करने में सक्षम है।
8: नाग मार्क 2 जो है वो इम्प्रूव वर्जन है नाग मार्क 1 का। जो नाग मार्क 1 था उसकी रेंज जो थी 4 किलोमीटर थी, जबकि नाग मार्क 2 की रेंज जो है 7 से 10 किलोमीटर है। ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है, ये फायर एंड फॉरगेट टेक्निक से चलती है। एक बार ऑपरेटर इसको लॉक कर लेता है फायर करने से पहले, उसके बाद इसको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द बेसिकली जब ये फायर की जा रही है। तो ये सच्चाई है, एक बहुत ही आधुनिक है ये जो नाग मार्क 2 भी, और ये भारत ने खुद इंडिजिनसली बनाई है। ये एक प्रकार आत्मनिर्भर भारत के तहत है, बल्कि यही नहीं जो नाग मार्क 1 और 2 दोनों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, दूसरे देश उसको खरीदना चाहते हैं।
1: हल्के वजन और अचूक निशाने वाली नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी। भारतीय सेना की नाग मिसाइल को DRDO ने 300 करोड़ की लागत से विकसित किया है। 1990 में इसका सफल परीक्षण हुआ और इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से 2017, 2018 और 19 में भी नई तकनीक के साथ लगातार इसका परीक्षण होता चला गया। रक्षा मंत्रालय ने इस बात को क्लियर किया है कि नाग मिसाइल ने अपने हर परीक्षण में हर टेस्ट पूरी तरह से पास किया है और अब ये भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। DRDO ने नाग ATGM को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। नाग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे जमीन और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, यानी सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि इसे हवा से हवा में लॉन्च कर दुश्मन टैंक और बख्तरबंद वाहनों को खाक में मिलाया जा सकता है। नाग ATGM के 4 विंग्स हैं और ये चारों विंग्स पूरी तरह से फोल्डेबल हैं। इसका वजन है करीब 43 किलोग्राम और इसमें एक रियल टाइम इमेज प्रोसेसर के साथ तेज और कुशल एल्गोरिदम भी है जो खुद ब खुद टारगेट को पहचान कर सीधा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है और उसे निशाना बनाती है। नाग मिसाइल के लिए खास मिसाइल कैरियर NAMICA तैयार किया गया है जिसे सारथ नाम मिला है। ये एक टैंक डिस्ट्रॉयर है जिसमें 12 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। नाग मिसाइल के 5 अलग अलग टाइप पर काम चल रहा है। नाग मिसाइल का एक लैंड वर्जन, दूसरा मास्ट माउंटेड सिस्टम, बाकी 3 खास जरूरतों के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी की MP-ATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ट्रायल 2005 में शुरू हुआ। ये दिखने में नाग मिसाइल के लैंड वर्जन जैसी ही है, लेकिन बेहद हल्की, जो करीब 14 किलोग्राम है। नाग का MP-ATGM वर्जन की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है। ये टैंकों के ऊपर से हमला करने में सक्षम है, जिसे टॉप अटैक कहा जाता है। दरअसल टैंकों में चारों तरफ रिएक्टिव आर्मर की प्लेट लगी होती है, जो मिसाइल हमले के दौरान फटक कर उसके प्रभाव को कम कर देती है। इसीलिए ऊपर की ओर टैंक पर हमला उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसे दागने के बाद उसके लक्ष्य को बदला भी जा सकता है।
9: ये देखिएगा कि जो टैंक है हर जगह से मजबूत होता है कि नहीं, तो कहां कमजोर है तब, मतलब ऊपर जहां से वो आप देखते हैं कि टैंक का खुद सर निकाल करके खड़ा है या कहीं से कर रहा है, तो जो ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा सा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द टैंक ज्यादा कमजोर है। सो जो कमजोर पार्ट को मारने के लिए तो टॉप गाइडेड, मतलब आपने टैंक मिसाइल फायर किया, वो टैंक के ऊपर उसने देखा और फिर ऊपर से उसने टॉप अटैक किया। यानी कि जो भी टैंक आपने देखा होगा कि बख्तरबंद जो गाड़ियां होती हैं, टैंक्स होते हैं, ये मोटा जो स्टील होता है, पूरा का टरेट जो होता है, पूरा का पूरा भारी, सब जगह से लोडेड लेट होता है कि टैंक जो है उसको बर्बाद करना इतना आसान है। सो सबसे कमजोर जो पोर्शन है ये मिसाइल उधर जा करके उसको बर्बाद कर देता है।
1: नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पहाड़ पर ले जाना हो या फिर रेगिस्तान में, इसे कहीं पर भी आसानी से प्लेस किया जा सकता है, कहीं भी फिट किया जा सकता है। यानी इसके लिए किसी निश्चित जगह की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल हो सकता है। MP-ATGM में और भी कई हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। MP-ATGM इमेज इंफ्रारेड रडार से लैस है, जो रात के अंधेरे में दुश्मनों को ढूंढ लेती है। MP-ATGM में इंटीग्रेटेड एवेनॉक्स भी लगा है। इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता करीब 3 किलोमीटर है। करीब 1.25 मीटर लंबाई वाली इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड फिट होते हैं, जिससे ये टैंक के बेहद मजबूत कवच को भी पिघला सकती है। थर्मल सेंसर की वजह से ये टैंक से निकलती गर्मी को और भगाती है, जिससे बचना टैंक के लिए आसान नहीं होता।
8: जो नाग मार्क 2 है ये भी थर्मल इमेजिंग है, ये एक प्रकार से हीट सीकर होती है, जो मतलब कि जहां से भी टारगेट जो हीट प्रोड्यूस करता है वो उसको होमोन कर लेते हैं और फिर उसकी तरफ जाते हैं। तो थर्मल इमेजिंग का बड़ा फायदा है कि ये एक प्रकार से हीट सीकर होते हैं और ये जो टारगेट को उसकी हीट के नज़र से पहचानते हैं और वो 100% जाके उसको हिट करते हैं।

0: स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। एफओएस वेरिएंट का नाम है ध्रुवास्त्र, जिसे हेलेना नाम से भी जाना जाता है। ध्रुवास्त्र को ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने ध्रुवास्त्र मिसाइल के तमाम टेस्ट पास कर लिए हैं और इन तमाम टेस्टों को पास करने के बाद अब ये भारतीय सेना और वायु सेना को अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये न सिर्फ अत्याधुनिक है बल्कि साथ ही साथ भारतीय सेना और वायुसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा भी करेगी। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर चलने वाली इस मिसाइल से दुश्मन के टैंक बच नहीं पाएंगे। यही वजह है कि ध्रुवास्त्र की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक में होती है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा हुआ है, जिससे ये अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। ध्रुवास्त्र मिसाइल की रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है, जो ये 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसमें 8 किलो विस्फोटक लगा सकते हैं। भारत के पास सेंट यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल में होती है। सैंट ध्रुवास का अपग्रेडेड वेरिएंट है। 15 से 20 किलोमीटर रेंज वाली सैंट में एक्टिव रडार सीकर लगा है, ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। ये मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से टारगेट का पता लगाती है और भागते टारगेट को भी तबाह कर सकती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मार्च 2023 में अपने थर्ड जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। अमोघा 3 बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर है। इसमें जो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है वो 650 मिलीमीटर बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर के भी चीथड़े उड़ा सकता है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन की तरफ इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक की मदद से आगे बढ़ती है। हालांकि इसकी स्पीड का खुलासा इसे बनाने वाली कंपनी ने नहीं किया है। अमोघा 3 मिसाइल पर 8 फिन्स यानी कि छोटे छोटे पंख लगाए गए हैं, ताकि उड़ान के समय इसे कंट्रोल किया जा सके।
1: जमीनी दस्ते का सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार होता है टैंक और इसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां। यकीन मानिए कि जब टैंकों का काफिला निकलता है तो इसे रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं है। यानी हमारी सेना के टैंक इतने ताकतवर हैं कि दुश्मन इनकी फौज को देख के ही थर थर कांपता है।
0: टैंकों को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल भी कहा जाता है। लेकिन एक वक्त था जब एटीजीएम की जगह आरसीएल यानी कि रिकॉइल लेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।
1: टैंक के खिलाफ 106mm की आरसीएल गन एक बेहद प्रभावशाली हथियार बना। वैसे उस दौर में ये इतना आसान भी नहीं था। दरअसल इसके गोले अगर टारगेट को हिट कर दें तो टारगेट बचता नहीं था। वहीं खराब बात इसकी ये थी कि फायर होते ही दूर से पहचान लिया जाता था, क्योंकि इसके शोले पीछे की तरफ निकलते थे, यानी दुश्मन को पहचाना जा सकता था। एक और बड़ी बात कि ये केवल 3 ही बार फायर हो सकती थी। बावजूद इसके ये भारतीय सेना का एक मजबूत साथी बनती रही।
0: 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पे तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए, ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग सके। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उलट। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुकी रही जब तक पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आए। अब्दुल हमीद एक जीप पर आरसीएल गन के साथ तैनात थे।
1: असल उत्तर की धूल भरी जमीन पर जब लड़ाई छिड़ी तो दुश्मन का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। एक तो धूल भरी जमीन थी, यानी चारों तरफ धुआं, और ऊपर से फायर लगातार हो रहे थे और उसका धुआं अलग से, और ऐसे में दुश्मन को पहचान पाना, उसे निशाने पर लेना इतना आसान नहीं था। ऐसे में अब्दुल हमीद ने एक स्मार्ट स्टेप उठाया। उन्होंने वेट किया, उन्होंने दुश्मन को करीब आने दिया और फिर उसे निशाने पर लिया। इसी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने दुश्मन को निशाना बनाया और इसके बाद उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो तुरंत से गाड़ी को पीछे ले और पोजीशन चेंज करे। दिन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने दो टैंकों को तबाह कर दिया था, बल्कि चार टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं पर छोड़कर भाग खड़ी हुई। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने चार ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले एक घंटे में ही पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हमीद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी आरसीएल गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा मिला। यहां से उन्होंने सबसे पहले आगे के टैंक को उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर दो और टैंकों को उड़ा दिया। अब्दुल हमीद ने गजब साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र भी दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
2: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे, तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है टैंकों के विरुद्ध और बस्तरबंद गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नागमार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की, तो ये बैटलफील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
1: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नई योद्धा की भी एंट्री हो चुकी है। यह हथियार है स्पाइक NLOS, यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट। आज की तारीख में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बहुत जरूरी है। वैसे देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर में हिमालय क्षेत्र है और जहां की सीमा सीधे पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़ती है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऊंचाई वाले इलाकों में कई बार दुश्मन छिपा होता है। करगिल युद्ध में अगर आपको याद हो तो ऐसी परिस्थितियां बनी थी, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठा के दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है। तो ऐसे में ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमारी सेना का बाखूबी साथ देती है। स्पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
3: वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलकर ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन दी लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्शन में, यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम, वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन दी लूप वाला सिस्टम है, तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबॉर्ट करना पड़े तो ये अबॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है।
0: हवा से दागी गई NLOS मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। भारत ने इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी। इसे वायुसेना में MI-17 हेलीकॉप्टर्स पर लगाया जाएगा। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC के करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू विमान तैनात करना शुरू कर दिए, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ऑर्डर दिया।
1: भारत बहुत लंबे समय से मिसाइल खरीदने का इच्छुक था। 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे, एक था अमेरिका की FGM-148 जेवलिन मिसाइल और दूसरा विकल्प था स्पाइक NLOS। भारत ने स्पाइक को चुना। उसकी सबसे बड़ी और खास वजह यह थी कि ये इसराइल की कंपनी थी, और दूसरी बात यह कि इसराइल भारत के साथ न सिर्फ इसकी डील कर रहा था बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी कर रहा था। ये वो दौर था जब मोदी सरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही थी, यानी कहीं ना कहीं ये डील भारत को ज्यादा सूट करती थी।
0: फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में NLOS मिसाइलें ऑर्डर की हैं, बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा संख्या में हासिल किया जाएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दो तरह की हैं। एक तो छोटी मिसाइलें जिन्हें एक व्यक्ति आसानी से उठाकर ले जा सकता है और कंधे से ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। वहीं दूसरी होती है बड़ी मिसाइलें जिन्हें लॉन्च करने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत होती है, यानी हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत को देखा है। वहीं यूक्रेन एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका से मिले जेवलिन मिसाइलों का खूब इस्तेमाल किया गया। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्पाइक को जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल माना जाता है। स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स ने दुनिया भर में कई युद्धों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। स्पाइक मिसाइल ने 1982 और 2006 के लेबनान युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। साल 2001 और 2021 के अफगानिस्तान वॉर में इसने जबरदस्त जंगी क्षमता का परिचय दिया। वहीं इराक युद्ध में भी स्पाइक बेजोड़ साबित हुई। साल 2014 इसराइल गाजा संघर्ष और साल 2020 नारगोन कारबाख संघर्ष में भी स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल ने अहम भूमिका निभाई। स्पाइक की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एंटी टैंक मिसाइल में होती है। भारत के पास पहले से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जमीन से फायर करने वाला वर्जन मौजूद है। भारतीय सेना इस समय स्पाइक LR मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। स्पाइक LR पोर्टेबल है। दो जवानों की टीम के साथ इसे तैनात किया जा सकता है। एक जवान लॉन्चर लेकर चलता है और दूसरा मिसाइल। स्पाइक मिसाइल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं। इसे फायर करने के दो मोड हैं। पहला है फायर एंड फॉरगेट, मतलब मिसाइल फायर करने के बाद टारगेट को भूल जाइए। दूसरा फायर एंड ऑब्जर्व एंड अपडेट, इसमें मिसाइल के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से विजुअल लॉन्चर तक पहुंचता है। सैनिक देख पाता है कि मिसाइल किस टारगेट की ओर बढ़ रही है, वो टारगेट पर कहां लगेगा। जरूरत पड़ने पर मिसाइल के हवा में रहते समय ही सैनिक उसकी दिशा में बदलाव कर सकते हैं। इस खूबी के चलते उस टारगेट को भी खत्म किया जा सकता है जो सीधे नजर नहीं आता।

बाइक को कंधे पर रखकर या फिर हेलीकॉप्टर में कहीं से भी दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे टैंक पर भी फिट किया जा सकता है जहां से इसे लॉन्च किया जाएगा। बहरहाल भारत ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण करते हुए दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत की सैन्य ताकत कितनी मजबूत है।

0: स्पाइक मिसाइल अपने टारगेट पर अचूक प्रहार करती है। यह इतनी घातक है कि टारगेट को बचने का मौका तक नहीं मिलता। स्पाइक मिसाइल न सिर्फ दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर को तबाह करने में सक्षम है, बल्कि ये दुश्मन के टैंकों के परखचे उड़ाने की ताकत भी रखती है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है। शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: यू शुडन्ट हैव टू चूज बिटवीन स्पीड, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू। With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है? शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
1: Talk Sport.
4: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
1: And more. Search sports to find the stations covering your team.
5: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: गुड प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
11: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर। अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम। लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात। बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास। मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
12: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने अपनी कैप्टेंसी में लगातार दूसरी बार अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 15 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के आखिरी क्षणों में मेसी ने अपने दो शानदार पास से मैच का रुख जिस तरह से बदल दिया, उसे देखकर इस खेल के विशेषज्ञ अब ये कहने लगे हैं कि मेसी ऑल टाइम ग्रेट है।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों में मेसी ने विरोधी टीमों पर हावी होकर आखिरी क्षणों में जिस तरह से मैच का रुख मोड़ दिया, उसे देखकर सॉकर एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि मेसी निसंदेह ऑल टाइम ग्रेट हैं। मेसी के डाई हार्ड परफॉर्मेंस की वजह से अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने में सफल हुआ है। अटलांटा के एंथनी गार्डन में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में 55वें मिनट पर गोल करके इंग्लैंड फाइनल की तरफ कदम बढ़ा चुका था, लेकिन लियोनेल मेसी ने आखिरी वक्त में मैच का रुख पलट दिया। मैच के 86वें मिनट पर मेसी ने शानदार शॉर्ट कॉर्नर खेलकर गेंद एंजो फर्नांडीज के पास पहुंचा दी और फर्नांडीज ने मेसी के शानदार पास पर बगैर देर किए 25 गज से शानदार गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में मेसी के बेहतरीन क्रॉस पर सब्स्टिट्यूट लॉटारो मार्टिनेज ने हेडर से गोल कर फाइनल में पहुंचने के इंग्लैंड के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस रोमांचक मुकाबले के बाद मेसी की खुले दिल से तारीफ करते हुए फुटबॉल एक्सपर्ट मीका रिचर्ड्स ने कहा कि अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, उनके पास ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, फुटबॉल के इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच हुए फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 पर यानी बराबरी पर था, लेकिन मैदान पर मेसी की मौजूदगी ने अर्जेंटीना के बाकी खिलाड़ियों का हौसला हमेशा बुलंद रखा, लिहाजा अतिरिक्त समय में 2 गोल दागकर अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। न्यू जर्सी के मिड लाइफ स्टेडियम में जब स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 की निर्णायक भिड़ंत होगी तो इसमें मेसी के सामने होगा वो खिलाड़ी जिसे कभी अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर ने बेबी बाथटब में बड़े ही प्यार से नहलाया था। ये वाकया है साल 2007 का। उस समय बार्सिलोना के युवा स्टार लियोनेल मेसी सिर्फ 20 साल के थे। उसी दौरान स्थानीय अखबार डीआरओ स्पोर्ट और यूनिसेफ ने एक चैरिटी फोटोशूट आयोजित किया। इस फोटोशूट में स्पेन के मौजूदा स्टार फुटबॉलर लैमिन यमाल का परिवार विजेता बना और उन्हें कैंप नोउ में फोटोशूट का मौका मिला। फोटोशूट के दौरान मेसी ने महज 6 महीने के यमाल को प्लास्टिक के छोटे से बेबी बाथटब में नहलाया और गोद में उठाकर तस्वीरें भी खिंचवाई। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो वो मानो भगवान बन गए हैं, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारों की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन वाकिफ नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तां आपके दिल को छू लेगी।

है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थीं। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया, जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं, पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया, बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया, और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके।
दुनिया के सर्व

0: सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे, जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को ना झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
1: तो चलिए, बंद में है दम के आज के सफरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक दमदार शख्सियत का सफरनामा लेकर आप सभी के सामने। इजाजत दीजिए, देखते रहिए GNT।
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, you're killing me.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: और अब बात करते हैं भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की, जिसे लॉन्च कर दिया गया है। देखिए विक्रम 1 को स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया है और लॉन्चिंग भी खुद ही की है, सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का यह टेस्ट पहली ही कोशिश में कामयाब रहा। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया। इसके तहत विक्रम 1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में ले गया है।

0: एक बार फिर से अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया है। भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। देश में पहली बार प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित पहला ऑर्बिटल रोबोट विक्रम 1 लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही देश ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट की लॉन्चिंग का समय सुबह 11:30 पर था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से पहले से तय समय से करीब 35 मिनट देर से ही सही दोपहर 12:05 पर रॉकेट की लॉन्चिंग हो गई और वो कामयाबी हासिल हो गई, जिसका पूरे देश को इंतजार था।
1: लगभग 16 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने जो सैटेलाइट थे वो सही कक्षा में, सही ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं, और 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट निर्धारित की गई थी और लगभग 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सैटेलाइट बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च होके अपनी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो यह एक बहुत ही सुवर्ण अवसर है भारत के स्पेस हिस्ट्री में, स्पेस के इतिहास में।
0: श्रीहरिकोटा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तमाम आला अधिकारी और वैज्ञानिक टकटकी लगाए इस लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे थे। वहीं जब रॉकेट की सफलता पूर्वक लॉन्चिंग हो गई तो सभी लोगों के चेहरे खिल उठे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्काईरूट कंपनी के सीईओ और सीओओ को फोन करके पूरी टीम को बधाई दी। आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हैदराबाद में स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था, जिसने अब अंतरिक्ष में शानदार उड़ान भरी है। विक्रम 1 ने पहली चारों स्टेज का प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया। यह भारत का पहला निजी तौर पर ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, जिसने पहली ही कोशिश में लॉन्चिंग से लेकर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट तक सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। इस रॉकेट ने करीब 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को सफलतापूर्वक स्थापित किया। निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत विक्रम 1 रॉकेट को तैयार किया है। इस रॉकेट के साथ 6 खास पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे गए। इनमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की जांच करने वाला स्कोप सैटेलाइट है, तो स्पेस का कचरा हटाने वाला कॉस्मोसर्व स्पेस का मिशन एम्ब्रेस रोबोटिक सिस्टम भी है। इसके अलावा ग्रह स्पेस का एक छोटा सैटेलाइट सोलारास भी इससे अंतरिक्ष में भेजा गया, और जर्मनी के 2 टेक्नोलॉजी पेलोड इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। साथ ही लैब में बना हीरा कॉस्मिक ब्लूम्स भी इस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है। भारत के 3 महान वैज्ञानिकों की छोटी प्रतिमाएं भी इससे अंतरिक्ष में भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम भी इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में पहुँचाया गया।
2: श्योर सर। और सर, आपका कार्ड जो आप भेजे थे, दैट हैज सक्सेसफुली रीच स्पेस एंड यू हैव रिटन वंदे मातरम, सो वंदे मातरम इज इन ऑर्बिट।
0: जो पेलोड इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए, इनका मकसद नई तकनीक को परखना, अंतरिक्ष को सुरक्षित बनाना और आने वाले स्पेस मिशनों को बेहतर बनाना है। रॉकेट विक्रम 1 स्काई रूट के ये 3 डेवलपमेंट मिशनों पर पहला मिशन है। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। हैदराबाद में स्काई रूट के युवा इंजीनियरों की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है, जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
3: The space sector reform what is announced and encouraging the startup system is excellent. And today we had a very very important launch. I think let us congratulate the Skyroot team for this great achievement.
0: 2020 में भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खोला था। इसके बाद कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में आए। स्काईरूट एरोस्पेस उन्हीं में से एक है। इससे पहले 18 नवंबर 2022 को इसके रॉकेट विक्रम एस ने श्रीहरिकोटा से अपनी पहली सफल ऐतिहासिक उड़ान भरी थी। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। विक्रम एस रॉकेट ने 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर यह बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया। इसके बाद अब रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है बल्कि ये भारत के स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और नई तकनीक का भी शानदार मिसाल बन गया है। श्रीहरिकोटा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
7: क्या शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है? शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू शैम्पियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना, खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर, अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ ने किया प्रवेश, 7 दिनों तक यही करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात, बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास, मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवलीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल के होंगे ध्वजवाहक, 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: कल से निलंबित की जा रही है अमरनाथ ज्योति की पवित्र यात्रा, खराब मौसम के कारण लिया गया फैसला। खराब मौसम पूर्वानुमान के मद्देनजर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला, पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से निलंबित रहेगी यात्रा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान अब तक 3.7 लाख से अधिक तीर्थयात्री कर चुके हैं पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन, 3 जुलाई से शुरू हुई थी पवित्र यात्रा। खराब मौसम के बीच भी पूरी आस्था से जारी है चारधाम यात्रा, अभी तक 14,08,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं केदारनाथ धाम में दर्शन। बारिश के बीच पहाड़ियों पर छाई धुंध, यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही बंद, बाबा केदार के भक्त पैदल ही पहुंच रहे हैं धाम। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ ने किया प्रवेश। जगन्नाथ धाम में आस्था का उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा के दिव्य दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंज रही है पूरी नगरी, भक्तों का विश्वास है कि प्रभु के दर्शन मात्र से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। रथ यात्रा के दूसरे दिन तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे, भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान माना जाता है गुंडीचा मंदिर। 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। धनबाद के निरसा स्थित काली मंडा के बाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 100वें विपदा तारिणी पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन। करीब 400 महिलाओं ने रखा व्रत, मां विपदा तारिणी की पूजा अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। पारंपरिक वेशभूषा में पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंची महिलाएं और विधि विधान के साथ की मां विपदा तारिणी की आराधना। कावड़ मेले को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए समीक्षा पर निकले डीएम और पुलिस अधीक्षक, प्रमुख पार्किंग स्थलों और बैरागी कैंप का जायजा लिया। कावड़ मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाएं 25 जुलाई तक पूर्ण करने के दिए गए निर्देश, अतिक्रमण हटाने पर जोर। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विनर्स की हुई घोषणा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया इसका ऐलान। कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड, फिल्म चंदू चैंपियन के लिए होंगे सम्मानित। फीमेल एक्टर कैटेगरी में यामी गौतम को सम्मान, फिल्म आर्टिकल 370 के लिए मिलेगा नेशनल अवार्ड। राजकुमार राव की श्रीकांत को मिला हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड, तुषार हीरा नंदानी ने किया है इसका निर्देशन। रणदीप हुड्डा को उनकी पहली निर्देशित फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर का प्रतिष्ठित पुरस्कार, फिल्म में निर्देशन के साथ लीड रोल में रहे रणदीप हुड्डा। संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला अवार्ड, फिल्म भक्षक के लिए मिला है सम्मान। विजय गांगुली को बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए मिला पुरस्कार, स्त्री 2 के सॉन्ग आज की रात के लिए मिला है सम्मान। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में गीतकार मनोज मुंतशिर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म मैदान के गाने जाने दो के बोल के लिए सम्मानित। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए शाश्वत सचदेव को अवार्ड, आर्टिकल 370 के म्यूजिक के लिए मिला है पुरस्कार। लकी भास्कर फिल्म के लिए वेंकी एटलुरी को बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड। भारत की पहली प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ने भरी उड़ान, श्रीहरिकोटा से दोपहर 12:05 पर स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम 1 पहली टेस्ट फ्लाइट मिशन आगमन लॉन्च। विक्रम 1 ने रचा इतिहास, 24 मीटर लंबा कार्बन फाइबर रॉकेट, 350 किलो तक का पेलोड, 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में है सक्षम। विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग से इसरो के साथ निजी स्पेस सेक्टर की बड़ी छलांग, इस पूरे मिशन पर देश की नजर। 2020 के स्पेस रिफॉर्म का बड़ा असर, इन स्पेस के मुताबिक 5 से 6 स्टार्टअप से बढ़कर अब देश में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप सक्रिय है। 3D प्रिंटेड इंजन और ऑल कार्बन फाइबर तकनीक से लैस विक्रम 1 भारत को दिला सकता है ग्लोबल पहचान, स्पेस सेक्टर में बड़ा भारत का कद। लॉन्च की कामयाबी के बाद स्काई रूट के फाउंडर से पीएम मोदी ने फोन पर की बात और दी बधाई, सफल मिशन को बताया युवाओं की जीत।
10: भारत और कोई नहीं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई।
9: कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया है। ये माइक्रो आर्ट पीस है 14 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट। इस खास माइक्रो आर्ट पीस पर वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां घेरी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्ट कार्ड भी रॉकेट में भेजा गया, जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। अमित शाह ने सिलीगुड़ी में बीएसएफ पोस्ट का किया दौरा, बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जायजा। कई विकास कार्यों की रखी आधारशिला, किया उद्घाटन, जवानों के साथ बैठकर खाया खाना। मध्य प्रदेश में सरकारी खर्चों पर सख्ती, अफसरों की हवाई यात्रा होगी सीमित, होटलों में बैठकों पर लगी रोक, किराए के वाहन भी होंगे कम। IRCTC लाया हम्पी बादामी विरासत ओडिशी टूर, 6 दिन में दिखाए जाएंगे कर्नाटक के प्रमुख स्थल। 30 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा हवाई पैकेज, 40,600 प्रति व्यक्ति है पैकेज की शुरुआती कीमत। बुलंदशहर दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने बुलंदशहर को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। बुलंदशहर के मेधावी छात्रों से सीएम योगी ने की खास बातचीत, विज्ञान से प्रेरित छात्रों के बनाए मॉडलों के बारे में ली जानकारी, सीएम योगी ने छात्र को भेंट की कलम। सीएम योगी ने संगीत विद्यार्थियों से भी की खास मुलाकात, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की कलाकृति भेंट करने वाली छात्रा को सीएम ने उपहार में दी चॉकलेट। सीएम योगी ने कान्हा और राधा की वेशभूषा पहने बच्चे बच्चियों को किया दुलार, अन्नप्राशन कर खिलौने और बंसी दी उपहार। जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को मिली बड़ी सौगात, सीएम योगी ने लैपटॉप, चेक, मकान की चाबी, थर्मल प्रिंटर, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, टूल किट और प्रमाण पत्र वितरित किए। संबल दौरे पर सीएम योगी 570 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का दिया तोहफा। CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए, मुख्य और द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं को मिलाकर 96.78% है पास हुए छात्रों का कुल प्रतिशत। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन हुआ आसान, देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी IRCTC की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। 31 जुलाई से 11 अगस्त तक रहेगा पहला टूर पैकेज, दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने वाले इस पैकेज की शुरुआती कीमत ₹23,560 है। दिल्ली में आम महोत्सव का हुआ आयोजन, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की भूमिका से प्रेरित होकर एक आम का नाम रखा गया ब्रह्मोस। रजौरी में हुई भारी बारिश, सड़क पर बरसाती पानी के साथ आया मलबा, ट्रैफिक बाधित। उत्तर पश्चिम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अगले 6 से 7 दिन जमकर बारिश के आसार, मौसम विभाग ने सक्रिय मॉनसून की चेतावनी जारी की। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की दी जा रही है सलाह। 19 से 20 जुलाई को उत्तराखंड में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान, भूस्खलन और अचानक बाढ़ का बढ़ सकता है खतरा। शिमला में बारिश के अलर्ट के बीच मौसम हुआ सुहाना, मौसम का मजा लेते नजर आ रहे हैं सैलानी। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई के लिए जारी किया रेड अलर्ट। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर और ऊना सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी, भारी से बहुत भारी बारिश, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, बादल फटने की संभावना। लगातार बारिश से चंबा के चुवाड़ी भराड़ी मार्ग पे भारी भूस्खलन, मलबे में फंसी गाड़ी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमें वाहन को सुरक्षित निकालने और सड़क को जल्द बहाल करने के लिए 2 JCB मशीनों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू। हरिद्वार में भारी बारिश, शहर भर में भरा पानी, ट्रैफिक प्रभावित। 26 जुलाई से बिरसा मुंडा स्टेडियम में गूंजेगा फुटबॉल का रोमांच, रांची पहुंची 135वें डूरंड कप की ट्रॉफी। क्रिकेट ऑडिटोरियम में ट्रॉफी शो के समारोह का हुआ आयोजन, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार हुए इसमें शामिल। डूरंड कप की तीनों प्रतिष्ठित ट्रॉफियां, डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी हुई प्रदर्शित, समारोह में ट्रॉफियों का भव्य स्वागत।
11: हेलो हेलो।
9: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पहले से भारत के लिए आया गौरव का पल, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई लवलीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज और बैटन वाहक होंगी। 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह से मल्टी स्पोर्ट इवेंट की होगी शुरुआत। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रच दिया है इतिहास। पहली बार जापान बैडमिंटन ओपन के फाइनल में बनाई है जगह। सेमीफाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर 4 चेन यूफेई को हराया है। अब यामागुची से होगा खिताबी मुकाबला। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय स्क्वैश स्टार्स का जलवा। भारतीय स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह महिला वर्ग की बनी टॉप सी। पहले वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के खिताब पे अनाहत की नजर। अनाहत ने साल 2025 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीता था ब्रॉन्ज। भारतीय स्क्वैश स्टार को आरवी दीवान को पुरुष वर्ग में 4-8 सीडिंग। अंडर 19 एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीत चुके हैं आरवी दीवान। कल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। लॉर्ड्स के मैदान पर होगा यह मुकाबला। दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो वाला होगा मैच। इस सीरीज में अब तक दोनों टीमों ने जीता है 1-1 मैच। 1-1 की बराबरी पर है ये सीरीज। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर हुए वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे मैच। बतौर रिप्लेसमेंट हर्ष दुबे टीम में शामिल। रोहित के संन्यास को लेकर चल रही अटकलों के बीच बीसीसीआई ने इसे किया खारिज। कहा रोहित शर्मा अभी भी भारतीय वनडे टीम की योजनाओं का हिस्सा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज तीसरे स्थान के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मैच मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला जाएगा यह मुकाबला। फिल्म बंटवारा 1947 का दूसरा टीजर आया सामने। एक बार फिर दिखा सनी देओल का रौद्र रूप। प्रियंका चोपड़ा के 44वें बर्थडे पर राजामौली का बड़ा सरप्राइज। फिल्म वाराणसी की फाये मंदाकिनी का ढांसू लुक आया सामने। आज अपना जन्मदिन मना रही बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। करीना ने खास पोस्ट के जरिए किया उन्हें विश। हिमांशु कोहली सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का जीरो का टीजर रिलीज। 7 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी फिल्म। मराठी सिनेमा में कदम रख रही एक्ट्रेस सदा शर्मा। सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर काफी चर्चा में है अदा। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी ने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया है धमाल। पहले दिन दुनिया भर में $40 मिलियन यानी 386 करोड़ रुपए से खोला खाता। तो ओडिसी के आने से शुक्रवार को धमाल 4 की कमाई पर काफी असर पड़ा। फिल्म ने 8वें दिन कमाए महज 3.95 करोड़ रुपए। सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 3 आइकॉनिक फिल्में बड़े पर्दे पर एक बार फिर से हो रही है रिलीज। दामिनी घातक और घायल को री रिलीज करने का बनाया जा रहा है प्लान। आलिया भट्ट स्टारर अल्फा की कमाई में आई गिरावट। अब तक इस फिल्म ने 94 करोड़ की ग्लोबल कमाई की है। जुनैद खान और साई पल्लवी की एक दिन ओटीटी पर मचा रही है धूम। प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही टॉप 10 में बनाई जगह है। ऐतिहासिक गेंद की शुरुआती बोली करीब $25 लाख रखी गई है। हैंड ऑफ गॉड गेंद से रिकॉर्ड कीमत की उम्मीद। नीलामी कराने वाली कंपनी का मानना है कि ये गेंद साल 2022 में बिकी मैराडोना की जर्सी की तरह करोड़ों डॉलर में बिक सकती है। मैच के बाद मुख्य रेफरी ने इस गेंद को संभाल कर रखा था अपने पास जिसे अब प्रमाणित कर नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। साल 2026 फीफा वर्ल्ड कप से बड़ा फुटबॉल से जुड़ी यादगार चीजों का क्रेज। अमेरिका कनाडा और मेक्सिको में होने वाले अगले वर्ल्ड कप से पहले फुटबॉल कलेक्टेबल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। जुलाई के अंत से अगस्त तक चलेगी इसकी नीलामी। मैराडोना के हैंड ऑफ गार्ड गोल से जुड़ी ये ऐतिहासिक गेंद 21 से 23 अगस्त तक होने वाली नीलामी में खरीदारों के लिए उपलब्ध रहेगी। यूरोप की गर्मी से राहत का अनोखा जुगाड़। क्रोएशिया के क्रोगर के पास अंडर वाटर म्यूजियम में डुबकी लगाकर पर्यटक गर्मी से बच रहे हैं। समंदर में बना दुनिया का अनोखा धार्मिक म्यूजियम। यहां पर 52 मूर्तियां और दुनिया का इकलौता अंडर वाटर वे ऑफ क्रॉस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिना स्कूबा टैंक भी कर सकते हैं सैर। पानी में तैरने वाला मास्क और सांस लेने वाली ट्यूब के सहारे नए और गैर तैराक पर्यटक भी समंदर के नीचे की कला देख सकते हैं। 7 मीटर ऊंची यीशु मसीह की प्रतिमा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। समुद्र में 8 से 9 मीटर की गहराई पर स्थापित विशाल प्रतिमा देखने के लिए दुनिया भर से पहुंच रहे हैं लोग। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और जंगलों की आग के बीच क्रोएशिया का अंडर वाटर म्यूजियम लोगों के लिए राहत की जगह बन गया है। कनाडा में जंगलों में लगी आग, हेलीकॉप्टरों से लगातार बुझाने की कोशिश जारी। पश्चिमी कनाडा में गर्म और खुश्क मौसम के बीच फायर फाइटर सक्रिय है, आग पर काबू पाने की जंग जारी। कनाडा की आग का धुआं वॉशिंगटन डीसी समेत कई अमेरिकी शहरों तक पहुंचा, 12 से ज्यादा राज्यों में एयर क्वालिटी अलर्ट। खराब हवा के चलते लोगों को सतर्क रहने की दी जा रही है सलाह, अधिकारियों ने बाहर कम निकलने की चेतावनी दी। कनाडा में हाल ही के सालों में जंगल की आग पहले से ज्यादा विकराल होती जा रही है, इसका असर सीमा पार तक दिख रहा है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात नौसेना के नए जहाज की कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना 22 जुलाई को अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। माही श्रेणी का ये दूसरा पोत 80% से अधिक स्वदेशी तकनीक से लैस है। ये जहाज उथले समुद्री क्षेत्रों यानी कम गहरे समंदर में पनडुब्बी रोधी अभियानों, तटीय सुरक्षा और भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा।

0: भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करती जा रही है। INS महेंद्र गिरी के बाद अब नौसेना में शामिल होने जा रहा है INS मालवन। 22 जुलाई को मालवन नामक अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये माहे श्रेणी का दूसरा पोत है जिसे उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। INS मालवन का निर्माण कोची के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। ये पोत आधुनिक युद्ध पोत निर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जा रहा है। इस युद्ध पोत में 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है जो भारत की घरेलू रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक युद्ध पोत डिजाइन में बढ़ती विशेषज्ञता की मिसाल है। महेश श्रेणी के ये पोत विशेष रूप से उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए विकसित किया गया है। आकार में अपेक्षाकृत छोटे होने के बावजूद मालवन तेज गति, पूर्ति, सटीक संचालन क्षमता और लंबी परिचालन क्षमता से लैस है। नौसेना के मुताबिक इस श्रेणी के पोत तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे। INS मालवन की लंबाई करीब 80 मीटर है, चौड़ाई लगभग 11 मीटर है, इसका वजन करीब 1100 टन है। ये कम गहराई वाले पानी में भी आसानी से चल सकता है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कुल 57 लोग तैनात रहते हैं। इस जहाज में 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वाटर जेट सिस्टम से चलता है जिससे जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। इसी वजह से दुश्मन के लिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है। ये स्टेल्थ तकनीक से भी लैस है, इससे यह रडार और सोनार पर कम नजर आता है। INS मालवन में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम, लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार, RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, हल्के टॉर्पिडो लॉन्चर, 30 मिलीमीटर नौसैनिक गन, आधुनिक रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। इन प्रणालियों की मदद से ये जहाज समुद्र के भीतर छिपी पनडुब्बियों का पता लगाकर उन पर प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। इस क्लास के कुल 8 जहाज बन रहे हैं। INS मालवन इनमें दूसरा है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। 8 जहाज को कोचिन शिपयार्ड बना रहा है तो बाकी के 8 जहाज कोलकाता की GRSE बना रही है। वैसे जहाज का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है। यह जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री ताकत से जुड़ी रही है। यहाँ उनके किले और मजबूत समुद्री रणनीति के निशान मिलते हैं। भारतीय नौसेना ने INS मालवन का प्रतीक चिन्ह भी जारी किया है। इसके क्रेस्ट में मशहूर बाघ नखा को दिखाया गया है जो साहस, फूर्ति और निडरता का प्रतीक है। मालवन के नौसेना में शामिल होने के साथ भारत को स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी के उथले जल क्षेत्र में संचालन करने वाले युद्ध पोतों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने जा रही है। यह पोत भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: धनबाद के निरसा के काली मंडा के ऐतिहासिक बाणी मंदिर में आस्था, परंपरा और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां 100वें विपद तारिणी पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस ऐतिहासिक शताब्दी समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने मां विपद तारिणी के दर्शन और उनके पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट की। और देखिए, सबसे ज्यादा खास बात यह है कि करीब 400 महिलाओं ने व्रत रखकर विधि विधान से मां की पूजा की और परिवार की सुख समृद्धि, उनकी लंबी आयु तथा सभी संकटों से रक्षा की कामना भी की। सुबह से ही मंदिर परिसर शंखनाद, घंटियों के मधुर ध्वनि और मां के जयकारों से भक्तिमय वातावरण में डूब रहा। शताब्दी वर्ष के अवसर पर मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी झालरों से आकर्षक ढंग से विशेष तौर पर सजाया गया था। देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा और पूरा क्षेत्र भक्ति, उत्साह और धार्मिक आस्था के रंग में सराबोर नजर आया।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Tune in's how to A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
1: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना, खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर, अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश, 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात, BSF की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास, मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक, 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं शनि के विष योग के बारे में। तो आखिरकार ये विष योग आपकी कुंडली में कब बनता है, ये क्या होता है, इसका आपके जीवन पर किस तरीके का असर पड़ता है, और अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो इससे बचने के अचूक उपाय पंडित जी से आज के कार्यक्रम में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, शनिवार को जब आप शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाएं या जिस मंदिर में हनुमान जी हैं वहां जाकर के हनुमान जी का दर्शन कर लें। अगर आप पीपल के नीचे दीपक जलाने के बाद हनुमान जी का दर्शन कर लेंगे तो शनि संबंधी बाधाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 19 जुलाई 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 19 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 6:12 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया था आज हम बात करने वाले हैं शनि से बनने वाले विष योग के बारे में। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि यूं तो शनि के कई योग बनते हैं लेकिन विष योग को लेकर एक नकारात्मक का एहसास लोगों के मन में हमेशा बना रहता है। तो आखिरकार विष योग किसी की भी कुंडली में कब बनता है, कौन से ग्रह के साथ इसका कंजंक्शन होता है और ये योग किन दशाओं में बनता है, इसके बारे में बताएं
1: जी। देखिए, जैसा कि सरगम ने कहा कि शनि से बहुत सारे अच्छे और बुरे योग बनते हैं, लेकिन शनि का विष योग सबसे ज्यादा नकारात्मक है। कैसे बनता है, क्या स्थिति होती है? अगर कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध बने तो कुंडली में विष योग बनता है। चंद्रमा बड़ा कोमल, बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट है और बहुत जल्दी नकारात्मकता, निगेटिविटी ग्रहण कर लेता है। शनि जब चंद्रमा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो ये नकारात्मक प्रभाव परमानेंट होता है और बड़ा मजबूत होता है। अगर इसमें राहु आ गया तब तो भगवान ही मालिक हैं, स्थितियां बहुत ज्यादा नकारात्मक होंगी। लेकिन शनि और चंद्र का संबंध ही परफेक्टली विष योग होता है और ये शनि का सबसे नकारात्मक योग है, जीवन को बुरी तरह छिन्न भिन्न कर देता है। और अगर कुंडली में शनि का विष योग है तो जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर बुरा असर डालता है। कुंडली में शनि चंद्र का संबंध दृष्टि से बने, योग से बने, परिवर्तन से बने, ये योग बनता है पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से। और अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र का विष योग है तो ये आपके जीवन के हर कदम पर, हर पार्ट पर अपना असर जरूर डालेगा।
0: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अब अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो किन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शनि चंद्र का प्रभाव है, यानी कि उसकी कुंडली में विष योग बन रहा है? आइए पंडित जी से समझते हैं।
1: देखिए, आपकी कुंडली के जो योग होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपकी वाणी पर, आपके खान पान पर बड़ा साफ दिखाई देता है। किसी को अगर आप गंभीरता से माइन्यूटली वॉच करें कुछ दिन तक, आप एकदम जान जाएंगे उसके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है। अगर शनि चंद्र का प्रभाव है तो क्या होगा, व्यक्ति को नशे की आदत जरूर होगी, छोटा या बड़ा, लेकिन व्यक्ति नशा करता होगा और काफी करता होगा। व्यक्ति की वाणी कर्कश और स्वभाव रूखा होगा, स्वभाव खराब होगा। और ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में शनि चंद्र का संबंध है, वो भीड़ में भी अकेले रहते हैं, पूरा परिवार है, दोस्त हैं, यार हैं, सोसाइटी है, लेकिन उनको अकेलापन अनुभव होता है, क्योंकि ये संयोग आइसोलेशन पैदा करवाता है। शनि चंद्र वालों को विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं। आम तौर पर कैंसर की प्रॉब्लम होने की संभावना काफी होती है, या शरीर में गांठ होने की संभावना काफी होती है। शनि चंद्र वाले जीवन में जल्दी सफलता पाने के लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना और क्षुद्र विद्याओं की तरफ झुक जाते हैं। अक्सर जल्दी सफलता पाने के लिए उल्टे सीधे तरीकों का, उल्टे सीधे सहारों का प्रयोग करने लगते हैं।
0: तो विश योग पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा, धन की दशा में सुधार होगा, करियर की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला सवाल, वो किसका ले रहे हैं
1: जी।

0: बनाए रखना होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं हमेशा की तरह कि अगर आप हमारे ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे इस वक्त हमारा ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, बस इसी ईमेल आईडी को आप नोट कर लें और अपने सवाल इस पर लिख करके हमें भेज दें, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न अर्चना जी ने लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 जून 1985, जन्म का समय शाम के 4:15, वाशिम महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरा एक विवाह होकर टूट चुका है और अब मैं दूसरी शादी करना चाहती हूं, तो मेरे दूसरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अर्चना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह का समय चल रहा है और जो व्यक्ति आपके जीवन में अभी हैं उन्हीं के साथ आपकी अपनी इच्छा से इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में आपकी शादी हो जाएगी। शादी के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है और दूसरा विवाह आपका कुल मिला जुला के सफल रहेगा। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिएगा, लगभग 6-8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहने और सुबह शाम दोनों समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर किसी की कुंडली में विष योग है यानी शनि और चंद्रमा की युक्ति है तो क्या उसे निराश हो जाना चाहिए कि अब तो मेरे जीवन में बस बुरा ही बुरा होने वाला है और अच्छा कुछ नहीं होने वाला है, या फिर विष योग के लाभ भी होते हैं?
0: देखिए, हर योग का अलग अलग मामले में फायदा नुकसान दोनों होता है। जैसे बृहस्पति बहुत प्रबल हो गया ना तो आपको जीवन में बड़ा सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर बृहस्पति प्रबल हुआ तो अहंकार भी देगा। तो बेसिकली हर ग्रह के हर योग के प्लस माइनस होते हैं, विष योग के भी लाभ होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, विष योग होने पर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के पास रहस्यमयी शक्तियां आ सकती हैं। अगर कुंडली में विष योग है, आप साधना बहुत करते हैं, मेडिटेशन बहुत करते हैं, तो आपके पास रहस्यमयी शक्तियां आ सकती हैं। जिनकी कुंडली में विष योग होता है उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है, अतींद्रिय क्षमता इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है और ये सही दिशा अगर इनको मिले तो ये योग व्यक्ति को हाई क्लास का आध्यात्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल व्यक्ति बना देता है। शनि चंद्र वालों के अंदर वैराग्य बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी सही गाइडलाइन मिलने पर ईश्वर के मार्ग पर चलने लगते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र है, आप सफलता नहीं पा रहे हैं, विदेश चले जाइए, या जहां आपका नेटिव प्लेस है, जन्म स्थान है, वहां से दूर चले जाइए। नेटिव प्लेस से अगर आप दूर जाएं या विदेश जाएं तो आप बहुत सफलता पाएंगे। और शनि चंद्र वाले ये जान लें कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति बहुत होती है। अगर वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति

0: शक्ति का इस्तेमाल करें, नेटिव प्लेस से दूर जाएं, अपने गुरु की शरण में रहें, तो यही शनि चंद्र का विष योग उनको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकता है।
1: तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में विष योग बन रहा हो और वो लगातार किसी न किसी तरीके की बाधाओं का सामना कर रहा हो, तो इसके योगों के प्रभाव को समाप्त करने के क्या कुछ अचूक उपाय हैं जो हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं?
0: देखिए, अगर विष योग कुंडली में है और आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो आपको सरल उपाय बताते हैं जिनको करने से विष योग का प्रभाव थोड़ा कम होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, और अगर उगते हुए सूर्य देव को जल देंगे तो बहुत बेहतर होगा। सुबह के समय खाली पेट तुलसी दल का सेवन करिए, रोज ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के पानी के साथ निगलिएगा। सुबह और शाम एक एक बार रुद्राष्टक का पाठ करिएगा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, इसका सुबह शाम पाठ करिए या अपने मोबाइल पर लगा करके सुनिए। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा, और एक रुद्राक्ष की माला शिवलिंग से स्पर्श कराकर गले में पहनिए। सावन का पावन महीना आ रहा है, सावन में रुद्राक्ष पहन लीजिएगा। विष योग को दूर करने के लिए सबसे अचूक उपाय है गहरा मेडिटेशन, गहरा ध्यान, क्योंकि चंद्रमा और शनि इसमें इन्वॉल्व हैं। चंद्रमा ब्रीदिंग का, लंग्स का और आपकी भावनाओं का स्वामी है, और शनि वैराग्य का मालिक है, तो जब आप सुबह शाम अपने गुरु से आचार्य से सीख करके मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, तो बहुत जल्दी विष योग का प्रभाव कम होगा। अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर करियर बनाने की कोशिश करिए, आपको विष योग से फायदा होगा। और जब भी मौका मिले शिव जी का कोई भी मंदिर हो, ज्योतिर्लिंग हो, वहां जाकर दर्शन करिएगा, विष योग का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, वाद विवाद हो सकता है, परिवार की समस्या से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या में सुधार होगा, धन आसानी से मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न रौनक ने हमें लिखा है, सहारनपुर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 जून 1989, जन्म का समय शाम के 7:41, जन्म स्थान है सहारनपुर। ये कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ मिल करके व्यापार करता हूँ, व्यापार ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा पिताजी के साथ तालमेल नहीं बन पाता, तो क्या मुझे पिताजी से अलग हट करके व्यापार करना चाहिए, ऐसा करना मेरे लिए उचित होगा? रौनक, आपकी कुंडली कहती है कि अगर पिता के साथ मिल करके पिता के सपोर्ट या समर्थन से व्यापार करेंगे तो तरक्की ज्यादा करेंगे। तो सलाह यही है मेरी कि आप शांत रहिए, पिता के साथ रिश्ते खराब मत करिए और पिता के साथ मिल करके व्यापार करिए, आप काफी तरक्की कर सकेंगे। आपका तालमेल नहीं बन पा रहा है तो आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह सूर्य देव के सामने खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मात्र इतना उपाय करने से आपका तालमेल पिता के साथ बेहतर होगा, व्यापार में ज्यादा उन्नति कर पाएंगे।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इस वक्त हमारा ईमेल आईडी फ्रेश हो रहा है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो पंडित जी, आज का चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न मानसी ने हमें लिखा है और मानसी हमें ऑस्ट्रेलिया से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 मार्च 1981, जन्म का समय सुबह के 7 बजे, जन्म का स्थान है दिल्ली। मानसी कह रही हैं कि मेरी नौकरी 3 महीने पहले चली गई है और मैं लगातार नौकरी की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नौकरी मुझे कब तक मिलेगी? मानसी, थोड़ा सा इंतजार करिए, 14 सितंबर 2026 के बाद आपको नौकरी मिलेगी। इस साल के आखिरी में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में नौकरी मिलेगी। बेहतर नौकरी होगी, अच्छी तरह से काम कर पाएंगी, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, एक तो जो आपने पुखराज पहना है कृपा करके उसको निकालिए, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो सकती है। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, और अगर संभव हो सके तो हर शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं और अमूमन मुझे भी सोशल मीडिया पर मैसेज आता है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हमारी कुंडली में विष योग है, बहुत तकलीफें आ रही हैं हमारे जीवन में, क्या पहन सकते हैं? आप अक्सर बोलते हैं पन्ना पहने, पुखराज पहने, क्या उससे पहनने से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है?
0: जी देखिए, विष योग बनता है शनि और चंद्रमा से, तो पहली सलाह ये है कि शनि का रत्न नीलम मत पहनिए और चंद्रमा का रत्न मोती मत पहनिए। 90% मामलों में विष योग होने पर शनि और चंद्रमा का रत्न नहीं पहनना चाहिए। बहुत विशेष स्थिति हो तब सोचा जा सकता है, लेकिन 90% केसेस में अगर कुंडली में शनि चंद्र का विष योग है तो शनि का रत्न नीलम और चंद्रमा का रत्न मोती नहीं पहनना चाहिए। विष योग अगर कुंडली में है तो 2 रत्न बहुत अच्छा काम करते हैं। सबसे पहला रत्न है पन्ना, क्योंकि चंद्रमा मतलब मन, शनि मतलब एक्शन कर्म, इन दोनों को जो बैलेंस कर सकता है वो केवल बुध है। इसीलिए अगर कुंडली में विष योग है तो आप सलाह लेकर पन्ना पहन सकते हैं। चंद्रमा जो है वो मन का स्वामी है, अगर कुंडली में पीड़ित होगा तो मेंटली साइकोलॉजिकली आपके जीवन में प्रॉब्लम पैदा करेगा। ऐसी स्थिति में आप सलाह लेकर अगर ओपल धारण कर लें तो इससे मन को बैलेंस करने में थोड़ी सहूलियत हो सकती है। तो अगर विष योग की वजह से आपको हमेशा अकेलापन महसूस होता है, आपको लगता है कि जीवन में कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, आइसोलेशन फील हो रहा है, तब आप ओपल सलाह लेकर पहनिए। जीवन में थोड़ी आनंद की स्थिति आएगी, जीवन थोड़ा वाइब्रेंट होगा, आइसोलेशन आपका कम हो जाएगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 19 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होगा। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर सूर्य देव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और अब पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि छाया दान क्या होता है, इसको कब करना चाहिए। अगर जीवन में शनि से संबंधित कष्ट ज्यादा हो, पीड़ा ज्यादा हो, तो छाया दान किया जाता है। एक बर्तन में, एक पात्र में या दीपक में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखा जाता है और तेल को दान कर दिया जाता है। ये दान शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को करें। शनि की भयंकर से भयंकर समस्याओं से आप छुटकारा पा जाएंगे।
1: तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार शुभ पहर कौन सा है और उसका उपाय क्या है।
0: दिनांक 19 जुलाई 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें। जो भी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना स्वीकार होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 19 जुलाई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की लकी राशि यानी आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सा दान करना बेहतर होगा। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनको शुक्र और शनि ग्रह का दान करना चाहिए। अगर ये दान करें तो इससे जीवन का संघर्ष कम होता जाएगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

0: काम करते हैं अपने ऑफिस में, वहां पर अगर आपके विरोधी ज्यादा हों, आपको गुप्त तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हों, आपका विरोध करते हों, षड्यंत्र करते हों, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, इसके बाद ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः इस मंत्र का जप करिए, और हर रविवार को जब भी समय मिले हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन पूजन करिए, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती।
2: और अब बात करते हैं भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की, जिसे लॉन्च कर दिया गया है। देखिए, विक्रम 1 को स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया है और लॉन्चिंग भी खुद ही की है, सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का ये टेस्ट पहली ही कोशिश में कामयाब रहा। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया। इसके तहत विक्रम 1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में ले गया है।

0: एक बार फिर से अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया है। भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। देश में पहली बार प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित पहला ऑर्बिटल रोबोट विक्रम 1 लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही देश ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट की लॉन्चिंग का समय सुबह 11:30 पर था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से पहले से तय समय से करीब 35 मिनट देर से ही सही दोपहर 12:05 पर रॉकेट की लॉन्चिंग हो गई और वो कामयाबी हासिल हो गई जिसका पूरे देश को इंतजार था।
1: लगभग 16:20 के बाद उसने जो सैटेलाइट थे वो सही कक्षा में, सही ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं और 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट निर्धारित की गई थी और लगभग 7.5 किलोमीटर/सेकंड की स्पीड से, तो सैटेलाइट बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च होके अपनी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो यह एक बहुत ही सुवर्ण अवसर है भारत के स्पेस हिस्ट्री में, स्पेस के इतिहास में।
0: श्रीहरिकोटा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तमाम आला अधिकारी और वैज्ञानिक टकटकी लगाए इस लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे थे। वहीं जब रॉकेट की सफलता पूर्वक लॉन्चिंग हो गई तो सभी लोगों के चेहरे खिल उठे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्काईरूट कंपनी के CEO और COO को फोन करके पूरी टीम को बधाई दी। आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हैदराबाद में स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था जिसने अब अंतरिक्ष में शानदार उड़ान भरी है। विक्रम 1 ने पहली चारों स्टेज का प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया। यह भारत का पहला निजी तौर पर ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जिसने पहली ही कोशिश में लॉन्चिंग से लेकर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट तक सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। इस रॉकेट ने करीब 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को सफलतापूर्वक स्थापित किया। निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत विक्रम 1 रॉकेट को तैयार किया है। इस रॉकेट के साथ 6 खास पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे गए। इनमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की जांच करने वाला स्कोप सैटेलाइट है, तो स्पेस का कचरा हटाने वाला कॉस्मोजर्व स्पेस का मिशन एम्ब्रेस रोबोटिक सिस्टम भी है। इसके अलावा ग्रह स्पेस का एक छोटा सैटेलाइट सोलरास भी इससे अंतरिक्ष में भेजा गया और जर्मनी के 2 टेक्नोलॉजी पेलोड इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। साथ ही लैब में बना हीरा कॉस्मिक ब्लूम्स भी इस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है। भारत के 3 महान वैज्ञानिकों की छोटी प्रतिमाएं भी इससे अंतरिक्ष में भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम भी इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में पहुँचाया गया।
2: श्योर सर। और सर आपका कार्ड जो आप भेजे थे दैट हैज सक्सेसफुली रीच स्पेस एंड यू हैव रिटन वंदे मातरम, सो वंदे मातरम इज इन ऑर्बिट।
0: जो पेलोड इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए इनका मकसद नई तकनीक को परखना, अंतरिक्ष को सुरक्षित बनाना और आने वाले स्पेस मिशनों को बेहतर बनाना है। रॉकेट विक्रम 1 स्काईरूट के ये 3 डेवलपमेंट मिशनों पर पहला मिशन है। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। हैदराबाद में स्काईरूट के युवा इंजीनियरों की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
3: The space sector reform what is announced and encouraging the startup system is excellent. And today we had a very very important launch. I think let us congratulate the Skyroot team for this great achievement.
0: 2020 में भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खोला था। इसके बाद कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में आए। स्काईरूट एरोस्पेस उन्हीं में से एक है। इससे पहले 18 नवंबर 2022 को इसके रॉकेट विक्रम एस ने श्रीहरिकोटा से अपनी पहली सफल ऐतिहासिक उड़ान भरी थी। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। विक्रम एस रॉकेट ने 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर यह बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया। इसके बाद अब रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है बल्कि ये भारत के स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और नई तकनीक का भी शानदार मिसाल बन गया है। श्रीहरिकोटा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात नौसेना के नए जहाज की कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना 22 जुलाई को अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। माही श्रेणी का ये दूसरा पोत 80% से अधिक स्वदेशी तकनीक से लैस है। ये जहाज उथले समुद्री क्षेत्रों यानी कम गहरे समंदर में पनडुब्बी रोधी अभियानों, तटीय सुरक्षा और भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा।

0: भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करती जा रही है। INS महेंद्र गिरी के बाद अब नौसेना में शामिल होने जा रहा है INS मालवन। 22 जुलाई को मालवन नामक अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये माहे श्रेणी का दूसरा पोत है जिसे उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। INS मालवन का निर्माण कोची के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। ये पोत आधुनिक युद्ध पोत निर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जा रहा है। इस युद्ध पोत में 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है जो भारत की घरेलू रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक युद्ध पोत डिजाइन में बढ़ती विशेषज्ञता की मिसाल है। माहे श्रेणी के ये पोत विशेष रूप से उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए विकसित किया गया है। आकार में अपेक्षाकृत छोटे होने के बावजूद मालवन तेज गति, पूर्ति, सटीक संचालन क्षमता और लंबी परिचालन क्षमता से लैस है। नौसेना के मुताबिक इस श्रेणी के पोत तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे। INS मालवन की लंबाई करीब 80 मीटर है, चौड़ाई लगभग 11 मीटर है, इसका वजन करीब 1100 टन है। ये कम गहराई वाले पानी में भी आसानी से चल सकता है। इसकी स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कुल 57 लोग तैनात रहते हैं। इस जहाज में 3 डीजल इंजन लगे हैं। ये वाटर जेट सिस्टम से चलता है जिससे जहाज तेजी से मुड़ सकता है और कम आवाज करता है। इसी वजह से दुश्मन के लिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है। ये स्टेल्थ तकनीक से भी लैस है, इससे यह रडार और सोनार पर कम नजर आता है। INS मालवन में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम, लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार, RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, हल्के टॉर्पिडो लॉन्चर, 30 मिलीमीटर नौसैनिक गन, आधुनिक रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। इन प्रणालियों की मदद से ये जहाज समुद्र के भीतर छिपी पनडुब्बियों का पता लगाकर उन पर प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। इस क्लास के कुल 8 जहाज बन रहे हैं। INS मालवन इनमें दूसरा है। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। 8 जहाज को कोचिन शिपयार्ड बना रहा है तो बाकी के 8 जहाज कोलकाता की GRSE बना रही है। वैसे जहाज का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है। यह जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री ताकत से जुड़ी रही है। यहाँ उनके किले और मजबूत समुद्री रणनीति के निशान मिलते हैं। भारतीय नौसेना ने INS मालवन का प्रतीक चिन्ह भी जारी किया है। इसके क्रेस्ट में मशहूर बाघ नखा को दिखाया गया है जो साहस, फूर्ति और निडरता का प्रतीक है। मालवन के नौसेना में शामिल होने के साथ भारत को स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी के उथले जल क्षेत्र में संचालन करने वाले युद्धपोतों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने जा रही है। यह पोत भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की कर लेते हैं। आस्था, उल्लास, श्रद्धा का अनुपम संगम। ओडिशा के बालासोर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने लाखों श्रद्धालुओं को भक्ति के एक सूत्र में बांध दिया। पुरी की तर्ज पर यहां भी प्रभु बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले। रथ की झलक पाने और उसकी रस्सी को छूने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा शहर जय जगन्नाथ के जयघोष और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया।

0: करतालों की गूंज, शंखनाद की पवित्र ध्वनि, जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजती पुरी और आस्था की ऐसी तस्वीर जिसे शब्दों में समेटना आसान नहीं। बालासोर की सड़कों पर श्रद्धालुओं का टूट विश्वास, दूसरी ओर नगर भ्रमण पर निकले स्वयं महाप्रभु। ऐसा दृश्य जिसे देखने के लिए लोग पूरे साल तक इंतजार करते हैं। यहाँ ना कोई छोटा दिखता है ना बड़ा, सबके मन में बस एक ही इच्छा, प्रभु की एक झलक और उनके रथ की रस्सी को छूने का सौभाग्य। बालासोर में रथ यात्रा का आयोजन पुरी की रथ यात्रा के एक दिन बाद होता है। ओडिशा के बालासोर में भी वही उत्साह देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु प्रभु का इंतजार कर दर्शन किए, एक दर्शन मात्र से लोगों के चेहरे खिल गए। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से निकलकर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर भगवान की मौसी का घर और जन्म स्थान माना जाता है, इसी कारण प्रभु स्वयं अपने भक्तों के बीच पहुँचते हैं।
1: मंदिर छोड़ करके 9 दिन के लिए ये प्रदान में जाते हैं और गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और सारा अपमर जनसाधन में सारा भक्तों को दर्शन देते हैं, कृतार्थ करते हैं। जो मंदिर को नहीं जा सकते उनको भी दर्शन देते हैं, इसलिए ये एक अत्यंत ऐतिहासिक यात्रा है।
0: इस महापर्व की सबसे सुंदर तस्वीर तब दिखाई दी जब छोटे छोटे बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए। किसी ने रस्सी थामी, किसी ने जयकारे लगाए तो किसी ने हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उम्र भले अलग अलग रही हो लेकिन श्रद्धा सबकी एक जैसी थी। जगन्नाथपुरी में भगवान गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के घर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के 7 दिन बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मुख्य मंदिर लौटने के लिए बहुड़ा यात्रा आरंभ करते हैं। इस यात्रा का भी उतना ही धार्मिक महत्व माना जाता है जितना रथ यात्रा का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा की। तो चार धाम यात्रा में इस बार प्रकृति की चुनौती और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था दोनों की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, केदारनाथ पैदल मार्ग पर रास्ता कुछ समय के लिए बाधित हुआ लेकिन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उनकी जो आस्था है वो लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है। मुश्किल हालात के बावजूद ना तो व्यवस्थाएं थमी हैं और ना ही भगवान के दर्शन की श्रद्धालुओं की आस कम हुई है।

0: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार हर दिन एक नया अनुभव दे रही है। गौरीकुंड के पास केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है, तो प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। लगातार बारिश के बीच रास्ता खोलने की कवायद चलाई। फिलहाल केवल पैदल यात्रियों के लिए रास्ता तैयार है। इन परिस्थितियों के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और पूरे जोश के साथ यात्री यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जुलाई के मध्य में, जबकि मानसून सीजन इस समय चल रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के पार हो चुकी है। मौसम की बात करें, मौसम लगातार पहाड़ों में भले ही बदल रहा है, सुबह सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है, रात को हल्की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन पूरे दिन मौसम चटक धूप और मौसम सुहाना मौसम बद्रीनाथ धाम सहित तमाम जनपद में बना हुआ है।
0: सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ तैनात है। जवान श्रद्धालुओं की लगातार मदद कर रहे हैं। SDRF, NDRF और पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटे हैं ताकि यात्रा सुरक्षित चलती रहे। बद्रीनाथ धाम से आस्था की बेहद शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस साल यात्रा ने नया कीर्तिमान बना दिया है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 जुलाई में ही 15 लाख के पार चली गई है। आमतौर पर ये आंकड़ा अक्टूबर के आखिर या नवंबर में पार होता था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड समय से पहले ही हो गया है और नया इतिहास बन गया है। मॉनसून के बावजूद बद्रीनाथ पहुंचने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ। कुछ दिनों तक बारिश की वजह से संख्या जरूर घटी, लेकिन मौसम साफ होते ही फिर रफ्तार बढ़ गई। बीते दिन 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देश के अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग धाम पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को कम समय में आसानी से दर्शन हो रहे हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रहने से सफर भी पहले से आसान बना हुआ है। मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक हर ओर श्रद्धा का माहौल दिखाई दे रहा है। बढ़ती संख्या का सकारात्मक असर स्थानीय व्यापार पर भी साफ नजर आ रहा है।
2: के लिए जाना है, मेरे मन में जबरदस्त उमंग, जबरदस्त साहस, जबरदस्त शक्ति हो गई। कई बार तो मेरे दोस्तों ने ये भी कहा कि ये बारिश का मौसम है, आप इस तरफ मत जाइए, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, क्लाउड क्रॉसिंग कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने बस अपने आप को प्रभु को सौंपा और मैंने कहा प्रभु मैं आपके शरण में हूँ और अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।
0: एक ओर केदारनाथ में प्राकृतिक चुनौती के बीच सुरक्षा और सेवा का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर बद्रीनाथ में उमड़ती आस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। यही तस्वीर बताती है कि कठिन परिस्थितियां भी श्रद्धालुओं के विश्वास को रोक नहीं पा रही। उम्मीद है कि आगे भी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल तरीके से चलती रहेगी। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
3: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची।

0: शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है? शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
2: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर। अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम। लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात। बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा। जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास। मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, योद्धाओं की वो टोली जो विषम परिस्थितियों में भी देश की हिफाजत में डटे रहते हैं। तपते रेगिस्तान से लेकर खून जमा देने वाली बर्फीली वादियों तक इनकी मौजूदगी है, जो दुश्मन को फटकने का मौका तक नहीं देते। भारतीय सेना के इन रणबांकुरों को मॉडर्न, हाईटेक और लेटेस्ट वेपन से लैस किया जा रहा है, ताकि वो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने वाले हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। भारतीय सेना अपने हथियारों को अत्याधुनिक बनाने और इन्हें हल्का बनाने के लिए लगातार इन पर काम कर रही है, और इसी कड़ी में 450 कार्ल गुस्ताफ MK4 मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर्स को खरीदने का प्रपोजल दिया गया है। यह खरीद मेक इन इंडिया के तहत ही होगी और इसके बाद भारतीय सेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। कार्ल गुस्ताफ सिर्फ एक एंटी टैंक हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध में पैदल सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला मल्टी रोल वेपन सिस्टम है, जो बख्तरबंद वाहनों से लेकर मजबूत बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। भारतीय सेना इसे करीब 5 दशकों से इस्तेमाल कर रही है और अब इसका सबसे आधुनिक संस्करण MK4 को सेना की नई युद्ध जरूरतों के हिसाब से शामिल किया गया है। सेना की RFP में साफ हो गया है कि नया लॉन्चर पुराने MK3 जितना सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए। बैरल की उम्र कम से कम 1500 राउंड या 15 साल होनी चाहिए। ये -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और अलग अलग जलवायु में बिना किसी समस्या के काम भी कर सके। आधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम हो, रेड डॉट साइट और पिकैटनी रेल्स लगाने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि सैनिक तेजी से निशाना लगा सके और पहली गोली में ही दुश्मन को मार सके।
1: इंडियन आर्मी बहुत जल्दी ही कार्ल गुस्ताफ 4 शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक वेपन को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसका जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है, उसके तहत कार्ल गुस्ताफ 4 का जो लॉन्चर होगा उसका वजन 7 किलो से कम होना चाहिए। यह गौरतलब बात है कि इसके पहले का जो Mark II वेरियंट था और Mark III वेरियंट था, उनका वजन 14 किलो और 10 किलो होता था। तो इन्फेंट्री ट्रूप्स को एक हैवी एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए अब जो नया वर्जन टाइप 4 बनेगा उसका वजन 7 किलो या कम होगा।
0: सेना के लिए 84 mm के हल्के रॉकेट लॉन्चर्स कार्ल गुस्ताफ MK4 खरीद सिर्फ एक वेपन परचेज तक सीमित नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में लॉन्चर, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, तकनीकी दस्तावेज और रखरखाव की पूरी व्यवस्था शामिल है। सेना के रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में बहुत सारी खास बातें जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि साब कंपनी इसे हरियाणा के झज्जर में बनाएगी, यानी कि ये पहली बार होगा कि स्वीडन के बाहर इसका प्लांट किसी और मुल्क में लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ जब तमाम मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगी तो हमें स्पेयर पार्ट्स या फिर दूसरी चीजों के लिए स्वीडन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी और मजबूत होता है।
2: भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियां देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। वो सीमा पर हर तरह के इलाके में तैनात रहती हैं। पुराने हथियार भारी और कम प्रभावी हो चुके हैं। ऐसे में MK4 हल्का होने की वजह से सैनिकों की गतिशीलता बढ़ेगी, खासतौर पर सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में, जहां पर हर अतिरिक्त किलो वजन सैनिकों के लिए चुनौती होता है। कार्ल गुस्ताफ MK4 का वजन लगभग 7 किलोग्राम है, जो पुराने संस्करणों से हल्का है। इसकी लंबाई 1 मीटर से भी कम है, जिससे दुर्गम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पैदल सैनिक इसे आसानी से ले जा सकते हैं और मुश्किल इलाकों में लंबे समय तक आसानी से ऑपरेशन भी किया जा सकता है।
1: इसमें जो वॉरहेड लगाए जाएंगे वो 3 तरह के होंगे। नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड दुश्मन के बंकर को ध्वस्त करने के लिए, एंटी टैंक वॉरहेड दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए, और एक एरिया वेपन जो कि हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉर हेड होगा, दुश्मन के जो इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं जो ओपन एरिया में डिप्लॉयड हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि यह जो नया वेपन होगा ये -20 डिग्री हिमालयन क्षेत्र में, जैसे टेम्परेचर सर्दियों में हो जाता है, और +50 डिग्री राजस्थान के डेजर्ट में जैसे टेम्परेचर गर्मियों में हो जाता है, के रेंज में काम कर सके। इसका टेक्निकल तात्पर्य ये है कि -20 डिग्री में जो ट्यूब है वो श्रिंक नहीं होनी चाहिए, ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, और +50 डिग्री में जो इसका लॉन्च ट्यूब है वो सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, रिजिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए।
2: अगर दुश्मन पहाड़ी बंकर में छिपा है, किसी इमारत के अंदर हो या फिर हल्के बख्तरबंद वाहन में हो, या फिर सीमा पर मजबूत चौकी बना रखी हो, काल गुस्ताफ MK4 कम समय में ऐसे लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। इससे पैदल सैनिकों को टैंक या तोपखाने के समर्थन का इंतजार हमेशा नहीं करना पड़ता।
1: युद्ध के दौरान जब हमारी टैंक दस्ते आगे बढ़ते हैं तो वो दुश्मन के जो एंटी टैंक कमांडोज हैं और दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं उसकी जद्दोजहद में आ सकते हैं। ऐसे में टैंक फॉर्मेशन जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमेशा उनको इन्फेंट्री ट्रूप्स का सपोर्ट दिया जाता है, खास तौर से एक्सिस ऑफ एडवांस के बाएं फ्लैंक पर और एक्सिस ऑफ एडवांस के दाहिने फ्लैंक पर। इन इन्फेंट्री ट्रूप्स को, जो हमारे इन्फेंट्री है जो कि टैंक को कवर दे रहे हैं, टैंक की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनका काम होता है कि दुश्मन ने अगर अपने एंटी टैंक दस्तों को दाएं या बाएं में जंगल के पीछे, खेत के पीछे, पहाड़ के पीछे छुपा के रखा हुआ है उसका क्लियरेंस करते जाएं, ताकि हमारी टैंक फॉर्मेशन बिना किसी रेजिस्टेंस के या बिना किसी नुकसान के मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, जिसे हम फॉर्म अप पॉइंट कहते हैं, FUP। क्योंकि टैंक फॉर्मेशन FUP पे पहुंचने के बाद ही जो असली टारगेट है उसके ऊपर अपना हमला शुरू करती है। असली टारगेट क्या है? डिचकम बंद हो सकता है, दुश्मन का टैंक कंसंट्रेटेड एरिया हो सकता है, दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हो सकता है।
2: पहले अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग हथियारों की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन खास गुस्सा MK4 एक ही लॉन्चर से अलग अलग तरह की गोला बारूद दाग सकता है। एंटी टैंक गोले के तौर पर काल गुस्ताफ MK4 में HEAT-751 का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोला टैंडम यानी कि दोहरे वॉरहेड से लैस है। इसका पहला विस्फोट टैंक के बाहरी एक्सक्लूसिव रिएक्टिव आर्मर सुरक्षा को नष्ट करता है और दूसरा मुख्य धमाका टैंक के 500 mm मोटे स्टील कवच को चीरते हुए अंदर प्रहार करता है। काल गुस्ताफ MK4 से एंटी स्ट्रक्चर और बंकर बस्टर गोले दागे जा सकते हैं। इसके लिए HEDP-502 और MT-756 गोले का इस्तेमाल होता है। HEDP-502 एक ड्यूअल पर्पस गोला है। इसमें इम्पैक्ट यानी टकराते ही फटना और डिले मोड यानी कि टारगेट से टकराने की थोड़ी देर बाद फटना दोनों होते हैं। डिले मोड में ये पहले कंक्रीट या फिर लकड़ी की दीवार को छेद कर अंदर घुसता है और फिर बंकर के भीतर विस्फोट करता है ताकि अंदर छिपे दुश्मनों का सफाया हो सके। बंकरों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। MT-756 से एक मल्टी टारगेट गोला भी दागा जा सकता है। ये कंक्रीट, ईंट और मजबूत दीवारों को तोड़ते हुए विशेष रूप से टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल करता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर है। काल गुस्ताफ MK4 से एंटी पर्सनल गोले जैसे कि HE-441D और 441DRS भी दागे जा सकते हैं। गोले के भीतर करीब 800 छोटे स्टील के छर्रे होते हैं। गोले खुली जगह या फिर झाड़ियों में छिपे दुश्मन के पैदल सैनिकों और गैर बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकते हैं। युद्धभूमि में पैदल सैनिकों के लिए मूवमेंट बेहद जरूरी होता है और इसमें खतरा बहुत बड़ा होता है, लिहाजा दुश्मन की नजरों से बचने के लिए काल गुस्ताफ MK4 के पास सपोर्ट और गाइडेड गोले भी हैं जो दुश्मन की आंखों के सामने धुएं की दीवार खड़ी कर सकते हैं। कार्ल गुस्ताफ एम के फोर धुआं फैलाने वाले गोला स्मोक 469C दाग सकता है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर है और ये युद्ध क्षेत्र में तुरंत भारी धुआं पैदा करता है ताकि सैनिक दुश्मन की नजरों से बचकर अपनी पोजीशन बदल सके। यानी एक ही हथियार से टैंक और बख्तरबंद वाहन पर हमला हो सकता है। बंकर और कंक्रीट को तबाह किया जा सकता है।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क 4 के लॉन्चर से 1 मिनट में जरूरत पड़ने पर 6-6 मिसाइलों को दाग सकते हैं। इसके अलावा आर्मी ने अपने आरएफपी में ये भी कहा है कि इसकी कैलेंडर लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिए। यानी बारिश, आंधी, तूफान, रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद वह 15 साल तक इफेक्टिव होना चाहिए। 1,500 राउंड्स फायर करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। क्या होता है कि हर वेपन सिस्टम्स में टैंक तो तरंगबंद गाड़ियों का जो मेन मशीन गन है उनमें कुछ 100 या कुछ 1,000 राउंड फायर करने के बाद जो मेन बैरल है या कार्ल गुस्ताव में मेन ट्यूब है उसको चेंज करना पड़ता है। तो आर्मी ने अपने स्पेसिफिकेशन में लिखा कि 1,500 राउंड तक इस कार्ल गुस्ताव मार्क 4 का जो ट्यूब है वो सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और उसके दौरान ही उसका जो ट्यूब है वो आर्मी के जवान के शोल्डर पे ही फट गया।
2: कार्ल गुस्ताव MK4 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है जो कि 1 मिनट में करीब 6 राउंड फायर कर सकता है। इसके प्रभावी मारक क्षमता की बात की जाए तो मूविंग टारगेट यानी कि चलते हुए वाहनों के खिलाफ करीब 350 से 400 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। वहीं स्थिर बख्तरबंद वाहनों या फिर टैंकों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। इमारतों और बंकरों के खिलाफ कार्ल गुस्ताव MK4 की मारक क्षमता 700 से 1,000 मीटर है। कार्ल गुस्ताव MK4 को विशेष रूप से शहरी युद्ध और पैदल सैनिकों की मोबिलिटी को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया है। भारतीय सेना की पैराफोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस के लिए कई बार दुश्मन के नजदीक जाकर भी हमला करना पड़ता है। स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए वो कई बार दुश्मन की सरहद में भी घुसते हैं, तो ऐसे में गुस्ताव MK4 उनके लिए सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। दरअसल परिस्थितियों के लिहाज से हथियार कितना अत्याधुनिक है और उसका हर एक ग्राम मैटर करता है। तो स्थिति चाहे ऊंचाई वाले इलाकों की हो या फिर दूर दराज के इलाकों की, गुस्ताव MK4 इन फोर्सेस के लिए सबसे बेस्ट हथियार साबित हो सकता है। कार्ल गुस्ताव MK4 की लंबाई 1 मीटर से कम है, जिससे कमांडो इसे अपने पैराशूट हार्नेस या बैकअप के साथ आसानी से बांध सकते हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते समय या फिर पैराशूट से कूदते समय ये सैनिकों के मूवमेंट में बाधा नहीं बनेगा। पैरा SF अक्सर रात के अंधेरे में हमला करते हैं। MK4 का स्मार्ट फायर कंट्रोल डिवाइस FCD-558 थर्मल और नाइट विजन डिवाइस के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इससे कमांडोज बिना कोई रोशनी किए घने अंधेरे या फिर कोहरे में भी दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर तबाह कर सकते हैं। भारतीय सेना की इन्फेंट्री के पास दरअसल एक घातक प्लाटून भी होती है। इनमें शारीरिक रूप से सक्षम और स्मार्ट जवानों को भर्ती किया जाता है। वैसे इनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। इनका सबसे बड़ा मकसद सीधे तौर पर यही होता है कि जब भी भारतीय सेना कहीं हमला के लिए जा रही है तो सबसे पहले यही प्लाटून आगे उस सेना का रास्ता क्लियर करती है।

0: जिससे अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन का किला चुटकियों में ध्वस्त हो जाएगा। कश्मीर या उत्तर पूर्व में जब आतंकवादी किसी मजबूत घर या कंक्रीट की इमारत में छिप जाते हैं तो घातक प्लाटून को बुलाया जाता है। पहले भारी हथियारों को संकरी गलियों में ले जाना मुश्किल होता था, वहीं MK4 के हल्के वजन के कारण सैनिक इसे आसानी से संकीर्ण रास्तों पर ले जा सकेंगे और कमरे के अंदर से फायर करने वाले विशेष गोलों की मदद से बिना अपनी जान जोखिम में डाले इमारत को उड़ा देंगे।
1: किसी भी इन्फेंट्री असॉल्ट के दौरान इन्फेंट्री के जो ट्रुप्स हैं या कमांडोज हैं उनको या तो ऊंची ऊंची चोटियों पर जल्दी से जल्दी चढ़कर दुश्मन के ऊपर वार करना होता है या खेतों में मार्शी एरिया में दलदल एरिया में या रेगिस्तान जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है वहाँ पर सॉफ्ट सैंड पर द्रुत गति से आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में अगर एंटी टैंक लॉन्चर ट्यूब का वजन 14 किलो है या 10 किलो है तो फिर जवानों की मोबिलिटी में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी को ओवरकम करने के लिए अब ये तय किया गया है कि कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का जो लॉन्च ट्यूब होगा वो कॉम्प्लेक्स ग्लास फाइबर ट्यूब का बना होगा और टोटल वेपन सिस्टम का वजन 7 किलो से कम होगा ताकि इन्फेंट्री का जो जवान है वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर समझिए उसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के बंकर पर हमला करना हो तो द्रुत गति से वो अपने पैरों से ऊपर चढ़कर द्रुत गति से इफेक्टिव फायर दुश्मन पर ला सके।
0: हथियारों की दुनिया में कार्ल गुस्ताव MK4 को सेना के बजट के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। एंटीटैंक मिसाइल से ये बेहद सस्ता है, जहां स्पाइक या फिर जेवलिन 80 GMs की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, इसके उलट कार्ल गुस्ताव का एक रॉकेट शेल महज कुछ लाख रुपए में आ जाता है। इसके टाइटेनियम लाइन बैरल की लाइफ 1500 राउंड है। इसका मतलब ये है कि ये सालों साल बिना खराब हुए हजारों गोले दाग सकता है, जिससे रखरखाव का खर्च बहुत कम हो जाता है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भरता आएगी। स्वीडन की कंपनी साद की ओर से झज्जर हरियाणा में लगाई गई 100% FDI फैक्ट्री के कारण भारत को अब लॉन्चर या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हरियाणा में हिसार के पास सेटअप किया जा रहा है। इसी के तहत यह भारत सरकार के लिए मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। यह बहुत हाईली कॉस्ट इफेक्टिव वेपन सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि यह फाइबर ग्लास का बना होता है और एक ही ट्यूब को 15 साल तक और युद्ध की परिस्थिति में 1500 राउंड फायर करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही रेवेन्यू फ्रेंडली यानी कम खर्चे वाला वेपन सिस्टम लॉन्ग रन में साबित होगा।
0: मौजूदा समय में कार्ल गुस्ताव सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। अलग अलग देश इसे अलग अलग नामों और रणनीतियों के साथ अपना रहे हैं। ब्रिटिश सेना इसे चार्ली जी कहती है, कैनेडियाई सैनिक इसे कार्ल जी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की सेना चार्ली गट्स एक कहती है, वहीं अमेरिका में इसे मॉज यानी मल्टी रोल एंटी आर्मर एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम कहा जाता है। कार्ल गुस्ताव सिस्टम के नाम भले ही अलग अलग हों लेकिन काम एक है और वो है दुश्मन को बैकफुट पर धकेलना। भारतीय सेना ने कार्ल गुस्ताव को 1974 में अपनाना शुरू किया और 1976 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के साथ ये समझौता हुआ, जिसके बाद से अभी तक कार्ल गुस्ताव लगातार भारतीय सेना का एक बहुत भरोसेमंद साथी बना हुआ है। करगिल युद्ध के समय भारतीय सेना ने कार्ल गुस्ताव सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पहाड़ों की चट्टानों के बीच कंक्रीट और पत्थरों के मजबूत बंकर बना दिए थे, जहां पारंपरिक राइफलों और मशीन गनों की गोलियां बेअसर थी। भारतीय सैनिकों ने कार्ल गुस्ताव को अपने कंधों पर उठाकर 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके हाई एक्सप्लोसिव ड्यूअल पर्पस गोलों

0: ने बंकरों की दीवारों को सीधे छेद कर उड़ा दिया, जिसने भारतीय इन्फेंट्री को चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराने में सबसे बड़ी मदद की।
1: पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अगर देखा जाए तो खास तौर पर कश्मीर घाटी में भारतीय सेना का सबसे मजबूत साथी है कालगुस्ताफ। दरअसल ये इस तरह का इलाका है जहां पर आतंकवादी कहीं भी आकर हमला करके उसके बाद झाड़ियों में या कंक्रीट में के बने कुछ मकानों में या फिर गुफाओं में अंदर जाके छिप जाते हैं। ऐसे में इन जगहों पर आतंकियों को काम तमाम करने के लिए सैनिकों को ठीक उनके पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये काम कालगुस्ताफ आसानी से कर देता है।
0: हथियारों की रीयूजेबिलिटी और वर्सटेबिलिटी के कारण भारतीय सेना ने इसे अपनी अग्रिम सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बनाया। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीजफायर वॉयलेशन का जवाब देने और उनके अग्रिम बंकरों को तबाह करने के लिए कालगुस्ताफ सिस्टम का अक्सर इस्तेमाल होता है। वहीं LAC पर चीनी चौकियों के ठीक सामने भारतीय सेना की लगभग सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर कालगुस्ताफ के पुराने संस्करण MK2 और MK3 हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि किसी भी अचानक बख्तरबंद घुसपैठ को रोका जा सके।
1: रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
3: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
5: You're listening to MSNBC.
3: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
6: शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है? शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: तो चलिए अब आपको करवाते हैं एक ऐसे म्यूजियम की सैर जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में है। ये अंडर वाटर म्यूजियम क्रोएशिया में है। आपको दिखाते हैं आखिरकार इस म्यूजियम में क्या क्या है।
8: स्कूबा डाइविंग करने वालों को आमतौर पर शानदार मछलियों और समुद्री जीवों का दीदार करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को अनोखी आकृतियों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। ये तस्वीरें क्रोएशिया के अंडरवाटर म्यूजियम की हैं। इसमें एक पुराने विमान का मलबा है, साथ ही साथ ईसा मसीह और उनके जीवन यात्रा से जुड़े लोगों की कई प्रतिमाएं भी हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रतिमा ईसा मसीह की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। इसे करीब 9 मीटर की गहराई में लगाया गया है। खास बात ये भी है कि इस म्यूजियम की सैर उन लोगों के लिए भी आसान है जिन्हें तैरना नहीं आता या जो अभी तैरना सीख रहे हैं।
9: Nalazi se na dubini od 3,5-4 metra. Svi kipovi su visine otprilike prirodne veličine ljudske oko 2 metra, tako da idealno za sve početnike, ne plivače, nije uopće bitno da ljudi moraju ronit sa opremom i ronilačkom bocama, nego je više na snorkeling turi bazirano, tako da je napravljeno za sve generacije. Evo.
8: तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए अंडरवाटर म्यूजियम की सैर पर आना गर्मी से भी निजात पाने का बहाना है।
10: So this is a nice place, but the summer is so strong today. So I just went to the water and swimming here. And to be honest, the weather is beautiful compared to my nation. I came from Taiwan. So in Taiwan, that's humid and warm.
11: We expect to have a lot of fun since we love going to the beach, diving. And yeah, since we saw this thing you have in Croatia, which is very, very new, very exciting. So yeah, we look forward into seeing all we can see underwater in this museum.
8: दुनिया भर में ये अकेला ऐसा म्यूजियम है जहां ईसा मसीह की जीवन यात्रा को समुद्र की गहराइयों में प्रदर्शित किया गया है। इस म्यूजियम का माहौल काफी आकर्षक है। समुद्री टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए ये यादगार सैर सपाटे की शानदार जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
12: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती, मैदान का चाणक्य फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
13: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
14: Schwarber to right field, and it will leave.
13: From the first pitch of the season to the stretch run,
14: that's the ball game.
13: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Good news today is अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर। अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम। लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात। बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा। जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास। मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने अपनी कैप्टेंसी में लगातार दूसरी बार अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 15 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के आखिरी क्षणों में मेसी ने अपने दो शानदार पास से मैच का रुख जिस तरह से बदल दिया, उसे देखकर इस खेल के विशेषज्ञ अब ये कहने लगे हैं कि मेसी ऑल टाइम ग्रेट है।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों में मेसी ने विरोधी टीमों पर हावी होकर आखिरी क्षणों में जिस तरह से मैच का रुख मोड़ दिया, उसे देखकर सॉकर एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि मेसी निसंदेह ऑल टाइम ग्रेट हैं। मेसी के डाई हार्ड परफॉर्मेंस की वजह से अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने में सफल हुआ है। अटलांटा के एंथनी गार्डन में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में 55वें मिनट पर गोल करके इंग्लैंड फाइनल की तरफ कदम बढ़ा चुका था, लेकिन लियोनेल मेसी ने आखिरी वक्त में मैच का रुख पलट दिया। मैच के 86वें मिनट पर मेसी ने शानदार शॉर्ट कॉर्नर खेलकर गेंद एंजो फर्नांडीज के पास पहुंचा दी और फर्नांडीज ने मेसी के शानदार पास पर बगैर देर किए 25 गज से शानदार गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में मेसी के बेहतरीन क्रॉस पर सब्स्टिट्यूट लॉटारो मार्टिनेज ने हेडर से गोल कर फाइनल में पहुंचने के इंग्लैंड के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस रोमांचक मुकाबले के बाद मेसी की खुले दिल से तारीफ करते हुए फुटबॉल एक्सपर्ट मीका रिचर्ड्स ने कहा कि अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, उनके पास ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, फुटबॉल के इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच हुए फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 पर यानी बराबरी पर था, लेकिन मैदान पर मेसी की मौजूदगी ने अर्जेंटीना के बाकी खिलाड़ियों का हौसला हमेशा बुलंद रखा, लिहाजा अतिरिक्त समय में 2 गोल दागकर अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। न्यू जर्सी के मिड लाइफ स्टेडियम में जब स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 की निर्णायक भिड़ंत होगी तो इसमें मेसी के सामने होगा वो खिलाड़ी जिसे कभी अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर ने बेबी बाथटब में बड़े ही प्यार से नहलाया था। ये वाकया है साल 2007 का। उस समय बार्सिलोना के युवा स्टार लियोनेल मेसी सिर्फ 20 साल के थे। उसी दौरान स्थानीय अखबार डीआरओ स्पोर्ट और यूनिसेफ ने एक चैरिटी फोटोशूट आयोजित किया। इस फोटोशूट में स्पेन के मौजूदा स्टार फुटबॉलर लैमिन यमाल का परिवार विजेता बना और उन्हें कैंप नोउ में फोटोशूट का मौका मिला। फोटोशूट के दौरान मेसी ने महज 6 महीने के यमाल को प्लास्टिक के छोटे से बेबी बाथटब में नहलाया और गोद में उठाकर तस्वीरें भी खिंचवाई। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो वो मानो भगवान बन गए हैं, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारों की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन वाकिफ नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थीं। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया, जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को न झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
0: तो चलिए बंद में है दम के आज के सफरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक दमदार शख्सियत का सफरनामा लेकर आप सभी के सामने। इजाजत दीजिए, देखते रहिए GNT।
2: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: तो चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। तो चारधाम यात्रा में इस बार प्रकृति की चुनौती और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था दोनों की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, केदारनाथ पैदल मार्ग पर रास्ता कुछ समय के लिए बाधित हुआ, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उनकी जो आस्था है वो लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है। मुश्किल हालात के बावजूद ना तो व्यवस्थाएं थमी हैं और ना ही भगवान के दर्शन की श्रद्धालुओं की आस कम हुई है।

0: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार हर दिन एक नया अनुभव दे रही है। गौरीकुंड के पास केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है, तो प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। लगातार बारिश के बीच रास्ता खोलने की कवायद चलाई। फिलहाल केवल पैदल यात्रियों के लिए रास्ता तैयार है। इन परिस्थितियों के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और पूरे जोश के साथ यात्री यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जुलाई के मध्य में, जबकि मानसून सीजन इस समय चल रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के पार हो चुकी है। मौसम की बात करें, मौसम लगातार पहाड़ों में भले ही बदल रहा है, सुबह सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है, रात को हल्की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन पूरे दिन मौसम चटक धूप और मौसम सुहाना मौसम बद्रीनाथ धाम सहित तमाम जनपद में बना हुआ है।
0: सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ तैनात है। जवान श्रद्धालुओं की लगातार मदद कर रहे हैं। SDRF, NDRF और पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटे हैं ताकि यात्रा सुरक्षित चलती रहे। बद्रीनाथ धाम से आस्था की बेहद शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस साल यात्रा ने नया कीर्तिमान बना दिया है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 जुलाई में ही 15 लाख के पार चली गई है। आमतौर पर ये आंकड़ा अक्टूबर के आखिर या नवंबर पे पार होता था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड समय से पहले ही हो गया है और नया इतिहास बन गया है। मॉनसून के बावजूद बद्रीनाथ पहुंचने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ। कुछ दिनों तक बारिश की वजह से संख्या जरूर घटी, लेकिन मौसम साफ होते ही फिर रफ्तार बढ़ गई। बीते दिन 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देश के अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग धाम पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि श्रद्धालुओं को कम समय में आसानी से दर्शन हो रहे हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रहने से सफर भी पहले से आसान बना हुआ है। मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक हर ओर श्रद्धा का माहौल दिखाई दे रहा है। बढ़ती संख्या का सकारात्मक असर स्थानीय व्यापार पर भी साफ नजर आ रहा है।
2: के लिए जाना है, मेरे मन में जबरदस्त उमंग, जबरदस्त साहस, जबरदस्त शक्ति हो गई। कई बार तो मेरे दोस्तों ने ये भी कहा कि ये बारिश का मौसम है, आप इस तरफ मत जाइए, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, क्लाउड क्रॉसिंग कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने बस अपने आप को प्रभु को सौंपा और मैंने कहा प्रभु मैं आपके शरण में हूँ और अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।
0: एक ओर केदारनाथ में प्राकृतिक चुनौती के बीच सुरक्षा और सेवा का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर बद्रीनाथ में उमड़ती आस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। यही तस्वीर बताती है कि कठिन परिस्थितियां भी श्रद्धालुओं के विश्वास को रोक नहीं पा रही। उम्मीद है कि आगे भी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल तरीके से चलती रहेगी। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
5: सच्ची खबर।
6: शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है। शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: लेस इंटरप्शन, मोर लिसनिंग विथ ट्यून इन प्रीमियम। गेट लेस एड्स ऑन ऑल म्यूजिक, न्यूज एंड स्पोर्ट्स, सो यू कैन गेट बैक टू व्हाट रियली मैटर्स। लिसन टू ऑल योर फेवरेट स्टेशंस ऑन ओवर 200 डिवाइसेस, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
8: इसीलिए
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना, खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर, अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश, 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात, बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास, मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक, 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, योद्धाओं की वो टोली जो विषम परिस्थितियों में भी देश की हिफाजत में डटे रहते हैं। तपते रेगिस्तान से लेकर खून जमा देने वाली बर्फीली वादियों तक इनकी मौजूदगी है, जो दुश्मन को फटकने का मौका तक नहीं देते। भारतीय सेना के इन रणबांकुरों को मॉडर्न, हाईटेक और लेटेस्ट वेपन से लैस किया जा रहा है, ताकि वो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने वाले हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। भारतीय सेना अपने हथियारों को अत्याधुनिक बनाने और इन्हें हल्का बनाने के लिए लगातार इन पर काम कर रही है, और इसी कड़ी में 450 कार्ल गुस्ताफ MK4 मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर्स को खरीदने का प्रपोजल दिया गया है। यह खरीद मेक इन इंडिया के तहत ही होगी और इसके बाद भारतीय सेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। कार्ल गुस्ताफ सिर्फ एक एंटी टैंक हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध में पैदल सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला मल्टी रोल वेपन सिस्टम है, जो बख्तरबंद वाहनों से लेकर मजबूत बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। भारतीय सेना इसे करीब 5 दशकों से इस्तेमाल कर रही है और अब इसका सबसे आधुनिक संस्करण MK4 को सेना की नई युद्ध जरूरतों के हिसाब से शामिल किया गया है। सेना की RFP में साफ हो गया है कि नया लॉन्चर पुराने MK3 जितना सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए। बैरल की उम्र कम से कम 1500 राउंड या 15 साल होनी चाहिए। ये -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और अलग अलग जलवायु में बिना किसी समस्या के काम भी कर सके। आधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम हो, रेड डॉट साइट और पिकैटनी रेल्स लगाने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि सैनिक तेजी से निशाना लगा सके और पहली गोली में ही दुश्मन को मार सके।
1: इंडियन आर्मी बहुत जल्दी ही कार्ल गुस्ताफ 4 शोल्डर्ड फायर्ड एंटी टैंक वेपन को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसका जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है, उसके तहत कार्ल गुस्ताफ 4 का जो लॉन्चर होगा उसका वजन 7 किलो से कम होना चाहिए। यह गौरतलब बात है कि इसके पहले का जो Mark II वेरियंट था और Mark III वेरियंट था, उनका वजन 14 किलो और 10 किलो होता था। तो इन्फेंट्री ट्रूप्स को एक हैवी एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए अब जो नया वर्जन Type 4 बनेगा उसका वजन 7 किलो या कम होगा।
0: सेना के लिए 84 mm के हल्के रॉकेट लॉन्चर्स कार्ल गुस्ताफ MK4 खरीद सिर्फ एक वेपन परचेज तक सीमित नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में लॉन्चर, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, तकनीकी दस्तावेज और रखरखाव की पूरी व्यवस्था शामिल है। सेना के रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में बहुत सारी खास बातें हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि साब कंपनी इसे हरियाणा के झज्जर में बनाएगी, यानी कि ये पहली बार होगा कि स्वीडन के बाहर इसका प्लांट किसी और मुल्क में लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ जब तमाम मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगी तो हमें स्पेयर पार्ट्स या फिर दूसरी चीजों के लिए स्वीडन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी और मजबूत होता है।
2: भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियां देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। वो सीमा पर हर तरह के इलाके में तैनात रहती हैं। पुराने हथियार भारी और कम प्रभावी हो चुके हैं। ऐसे में MK4 हल्का होने की वजह से सैनिकों की गतिशीलता बढ़ेगी, खासतौर पर सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में, जहां पर हर अतिरिक्त किलो वजन सैनिकों के लिए चुनौती होता है। कार्ल गुस्ताफ MK4 का वजन लगभग 7 किलोग्राम है, जो पुराने संस्करणों से हल्का है। इसकी लंबाई 1 मीटर से भी कम है, जिससे दुर्गम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पैदल सैनिक इसे आसानी से ले जा सकते हैं और मुश्किल इलाकों में लंबे समय तक आसानी से ऑपरेशन भी किया जा सकता है।
1: इसमें जो वॉरहेड लगाए जाएंगे वो 3 तरह के होंगे। नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड दुश्मन के बंकर को ध्वस्त करने के लिए, एंटी टैंक वॉरहेड दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए, और एक एरिया वेपन जो कि हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड होगा, दुश्मन के जो इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं जो ओपन एरिया में डिप्लॉयड हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि यह जो नया वेपन होगा ये -20 डिग्री हिमालयन क्षेत्र में, जैसे टेम्परेचर सर्दियों में हो जाता है, और +50 डिग्री राजस्थान के डेजर्ट में, जैसे टेम्परेचर गर्मियों में हो जाता है, के रेंज में काम कर सके। इसका टेक्निकल तात्पर्य ये है कि -20 डिग्री में जो ट्यूब है वो श्रिंक नहीं होनी चाहिए, ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, और +50 डिग्री में जो इसका लॉन्च ट्यूब है वो सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, रिजिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए।
2: अगर दुश्मन पहाड़ी बंकर में छिपा है, किसी इमारत के अंदर हो या फिर हल्के बख्तरबंद वाहन में हो, या फिर सीमा पर मजबूत चौकी बना रखी हो, काल गुस्ताफ MK4 कम समय में ऐसे लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। इससे पैदल सैनिकों को टैंक या तोपखाने के समर्थन का इंतजार हमेशा नहीं करना पड़ता।
1: युद्ध के दौरान जब हमारी टैंक दस्ते आगे बढ़ते हैं तो वो दुश्मन के जो एंटी टैंक कमांडोज हैं और दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं उसकी जद्दोजहद में आ सकते हैं। ऐसे में टैंक फॉर्मेशन जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमेशा उनको इन्फेंट्री ट्रूप्स का सपोर्ट दिया जाता है, खास तौर से एक्सिस ऑफ एडवांस के बाएं फ्लैंक पर और एक्सिस ऑफ एडवांस के दाहिने फ्लैंक पर। इन इन्फेंट्री ट्रूप्स को, जो हमारे इन्फेंट्री है जो कि टैंक को कवर दे रहे हैं, टैंक की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनका काम होता है कि दुश्मन ने अगर अपने एंटी टैंक दस्तों को दाएं या बाएं में जंगल के पीछे, खेत के पीछे, पहाड़ के पीछे छुपा के रखा हुआ है, उसका क्लियरेंस करते जाएं ताकि हमारी टैंक फॉर्मेशन बिना किसी रेजिस्टेंस के या बिना किसी नुकसान के मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, जिसे हम फॉर्म अप पॉइंट कहते हैं, FUP। क्योंकि टैंक फॉर्मेशन FUP पे पहुंचने के बाद ही जो असली टारगेट है उसके ऊपर अपना हमला शुरू करती है। असली टारगेट क्या है? डिचकम बंद हो सकता है, दुश्मन का टैंक कंसंट्रेटेड एरिया होना हो सकता है, दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हो सकता है।
2: पहले अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग हथियारों की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन काल गुस्ताख MK4 एक ही लॉन्चर से अलग अलग तरह की गोला बारूद दाग सकता है। एंटी टैंक गोले के तौर पर काल गुस्ताफ MK4 में HEAT-751 का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोला टेंडम यानी कि दोहरे वॉरहेड से लैस है। इसका पहला विस्फोट टैंक के बाहरी एक्सक्लोसिव रिएक्टिव आर्मर सुरक्षा को नष्ट करता है और दूसरा मुख्य धमाका टैंक के 500 mm मोटे स्टील कवच को चीरते हुए अंदर प्रहार करता है। काल गुस्ताफ MK4 से एंटी स्ट्रक्चर और बंकर बस्टर गोले दागे जा सकते हैं। इसके लिए HEDP 502 और MT-756 गोले का इस्तेमाल होता है। HEDP 502 एक ड्यूअल पर्पस गोला है। इसमें इम्पैक्ट यानी टकराते ही फटना और डिले मोड यानी कि टारगेट से टकराने की थोड़ी देर बाद फटना दोनों होते हैं। डिले मोड में ये पहले कंक्रीट या फिर लकड़ी की दीवार को छेद कर अंदर घुसता है और फिर बंकर के भीतर विस्फोट करता है ताकि अंदर छिपे दुश्मनों का सफाया हो सके। बंकरों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। MT-756 से एक मल्टी टारगेट गोला भी दागा जा सकता है। ये कंक्रीट ईंट और मजबूत दीवारों को तोड़ते हुए विशेष रूप से टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल करता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर है। काल गुस्ताफ MK4 से एंटी पर्सनल गोले जैसे कि HE-441D और 441DRS भी दागे जा सकते हैं। गोले के भीतर करीब 800 छोटे स्टील के छर्रे होते हैं। गोले खुली जगह या फिर झाड़ियों में छिपे दुश्मन के पैदल सैनिकों और गैर बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकते हैं। युद्धभूमि में पैदल सैनिकों के लिए मूवमेंट बेहद जरूरी होता है और इसमें खतरा बहुत बड़ा होता है, लिहाजा दुश्मन की नजरों से बचने के लिए काल गुस्ताफ MK4 के पास सपोर्ट और गाइडेड गोले भी हैं जो दुश्मन की आंखों के सामने धुएं की दीवार खड़ी कर सकते हैं। काल गुस्ताफ MK4 धुआं फैलाने वाले गोला स्मोक 469C दाग सकता है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर है और ये युद्ध क्षेत्र में तुरंत भारी धुआं पैदा करता है ताकि सैनिक दुश्मन की नजरों से बचकर अपनी पोजीशन बदल सके। यानी एक ही हथियार से टैंक और बख्तरबंद वाहन पर हमला हो सकता है। बंकर और कंक्रीट को तबाह किया जा सकता है।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क 4 के लॉन्चर से 1 मिनट में जरूरत पड़ने पर 6-6 मिसाइलों को दाग सकते हैं। इसके अलावा आर्मी ने अपने RFP में ये भी कहा है कि इसकी कैलेंडर लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिए। यानी बारिश, आंधी, तूफान, रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद वह 15 साल तक इफेक्टिव होना चाहिए। 1500 राउंड्स फायर करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। क्या होता है कि हर वेपन सिस्टम्स में टैंक तो तरंगबंद गाड़ियों का जो मेन मशीन गन है उनमें कुछ 100 या कुछ हजार राउंड फायर करने के बाद जो मेन बैरल है या कार्ल गुस्ताव में मेन ट्यूब है उसको चेंज करना पड़ता है। तो आर्मी ने अपने स्पेसिफिकेशन में लिखा कि 1500 राउंड तक इस कार्ल गुस्ताव मार्क 4 का जो ट्यूब है वो सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और उसके दौरान ही उसका जो ट्यूब है वो आर्मी के जवान के शोल्डर पे ही फट गया।
2: कार्ल गुस्ताव MK4 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है जो कि 1 मिनट में करीब 6 राउंड फायर कर सकता है। इसके प्रभावी मारक क्षमता की बात की जाए तो मूविंग टारगेट यानी कि चलते हुए वाहनों के खिलाफ करीब 350 से 400 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। वहीं स्थिर बख्तरबंद वाहनों या फिर टैंकों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। इमारतों और बंकरों के खिलाफ कार्ल गुस्ताव MK4 की मारक क्षमता 700 से 1000 मीटर है। कार्ल गुस्ताव MK4 को विशेष रूप से शहरी युद्ध और पैदल सैनिकों की मोबिलिटी को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया है। भारतीय सेना की पैरा फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस के लिए कई बार दुश्मन के नजदीक जाकर भी हमला करना पड़ता है। स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए वो कई बार दुश्मन की सरहद में भी घुसते हैं, तो ऐसे में गुस्ताव MK4 उनके लिए सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। दरअसल परिस्थितियों के लिहाज से हथियार कितना अत्याधुनिक है और उसका हर एक ग्राम मैटर करता है। तो स्थिति चाहे ऊंचाई वाले इलाकों की हो या फिर दूर दराज के इलाकों की, गुस्ताव MK4 इन फोर्सेस के लिए सबसे बेस्ट हथियार साबित हो सकता है। कार्ल गुस्ताव MK4 की लंबाई 1 मीटर से कम है, जिससे कमांडो इसे अपने पैराशूट हार्नेस या बैकअप के साथ आसानी से बांध सकते हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते समय या फिर पैराशूट से कूदते समय ये सैनिकों के मूवमेंट में बाधा नहीं बनेगा। पैरा SF अक्सर रात के अंधेरे में हमला करते हैं। MK4 का स्मार्ट फायर कंट्रोल डिवाइस FCD-558 थर्मल और नाइट विजन डिवाइस के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इससे कमांडोज बिना कोई रोशनी किए घने अंधेरे या फिर कोहरे में भी दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ कर तबाह कर सकते हैं। भारतीय सेना की इन्फेंट्री के पास दरअसल एक घातक प्लाटून भी होती है। इनमें शारीरिक रूप से सक्षम और स्मार्ट जवानों को भर्ती किया जाता है। वैसे इनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। इनका सबसे बड़ा मकसद सीधे तौर पर यही होता है कि जब भी भारतीय सेना कहीं हमला के लिए जा रही है तो सबसे पहले यही प्लाटून आगे उस सेना का रास्ता क्लियर करती है। फिर चाहे बंकरों को नष्ट करना हो या फिर सेना के लिए रास्ता बनाना, यानी इस प्लाटून का कहां बहुत अहम हो जाता है रण क्षेत्र में। फॉरवर्ड पोस्ट पर दुश्मन की रक्षा पंक्ति को मिनटों में ध्वस्त करने के लिए घातक प्लाटून के जवान कार्ल गुस्ताव MK4 से HEDP-502 और MT-576 मल्टी टारगेट बंकर बस्टर गोलों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन का किला चुटकियों में ध्वस्त हो जाएगा। कश्मीर या उत्तर पूर्व में जब आतंकवादी किसी मजबूत घर या कंक्रीट की इमारत में छिप जाते हैं तो घातक प्लाटून को बुलाया जाता है। पहले भारी हथियारों को संकरी गलियों में ले जाना मुश्किल होता था, वहीं MK4 के हल्के वजन के कारण सैनिक इसे आसानी से संकीर्ण रास्तों पर ले जा सकेंगे और कमरे के अंदर से फायर करने वाले विशेष गोलों की मदद से बिना अपनी जान जोखिम में डाले इमारत को उड़ा देंगे।
1: किसी भी इन्फेंट्री असॉल्ट के दौरान इन्फेंट्री के जो ट्रुप्स हैं या कमांडोज हैं उनको या तो ऊंची चोटियों पर जल्दी से जल्दी चढ़कर दुश्मन के ऊपर वार करना होता है या खेतों में मार्शी एरिया में दलदल एरिया में या रेगिस्तान

0: ग्लास फाइबर ट्यूब का बना होगा और टोटल वेपन सिस्टम का वजन 7 किलो से कम होगा, ताकि इन्फेंट्री का जो जवान है वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, समझिए उसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर, 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के बंकर पर हमला करना हो तो द्रुत गति से वो अपने पैरों से ऊपर चढ़कर द्रुत गति से इफेक्टिव फायर दुश्मन पर ला सके।
1: हथियारों की दुनिया में कालगुस्ताफ MK4 को सेना के बजट के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। एंटी टैंक मिसाइल से ये बेहद सस्ता है, जहां स्पाइक या फिर जेवलिन ATGMs की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, इसके उलट कालगुस्ताफ का एक रॉकेट शेल महज कुछ लाख रुपए में आ जाता है। इसके टाइटेनियम लाइंड बैरल की लाइफ 1500 राउंड है। इसका मतलब ये है कि ये सालों साल बिना खराब हुए हजारों गोले दाग सकता है, जिससे रखरखाव का खर्च बहुत कम हो जाता है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भरता आएगी। स्वीडन की कंपनी सादगी ओर से झज्जर हरियाणा में लगाई गई 100% FDI फैक्ट्री के कारण भारत को अब लॉन्चर या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
0: कार्ल गुस्ताव मार्क 4 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हरियाणा में हिसार के पास सेटअप किया जा रहा है। इसी के तहत यह भारत सरकार के लिए मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। यह बहुत हाईली कॉस्ट इफेक्टिव वेपन सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि यह फाइबर ग्लास का बना होता है और एक ही ट्यूब को 15 साल तक और युद्ध की परिस्थिति में 1500 राउंड फायर करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही रेवेन्यू फ्रेंडली यानी कम खर्चे वाला वेपन सिस्टम लॉन्ग रन में साबित होगा।
1: मौजूदा समय में कालगुस्ताफ सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। अलग अलग देश इसे अलग अलग नामों और रणनीतियों के साथ अपना रहे हैं। ब्रिटिश सेना इसे चार्ली जी कहती है, कैनेडियाई सैनिक इसे काल जी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की सेना चार्ली गट्स एक कहती है, वहीं अमेरिका में इसे मॉज यानी मल्टी रोल एंटी आर्मर एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम कहा जाता है। कालगुस्ताफ सिस्टम के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन काम एक है और वो है दुश्मन को बैकफुट पर धकेलना। भारतीय सेना ने कालगुस्ताफ को 1974 में अपनाना शुरू किया और 1976 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के साथ ये समझौता हुआ, जिसके बाद से अभी तक कालगुस्ताफ लगातार भारतीय सेना का एक बहुत भरोसेमंद साथी बना हुआ है। करगिल युद्ध के समय भारतीय सेना ने कालगुस्ताफ सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पहाड़ों की चट्टानों के बीच कंक्रीट और पत्थरों के मजबूत बंकर बना दिए थे, जहां पारंपरिक राइफलों और मशीन गनों की गोलियां बेअसर थी। भारतीय सैनिकों ने कालगुस्ताफ को अपने कंधों पर उठाकर 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके हाई एक्सप्लोसिव ड्यूअल पर्पस गोलों ने बंकरों की दीवारों को सीधे छेद कर उड़ा दिया, जिसने भारतीय इन्फेंट्री को चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराने में सबसे बड़ी मदद की। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अगर देखा जाए तो खास तौर पर कश्मीर घाटी में भारतीय सेना का सबसे मजबूत साथी है कालगुस्ताफ। दरअसल ये इस तरह का इलाका है जहां पर आतंकवादी कहीं भी आकर हमला करके उसके बाद झाड़ियों में या कंक्रीट में के बने कुछ मकानों में या फिर गुफाओं में अंदर जाके छिप जाते हैं। ऐसे में इन जगहों पर आतंकियों को काम तमाम करने के लिए सैनिकों को ठीक उनके पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये काम कालगुस्ताफ आसानी से कर देता है। हथियारों की रीयूजेबिलिटी और वर्स्टेबिलिटी के कारण भारतीय सेना ने इसे अपनी अग्रिम सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बनाया। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीजफायर वॉयलेशन का जवाब देने और उनके अग्रिम बंकरों को तबाह करने के लिए कालगुस्ताफ सिस्टम का अक्सर इस्तेमाल होता है। वहीं LAC पर चीनी चौकियों के ठीक सामने भारतीय सेना की लगभग सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर कालगुस्ताफ के पुराने संस्करण MK2 और MK3 हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि किसी भी अचानक बख्तरबंद घुसपैठ को रोका जा सके। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है।

0: इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती, मैदान का चाणक्य फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: क्या शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है? शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: तो चलिए अब आपको करवाते हैं एक ऐसे म्यूजियम की सैर जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में है। ये अंडर वाटर म्यूजियम क्रोएशिया में है। आपको दिखाते हैं आखिरकार इस म्यूजियम में क्या क्या है।
5: स्कूबा डाइविंग करने वालों को आमतौर पर शानदार मछलियों और समुद्री जीवों का दीदार करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को अनोखी आकृतियों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। ये तस्वीरें क्रोएशिया के अंडरवाटर म्यूजियम की हैं। इसमें एक पुराने विमान का मलबा है, साथ ही साथ ईसा मसीह और उनके जीवन यात्रा से जुड़े लोगों की कई प्रतिमाएं भी हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रतिमा ईसा मसीह की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। इसे करीब 9 मीटर की गहराई में लगाया गया है। खास बात ये भी है कि इस म्यूजियम की सैर उन लोगों के लिए भी आसान है जिन्हें तैरना नहीं आता या जो अभी तैरना सीख रहे हैं।
6: Nalazi se na dubini od 3,5-4 metra. Svi kipovi su visine otprilike prirodne veličine ljudske oko 2 metra, tako da idealno za sve početnike, ne plivače, nije uopće bitno da ljudi moraju ronit sa opremom i ronilačkom bocama, nego je više na snorkeling turi bazirano, tako da je napravljeno za sve generacije. Evo.
5: तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए अंडरवाटर म्यूजियम की सैर पर आना गर्मी से भी निजात पाने का बहाना है।
7: So this is a nice place, but the summer is so strong today. So I just went to the water and swimming here. And to be honest, the weather is beautiful compared to my nation. I came from Taiwan. So in Taiwan, that's humid and warm.
8: We expect to have a lot of fun since we love going to the beach, diving. And yeah, since we saw this thing you have in Croatia, which is very, very new, very exciting. So yeah, we look forward into seeing all we can see underwater in this museum.
5: दुनिया भर में ये अकेला ऐसा म्यूजियम है जहां ईसा मसीह की जीवन यात्रा को समुद्र की गहराइयों में प्रदर्शित किया गया है। इस म्यूजियम का माहौल काफी आकर्षक है। समुद्री टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए ये यादगार सैर सपाटे की शानदार जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती, मैदान का चाणक्य फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on Tune In. Plus, you can listen to Tune In on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on Tune In.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना, खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर, अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश, 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात, बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास, मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक, 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने अपनी कैप्टेंसी में लगातार दूसरी बार अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 15 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के आखिरी क्षणों में मेसी ने अपने दो शानदार पास से मैच का रुख जिस तरह से बदल दिया, उसे देखकर इस खेल के विशेषज्ञ अब ये कहने लगे हैं कि मेसी ऑल टाइम ग्रेट है।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगो युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों में मेसी ने विरोधी टीमों पर हावी होकर आखिरी क्षणों में जिस तरह से मैच का रुख मोड़ दिया, उसे देखकर सॉकर एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि मेसी निसंदेह ऑल टाइम ग्रेट हैं। मेसी के डाई हार्ड परफॉर्मेंस की वजह से अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने में सफल हुआ है। अटलांटा के एंथनी गार्डन में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में 55वें मिनट पर गोल करके इंग्लैंड फाइनल की तरफ कदम बढ़ा चुका था, लेकिन लियोनेल मेसी ने आखिरी वक्त में मैच का रुख पलट दिया। मैच के 86वें मिनट पर मेसी ने शानदार शॉर्ट कॉर्नर खेलकर गेंद एंजो फर्नांडीज के पास पहुंचा दी और फर्नांडीज ने मेसी के शानदार पास पर बगैर देर किए 25 गज से शानदार गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में मेसी के बेहतरीन क्रॉस पर सब्स्टिट्यूट लॉटारो मार्टिनेज ने हेडर से गोल कर फाइनल में पहुंचने के इंग्लैंड के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस रोमांचक मुकाबले के बाद मेसी की खुले दिल से तारीफ करते हुए फुटबॉल एक्सपर्ट मीका रिचर्ड्स ने कहा कि अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, उनके पास ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, फुटबॉल के इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच हुए फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 पर यानी बराबरी पर था, लेकिन मैदान पर मेसी की मौजूदगी ने अर्जेंटीना के बाकी खिलाड़ियों का हौसला हमेशा बुलंद रखा, लिहाजा अतिरिक्त समय में 2 गोल दागकर अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। न्यू जर्सी के मिड लाइफ स्टेडियम में जब स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 की निर्णायक भिड़ंत होगी, तो इसमें मेसी के सामने होगा वो खिलाड़ी जिसे कभी अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर ने बेबी बाथटब में बड़े ही प्यार से नहलाया था। ये वाकया है साल 2007 का। उस समय बार्सिलोना के युवा स्टार लियोनेल मेसी सिर्फ 20 साल के थे। उसी दौरान स्थानीय अखबार डीआरओ स्पोर्ट और यूनिसेफ ने एक चैरिटी फोटोशूट आयोजित किया। इस फोटोशूट में स्पेन के मौजूदा स्टार फुटबॉलर लैमिन यमाल का परिवार विजेता बना और उन्हें कैंप नोउ में फोटोशूट का मौका मिला। फोटोशूट के दौरान मेसी ने महज 6 महीने के यमाल को प्लास्टिक के छोटे से बेबी बाथटब में नहलाया और गोद में उठाकर तस्वीरें भी खिंचवाई। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानो नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो वो मानो भगवान बन गए हैं, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारों की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन वाकिफ नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थीं। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया, जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया, बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया, और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे, जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को न झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
0: तो चलिए बंदे में है दम के आज के सफरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक दमदार शख्सियत का सफरनामा लेकर आप सभी के सामने। इजाजत दीजिए, देखते रहिए GNT।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: और दौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। तो चारधाम यात्रा में इस बार प्रकृति की चुनौती और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था दोनों की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, केदारनाथ पैदल मार्ग पर रास्ता कुछ समय के लिए बाधित हुआ, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उनकी जो आस्था है वो लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है। मुश्किल हालात के बावजूद ना तो व्यवस्थाएं थमी हैं और ना ही भगवान के दर्शन की श्रद्धालुओं की आस कम हुई है।

0: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार हर दिन एक नया अनुभव दे रही है। गौरीकुंड के पास केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है तो प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। लगातार बारिश के बीच रास्ता खोलने की कवायद चलाई। फिलहाल केवल पैदल यात्रियों के लिए रास्ता तैयार है। इन परिस्थितियों के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और पूरे जोश के साथ यात्री यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जुलाई के मध्य में, जबकि मानसून सीजन इस समय चल रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के पार हो चुकी है। मौसम की बात करें, मौसम लगातार पहाड़ों में भले ही बदल रहा है, सुबह सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है, रात को हल्की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन पूरे दिन मौसम चटक धूप और मौसम सुहाना मौसम बद्रीनाथ धाम सहित तमाम जनपद में बना हुआ है।
0: सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ तैनात है। जवान श्रद्धालुओं की लगातार मदद कर रहे हैं। SDRF, NDRF और पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटे हैं ताकि यात्रा सुरक्षित चलती रहे। बद्रीनाथ धाम से आस्था की बेहद शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस साल यात्रा ने नया कीर्तिमान बना दिया है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 जुलाई में ही 15 लाख के पार चली गई है। आमतौर पर ये आंकड़ा अक्टूबर के आखिर या नवंबर में पार होता था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड समय से पहले ही हो गया है और नया इतिहास बन गया है। मॉनसून के बावजूद बद्रीनाथ पहुंचने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ। कुछ दिनों तक बारिश की वजह से संख्या जरूर घटी, लेकिन मौसम साफ होते ही फिर रफ्तार बढ़ गई। बीते दिन 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देश के अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग धाम पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को कम समय में आसानी से दर्शन हो रहे हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रहने से सफर भी पहले से आसान बना हुआ है। मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक हर ओर श्रद्धा का माहौल दिखाई दे रहा है। बढ़ती संख्या का सकारात्मक असर स्थानीय व्यापार पर भी साफ नजर आ रहा है।
2: के लिए जाना है, मेरे मन में जबरदस्त उमंग, जबरदस्त साहस, जबरदस्त शक्ति हो गई। कई बार तो मेरे दोस्तों ने ये भी कहा कि ये बारिश का मौसम है, आप इस तरफ मत जाइए, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, क्लाउड क्रॉसिंग कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने बस अपने आप को प्रभु को सौंपा और मैंने कहा प्रभु मैं आपके शरण में हूँ और अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।
0: एक ओर केदारनाथ में प्राकृतिक चुनौती के बीच सुरक्षा और सेवा का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर बद्रीनाथ में उमड़ती आस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। यही तस्वीर बताती है कि कठिन परिस्थितियां भी श्रद्धालुओं के विश्वास को रोक नहीं पा रही। उम्मीद है कि आगे भी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल तरीके से चलती रहेगी। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
4: है। Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
5: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
4: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.

0: रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: क्या शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है? शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर। अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम। लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात। बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा। जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास। मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, योद्धाओं की वो टोली जो विषम परिस्थितियों में भी देश की हिफाजत में डटे रहते हैं। तपते रेगिस्तान से लेकर खून जमा देने वाली बर्फीली वादियों तक इनकी मौजूदगी है, जो दुश्मन को फटकने का मौका तक नहीं देते। भारतीय सेना के इन रणबांकुरों को मॉडर्न, हाईटेक और लेटेस्ट वेपन से लैस किया जा रहा है, ताकि वो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने वाले हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। भारतीय सेना अपने हथियारों को अत्याधुनिक बनाने और इन्हें हल्का बनाने के लिए लगातार इन पर काम कर रही है, और इसी कड़ी में 450 कार्ल गुस्ताफ MK4 मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर्स को खरीदने का प्रपोजल दिया गया है। यह खरीद मेक इन इंडिया के तहत ही होगी और इसके बाद भारतीय सेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। कार्ल गुस्ताफ सिर्फ एक एंटी टैंक हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध में पैदल सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला मल्टी रोल वेपन सिस्टम है, जो बख्तरबंद वाहनों से लेकर मजबूत बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। भारतीय सेना इसे करीब 5 दशकों से इस्तेमाल कर रही है और अब इसका सबसे आधुनिक संस्करण MK4 को सेना की नई युद्ध जरूरतों के हिसाब से शामिल किया गया है। सेना की RFP में साफ हो गया है कि नया लॉन्चर पुराने MK3 जितना सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए। बैरल की उम्र कम से कम 1500 राउंड या 15 साल होनी चाहिए। ये -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और अलग अलग जलवायु में बिना किसी समस्या के काम भी कर सके। आधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम हो, रेड डॉट साइट और पकैटनी रेल्स लगाने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि सैनिक तेजी से निशाना लगा सके और पहली गोली में ही दुश्मन को मार सके।
1: इंडियन आर्मी बहुत जल्दी ही कार्ल गुस्ताफ 4 शोल्डर्ड फायर्ड एंटी टैंक वेपन को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसका जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है, उसके तहत कार्ल गुस्ताफ 4 का जो लॉन्चर होगा उसका वजन 7 किलो से कम होना चाहिए। यह गौरतलब बात है कि इसके पहले का जो Mark 2 वेरियंट था और Mark 3 वेरियंट था, उनका वजन 14 किलो और 10 किलो होता था। तो इन्फेंट्री ट्रूप्स को एक हैवी एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए अब जो नया वर्जन टाइप 4 बनेगा उसका वजन 7 किलो या कम होगा।
0: सेना के लिए 84 mm के हल्के रॉकेट लॉन्चर्स कार्ल गुस्ताफ MK4 खरीद सिर्फ एक वेपन परचेज तक सीमित नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में लॉन्चर, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, तकनीकी दस्तावेज और रखरखाव की पूरी व्यवस्था शामिल है। सेना के रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में बहुत सारी खास बातें हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि साब कंपनी इसे हरियाणा के झज्जर में बनाएगी, यानी कि ये पहली बार होगा कि स्वीडन के बाहर इसका प्लांट किसी और मुल्क में लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ जब तमाम मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगी तो हमें स्पेयर पार्ट्स या फिर दूसरी चीजों के लिए स्वीडन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी और मजबूत होता है।
2: भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियां देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। वो सीमा पर हर तरह के इलाके में तैनात रहती हैं। पुराने हथियार भारी और कम प्रभावी हो चुके हैं। ऐसे में MK4 हल्का होने की वजह से सैनिकों की गतिशीलता बढ़ेगी, खासतौर पर सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में, जहां पर हर अतिरिक्त किलो वजन सैनिकों के लिए चुनौती होता है। कार्ल गुस्ताफ MK4 का वजन लगभग 7 किलोग्राम है, जो पुराने संस्करणों से हल्का है। इसकी लंबाई 1 मीटर से भी कम है, जिससे दुर्गम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पैदल सैनिक इसे आसानी से ले जा सकते हैं और मुश्किल इलाकों में लंबे समय तक आसानी से ऑपरेशन भी किया जा सकता है।
1: इसमें जो वॉरहेड लगाए जाएंगे वो 3 तरह के होंगे। नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड दुश्मन के बंकर को ध्वस्त करने के लिए, एंटी टैंक वॉरहेड दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए, और एक एरिया वेपन जो कि हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड होगा, दुश्मन के जो इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं जो ओपन एरिया में डिप्लॉयड हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि यह जो नया वेपन होगा ये -20 डिग्री हिमालयन क्षेत्र में, जैसे टेम्परेचर सर्दियों में हो जाता है, और +50 डिग्री राजस्थान के डेजर्ट में, जैसे टेम्परेचर गर्मियों में हो जाता है, के रेंज में काम कर सके। इसका टेक्निकल तात्पर्य ये है कि -20 डिग्री में जो ट्यूब है वो श्रिंक नहीं होनी चाहिए, ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, और +50 डिग्री में जो इसका लॉन्च ट्यूब है वो सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, रिजिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए।
2: अगर दुश्मन पहाड़ी बंकर में छिपा है, किसी इमारत के अंदर हो या फिर हल्के बख्तरबंद वाहन में हो, या फिर सीमा पर मजबूत चौकी बना रखी हो, खाल गुस्ताफ MK4 कम समय में ऐसे लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। इससे पैदल सैनिकों को टैंक या तोपखाने के समर्थन का इंतजार हमेशा नहीं करना पड़ता।
1: युद्ध के दौरान जब हमारी टैंक दस्ते आगे बढ़ते हैं तो वो दुश्मन के जो एंटी टैंक कमांडोज हैं और दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं उसकी जद्दोजहद में आ सकते हैं। ऐसे में टैंक फॉर्मेशन जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमेशा उनको इन्फेंट्री ट्रूप्स का सपोर्ट दिया जाता है, ख़ास तौर से एक्सिस ऑफ एडवांस के बाएं फ्लैंक पर और एक्सिस ऑफ एडवांस के दाहिने फ्लैंक पर। इन इन्फेंट्री ट्रूप्स को, जो हमारे इन्फेंट्री है जो कि टैंक को कवर दे रहे हैं, टैंक की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनका काम होता है कि दुश्मन ने अगर अपने एंटी टैंक दस्तों को दाएं या बाएं में जंगल के पीछे, खेत के पीछे, पहाड़ के पीछे छुपा के रखा हुआ है, उसका क्लियरेंस करते जाएं ताकि हमारी टैंक फॉर्मेशन बिना किसी रेजिस्टेंस के या बिना किसी नुकसान के मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, जिसे हम फॉर्म अप पॉइंट कहते हैं, FUP। क्योंकि टैंक फॉर्मेशन FUP पे पहुंचने के बाद ही जो असली टारगेट है उसके ऊपर अपना हमला शुरू करती है। असली टारगेट क्या है? डिचकम बंद हो सकता है, दुश्मन का टैंक कंसंट्रेटेड एरिया होना हो सकता है, दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हो सकता है।
2: पहले अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग हथियारों की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन खाल गुस्ताख MK4 एक ही लॉन्चर से अलग अलग तरह की गोला बारूद दाग सकता है। एंटी टैंक गोले के तौर पर खाल गुस्ताख MK4 में HEAT-751 का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोला टैंडम यानी कि दोहरे वॉरहेड से लैस है। इसका पहला विस्फोट टैंक के बाहरी एक्सक्लोसिव रिएक्टिव आर्मर सुरक्षा को नष्ट करता है और दूसरा मुख्य धमाका टैंक के 500 mm मोटे स्टील कवच को चीरते हुए अंदर प्रहार करता है। खाल गुस्ताख MK4 से एंटी स्ट्रक्चर और बंकर बस्टर गोले दागे जा सकते हैं। इसके लिए HEDP 502 और MT-756 गोले का इस्तेमाल होता है। HEDP 502 एक ड्यूअल पर्पस गोला है। इसमें इंपैक्ट यानी टकराते ही फटना और डिले मोड यानी कि टारगेट से टकराने की थोड़ी देर बाद फटना दोनों होते हैं। डिले मोड में ये पहले कंक्रीट या फिर लकड़ी की दीवार को छेद कर अंदर घुसता है और फिर बंकर के भीतर विस्फोट करता है ताकि अंदर छिपे दुश्मनों का सफाया हो सके। बंकरों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। MT-756 से एक मल्टी टारगेट गोला भी दागा जा सकता है। ये कंक्रीट ईंट और मजबूत दीवारों को तोड़ते हुए विशेष रूप से टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल करता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर है। खाल गुस्ताख MK4 से एंटी पर्सनल गोले जैसे कि HE-441D और 441DRS भी दागे जा सकते हैं। गोले के भीतर करीब 800 छोटे स्टील के छर्रे होते हैं। गोले खुली जगह या फिर झाड़ियों में छिपे दुश्मन के पैदल सैनिकों और गैर बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकते हैं। युद्धभूमि में पैदल सैनिकों के लिए मूवमेंट बेहद जरूरी होता है और इसमें खतरा बहुत बड़ा होता है, लिहाजा दुश्मन की नजरों से बचने के लिए खाल गुस्ताख MK4 के पास सपोर्ट और गाइडेड गोले भी हैं जो दुश्मन की आंखों के सामने धुएं की दीवार खड़ी कर सकते हैं। कार्ल गुस्ताफ MK4 धुआं फैलाने वाले गोला स्मोक 469C दाग सकता है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर है और ये युद्ध क्षेत्र में तुरंत भारी धुआं पैदा करता है ताकि सैनिक दुश्मन की नजरों से बचकर अपनी पोजीशन बदल सके। यानी एक ही हथियार से टैंक और बख्तरबंद वाहन पर हमला हो सकता है, बंकर और कंक्रीट को तबाह किया जा सकता है।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क 4 के लॉन्चर से 1 मिनट में जरूरत पड़ने पर 6-6 मिसाइलों को दाग सकते हैं। इसके अलावा आर्मी ने अपने RFP में ये भी कहा है कि इसकी कैलेंडर लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिए, यानी बारिश, आंधी, तूफान, रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद वह 15 साल तक इफेक्टिव होना चाहिए। 1,500 राउंड्स फायर करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। क्या होता है कि हर वेपन सिस्टम्स में टैंक तो तरंगबंद गाड़ियों का जो मेन मशीन गन है उनमें कुछ 100 या कुछ 1,000 राउंड फायर करने के बाद जो मेन बैरल है या कार्ल गुस्ताव में मेन ट्यूब है उसको चेंज करना पड़ता है। तो आर्मी ने अपने स्पेसिफिकेशन में लिखा कि 1,500 राउंड तक इस कार्ल गुस्ताव मार्क 4 का जो ट्यूब है वो सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और उसके दौरान ही उसका जो ट्यूब है वो आर्मी के जवान के शोल्डर पे ही फट गया।
2: कार्ल गुस्ताव MK4 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है जो कि 1 मिनट में करीब 6 राउंड फायर कर सकता है। इसके प्रभावी मारक क्षमता की बात की जाए तो मूविंग टारगेट यानी कि चलते हुए वाहनों के खिलाफ करीब 350 से 400 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। वहीं स्थिर बख्तरबंद वाहनों या फिर टैंकों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। इमारतों और बंकरों के खिलाफ कार्ल गुस्ताव MK4 की मारक क्षमता 700 से 1000 मीटर है। कार्ल गुस्ताव MK4 को विशेष रूप से शहरी युद्ध और पैदल सैनिकों की मोबिलिटी को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया है। भारतीय सेना की पैरा फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस के लिए कई बार दुश्मन के नजदीक जाकर भी हमला करना पड़ता है। स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए वो कई बार दुश्मन की सरहद में भी घुसते हैं, तो ऐसे में गुस्ताव MK4 उनके लिए सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। दरअसल परिस्थितियों के लिहाज से हथियार कितना अत्याधुनिक है और उसका हर एक ग्राम मैटर करता है। तो स्थिति चाहे ऊंचाई वाले इलाकों की हो या फिर दूर दराज के इलाकों की, गुस्ताव MK4 इन फोर्सेस के लिए सबसे बेस्ट हथियार साबित हो सकता है। कार्ल गुस्ताव MK4 की लंबाई 1 मीटर से कम है, जिससे कमांडो इसे अपने पैराशूट हार्नेस या बैकअप के साथ आसानी से बांध सकते हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते समय या फिर पैराशूट से कूदते समय ये सैनिकों के मूवमेंट में बाधा नहीं बनेगा। पैरा SF अक्सर रात के अंधेरे में हमला करते हैं। MK4 का स्मार्ट फायर कंट्रोल डिवाइस FCD-558 थर्मल और नाइट विजन डिवाइस के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इससे कमांडोज बिना कोई रोशनी किए घने अंधेरे या फिर कोहरे में भी दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ कर तबाह कर सकते हैं। भारतीय सेना की इन्फेंट्री के पास दरअसल एक घातक प्लाटून भी होती है। इनमें शारीरिक रूप से सक्षम और स्मार्ट जवानों को भर्ती किया जाता है। वैसे इनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। इनका सबसे बड़ा मकसद सीधे तौर पर यही होता है कि जब भी भारतीय सेना कहीं हमला के लिए जा रही है तो सबसे पहले यही प्लाटून आगे उस सेना का रास्ता क्लियर करती है, फिर चाहे बंकरों को नष्ट करना हो या फिर सेना के लिए रास्ता बनाना। यानी इस प्लाटून का कहां बहुत अहम हो जाता है रण क्षेत्र में। फॉरवर्ड पोस्ट पर दुश्मन की रक्षा पंक्ति को मिनटों में ध्वस्त करने के लिए घातक प्लाटून के जवान कार्ल गुस्ताव MK4 से HEDP-502 और MT-576 मल्टी टारगेट बंकर बस्टर गोलों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन का किला चुटकियों में ध्वस्त हो जाएगा। कश्मीर या उत्तर पूर्व में जब आतंकवादी किसी मजबूत घर या कंक्रीट की इमारत में छिप जाते हैं तो घातक प्लाटून को बुलाया जाता है। पहले भारी हथियारों को संकरी गलियों में ले जाना मुश्किल होता था, वहीं MK4 के हल्के वजन के कारण सैनिक इसे आसानी से संकीर्ण रास्तों पर ले जा सकेंगे और कमरे के अंदर से फायर करने वाले विशेष गोलों की मदद से बिना अपनी जान जोखिम में डाले इमारत को उड़ा देंगे।
1: किसी भी इन्फेंट्री असॉल्ट के दौरान इन्फेंट्री के जो ट्रुप्स हैं या कमांडोज हैं उनको या तो ऊंची ऊंची चोटियों पर जल्दी से जल्दी चढ़कर दुश्मन के ऊपर वार करना होता है या खेतों में मार्शी एरिया में दलदल एरिया में या रेगिस्तान जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है वहाँ पर सॉफ्ट सैंड पर द्रुत गति से आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में अगर एंटी टैंक लॉन्चर ट्यूब का वजन 14 किलो है या 10 किलो है तो फिर जवानों की मोबिलिटी में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी को ओवरकम करने के लिए अब यह तय किया गया है कि कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का जो लॉन्च ट्यूब होगा वो कॉम्प्लेक्स ग्लास फाइबर ट्यूब का बना होगा और टोटल वेपन सिस्टम का वजन 7 किलो से कम होगा ताकि इन्फेंट्री का जो जवान है वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर समझिए उसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के बंकर पर हमला करना हो तो द्रुत गति से वो अपने पैरों से ऊपर चढ़कर द्रुत गति से इफेक्टिव फायर

0: रुपए में होती है। इसके उलट कार्लगुस्ताफ का एक रॉकेट शेल महज कुछ लाख रुपए में आ जाता है। इसके टाइटेनियम लाइन बैरल की लाइफ 1500 राउंड है। इसका मतलब ये है कि ये सालों साल बिना खराब हुए हजारों गोले दाग सकता है, जिससे रखरखाव का खर्च बहुत कम हो जाता है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भरता आएगी। स्वीडन की कंपनी साद की ओर से झज्जर हरियाणा में लगाई गई 100% FDI फैक्ट्री के कारण भारत को अब लॉन्चर या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हरियाणा में हिसार के पास सेटअप किया जा रहा है। इसी के तहत यह भारत सरकार के लिए मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। यह बहुत हाईली कॉस्ट इफेक्टिव वेपन सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि यह फाइबर ग्लास का बना होता है और एक ही ट्यूब को 15 साल तक और युद्ध की परिस्थिति में 1500 राउंड फायर करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही रेवेन्यू फ्रेंडली यानी कम खर्चे वाला वेपन सिस्टम लॉन्ग रन में साबित होगा।
0: मौजूदा समय में कार्लगुस्ताव सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। अलग अलग देश इसे अलग अलग नामों और रणनीतियों के साथ अपना रहे हैं। ब्रिटिश सेना इसे चार्ली जी कहती है, कैनेडियाई सैनिक इसे काल जी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की सेना चार्ली गट्स एक कहती है, वहीं अमेरिका में इसे मॉज यानी मल्टी रोल एंटी आर्मर एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम कहा जाता है। कार्लगुस्ताव सिस्टम के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन काम एक है और वो है दुश्मन को बैकफुट पर धकेलना। भारतीय सेना ने कार्लगुस्ताव को 1974 में अपनाना शुरू किया और 1976 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के साथ ये समझौता हुआ, जिसके बाद से अभी तक कार्लगुस्ताव लगातार भारतीय सेना का एक बहुत भरोसेमंद साथी बना हुआ है। करगिल युद्ध के समय भारतीय सेना ने कार्लगुस्ताव सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पहाड़ों की चट्टानों के बीच कंक्रीट और पत्थरों के मजबूत बंकर बना दिए थे, जहां पारंपरिक राइफलों और मशीन गनों की गोलियां बेअसर थी। भारतीय सैनिकों ने कार्लगुस्ताव को अपने कंधों पर उठाकर 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके हाई एक्सप्लोसिव ड्यूअल पर्पस गोलों ने बंकरों की दीवारों को सीधे छेद कर उड़ा दिया, जिसने भारतीय इन्फेंट्री को चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराने में सबसे बड़ी मदद की। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अगर देखा जाए तो खास तौर पर कश्मीर घाटी में भारतीय सेना का सबसे मजबूत साथी है कार्लगुस्ताव। दरअसल ये इस तरह का इलाका है जहां पर आतंकवादी कहीं भी आकर हमला करके उसके बाद झाड़ियों में या कंक्रीट में के बने कुछ मकानों में या फिर गुफाओं में अंदर जाके छिप जाते हैं। ऐसे में इन जगहों पर आतंकियों को काम तमाम करने के लिए सैनिकों को ठीक उनके पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये काम कार्लगुस्ताव आसानी से कर देता है। हथियारों की रीयूजेबिलिटी और वर्स्टेबिलिटी के कारण भारतीय सेना ने इसे अपनी अग्रिम सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बनाया। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीजफायर वॉयलेशन का जवाब देने और उनके अग्रिम बंकरों को तबाह करने के लिए कार्लगुस्ताव सिस्टम का अक्सर इस्तेमाल होता है। वहीं LAC पर चीनी चौकियों के ठीक सामने भारतीय सेना की लगभग सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर कार्लगुस्ताव के पुराने संस्करण MK2 और MK3 हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि किसी भी अचानक बख्तरबंद घुसपैठ को रोका जा सके। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती, मैदान का चाणक्य फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर

0: सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है. शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
4: तो चलिए अब आपको करवाते हैं एक ऐसे म्यूजियम की सैर जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में है. ये अंडर वाटर म्यूजियम क्रोएशिया में है. आपको दिखाते हैं आखिरकार इस म्यूजियम में क्या क्या है.
5: स्कूबा डाइविंग करने वालों को आमतौर पर शानदार मछलियों और समुद्री जीवों का दीदार करने का मौका मिलता है. लेकिन यहाँ पर लोगों को अनोखी आकृतियों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है. ये तस्वीरें क्रोएशिया के अंडरवाटर म्यूजियम की हैं. इसमें एक पुराने विमान का मलबा है. साथ ही साथ ईसा मसीह और उनके जीवन यात्रा से जुड़े लोगों की कई प्रतिमाएं भी हैं. इनमें सबसे बड़ी प्रतिमा ईसा मसीह की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर है. इसे करीब 9 मीटर की गहराई में लगाया गया है. खास बात ये भी है कि इस म्यूजियम की सैर उन लोगों के लिए भी आसान है जिन्हें तैरना नहीं आता या जो अभी तैरना सीख रहे हैं.
6: Nalazi se na dubini od 3,5-4 metra. Svi kipovi su visine otprilike prirodne veličine ljudske oko 2 metra, tako da idealno za sve početnike, ne plivače, nije uopće bitno da ljudi moraju ronit sa opremom i ronačkom bocama, nego je više na snorkeling turi bazirano, tako da je napravljeno za sve generacije. Evo.
5: तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए अंडरवाटर म्यूजियम की सैर पर आना गर्मी से भी निजात पाने का बहाना है.
7: So this is a nice place, but the summer is so strong today. So I just went to the water and swimming here. And to be honest, the weather is beautiful compared to my nation. I came from Taiwan. So in Taiwan, that's humid and warm.
8: We expect to have a lot of fun since we love going to the beach, diving. And yeah, since we saw this thing you have in Croatia, which is very, very new, very exciting. So yeah, we look forward into seeing all we can see underwater in this museum.
5: दुनिया भर में ये अकेला ऐसा म्यूजियम है जहां ईसा मसीह की जीवन यात्रा को समुद्र की गहराइयों में प्रदर्शित किया गया है. इस म्यूजियम का माहौल काफी आकर्षक है. समुद्री टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए ये यादगार सैर सपाटे की शानदार जगह है. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
0: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती. मैदान का चाणक्य, फुटबॉल का जादूगर. मैसी है तो मुमकिन है. बंदे में है दम. सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर.
9: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
10: Schwarber
11: to right field, and it will leave.
9: From the first pitch of the season to the stretch run,
11: that's the ball game.
9: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर। अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम। लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात। बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास। मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।

रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने अपनी कैप्टेंसी में लगातार दूसरी बार अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 15 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के आखिरी क्षणों में मेसी ने अपने दो शानदार पास से मैच का रुख जिस तरह से बदल दिया, उसे देखकर इस खेल के विशेषज्ञ अब ये कहने लगे हैं कि मेसी ऑल टाइम ग्रेट हैं।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों में मेसी ने विरोधी टीमों पर हावी होकर आखिरी क्षणों में जिस तरह से मैच का रुख मोड़ दिया, उसे देखकर सॉकर एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि मेसी निसंदेह ऑल टाइम ग्रेट हैं। मेसी के डाई हार्ड परफॉर्मेंस की वजह से अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने में सफल हुआ है। अटलांटा के एंथनी गार्डन में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में 55वें मिनट पर गोल करके इंग्लैंड फाइनल की तरफ कदम बढ़ा चुका था, लेकिन लियोनेल मेसी ने आखिरी वक्त में मैच का रुख पलट दिया। मैच के 86वें मिनट पर मेसी ने शानदार शॉर्ट कॉर्नर खेलकर गेंद एंजो फर्नांडीज के पास पहुंचा दी और फर्नांडीज ने मेसी के शानदार पास पर बगैर देर किए 25 गज से शानदार गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में मेसी के बेहतरीन क्रॉस पर सब्स्टिट्यूट लॉटारो मार्टिनेज ने हेडर से गोल कर फाइनल में पहुंचने के इंग्लैंड के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस रोमांचक मुकाबले के बाद मेसी की खुले दिल से तारीफ करते हुए फुटबॉल एक्सपर्ट मीका रिचर्ड्स ने कहा कि अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, उनके पास ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, फुटबॉल के इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच हुए फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 पर यानी बराबरी पर था, लेकिन मैदान पर मेसी की मौजूदगी ने अर्जेंटीना के बाकी खिलाड़ियों का हौसला हमेशा बुलंद रखा, लिहाजा अतिरिक्त समय में 2 गोल दागकर अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। न्यू जर्सी के मिड लाइफ स्टेडियम में जब स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 की निर्णायक भिड़ंत होगी तो इसमें मेसी के सामने होगा वो खिलाड़ी जिसे कभी अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर ने बेबी बाथटब में बड़े ही प्यार से नहलाया था। ये वाकया है साल 2007 का। उस समय बार्सिलोना के युवा स्टार लियोनेल मेसी सिर्फ 20 साल के थे। उसी दौरान स्थानीय अखबार डीआरओ स्पोर्ट और यूनिसेफ ने एक चैरिटी फोटोशूट आयोजित किया। इस फोटोशूट में स्पेन के मौजूदा स्टार फुटबॉलर लैमिन यमाल का परिवार विजेता बना और उन्हें कैंप नोउ में फोटोशूट का मौका मिला। फोटोशूट के दौरान मेसी ने महज 6 महीने के यमाल को प्लास्टिक के छोटे से बेबी बाथटब में नहलाया और गोद में उठाकर तस्वीरें भी खिंचवाई। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो वो मानो भगवान बन गए हैं, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारों की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन वाकिफ नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थीं। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी। यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था। इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया, जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वही राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को ना झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
0: तो चलिए बंदे में है दम के आज के सफरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक दमदार शख्सियत का सफरनामा लेकर आप सभी के सामने। इजाजत दीजिए, देखते रहिए GNT।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: तो चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। तो चारधाम यात्रा में इस बार प्रकृति की चुनौती और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था दोनों की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, केदारनाथ पैदल मार्ग पर रास्ता कुछ समय के लिए बाधित हुआ, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उनकी जो आस्था है वो लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है। मुश्किल हालात के बावजूद ना तो व्यवस्थाएं थमी हैं और ना ही भगवान के दर्शन की श्रद्धालुओं की आस कम हुई है।

0: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार हर दिन एक नया अनुभव दे रही है। गौरीकुंड के पास केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है, तो प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। लगातार बारिश के बीच रास्ता खोलने की कवायद चलाई। फिलहाल केवल पैदल यात्रियों के लिए रास्ता तैयार है। इन परिस्थितियों के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और पूरे जोश के साथ यात्री यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जुलाई के मध्य में, जबकि मानसून सीजन इस समय चल रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के पार हो चुकी है। मौसम की बात करें, मौसम लगातार पहाड़ों में भले ही बदल रहा है, सुबह सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है, रात को हल्की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन पूरे दिन मौसम चटक धूप और मौसम सुहाना मौसम बद्रीनाथ धाम सहित तमाम जनपद में बना हुआ है।
0: सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ तैनात है। जवान श्रद्धालुओं की लगातार मदद कर रहे हैं। SDRF, NDRF और पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटे हैं ताकि यात्रा सुरक्षित चलती रहे। बद्रीनाथ धाम से आस्था की बेहद शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस साल यात्रा ने नया कीर्तिमान बना दिया है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 जुलाई में ही 15 लाख के पार चली गई है। आमतौर पर ये आंकड़ा अक्टूबर के आखिर या नवंबर में पार होता था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड समय से पहले ही हो गया है और नया इतिहास बन गया है। मॉनसून के बावजूद बद्रीनाथ पहुंचने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ। कुछ दिनों तक बारिश की वजह से संख्या जरूर घटी, लेकिन मौसम साफ होते ही फिर रफ्तार बढ़ गई। बीते दिन 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देश के अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग धाम पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को कम समय में आसानी से दर्शन हो रहे हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रहने से सफर भी पहले से आसान बना हुआ है। मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक हर ओर श्रद्धा का माहौल दिखाई दे रहा है। बढ़ती संख्या का सकारात्मक असर स्थानीय व्यापार पर भी साफ नजर आ रहा है।
2: के लिए जाना है, मेरे मन में जबरदस्त उमंग, जबरदस्त साहस, जबरदस्त शक्ति हो गई। कई बार तो मेरे दोस्तों ने ये भी कहा कि ये बारिश का मौसम है, आप इस तरफ मत जाइए, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, क्लाउड क्रॉसिंग कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने बस अपने आप को प्रभु को सौंपा और मैंने कहा प्रभु मैं आपके शरण में हूँ और अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।
0: एक ओर केदारनाथ में प्राकृतिक चुनौती के बीच सुरक्षा और सेवा का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर बद्रीनाथ में उमड़ती आस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। यही तस्वीर बताती है कि कठिन परिस्थितियां भी श्रद्धालुओं के विश्वास को रोक नहीं पा रही। उम्मीद है कि आगे भी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल तरीके से चलती रहेगी। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: जाएं। A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: क्या शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है? शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर। अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम। लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात। बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा। जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास। मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, योद्धाओं की वो टोली जो विषम परिस्थितियों में भी देश की हिफाजत में डटे रहते हैं। तपते रेगिस्तान से लेकर खून जमा देने वाली बर्फीली वादियों तक इनकी मौजूदगी है, जो दुश्मन को फटकने का मौका तक नहीं देते। भारतीय सेना के इन रणबांकुरों को मॉडर्न, हाईटेक और लेटेस्ट वेपन से लैस किया जा रहा है, ताकि वो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने वाले हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। भारतीय सेना अपने हथियारों को अत्याधुनिक बनाने और इन्हें हल्का बनाने के लिए लगातार इन पर काम कर रही है, और इसी कड़ी में 450 कार्ल गुस्ताफ MK4 मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर्स को खरीदने का प्रपोजल दिया गया है। यह खरीद मेक इन इंडिया के तहत ही होगी और इसके बाद भारतीय सेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। कार्ल गुस्ताफ सिर्फ एक एंटी टैंक हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध में पैदल सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला मल्टी रोल वेपन सिस्टम है, जो बख्तरबंद वाहनों से लेकर मजबूत बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। भारतीय सेना इसे करीब 5 दशकों से इस्तेमाल कर रही है और अब इसका सबसे आधुनिक संस्करण MK4 को सेना की नई युद्ध जरूरतों के हिसाब से शामिल किया गया है। सेना की RFP में साफ हो गया है कि नया लॉन्चर पुराने MK3 जितना सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए। बैरल की उम्र कम से कम 1500 राउंड या 15 साल होनी चाहिए। ये -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और अलग अलग जलवायु में बिना किसी समस्या के काम भी कर सके। आधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम हो, रेड डॉट साइट और पिकैटनी रेल्स लगाने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि सैनिक तेजी से निशाना लगा सके और पहली गोली में ही दुश्मन को मार सके।
1: इंडियन आर्मी बहुत जल्दी ही कार्ल गुस्ताफ 4 शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक वेपन को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसका जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है, उसके तहत कार्ल गुस्ताफ 4 का जो लॉन्चर होगा उसका वजन 7 किलो से कम होना चाहिए। यह गौरतलब बात है कि इसके पहले का जो Mark II वेरियंट था और Mark III वेरियंट था, उनका वजन 14 किलो और 10 किलो होता था। तो इन्फेंट्री ट्रूप्स को एक हैवी एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए अब जो नया वर्जन टाइप 4 बनेगा उसका वजन 7 किलो या कम होगा।
0: सेना के लिए 84 mm के हल्के रॉकेट लॉन्चर्स कार्ल गुस्ताफ MK4 खरीद सिर्फ एक वेपन परचेज तक सीमित नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में लॉन्चर, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, तकनीकी दस्तावेज और रखरखाव की पूरी व्यवस्था शामिल है। सेना के रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में बहुत सारी खास बातें जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि साब कंपनी इसे हरियाणा के झज्जर में बनाएगी, यानी कि ये पहली बार होगा कि स्वीडन के बाहर इसका प्लांट किसी और मुल्क में लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ जब तमाम मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगी तो हमें स्पेयर पार्ट्स या फिर दूसरी चीजों के लिए स्वीडन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी और मजबूत होता है। भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियां देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। वो सीमा पर हर तरह के इलाके में तैनात रहती हैं। पुराने हथियार भारी और कम प्रभावी हो चुके हैं। ऐसे में MK4 हल्का होने की वजह से सैनिकों की गतिशीलता बढ़ेगी, खासतौर पर सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में, जहां पर हर अतिरिक्त किलो वजन सैनिकों के लिए चुनौती होता है। कार्ल गुस्ताफ MK4 का वजन लगभग 7 किलोग्राम है, जो पुराने संस्करणों से हल्का है। इसकी लंबाई 1 मीटर से भी कम है, जिससे दुर्गम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पैदल सैनिक इसे आसानी से ले जा सकते हैं और मुश्किल इलाकों में लंबे समय तक आसानी से ऑपरेशन भी किया जा सकता है।
1: इसमें जो वॉरहेड लगाए जाएंगे वो 3 तरह के होंगे। नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड दुश्मन के बंकर को ध्वस्त करने के लिए, एंटी टैंक वॉरहेड दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए, और एक एरिया वेपन जो कि हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉर हेड होगा, दुश्मन के जो इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं जो ओपन एरिया में डिप्लॉयड हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि यह जो नया वेपन होगा ये -20 डिग्री हिमालयन क्षेत्र में, जैसे टेम्परेचर सर्दियों में हो जाता है, और +50 डिग्री राजस्थान के डेजर्ट में जैसे टेम्परेचर गर्मियों में हो जाता है, के रेंज में काम कर सके। इसका टेक्निकल तात्पर्य ये है कि -20 डिग्री में जो ट्यूब है वो श्रिंक नहीं होनी चाहिए, ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, और +50 डिग्री में जो इसका लॉन्च ट्यूब है वो सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, रिजिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए।
0: अगर दुश्मन पहाड़ी बंकर में छिपा है, किसी इमारत के अंदर हो या फिर हल्के बख्तरबंद वाहन में हो, या फिर सीमा पर मजबूत चौकी बना रखी हो, कार्ल गुस्ताफ MK4 कम समय में ऐसे लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। इससे पैदल सैनिकों को टैंक या तोपखाने के समर्थन का इंतजार हमेशा नहीं करना पड़ता।
1: युद्ध के दौरान जब हमारी टैंक दस्ते आगे बढ़ते हैं तो वो दुश्मन के जो एंटी टैंक कमांडोज हैं और दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं उसकी जद्दोजहद में आ सकते हैं। ऐसे में टैंक फॉर्मेशन जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमेशा उनको इन्फेंट्री ट्रूप्स का सपोर्ट दिया जाता है, खास तौर से एक्सिस ऑफ एडवांस के बाएं फ्लैंक पर और एक्सिस ऑफ एडवांस के दाहिने फ्लैंक पर। इन इन्फेंट्री ट्रूप्स को, जो हमारे इन्फेंट्री है जो कि टैंक को कवर दे रहे हैं, टैंक की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनका काम होता है कि दुश्मन ने अगर अपने एंटी टैंक दस्तों को दाएं या बाएं में जंगल के पीछे, खेत के पीछे, पहाड़ के पीछे छुपा के रखा हुआ है उसका क्लियरेंस करते जाएं, ताकि हमारी टैंक फॉर्मेशन बिना किसी रेजिस्टेंस के या बिना किसी नुकसान के मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, जिसे हम फॉर्म अप पॉइंट कहते हैं, FUP। क्योंकि टैंक फॉर्मेशन FUP पे पहुंचने के बाद ही जो असली टारगेट है उसके ऊपर अपना हमला शुरू करती है। असली टारगेट क्या है? डिचकम बंद हो सकता है, दुश्मन का टैंक कंसंट्रेटेड एरिया हो सकता है, दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हो सकता है।
0: पहले अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग हथियारों की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन खास गुस्ताख MK4 एक ही लॉन्चर से अलग अलग तरह की गोला बारूद दाग सकता है। एंटी टैंक गोले के तौर पर कार्ल गुस्ताफ MK4 में HEAT-751 का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोला टैंडम यानी कि दोहरे वॉरहेड से लैस है। इसका पहला विस्फोट टैंक के बाहरी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर सुरक्षा को नष्ट करता है और दूसरा मुख्य धमाका टैंक के 500 mm मोटे स्टील कवच को चीरते हुए अंदर प्रहार करता है। कार्ल गुस्ताफ MK4 से एंटी स्ट्रक्चर और बंकर बस्टर गोले दागे जा सकते हैं। इसके लिए HEDP-502 और MT-756 गोले का इस्तेमाल होता है। HEDP-502 एक ड्यूअल पर्पस गोला है। इसमें इम्पैक्ट यानी टकराते ही फटना और डिले मोड यानी कि टारगेट से टकराने की थोड़ी देर बाद फटना दोनों होते हैं। डिले मोड में ये पहले कंक्रीट या फिर लकड़ी की दीवार को छेद कर अंदर घुसता है और फिर बंकर के भीतर विस्फोट करता है ताकि अंदर छिपे दुश्मनों का सफाया हो सके। बंकरों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। MT-756 से एक मल्टी टारगेट गोला भी दागा जा सकता है। ये कंक्रीट, ईंट और मजबूत दीवारों को तोड़ते हुए विशेष रूप से टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल करता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर है। कार्ल गुस्ताफ MK4 से एंटी पर्सनल गोले जैसे कि HE-441D और 441DRS भी दागे जा सकते हैं। गोले के भीतर करीब 800 छोटे स्टील के छर्रे होते हैं। गोले खुली जगह या फिर झाड़ियों में छिपे दुश्मन के पैदल सैनिकों और गैर बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकते हैं। युद्धभूमि में पैदल सैनिकों के लिए मूवमेंट बेहद जरूरी होता है और इसमें खतरा बहुत बड़ा होता है, लिहाजा दुश्मन की नजरों से बचने के लिए कार्ल गुस्ताफ MK4 के पास सपोर्ट और गाइडेड गोले भी हैं जो दुश्मन की आंखों के सामने धुएं की दीवार खड़ी कर सकते हैं। कार्ल गुस्ताफ MK4 धुआं फैलाने वाले गोला स्मोक 469C दाग सकता है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर है और ये युद्ध क्षेत्र में तुरंत भारी धुआं पैदा करता है ताकि सैनिक दुश्मन की नजरों से बचकर अपनी पोजीशन बदल सके। यानी एक ही हथियार से टैंक और बख्तरबंद वाहन पर हमला हो सकता है। बंकर और कंक्रीट को तबाह किया जा सकता है।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क 4 के लॉन्चर से 1 मिनट में जरूरत पड़ने पर 6-6 मिसाइलों को दाग सकते हैं। इसके अलावा आर्मी ने अपने RFP में ये भी कहा है कि इसकी कैलेंडर लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिए, यानी बारिश, आंधी, तूफान, रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद वह 15 साल तक इफेक्टिव होना चाहिए। 1500 राउंड्स फायर करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। क्या होता है कि हर वेपन सिस्टम्स में टैंक तो तरंगबंद गाड़ियों का जो मेन मशीन गन है उनमें कुछ 100 या कुछ हजार राउंड फायर करने के बाद जो मेन बैरल है या कार्ल गुस्ताव में मेन ट्यूब है उसको चेंज करना पड़ता है। तो आर्मी ने अपने स्पेसिफिकेशन में लिखा कि 1500 राउंड तक इस कार्ल गुस्ताव मार्क 4 का जो ट्यूब है वो सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और उसके दौरान ही उसका जो ट्यूब है वो आर्मी के जवान के शोल्डर पे ही फट गया।
0: कार्ल गुस्ताव MK4 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है जो कि 1 मिनट में करीब 6 राउंड फायर कर सकता है। इसके प्रभावी मारक क्षमता की बात की जाए तो मूविंग टारगेट यानी कि चलते हुए वाहनों के खिलाफ करीब 350 से 400 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। वहीं स्थिर बख्तरबंद वाहनों या फिर टैंकों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। इमारतों और बंकरों के खिलाफ कार्ल गुस्ताव MK4 की मारक क्षमता 700 से 1000 मीटर है। कार्ल गुस्ताव MK4 को विशेष रूप से शहरी युद्ध और पैदल सैनिकों की मोबिलिटी को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया है। भारतीय सेना की पैराफोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस के लिए कई बार दुश्मन के नजदीक जाकर भी हमला करना पड़ता है। स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए वो कई बार दुश्मन की सरहद में भी घुसते हैं, तो ऐसे में गुस्ताव MK4 उनके लिए सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। दरअसल परिस्थितियों के लिहाज से हथियार कितना अत्याधुनिक है और उसका हर एक ग्राम मैटर करता है। तो स्थिति चाहे ऊंचाई वाले इलाकों की हो या फिर दूर दराज के इलाकों की, गुस्ताव MK4 इन फोर्सेस के लिए सबसे बेस्ट हथियार साबित हो सकता है। कार्ल गुस्ताव MK4 की लंबाई 1 मीटर से कम है, जिससे कमांडो इसे अपने पैराशूट, हार्नेस या बैकअप के साथ आसानी से बांध सकते हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते समय या फिर पैराशूट से कूदते समय ये सैनिकों के मूवमेंट में बाधा नहीं बनेगा। पैरा SF अक्सर रात के अंधेरे में हमला करते हैं। MK4 का स्मार्ट फायर कंट्रोल डिवाइस FCD-558 थर्मल और नाइट विजन डिवाइस के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इससे कमांडोज बिना कोई रोशनी किए घने अंधेरे या फिर कोहरे में भी दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर तबाह कर सकते हैं। भारतीय सेना की इन्फेंट्री के पास दरअसल एक घातक प्लाटून भी होती है। इनमें शारीरिक रूप से सक्षम और स्मार्ट जवानों को भर्ती किया जाता है। वैसे इनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। इनका सबसे बड़ा मकसद सीधे तौर पर यही होता है कि जब भी भारतीय सेना कहीं हमला के लिए जा रही है तो सबसे पहले यही प्लाटून आगे उस सेना का रास्ता क्लियर करती है। फिर चाहे बंकरों को नष्ट करना हो या फिर सेना के लिए रास्ता बनाना, यानी इस प्लाटून का कहां बहुत अहम हो जाता है रण क्षेत्र में। फॉरवर्ड पोस्ट पर दुश्मन की रक्षा पंक्ति को मिनटों में ध्वस्त करने के लिए घातक प्लाटून के जवान कार्ल गुस्ताव MK4 से HEDP-502 और MT-576 मल्टी टारगेट बंकर बस्टर गोलों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन का किला चुटकियों में ध्वस्त हो जाएगा। कश्मीर या उत्तर पूर्व में जब आतंकवादी किसी मजबूत घर या कंक्रीट की इमारत में छिप जाते हैं तो घातक प्लाटून को बुलाया जाता है। पहले भारी हथियारों को संकरी गलियों में ले जाना मुश्किल होता था, वहीं MK4 के हल्के वजन के कारण सैनिक इसे आसानी से संकीर्ण रास्तों पर ले जा सकेंगे और कमरे के अंदर से फायर करने वाले विशेष गोलों की मदद से बिना अपनी जान जोखिम में डाले इमारत को उड़ा देंगे।
1: किसी भी इन्फेंट्री असॉल्ट के दौरान इन्फेंट्री के जो ट्रुप्स हैं या कमांडोज हैं उनको या तो ऊंची ऊंची चोटियों पर जल्दी से जल्दी चढ़कर दुश्मन के ऊपर वार करना होता है, या खेतों में, मार्शी एरिया में, दलदल एरिया में, या रेगिस्तान, जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ पर सॉफ्ट सैंड पर द्रुत गति से आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में अगर एंटी टैंक लॉन्चर ट्यूब का वजन 14 किलो है या 10 किलो है तो फिर जवानों की मोबिलिटी में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी को ओवरकम करने के लिए अब ये तय किया गया है कि कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का जो लॉन्च ट्यूब होगा वो कॉम्प्लेक्स ग्लास फाइबर ट्यूब का बना होगा और टोटल वेपन सिस्टम का वजन 7 किलो से कम होगा, ताकि इन्फेंट्री का जो जवान है वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, समझिए उसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर, 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के बंकर पर हमला करना हो तो द्रुत गति से वो अपने पैरों से ऊपर चढ़कर द्रुत गति से इफेक्टिव फायर दुश्मन पर ला सके।
0: हथियारों की दुनिया में कार्ल गुस्ताफ MK4 को सेना के बजट के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। एंटी टैंक मिसाइल से ये बेहद सस्ता है, जहां स्पाइक या फिर जेवलिन 80 GMs की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, इसके उलट कार्ल गुस्ताफ का एक रॉकेट शेल महज कुछ लाख रुपए में आ जाता है। इसके टाइटेनियम लाइन बैरल की लाइफ 1500 राउंड है। इसका मतलब ये है कि ये सालों साल बिना खराब हुए हजारों गोले दाग सकता है, जिससे रखरखाव का खर्च बहुत कम हो जाता है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भरता आएगी। स्वीडन की कंपनी साद की ओर से झज्जर हरियाणा में लगाई गई 100% FDI फैक्ट्री के कारण भारत को अब लॉन्चर या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हरियाणा में हिसार के पास सेटअप किया जा रहा है। इसी के तहत यह भारत सरकार के लिए मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी

0: फाइबर ग्लास का बना होता है और एक ही ट्यूब को 15 साल तक और युद्ध की परिस्थिति में 1500 राउंड फायर करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही रेवेन्यू फ्रेंडली यानी कम खर्चे वाला वेपन सिस्टम लॉन्ग रन में साबित होगा।
1: मौजूदा समय में कालगुस्ताव सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। अलग अलग देश इसे अलग अलग नामों और रणनीतियों के साथ अपना रहे हैं। ब्रिटिश सेना इसे चार्ली जी कहती है, कैनेडियाई सैनिक इसे काल जी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की सेना चार्ली गट्स एक कहती है, वहीं अमेरिका में इसे मॉज यानी मल्टी रोल एंटी आर्मर एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम कहा जाता है। कालगुस्ताव सिस्टम के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन काम एक है और वो है दुश्मन को बैकफुट पर धकेलना। भारतीय सेना ने कालगुस्ताव को 1974 में अपनाना शुरू किया और 1976 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के साथ ये समझौता हुआ, जिसके बाद से अभी तक कालगुस्ताव लगातार भारतीय सेना का एक बहुत भरोसेमंद साथी बना हुआ है। करगिल युद्ध के समय भारतीय सेना ने कालगुस्ताव सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पहाड़ों की चट्टानों के बीच कंक्रीट और पत्थरों के मजबूत बंकर बना दिए थे, जहां पारंपरिक राइफलों और मशीन गनों की गोलियां बेअसर थी। भारतीय सैनिकों ने कालगुस्ताव को अपने कंधों पर उठाकर 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके हाई एक्सप्लोसिव ड्यूअल पर्पस गोलों ने बंकरों की दीवारों को सीधे छेद कर उड़ा दिया, जिसने भारतीय इन्फेंट्री को चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराने में सबसे बड़ी मदद की। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अगर देखा जाए तो खास तौर पर कश्मीर घाटी में भारतीय सेना का सबसे मजबूत साथी है कालगुस्ताव। दरअसल ये इस तरह का इलाका है जहां पर आतंकवादी कहीं भी आकर हमला करके उसके बाद झाड़ियों में या कंक्रीट में के बने कुछ मकानों में या फिर गुफाओं में अंदर जाके छिप जाते हैं। ऐसे में इन जगहों पर आतंकियों को काम तमाम करने के लिए सैनिकों को ठीक उनके पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये काम कालगुस्ताव आसानी से कर देता है। हथियारों की रीयूजेबिलिटी और वर्स्टेबिलिटी के कारण भारतीय सेना ने इसे अपनी अग्रिम सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बनाया। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीजफायर वॉयलेशन का जवाब देने और उनके अग्रिम बंकरों को तबाह करने के लिए कालगुस्ताव सिस्टम का अक्सर इस्तेमाल होता है। वहीं LAC पर चीनी चौकियों के ठीक सामने भारतीय सेना की लगभग सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर कालगुस्ताव के पुराने संस्करण MK2 और MK3 हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि किसी भी अचानक बख्तरबंद घुसपैठ को रोका जा सके। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती, मैदान का चाणक्य फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है। शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है

0: के विष योग का प्रभाव जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: तो चलिए अब आपको करवाते हैं एक ऐसे म्यूजियम की सैर जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में है। ये अंडर वाटर म्यूजियम क्रोएशिया में है। आपको दिखाते हैं आखिरकार इस म्यूजियम में क्या क्या है।
3: समंदर में स्कूबा डाइविंग करने वालों को आमतौर पर शानदार मछलियों और समुद्री जीवों का दीदार करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को अनोखी आकृतियों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। ये तस्वीरें क्रोएशिया के अंडर वाटर म्यूजियम की हैं। इसमें एक पुराने विमान का मलबा है, तो साथ ही साथ ईसा मसीह और उनके जीवन यात्रा से जुड़े लोगों की कई प्रतिमाएं भी हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रतिमा ईसा मसीह की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। इसे करीब 9 मीटर की गहराई में लगाया गया है। खास बात ये भी है कि इस म्यूजियम की सैर उन लोगों के लिए भी आसान है जिन्हें तैरना नहीं आता या जो अभी तैरना सीख रहे हैं।
4: Nalazi se na dubini od 3.5-4 metra. Svi kipovi su visine otprilike prirodne veličine ljudske oko 2 metra, tako da idealno za sve početnike, neplivače, nije uopće bitno da ljudi moraju ronit sa opremom i ronilačkom bocama, nego je više na snorkeling turi bazirano, tako da je napravljeno za sve generacije. Evo.
3: Europ me in dino tez garmi pad rahi hai, aise mein yahan aane wale sailaniyon ke liye underwater museum ki sair par aana garmi se bhi nijat paane ka bahana.
5: So this is a nice place, but the summer is so strong today. So I just went to the water and swimming here. And to be honest, the weather is beautiful compared to my nation. I came from Taiwan. So in Taiwan, that's humid and warm.
6: We expect to have a lot of fun since we love going to the beach, diving. And yeah, since we saw this thing you have in Croatia, which is very, very new, very exciting. So yeah, we look forward into seeing all we can see underwater in this museum.
3: दुनिया भर में ये अकेला ऐसा म्यूजियम है जहां ईसा मसीह की जीवन यात्रा को समुद्र की गहराइयों में प्रदर्शित किया गया है। इस म्यूजियम का माहौल काफी आकर्षक है। समुद्री टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए ये यादगार सैर सपाटे की शानदार जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती, मैदान का चाणक्य फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
9: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
8: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान. अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड. आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड. खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक. 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला. रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना. खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर. अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन. रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश. 7 दिनों तक यही करेंगे विश्राम. लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु. पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात. बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा. जवानों से किया संवाद. अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास. मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी. दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक. 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह.

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने अपनी कैप्टेंसी में लगातार दूसरी बार अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 15 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के आखिरी क्षणों में मेसी ने अपने दो शानदार पास से मैच का रुख जिस तरह से बदल दिया, उसे देखकर इस खेल के विशेषज्ञ अब ये कहने लगे हैं कि मेसी ऑल टाइम ग्रेट है।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों में मेसी ने विरोधी टीमों पर हावी होकर आखिरी क्षणों में जिस तरह से मैच का रुख मोड़ दिया, उसे देखकर सॉकर एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि मेसी निसंदेह ऑल टाइम ग्रेट हैं। मेसी के डाई हार्ड परफॉर्मेंस की वजह से अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने में सफल हुआ है। अटलांटा के एंथनी गार्डन में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में 55वें मिनट पर गोल करके इंग्लैंड फाइनल की तरफ कदम बढ़ा चुका था, लेकिन लियोनेल मेसी ने आखिरी वक्त में मैच का रुख पलट दिया। मैच के 86वें मिनट पर मेसी ने शानदार शॉर्ट कॉर्नर खेलकर गेंद एंजो फर्नांडीज के पास पहुंचा दी और फर्नांडीज ने मेसी के शानदार पास पर बगैर देर किए 25 गज से शानदार गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में मेसी के बेहतरीन क्रॉस पर सब्स्टिट्यूट लॉटारो मार्टिनेज ने हेडर से गोल कर फाइनल में पहुंचने के इंग्लैंड के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस रोमांचक मुकाबले के बाद मेसी की खुले दिल से तारीफ करते हुए फुटबॉल एक्सपर्ट मीका रिचर्ड्स ने कहा कि अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, उनके पास ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, फुटबॉल के इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच हुए फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 पर यानी बराबरी पर था, लेकिन मैदान पर मेसी की मौजूदगी ने अर्जेंटीना के बाकी खिलाड़ियों का हौसला हमेशा बुलंद रखा, लिहाजा अतिरिक्त समय में 2 गोल दागकर अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। न्यू जर्सी के मिड लाइफ स्टेडियम में जब स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 की निर्णायक भिड़ंत होगी तो इसमें मेसी के सामने होगा वो खिलाड़ी जिसे कभी अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर ने बेबी बाथटब में बड़े ही प्यार से नहलाया था। ये वाकया है साल 2007 का। उस समय बार्सिलोना के युवा स्टार लियोनेल मेसी सिर्फ 20 साल के थे। उसी दौरान स्थानीय अखबार डीआरओ स्पोर्ट और यूनिसेफ ने एक चैरिटी फोटोशूट आयोजित किया। इस फोटोशूट में स्पेन के मौजूदा स्टार फुटबॉलर लैमिन यमाल का परिवार विजेता बना और उन्हें कैंप नोउ में फोटोशूट का मौका मिला। फोटोशूट के दौरान मेसी ने महज 6 महीने के यमाल को प्लास्टिक के छोटे से बेबी बाथटब में नहलाया और गोद में उठाकर तस्वीरें भी खिंचवाई। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो वो मानो भगवान बन गए हैं, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारों की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन वाकिफ नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थीं। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था। इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया, जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल्स रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया, बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया, और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे, जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को ना झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
0: तो चलिए बंद में है दम के आज के सफरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक दमदार शख्सियत का सफरनामा लेकर आप सभी के सामने। इजाजत दीजिए, देखते रहिए GNT।
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: तो चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। तो चारधाम यात्रा में इस बार प्रकृति की चुनौती और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था दोनों की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, केदारनाथ पैदल मार्ग पर रास्ता कुछ समय के लिए बाधित हुआ, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उनकी जो आस्था है वो लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है। मुश्किल हालात के बावजूद ना तो व्यवस्थाएं थमी हैं और ना ही भगवान के दर्शन की श्रद्धालुओं की आस कम हुई है।

0: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार हर दिन एक नया अनुभव दे रही है। गौरीकुंड के पास केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है, तो प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। लगातार बारिश के बीच रास्ता खोलने की कवायद चलाई। फिलहाल केवल पैदल यात्रियों के लिए रास्ता तैयार है। इन परिस्थितियों के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और पूरे जोश के साथ यात्री यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जुलाई के मध्य में, जबकि मानसून सीजन इस समय चल रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के पार हो चुकी है। मौसम की बात करें, मौसम लगातार पहाड़ों में भले ही बदल रहा है, सुबह सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है, रात को हल्की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन पूरे दिन मौसम चटक धूप और मौसम सुहाना मौसम बद्रीनाथ धाम सहित तमाम जनपद में बना हुआ है।
0: सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ तैनात है। जवान श्रद्धालुओं की लगातार मदद कर रहे हैं। SDRF, NDRF और पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटे हैं ताकि यात्रा सुरक्षित चलती रहे। बद्रीनाथ धाम से आस्था की बेहद शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस साल यात्रा ने नया कीर्तिमान बना दिया है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 जुलाई में ही 15 लाख के पार चली गई है। आमतौर पर ये आंकड़ा अक्टूबर के आखिर या नवंबर पे पार होता था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड समय से पहले ही हो गया है और नया इतिहास बन गया है। मॉनसून के बावजूद बद्रीनाथ पहुंचने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ। कुछ दिनों तक बारिश की वजह से संख्या जरूर घटी, लेकिन मौसम साफ होते ही फिर रफ्तार बढ़ गई। बीते दिन 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देश के अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग धाम पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को कम समय में आसानी से दर्शन हो रहे हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रहने से सफर भी पहले से आसान बना हुआ है। मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक हर ओर श्रद्धा का माहौल दिखाई दे रहा है। बढ़ती संख्या का सकारात्मक असर स्थानीय व्यापार पर भी साफ नजर आ रहा है।
2: के लिए जाना है, मेरे मन में जबरदस्त उमंग, जबरदस्त साहस, जबरदस्त शक्ति हो गई। कई बार तो मेरे दोस्तों ने ये भी कहा कि ये बारिश का मौसम है, आप इस तरफ मत जाइए, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, क्लाउड क्रॉसिंग कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने बस अपने आप को प्रभु को सौंपा और मैंने कहा प्रभु मैं आपके शरण में हूँ और अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।
0: एक ओर केदारनाथ में प्राकृतिक चुनौती के बीच सुरक्षा और सेवा का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर बद्रीनाथ में उमड़ती आस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। यही तस्वीर बताती है कि कठिन परिस्थितियां भी श्रद्धालुओं के विश्वास को रोक नहीं पा रही। उम्मीद है कि आगे भी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल तरीके से चलती रहेगी। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
5: शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है। शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: फीलिंग अ बिट नॉस्टैल्जिक फॉर द 90s? Tune in has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: और आपको समझाएंगे, देखिए मैं
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना, खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर, अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश, 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम, लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से दी विकास की सौगात, बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष में भारत ने रचा नया इतिहास, मिशन आगमन में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 की हुई सफल लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवनीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दोनों स्टार खिलाड़ी भारतीय दल की होंगी ध्वजवाहक, 23 जुलाई को होगा उद्घाटन समारोह।
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, योद्धाओं की वो टोली जो विषम परिस्थितियों में भी देश की हिफाजत में डटे रहते हैं। तपते रेगिस्तान से लेकर खून जमा देने वाली बर्फीली वादियों तक इनकी मौजूदगी है, जो दुश्मन को फटकने का मौका तक नहीं देते। भारतीय सेना के इन रणबांकुरों को मॉडर्न, हाईटेक और लेटेस्ट वेपन से लैस किया जा रहा है, ताकि वो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने वाले हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। भारतीय सेना अपने हथियारों को अत्याधुनिक बनाने और इन्हें हल्का बनाने के लिए लगातार इन पर काम कर रही है, और इसी कड़ी में 450 कार्ल गुस्ताफ MK4 मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर्स को खरीदने का प्रपोजल दिया गया है। यह खरीद मेक इन इंडिया के तहत ही होगी और इसके बाद भारतीय सेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। कार्ल गुस्ताफ सिर्फ एक एंटी टैंक हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध में पैदल सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला मल्टी रोल वेपन सिस्टम है, जो बख्तरबंद वाहनों से लेकर मजबूत बंकरों को तबाह करने में सक्षम है। भारतीय सेना इसे करीब 5 दशकों से इस्तेमाल कर रही है और अब इसका सबसे आधुनिक संस्करण MK4 को सेना की नई युद्ध जरूरतों के हिसाब से शामिल किया गया है। सेना की RFP में साफ हो गया है कि नया लॉन्चर पुराने MK3 जितना सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए। बैरल की उम्र कम से कम 1500 राउंड या 15 साल होनी चाहिए। ये -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और अलग अलग जलवायु में बिना किसी समस्या के काम भी कर सके। आधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम हो, रेड डॉट साइट और पकैटनी रेल्स लगाने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि सैनिक तेजी से निशाना लगा सके और पहली गोली में ही दुश्मन को मार सके।
1: इंडियन आर्मी बहुत जल्दी ही कार्ल गुस्ताफ 4 शोल्डर्ड फायर्ड एंटी टैंक वेपन को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसका जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है, उसके तहत कार्ल गुस्ताफ 4 का जो लॉन्चर होगा उसका वजन 7 किलो से कम होना चाहिए। यह गौरतलब बात है कि इसके पहले का जो Mark II वेरियंट था और Mark III वेरियंट था, उनका वजन 14 किलो और 10 किलो होता था। तो इन्फेंट्री ट्रुप्स को एक हैवी एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए अब जो नया वर्जन Type 4 बनेगा उसका वजन 7 किलो या कम होगा।
0: सेना के लिए 84 mm के हल्के रॉकेट लॉन्चर्स कार्ल गुस्ताफ MK4 खरीद सिर्फ एक वेपन परचेज तक सीमित नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में लॉन्चर, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, तकनीकी दस्तावेज और रखरखाव की पूरी व्यवस्था शामिल है। सेना के रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में बहुत सारी खास बातें हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि साब कंपनी इसे हरियाणा के झज्जर में बनाएगी, यानी कि ये पहली बार होगा कि स्वीडन के बाहर इसका प्लांट किसी और मुल्क में लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ जब तमाम मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगी तो हमें स्पेयर पार्ट्स या फिर दूसरी चीजों के लिए स्वीडन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी और मजबूत होता है। भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियां देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। वो सीमा पर हर तरह के इलाके में तैनात रहती हैं। पुराने हथियार भारी और कम प्रभावी हो चुके हैं। ऐसे में MK4 हल्का होने की वजह से सैनिकों की गतिशीलता बढ़ेगी, खासतौर पर सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में, जहां पर हर अतिरिक्त किलो वजन सैनिकों के लिए चुनौती होता है। कार्ल गुस्ताफ MK4 का वजन लगभग 7 किलोग्राम है, जो पुराने संस्करणों से हल्का है। इसकी लंबाई 1 मीटर से भी कम है, जिससे दुर्गम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पैदल सैनिक इसे आसानी से ले जा सकते हैं और मुश्किल इलाकों में लंबे समय तक आसानी से ऑपरेशन भी किया जा सकता है।
1: इसमें जो वॉरहेड लगाए जाएंगे वो 3 तरह के होंगे। नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड दुश्मन के बंकर को ध्वस्त करने के लिए, एंटी टैंक वॉरहेड दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए, और एक एरिया वेपन जो कि हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉर हेड होगा, दुश्मन के जो इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं जो ओपन एरिया में डिप्लॉयड हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि यह जो नया वेपन होगा ये -20 डिग्री हिमालयन क्षेत्र में, जैसे टेम्परेचर सर्दियों में हो जाता है, और +50 डिग्री राजस्थान के डेजर्ट में जैसे टेम्परेचर गर्मियों में हो जाता है के रेंज में काम कर सके। इसका टेक्निकल तात्पर्य ये है कि -20 डिग्री में जो ट्यूब है वो श्रिंक नहीं होनी चाहिए, ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, और +50 डिग्री में जो इसका लॉन्च ट्यूब है वो सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, रिजिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए।
0: अगर दुश्मन पहाड़ी बंकर में छिपा है, किसी इमारत के अंदर हो या फिर हल्के बख्तरबंद वाहन में हो, या फिर सीमा पर मजबूत चौकी बना रखी हो, खाल गुस्ताफ MK4 कम समय में ऐसे लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। इससे पैदल सैनिकों को टैंक या तोपखाने के समर्थन का इंतजार हमेशा नहीं करना पड़ता।
1: युद्ध के दौरान जब हमारी टैंक दस्ते आगे बढ़ते हैं तो वो दुश्मन के जो एंटी टैंक कमांडोज हैं और दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं उसकी जद्दोजहद में आ सकते हैं। ऐसे में टैंक फॉर्मेशन जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमेशा उनको इन्फेंट्री ट्रूप्स का सपोर्ट दिया जाता है, खास तौर से एक्सिस ऑफ एडवांस के बाएं फ्लैंक पर और एक्सिस ऑफ एडवांस के दाहिने फ्लैंक पर। इन इन्फेंट्री ट्रूप्स को, जो हमारे इन्फेंट्री है जो कि टैंक को कवर दे रहे हैं, टैंक की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनका काम होता है कि दुश्मन ने अगर अपने एंटी टैंक दस्तों को दाएं या बाएं में जंगल के पीछे, खेत के पीछे, पहाड़ के पीछे छुपा के रखा हुआ है उसका क्लियरेंस करते जाएं, ताकि हमारी टैंक फॉर्मेशन बिना किसी रेजिस्टेंस के या बिना किसी नुकसान के मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, जिसे हम फॉर्म अप पॉइंट कहते हैं, FUP। क्योंकि टैंक फॉर्मेशन FUP पे पहुंचने के बाद ही जो असली टारगेट है उसके ऊपर अपना हमला शुरू करती है। असली टारगेट क्या है? डिचकम बंद हो सकता है, दुश्मन का टैंक कंसंट्रेटेड एरिया होना हो सकता है, दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हो सकता है।
0: पहले अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग हथियारों की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन खाल गुस्ताख MK4 एक ही लॉन्चर से अलग अलग तरह की गोला बारूद दाग सकता है। एंटी टैंक गोले के तौर पर खाल गुस्ताख MK4 में HEAT-751 का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोला टैंडम यानी कि दोहरे वॉरहेड से लैस है। इसका पहला विस्फोट टैंक के बाहरी एक्सक्लोसिव रिएक्टिव आर्मर सुरक्षा को नष्ट करता है और दूसरा मुख्य धमाका टैंक के 500 mm मोटे स्टील कवच को चीरते हुए अंदर प्रहार करता है। खाल गुस्ताख MK4 से एंटी स्ट्रक्चर और बंकर बस्टर गोले दागे जा सकते हैं। इसके लिए HEDP 502 और MT-756 गोले का इस्तेमाल होता है। HEDP 502 एक ड्यूअल पर्पस गोला है। इसमें इम्पैक्ट यानी टकराते ही फटना और डिले मोड यानी कि टारगेट से टकराने की थोड़ी देर बाद फटना दोनों होते हैं। डिले मोड में ये पहले कंक्रीट या फिर लकड़ी की दीवार को छेद कर अंदर घुसता है और फिर बंकर के भीतर विस्फोट करता है ताकि अंदर छिपे दुश्मनों का सफाया हो सके। बंकरों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। MT-756 से एक मल्टी टारगेट गोला भी दागा जा सकता है। ये कंक्रीट ईंट और मजबूत दीवारों को तोड़ते हुए विशेष रूप से टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल करता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर है। खाल गुस्ताख MK4 से एंटी पर्सनल गोले जैसे कि HE-441D और 441DRS भी दागे जा सकते हैं। गोले के भीतर करीब 800 छोटे स्टील के छर्रे होते हैं। गोले खुली जगह या फिर झाड़ियों में छिपे दुश्मन के पैदल सैनिकों और गैर बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकते हैं। युद्धभूमि में पैदल सैनिकों के लिए मूवमेंट बेहद जरूरी होता है और इसमें खतरा बहुत बड़ा होता है, लिहाजा दुश्मन की नजरों से बचने के लिए खाल गुस्ताख MK4 के पास सपोर्ट और गाइडेड गोले भी हैं जो दुश्मन की आंखों के सामने धुएं की दीवार खड़ी कर सकते हैं। कार्ल गुस्ताफ MK4 धुआं फैलाने वाले गोला स्मोक 469C दाग सकता है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर है और ये युद्ध क्षेत्र में तुरंत भारी धुआं पैदा करता है ताकि सैनिक दुश्मन की नजरों से बचकर अपनी पोजीशन बदल सके। यानी एक ही हथियार से टैंक और बख्तरबंद वाहन पर हमला हो सकता है, बंकर और कंक्रीट को तबाह किया जा सकता है।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क 4 के लॉन्चर से 1 मिनट में जरूरत पड़ने पर 6-6 मिसाइलों को दाग सकते हैं। इसके अलावा आर्मी ने अपने RFP में ये भी कहा है कि इसकी कैलेंडर लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिए, यानी बारिश, आंधी, तूफान, रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद वह 15 साल तक इफेक्टिव होना चाहिए। 1500 राउंड्स फायर करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। क्या होता है कि हर वेपन सिस्टम्स में टैंक तो तरंगबंद गाड़ियों का जो मेन मशीन गन है उनमें कुछ 100 या कुछ हजार राउंड फायर करने के बाद जो मेन बैरल है या कार्ल गुस्ताव में मेन ट्यूब है उसको चेंज करना पड़ता है। तो आर्मी ने अपने स्पेसिफिकेशन में लिखा कि 1500 राउंड तक इस कार्ल गुस्ताव मार्क 4 का जो ट्यूब है वो सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और उसके दौरान ही उसका जो ट्यूब है वो आर्मी के जवान के शोल्डर पे ही फट गया।
0: कार्ल गुस्ताव MK4 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है जो कि 1 मिनट में करीब 6 राउंड फायर कर सकता है। इसके प्रभावी मारक क्षमता की बात की जाए तो मूविंग टारगेट यानी कि चलते हुए वाहनों के खिलाफ करीब 350 से 400 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। वहीं स्थिर बख्तरबंद वाहनों या फिर टैंकों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। इमारतों और बंकरों के खिलाफ कार्ल गुस्ताव MK4 की मारक क्षमता 700 से 1000 मीटर है। कार्ल गुस्ताव MK4 को विशेष रूप से शहरी युद्ध और पैदल सैनिकों की मोबिलिटी को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया है। भारतीय सेना की पैरा फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस के लिए कई बार दुश्मन के नजदीक जाकर भी हमला करना पड़ता है। स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए वो कई बार दुश्मन की सरहद में भी घुसते हैं, तो ऐसे में गुस्ताव MK4 उनके लिए सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। दरअसल परिस्थितियों के लिहाज से हथियार कितना अत्याधुनिक है और उसका हर एक ग्राम मैटर करता है। तो स्थिति चाहे ऊंचाई वाले इलाकों की हो या फिर दूर दराज के इलाकों की, गुस्ताव MK4 इन फोर्सेस के लिए सबसे बेस्ट हथियार साबित हो सकता है। कार्ल गुस्ताव MK4 की लंबाई 1 मीटर से कम है, जिससे कमांडो इसे अपने पैराशूट, हार्नेस या बैकअप के साथ आसानी से बांध सकते हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते समय या फिर पैराशूट से कूदते समय ये सैनिकों के मूवमेंट में बाधा नहीं बनेगा। पैरा SF अक्सर रात के अंधेरे में हमला करते हैं। MK4 का स्मार्ट फायर कंट्रोल डिवाइस FCD-558 थर्मल और नाइट विजन डिवाइस के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इससे कमांडोज बिना कोई रोशनी किए घने अंधेरे या फिर कोहरे में भी दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ कर तबाह कर सकते हैं। भारतीय सेना की इन्फेंट्री के पास दरअसल एक घातक प्लाटून भी होती है। इनमें शारीरिक रूप से सक्षम और स्मार्ट जवानों को भर्ती किया जाता है, वैसे इनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। इनका सबसे बड़ा मकसद सीधे तौर पर यही होता है कि जब भी भारतीय सेना कहीं हमला के लिए जा रही है तो सबसे पहले यही प्लाटून आगे उस सेना का रास्ता क्लियर करती है, फिर चाहे बंकरों को नष्ट करना हो या फिर सेना के लिए रास्ता बनाना। यानी इस प्लाटून का कहां बहुत अहम हो जाता है रण क्षेत्र में। फॉरवर्ड पोस्ट पर दुश्मन की रक्षा पंक्ति को मिनटों में ध्वस्त करने के लिए घातक प्लाटून के जवान कार्ल गुस्ताव MK4 से HEDP-502 और MT-576 मल्टी टारगेट बंकर बस्टर गोलों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन का किला चुटकियों में ध्वस्त हो जाएगा। कश्मीर या उत्तर पूर्व में जब आतंकवादी किसी मजबूत घर या कंक्रीट की इमारत में छिप जाते हैं तो घातक प्लाटून को बुलाया जाता है। पहले भारी हथियारों को संकरी गलियों में ले जाना मुश्किल होता था, वहीं MK4 के हल्के वजन के कारण सैनिक इसे आसानी से संकीर्ण रास्तों पर ले जा सकेंगे और कमरे के अंदर से फायर करने वाले विशेष गोलों की मदद से बिना अपनी जान जोखिम में डाले इमारत को उड़ा देंगे।
1: किसी भी इन्फेंट्री असॉल्ट के दौरान इन्फेंट्री के जो ट्रुप्स हैं या कमांडोज हैं उनको या तो ऊंची-ऊंची चोटियों पर जल्दी से जल्दी चढ़कर दुश्मन के ऊपर वार करना होता है या खेतों में मार्शी एरिया में दलदल एरिया में या रेगिस्तान जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है वहाँ पर सॉफ्ट सैंड पर द्रुत गति से आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में अगर एंटी टैंक लॉन्चर ट्यूब का वजन 14 किलो है या 10 किलो है तो फिर जवानों की मोबिलिटी में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी को ओवरकम करने के लिए अब ये तय किया गया है कि कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का जो लॉन्च ट्यूब होगा वो कॉम्प्लेक्स ग्लास फाइबर ट्यूब का बना होगा और टोटल वेपन सिस्टम का वजन 7 किलो से कम होगा ताकि इन्फेंट्री का जो जवान है वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर समझिए उसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के बंकर पर हमला करना हो तो द्रुत गति से वो अपने पैरों से ऊपर चढ़कर द्रुत गति से इफेक्टिव फायर दुश्मन पर ला सके।
0: हथियारों की दुनिया में कार्ल गुस्ताफ MK4 को सेना के बजट के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। एंटी टैंक मिसाइल से ये बेहद सस्ता है, जहां स्पाइक या फिर जेवलिन ATGMs की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, इसके उलट कार्ल गुस्ताफ का एक रॉकेट शेल महज कुछ लाख रुपए में आ जाता है। इसके टाइटेनियम लाइन बैरल की लाइफ 1500 राउंड है, इसका मतलब ये है कि ये सालों साल बिना खराब हुए हजारों गोले दाग सकता है, जिससे रखरखाव का खर्च बहुत कम हो जाता है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भरता आएगी। स्वीडन की कंपनी सादगी ओर से झज्जर हरियाणा में लगाई गई 100% FDI फैक्ट्री के कारण भारत को अब लॉन्चर या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
1: कार्ल गुस्ताव मार्क फोर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हरियाणा में हिसार के पास सेटअप किया जा रहा है। इसी के तहत यह भारत सरकार के लिए मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। यह बहुत हाईली कॉस्ट इफेक्टिव वेपन सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि यह फाइबर ग्लास का बना होता है और एक ही ट्यूब को 15 साल तक और युद्ध की परिस्थिति में 1500 राउंड फायर करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही

0: एमआरओज यानी मल्टी रोल एंटी आर्मर एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम कहा जाता है। कार्ल गुस्ताफ सिस्टम के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन काम एक है और वो है दुश्मन को बैकफुट पर धकेलना। भारतीय सेना ने कार्ल गुस्ताफ को 1974 में अपनाना शुरू किया और 1976 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के साथ ये समझौता हुआ, जिसके बाद से अभी तक कार्ल गुस्ताफ लगातार भारतीय सेना का एक बहुत भरोसेमंद साथी बना हुआ है। करगिल युद्ध के समय भारतीय सेना ने कार्ल गुस्ताफ सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पहाड़ों की चट्टानों के बीच कंक्रीट और पत्थरों के मजबूत बंकर बना दिए थे, जहां पारंपरिक राइफलों और मशीन गनों की गोलियां बेअसर थी। भारतीय सैनिकों ने कार्ल गुस्ताफ को अपने कंधों पर उठाकर 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके हाई एक्सप्लोसिव ड्यूअल पर्पस गोलों ने बंकरों की दीवारों को सीधे छेद कर उड़ा दिया, जिसने भारतीय इन्फेंट्री को चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराने में सबसे बड़ी मदद की। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अगर देखा जाए तो खास तौर पर कश्मीर घाटी में भारतीय सेना का सबसे मजबूत साथी है कार्ल गुस्ताफ। दरअसल ये इस तरह का इलाका है जहां पर आतंकवादी कहीं भी आकर हमला करके उसके बाद झाड़ियों में या कंक्रीट में के बने कुछ मकानों में या फिर गुफाओं में अंदर जाके छिप जाते हैं। ऐसे में इन जगहों पर आतंकियों को काम तमाम करने के लिए सैनिकों को ठीक उनके पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये काम कार्ल गुस्ताफ आसानी से कर देता है। हथियारों की रीयूजेबिलिटी और वर्स्टेबिलिटी के कारण भारतीय सेना ने इसे अपनी अग्रिम सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बनाया। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीज फायर वॉयलेशन का जवाब देने और उनके अग्रिम बंकरों को तबाह करने के लिए कार्ल गुस्ताफ सिस्टम का अक्सर इस्तेमाल होता है। वहीं LAC पर चीनी चौकियों के ठीक सामने भारतीय सेना की लगभग सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर कार्ल गुस्ताफ के पुराने संस्करण MK2 और MK3 हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि किसी भी अचानक बख्तरबंद घुसपैठ को रोका जा सके। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती, मैदान का चाणक्य फुटबॉल का जादूगर, मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: क्या शनि और चंद्रमा का विष योग जीवन में विष पैदा करता है? शनि और चंद्रमा का विष योग क्या वाकई में जीवन को रोक देता है? क्या इस योग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं? क्या है शनि और चंद्रमा के विष योग का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: तो चलिए अब आपको करवाते हैं एक ऐसे म्यूजियम की सैर जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में है। ये अंडर वाटर म्यूजियम क्रोएशिया में है। आपको दिखाते हैं आखिरकार इस म्यूजियम में क्या क्या है।
6: समंदर में स्कूबा डाइविंग करने वालों को आमतौर पर शानदार मछलियों और समुद्री जीवों का दीदार करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को अनोखी आकृतियों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है।

0: रशिया के अंडर वाटर म्यूजियम की है। इसमें एक पुराने विमान का मलबा है। साथ ही साथ ईसा मसीह और उनके जीवन यात्रा से जुड़े लोगों की कई प्रतिमाएं भी हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रतिमा ईसा मसीह की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। इसे करीब 9 मीटर की गहराई में लगाया गया है। खास बात ये भी है कि इस म्यूजियम की सैर उन लोगों के लिए भी आसान है जिन्हें तैरना नहीं आता या जो अभी तैरना सीख रहे हैं।
1: Nalazi se na dubini od 3,5-4 metra. Svi kipovi su visine otprilike prirodne veličine ljudske oko 2 metra, tako da idealno za sve početnike, ne plivače, nije uopće bitno da ljudi moraju ronit sa opremom i ronilačkom bocama, nego je više na snorkeling turi bazirano, tako da je napravljeno za sve generacije. Evo.
0: तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए अंडरवाटर म्यूजियम की सैर पर आना गर्मी से भी निजात पाने का बहाना है।
2: So this is a nice place, but the summer is so strong today. So I just went to the water and swimming here. And to be honest, the weather is beautiful compared to my nation. I came from Taiwan. So in Taiwan, that's humid and warm.
3: We expect to have a lot of fun since we love going to the beach, diving. And yeah, since we saw this thing you have in Croatia, which is very, very new, very exciting. So yeah, we look forward into seeing all we can see underwater in this museum.
0: दुनिया भर में ये अकेला ऐसा म्यूजियम है जहां ईसा मसीह की जीवन यात्रा को समुद्र की गहराइयों में प्रदर्शित किया गया है। इस म्यूजियम का माहौल काफी आकर्षक है। समुद्री टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए ये यादगार सैर सपाटे की शानदार जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: आखिरी क्षणों में पलट दे जो बाजी, बाज सी नजर चीते सी फुर्ती। मैदान का चाणक्य, फुटबॉल का जादूगर। मैसी है तो मुमकिन है, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: ट्यून इन इज योर ऑल इन वन ऑडियो ऐप, रेडियो, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, न्यूज एंड पॉडकास्ट्स ऑल इन वन प्लेस। But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खराब मौसम के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। 19 जुलाई से अगले आदेश तक दोनों रूट बंद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। खूबसूरत वादियों के बीच छाई कोहरे की मोटी चादर। अब तक 4,08,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। रिमझिम बारिश के बीच गुंडीचा मंदिर में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान ने किया प्रवेश। 7 दिनों तक यहीं करेंगे विश्राम। लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु।